0: में मात्र 20% मुनाफा हुआ या 10% ही मुनाफा हुआ या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती हैं। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनी हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा, उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दी। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है, तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं, वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा

0: मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ, देखिए जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती है। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सबको जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टीलेज से की बुआई कर रहे हो तो क्या होता है कि जीरो टीलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा। और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही होगा।
1: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग।

0: तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाज़ार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है क्योंकि बाज़ार में मांग आने वाली है। एआई क्योंकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती है उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहां पर भी इसकी जानकारियां आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उसके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएँ, कितना दूरी पर लगाएँ, किस मौसम में लगाएँ, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी,

जहाँ पर कि जो क्लरिकल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे, वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही AI का युग है। आपको

0: मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास

में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएस 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गलाघोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून
माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से ज़रा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और

परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना जरूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब, जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है, और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है, और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए, और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है, हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से, उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब

उससे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही है, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीज़ें बदल सकती है और कितनी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं और क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, न सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी, आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना ज़रूरी है नौकरी करना, उतना ही ज़रूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना ज़रूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा, समझेगा, समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये ज़रूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।
जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल।

0: और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम बातें करने वाले हैं अपने विशेष कार्यक्रम में सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
0: सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से। और सर, आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
8: जी, तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों, भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है, उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई

करता है और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्मजीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे, क्योंकि वही सूक्ष्मजीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्मजीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज़ है जो सूक्ष्मजीव करते हैं, जो सूक्ष्मजीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु पॉलीसेक्रेड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है, और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे, उसमें हवा का आवागमन जो है वो गैस का जो एक्सचेंज है उस मिट्टी में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रंध्र और बृहत रंध्र जो है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है, और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं, तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व यानी सूक्ष्मजीव जीवाणु का महत्व न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्मजीव जीवाणु का।
इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व, खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, इसको उपलब्ध

कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे? तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्म जीव जीवाणु का रोल क्या है। तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है तो उसको क्या करता है ये जीवाणु जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है। अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्म जीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पेसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम आयन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम क्या करता है, तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रिडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज़ है कि वो जो है सूक्ष्म जीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस
उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है

0: वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? तो ये फास्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फास्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है, मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है। बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है, वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ, आयरन के साथ, एल्युमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फास्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, मिट्टी में जाते ही इमीडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्युमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्म जीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्म जीव जीवाणु का हम माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फास्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फास्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी, निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फास्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज है कि जो सूक्ष्म जीव जीवाणु है वो क्या करते हैं, तो वो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं, और ये रिलीज करने से क्या होता है, पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है, और उसके साथ साथ एक ACCDMNase इंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, और वो क्या करता है, तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्म जीव जीवाणु है, ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए, उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्म जीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसुलस थुरिंजेनेसिस, ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में, पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट, जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज़ में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और

0: किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
1: जी जी धन्यवाद। साहब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसान के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है वायु मंडल का जो प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसी को किसान इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है रेजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट पीएसबी के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है जो पीएसबी बायो फर्टिलाइजर है, और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं पीएसबी को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जो सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक

प्रयोग करने से भी वही काम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15 से 40 kg तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है। और जब उससे वो नाइट्रोजन उतना स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी। रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे, उस मात्रा में उसका क्वांटिटी घटाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जैसे चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के, मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में ये जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20 से 25 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का। तो वो क्या करते हैं, उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेर को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 cm 8 cm लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन एल्गी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके, ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे। और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन एल्गी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में, और व्हीट मेज, राइस, वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गया कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 kg सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए, किस पर, बीज पर। और उसको फिर ले जा, उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट।

0: पैदा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में या सब्जी के केस में या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचरा जो 20-21 दिन का बिचरा हो जाता है उसको लगाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचरा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचरा के उपचार के लिए भी हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचरा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सुटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो, ये मेथड, ये विधि है जिसको हम बिचरा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचरा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा, और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें। तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट हो करके जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना या फैटो हार्मोन उपलब्ध कराना या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल के वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है, ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है, यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है, उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ, इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में, वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 मंथ के लिए ही होता है, 6 मंथ तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी, जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें, ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उस मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से, तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें, और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
1: सर, आपने सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि के आगे।
2: आगे जीरो जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 वी

0: पीडी यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं।

0: आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है।
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग, तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार

पैदावार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान। दोस्तों बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
0: यस मैम। मैम अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
1: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से जो नवीन तकनीक है इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
0: मैम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञ का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया है उसको और भी सरल बनाना और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
0: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
1: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
0: हम सीड फंड जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है?

0: इसमें कोई अंतर है?
1: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है, और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें, तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
0: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
1: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे एसटीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
0: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
1: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे, उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहां से फंडिंग आएगा, और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका, उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे

0: इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वही है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है, फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है, और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह आठ चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम आपने आठों चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो छह चरण से गुजरते हैं, यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम छह स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज, और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है, एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता छह स्टेज होते हैं, छह चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
1: यस मैम, जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान

0: करने की, और खाद्य प्रसंस्करण पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया, ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इंक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में, और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पर, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहां से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है, और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर, बल्कि अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
1: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगी?
0: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से जो हमारे युवा वर्ग हैं उनसे यही मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की, एक नई दिशा देने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए, और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर

0: आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को, जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं।

जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करे जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करे। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखे, जहाँ जरूरत हो वहाँ समय पर निराई गुड़ाई करे। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डाले। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഭാരത് കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जहां जुले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली की ओर. और जहां तक हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, इसमें हम किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो भी खेती करते हैं उससे जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं खेती से जुड़ी. तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो काफ़ी ख़ास है, और इसकी भी खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है. ये हमारे हर चीज़ में हमारे काम आता है, और मैं बात कर रही हूँ बांस की. बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियाँ एवं उनकी खेती, ये हमारा आज का विषय है. और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्पणा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में. और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: मैडम. बांस क्या होता है, तो किसान भाई खास इसके महत्व को जानते होंगे. बांस जो है वो एक, इसके संक्षिप्त परिचय को कृपया दीजिए.
1: बांस को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसे हम लोग हरा सोना, गरीबों की लकड़ी, सभी का मित्र, इन सारे नामों से बांस को जाना जाता है. बांस एक ऐसी प्रजाति है जो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पे मिलती है, और भारत में अगर इसको देखें तो ये कश्मीर घाटी को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है. और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और अगर हम इसके जैव भार की दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, और अन्य कृषि भी वृक्ष से अधिक है, इसलिए इसका बहुत ही उपयोगी है ये. और अगर हमारे देश में देखें तो पूरे जो वन है उसमें 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आंका गया है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है. देश का लगभग 60% जो बांस है वो का उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है. और बिहार में मुख्यतः जो प्रजातियां हैं बांस की, उसमें बैम्बूसा बैम्बस, बैम्बूसा टुंडला, बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बुल्गैरिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई, ये जो है सबसे उपजाई जाने वाली, मुख्यतः उपजाई जाने वाली जो बिहार में ये सारी प्रजातियां हैं.
0: जी जी. बांस लगाने की विधि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे.
1: बांस लगाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले जो है पहला है बीजों की सीधी बुआई. ये हम बुआई तब करते हैं जब बीज की बहुताया मात्रा में बीज हमारे पास उपलब्ध होते हैं. इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि बांस का जो बीज है उसको हम लोग क्यारी बनाकर लगाते हैं, और बीज का जो जमाव है वो 5 से 10 दिन में हो जाता है, और एक सप्ताह के अंदर ही एक पत्ती की अवस्था में बांस जो है वो प्राप्त कर लेता है. फरवरी से जून माह में के मध्य में बांस के बखारों से कलम से हम लोग बीज को इकट्ठा करते हैं, और बीज गिरने तथा एकत्रित करने से पहले हम लोग को साफ बीज चाहिए, इसलिए हम लोग को उसे एकत्रित करना है तो सबसे पहले हम बांस के वृक्ष के नीचे एक साफ कपड़ा बिछाते हैं, फिर बांस के पौधों को हिलाकर उसमें हम लोग ताज़ा बीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी सफाई करते हैं. अगर हमें उस समय पे नहीं लगाना है तो उसको हम लोग सुखा कर वायुरोधी डब्बों में इकट्ठा भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर हमें उन्हें लगाना है तो हम लोग उसकी सीधी बुआई करते हैं. बोने से पहले बीजों को 48 घंटे पानी में भिंगो कर रखना चाहिए, और फिर जिस पानी में उसे भिंगाए हैं हम लोग उसमें हम लोग को कवकनाशी को मिला देना चाहिए ताकि बीजों पर कवक का कोई भी प्रभाव ना हो. जो सीधे बीजों की बुआई हेतु उपजाऊ भूमि में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की खुदाई करके बीजों को लगाना चाहिए, और जो हम लोग उसको लाइन वाइज लगाते हैं तो उसमें हर एक लाइन के बीच में 4 से 6 मीटर का अंतर.

लाल होना चाहिए और बोने के बाद हम लोग उसको हल्की मिट्टी से ढक देते हैं। दूसरी विधि जो है जिसमें हम लोग लगाते हैं बीजों को, तो उसमें है पौधा रोपण। इसमें हम लोग सबसे पहले पौधे को नर्सरी में उपजाते हैं, जिससे कि जो हम लोग इस विधि से जब लगाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्यारियां बना के जो ऊपर क्यारियों में हम लोग इसको लगाते हैं और एक सप्ताह में ही जो नन्हे पौधे बांस के उगते हैं उसको हम लोग थैलियों में डालकर, जिसको हम लोग पॉलीथीन बैग भी कहते हैं, उस पॉलीथीन बैग में डालकर उसको हम लोग हल्की सिंचाई देते रहते हैं। इस सामान्यतः 1 से 2 माह में जो पौधा है वो रोपण हेतु तैयार हो जाता है और फिर हम लोग को जहाँ भी उसके उसे लगाना है उसके हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं। जो जिन गड्ढों में हम लोग को लगाना है, जो हम लोग गड्ढा तैयार करते हैं, वो 30x30 सेंटीमीटर का होना चाहिए और हम लोग को ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो कि जहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो, मतलब जब बारिश हो तो वहाँ ज़्यादा जल जमाव की परेशानी ना हो और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे जो ये चूहा है जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, तो हम लोग को उसका भी ध्यान रखना है ताकि इसका जो हम लोग अच्छे से इसको लगा सके। तीसरी विधि जो आती है बांस को लगाने में, उसमें हम लोग प्रकंदों द्वारा रोपण। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रकंद जो निकलते हैं बांस से, तो हम लोग प्रकंदों को समूह में भी लगा सकते हैं और एकल प्रकंद में भी हम लोग लगा सकते हैं। एकल प्रकंद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग बिना किसी इसको नुकसान किए हुए लगा सकते हैं और इसमें हम लोग एक उचित दूरी हम लोग को लगाना होता है ताकि जो जब बांस का पौधा बड़ा हो तो उसमें किसी तरीके का दोनों एक दूसरे, जो दो पौधे निकल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाए। जो अगली विधि है वो है ऑफसेट रोपण। ये सबसे आसान और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसके लिए 1 से 2 वर्ष की आयु का कल्म सबसे उपयुक्त होता है। यदि कल्म अधिक बड़ा है तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर उसको तिरछा काट कर जिस प्रकंद से वह पैदा हुआ है उसे जड़ सहित उसी आकार में हम लोग लगाते हैं और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम उसमें एक आँख हो। प्रकंद को इतनी ग्रीवा से काटा जाता है ताकि जो हम लोग कटाई कर रहे हैं तने का, उसमें कोई भी दरार या फिर जो मातृ तना है उसमें कोई भी नुकसान ना हो। और प्रकंदों को हम लोग एक आर्द्र युक्त बोरी में रख कर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आर्द्रता हम लोग को इसलिए रखनी होती है ताकि जो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होते रहे। यदि वर्षा में देरी होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। यदि रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है तो हम लोगों को ऑफसेट को वर्षा के मौसम से पहले रोपा जाना ज़्यादा अच्छा है ताकि जब वर्षा आए तो वो अधिकतम वृद्धि हो उसमें। कल्म के चारों तरफ हम लोग को साफ सफाई भी रखनी जरूरी है ताकि तने जो है वो तेजी से बढ़े और खरपतवार का कम उस पर इफेक्ट हो और कंपटीशन भी कम हो। इस विधि से सबसे ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली है। अगली जो विधि है इसमें हम लोग तना कटिंग द्वारा रोपण करते हैं। इसमें हम लोग तना की कटिंग को सीधा या लिटा कर हम लोग अलग अलग कलियों में काटते हैं और इस कटिंग को हम लोग 100 मिलीग्राम नैप्थलिन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और फिर जो ये तना की कटिंग है उस घोल में हम लोग डालकर छोड़ देते हैं और जो छेद है बांस में जो अंदर खोखलापन होता है उसमें हम लोग मोम भर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस जो घोल बनाते हैं हम लोग इस घोल में 24 घंटे तक उसको रखना है और जहाँ हम लोग को लगाना है वहाँ पे हम लोग को 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है और जो कटे हुए तने हैं उसको हम लोगों को भूमि में सीधा खड़ा कर देना है। तो ये थी हमारी 5 विधियाँ जिससे हम लोग
हम लोग

0: बांस की खेती आसानी से कर सकते हैं
1: जी। इसके बाद मुख्य रोगों की हम बात करते हैं, बांस में कौन कौन से मुख्य रोग लग सकते हैं?
0: बांस की बात करें तो बांस में जो प्रमुख रोग है, सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ है, जो कि एक फंगल बैक्टीरिया है और ये भारत और चीन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है ये रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन क्यारियों में हम लोग बांस को लगा रहे हैं उन क्यारियों में उतना ही पानी दें जितना की ज़रूरत है और उन क्यारियों पर छाया ना पड़ने दें। धूप का उचित प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी जैसे कि बेवेस्टीन है जो कि एक फफूंदी नाशक दवा है, इसका हम लोग प्रयोग करके जो बांस है उसको हम लोग इस डैम्पिंग ऑफ से बचाया जा सकता है। फिर आपका जो अगली रोग है जो आता है वो है स्मट। ये आपको सबसे ज़्यादा इसका फैलाव मिलेगा चीन, भारत और जापान में और ये जो स्मट है आपको बैम्बूसा स्पीसीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज उपचार करेंगे और जो फफूंदी नाशक है जैसे कार्बोक्सीन है, थिया बेडाजोल है, इन फफूंदी नाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली जो बीमारी है स्मूट मोट, जो कि भारत, चीन, कोरिया और जापान और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है, जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की खुदाई और जुताई के समय ही जो हम लोग इसका रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस रोग पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। फिर आपका जो अगली रोग है वो है सूटी मॉल्ट। इसका लक्षण ये होता है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर स्पॉन्ज के रूप में कुछ आपको दिखाई देगा, मतलब फफूंदी से वो मतलब काले रंग की फफूंदी से ढक जाएगी और धीरे धीरे ये आपको पत्तियों से शुरू होकर शाखाओं तक फैलती है। इसके लिए हम लोग एफिड्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो ये एफिड्स हैं वो प्राकृतिक शत्रु हैं सूटी मॉल्ट्स के। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ब्लैक मिल्ड्रिव, ये जो है आप सब इसमें भी क्या होता है कि काले रंग की चूर्ण, आपको ऐसा लगेगा कि पत्तों के ऊपर एक चूर्ण, काले रंग का चूर्ण आ गया है और ये भी डंठ, जैसे जैसे संक्रमण फैलता जाएगा ये पत्तियों के ऊपरी सतह से निचली सतह पर और फिर जो छोटी छोटी शाखाएँ होती हैं उन पर ये फैलने लगती हैं। इसके लिए भी हम लोग जो फफूंदी नाशक है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम लोग इसका मैनेजमेंट में देखें कि इसको कैसे हम लोग रोकेंगे तो इसके लिए हम लोगों को जो कैनोपी होती है जो कैनोपी है पौधे की उसको हम लोग इस तरीके से वैसे स्थान पे मतलब हम लोग को बांस लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे धूप और हवा दोनों ही उनको आसानी से मिले, कहीं भी उनको छाया ना हो, क्योंकि ये जो फफूंदी है ये जो है वो छायेदार जगहों पर बहुत तेजी से फैलता है।
1: इसके बाद बांस की उपयोगिता के बारे में बताएं।
0: अभी तक हम लोगों ने देखा कि बांस क्या है और उसमें कौन कौन से रोग हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे बांस की उपयोगिता। बांस तो अभी के समय में इस तरीके का है कि आप अपने प्रायः रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अब बांस से बनी वस्तुएं या फिर जो हम लोग फर्नीचर्स या हर जगह हम लोग देख सकते हैं। बांस बहुत सस्ता भी है तो इस वजह से जैसा हमने बताया कि बांस जो है वो गरीबों का मित्र और हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये बहुत सस्ता है। तो बांस का सबसे पहले हम लोग भवनों में, भवन बनाने में और छप्पर जो होता है जो हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं तो उस में छप्पर में भी हम लोग इसका एक सांचे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बांस जो है उसका हम लोग मछली पकड़ने की बांसी, फूलदान, छड़ी, छाता, सीढ़ी, और बहुत सारे

0: कृषि यंत्र, और जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है उसमें हम लोग बांस की एक जैसे हम लोग पानी की बहाव के लिए हम लोग अपने इस रीजन में बिहार के एरिया में हम लोग पाइप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे वो लोग बांस को ही बीच से काट के जो बीच का जो बांस के बीच का जो खाली जगह होता है उससे वो लोग लगा देते हैं किसी भी झरने के पास, तो वो एक तरह से काम करता है पाइप का एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का, आपको पानी भेजने में। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं झूला बनाने में, मच्छरदानी बनाने में, फिर अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं, फर्नीचर्स में हम लोग कॉम्प्रेस्ड करके बांस को सोफ़ा आपका अलमीरा, और वो वैसे फर्नीचर्स होते हैं जिनकी जो अगर मजबूती के हम लोग सापेक्ष में देखें तो जो लकड़ी है जो जो कास्ट है जो हम लोग जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में वो उसके आसपास उसका मजबूती रखता है, तो इस वजह से हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका फर्नीचर्स में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग बांस के बीज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जो नए पौधे रहते हैं उसका हम लोग अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर खांसी और दमा रोग में भी इसका हम लोग आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, तथा जो इसके पत्ते होते हैं इसका हम लोग उपचार इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारा बनाने में। और अभी आप लोग सुनते होंगे कि कृषि वानिकी, तो बहुत सारी अभी वैसी नए नए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हम लोग बांस के साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कृषि मॉडल्स कृषि वानिकी मॉडल बना सकते हैं ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके।
1: जी, राष्ट्रीय बांस मिशन ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे?
0: राष्ट्रीय बांस मिशन एक योजना है सरकार के तरफ से, राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है इसमें 100% अपना अंशदान करता है, और इस स्कीम में जो है वो कृषि विभाग सहकारिता विभाग के द्वारा ये मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से बांस के क्षेत्र को बढ़ाना, वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों में बांस के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैदावार के साथ साथ उचित किस्मों जो उचित किस्म है बांस की उनको भी बढ़ाना, फिर बांस आधारित हस्तशिल्प शिल्प को भी बढ़ावा देना, पारंपरिक विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी जो है वो किसानों के बीच पहुंचाना, और कुशल और अकुशल व्यक्तियों को विशेष रूप से जो बेरोजगार युवक हैं उनका रोजगार को सृजन करना। अगर बांस मिशन का हम लोग मुख्य घटक देखें तो उसमें बांस विकास के लिए अनुसंधान और विकास, बांस की पौधे उगाए जाने के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, वन और गैर वन क्षेत्र में वाणिज्य आधार पर उच्च पैदावार करके बांस रोपण को बढ़ाना, जर्जरीकरण बांस रोपण और कीटनाशी और एवं बांस के रोग का प्रबंधन करना, हस्तशिल्प बांस विपणन और उनका निर्यात को किस तरीके से देखा जाना है उस पर ध्यान देना, किसान और कर्मियों की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, बांस के लिए बांस बाजार नई विपणन रणनीतियों की स्थापना, सतर्क निगरानी मूल्यांकन और डेटाबेस बनाना। बांस मिशन का की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले है उत्पादक और निर्यातक को उचित लाभ मिले जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, खेती योग्य भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच प्रतिभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना ताकि एक सामेकित अवधारणा का निर्माण हो कि बांस की भी खेती

मुनाफे की हो सकती है। किसानों को सहायता तथा पर्याप्त लाभ को सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी एवं स्वयंसेवी दलों को बढ़ावा देना, क्षमता एवं मानव संसाधन का विकास करना और किसानों को उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करना और जहां तक संभव हो जो मध्यस्थ में जो लोग रहते हैं उनको

0: उन्नत कृषि।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार श्रोताओं, ये है 90.8 MHz, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और मैं आप सभी को बता दूं कि हम उन्नत कृषि की बात करते हैं और ऐसे में जैविक खाद की बात करना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि जैविक खाद हमारी फसलों के लिए सुरक्षित हैं, हमारी मिट्टी के लिए सुरक्षित हैं, हम सभी के लिए सुरक्षित हैं। तो जैविक खाद आप कैसे बनाएंगे, घरेलू उपाय क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक हमारा जो आज है, विषय है, वो है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय। और इस विषय को लेकर, जी हाँ, मृदा विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सोनल कुमारी हमारे साथ हैं, जो आप सभी को एक पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में, घरेलू उपाय के द्वारा आप जैविक खाद कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैविक खाद होता क्या है, क्या है ये।
6: मैं सोनल, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की सॉइल साइंटिस्ट हूँ, उस पद पे कार्यरत हूँ। और मैंने आज का विषय चुना है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय क्या हैं, इसको कैसे हम घर पे ही रह के बना सकते हैं। ये आज के जरूरत समय में सारे लोग जाने, बहुत जानकारियाँ हमें गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे ये जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म का अगर कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो हमारे जो भी रिमोट विलेजेज है वहाँ पर लोग एटलीस्ट रेडियो के अभी भी शौकीन है, रेडियो को सुनते हैं। अगर आप मेरी बातें आप तक पहुँच रही है तो आप जरूर इसको सुनेंगे, कैसे हम घर पे रहते हैं, हमारे पास जो भी किचन वेस्ट अवेलेबल हैं, हम आपके पास उतने जगह जमीन नहीं है, तो कैसे उस लिमिटेड रिसोर्स में हम अपने चीज़ों को, अपने जैविक जो हमारे जैविक चीज़ें हमारे हैं, जो हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जो हमारे प्रकृति में डेली उसको उसको एज अ कचरा समझ के, वेस्ट समझ के उसको बर्बाद कर दे रहे हैं, उसका कैसे हम सही यूटिलाइज कर सकें, उससे कैसे हम एक जैविक खाद का बना सकें, उसका सही से उसका संरक्षण कर सकें, सही से उसको स्टोर कर सकें, एंड देन उसके फर्दर हम जो हमारे फसल है, हमारे जो हमारे सीजनल हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो भी हमारे जो भी हम साग सब्जी घर में भी अपने लगाते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उसमें ही प्रयोग कर सकें। तो हमारा आज क्वेश्चन हमारे लिए है, जैविक खाद क्या है। पहले हम जैविक खाद के बारे में जानेंगे, जैविक खाद आखिर

0: है क्या, हम क्यों जैविक जैविक सबको आज के डेट में बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एवरीवन इज टारगेटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी या ऑर्गेनिक फार्मिंग वो जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, और जैविक खेती में जैसी सी जो खाद प्रयोग करते हैं वो जैविक खाद होना चाहिए. तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. जैविक खाद जो है एक प्राकृतिक खाद है जिसमें और कुछ नहीं, कोई भी रासायनिक पदार्थ या हमारे जो होते हैं उसमें प्रयोग नहीं किया जाते हैं. जो भी हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पौधे हो गए हैं, जानवर हो गए हैं, हमारे जो भी जैविक और इसके अलावा जो हमारे अन्य जैविक अवशेष हैं, उस जैविक अवशेषों से उसको सड़ा गला कर और या जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रयोग से जो खाद तैयार किया जाता है उसको ही हम जैविक खाद कहते हैं. यह पूर्णतः कम्प्लीटली जिसको बोलते हैं ये प्रकृति रूप से ही प्राप्त की जाती है. जैविक खाद में जैसे हम जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे जो मुख्य पोषक तत्व सत्र है, हमारे इसेंशियल जिसको बोलते हैं, उसको प्रदान करने को जिससे हमको पौधे प्रदान कर सकें उसको इसके लिए हम डालते हैं अपने पौधों के लिए, वैसे ही हमारा जैविक खाद है. जैविक खाद में जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सारे जब ये विघटन इसकी हो जाती है तो सारे इसमें आवश्यक पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं. और जब इसको हम अपने मिट्टी पर अप्लाई करते हैं, मृदा पर अप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारे फसल है उसको उस सारे आवश्यक पोषक तत्व को वहाँ से प्रदान करते हैं. और वो इसके साथ साथ वो तो प्रदान करते ही करते हैं. जैविक जैसे मैं बोली रही बिल्कुल कम्प्लीटली पूर्णतः यह प्राकृतिक रूप से होता है, तो मिट्टी का जो हमारा गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखने में मदद करता है. उसकी जो हमारे प्रॉपर्टी है उसकी जो गुणवत्ता है उसको कभी घटाता नहीं और बढ़ाता ही है.
1: जी, अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने की विधि की, तो कैसे बनाया जा सकता है घर पर?
0: हाँ, अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है. हम जहाँ भी जिस लोकेशन में रहते हैं, वेदर हमारा चाहे हमारा बहुत बड़ा लोकेशन हो, छोटा लोकेशन है, चाहे बहुत छोटे से घर में आप रह रहे हैं, 1 BHK घर में रह रहे हैं, गांव में बहुत कम छोटे किले हैं, बहुत हमारे जो मार्जिनल किसान हैं, हमारे बहुत छोटे स्तर के जो किसान हैं उनके पास उतने जगह जमीन नहीं होते हैं, तो उनके पास जो ही रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ से तो वो अपना जैविक खाद बना ही सकते हैं. क्योंकि किचन जो हमारा रसोईया हम जब खाना पकाते हैं तो बहुत सारे हमारे फल साग सब्जी उसके जो छिलके आते हैं तो उस साग सब उसको हम क्या करें, अगर आपके पास मवेशी है तो मवेशी को देते हैं, मवेशी का वो भोजन हो जाता है, नहीं तो अगर नहीं है तो वो ऐसे आप वेस्ट कर देते हैं. उसको वेस्ट करने से बेटर है उसका हम कंपोस्ट खाद तैयार कर लें, जैविक खाद तैयार कर लें. तो इसके लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन कुछ विधियों के बारे में बताऊँगी मैं जिसको आप बहुत आसानी तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं, जिससे कौन कौन सा हमारे विधियाँ हैं जिसको हम घर पर आसानी से तैयार कर सकें. एक खाद हम जिसको बोलते हैं जिसको हम घर पर ही तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं किचन वेस्ट खाद, जिसको किचन वेस्ट खाद मतलब कंपोस्टिंग करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स है कंपोस्टिंग. किचन वेस्ट जो हमारा है, किचन वेस्ट का मतलब जो हम रसोई में हमारे वेस्ट चीज़ मिलते हैं, मैंने बोला जैसे ही बोला आपको फल होते हैं, साग होते हैं, सब्जी होते हैं, इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं उसको तो हम उतार फेंकते हैं ना, उसको तो हम नहीं खाते हैं, उसको हम कंज्यूम मनुष्य नहीं करता है, तो उसका प्रयोग हम खाद बनाने में कर लेंगे. उसी से जो खाद तैयार होता है उसको हम किचन वेस्ट खाद कहते हैं. अब इसके लिए जैसे मान लो आप साग सब्जी कुछ भी सब्जी घर में बनाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं उसके लिए एक रेसिपी लोग बोलते हैं ना, रेसिपी के लिए हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं. इंग्रेडिएंट्स हिंदी में अगर बोले तो सामग्री, क्या क्या उसमें सामग्री लगेंगे. अगर हम पनीर प्याजा की बात करें तो हम बताते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे. वैसे ही हमारा खाद है, खाद को भी हम जब तैयार करते हैं ना उसके लिए हमें कुछ कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में बोले तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे. तो ऐसे ही हम जब किचन वेस्ट खाद की बता रहे हैं तो हम पहले बताएंगे आपको क्या क्या इसमें सामग्री आपको लग जाएंगे बनाने के लिए. पहले तो आपको जो भी हमको रसोई में हमारे कचरा, जिसको कचरा ना बोले तो बेटर होगा, कचरा बोले बैड टर्म्स हो गया उसको, हमारे लिए हम उसको वेस्ट समझ रहे हैं, बट इट इज नॉट वेस्ट, वो वेस्ट नहीं है, वो हमारा धन है, उससे हम एक बढ़िया बहुत बढ़िया चीज़ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. तो कचरा ना बोल के मैं रसोई में जो भी हमारे फल सब्जियाँ जो चाय पत्ती होते हैं, अंडे के छिलके हैं, बचे हुए भोजन के टुकड़े आपके हैं, जो भी हम सब्जियाँ खाते हैं उनके जितने छिलके हैं आप उनको क्या करें एक जगह इकट्ठी कर रखें. और पेड़ पौधे कहीं भी आपको देखते सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं हमें, और नहीं भी कुछ हुआ था हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं बहुत सारे कागज़ को ऐसे वैसे फाड़ कर फेंक देते हैं, बहुत सारे हम जिसके हम न्यूज़पेपर आते रहते हैं उसके भी टुकड़े मिल जाते हैं, उसकी भी वो सब चीज़ बहुत बर्बाद होते हैं. तो कागज़ को टुकड़े को भी आप एक ऑप्शन में रख सकते हैं. और मिट्टी, थोड़ी मिट्टी तो कहीं भी आपको सबको अवेलेबल हो सकते हैं, वेदर वो बहुत ज़्यादा एक मेट्रोपोलिटन सिटी में रह रहे हों, अर्बनाइजेशन में अर्बन एरिया में रह रहे हैं, या रूरल एरिया में या रिमोट एरिया में रह रहे हैं, इतने चीज़ें तो आपको किसी को अवेलेबल हो जाएंगे. तो सामग्री क्या क्या आपको लगेगी, जो भी हमारे रसोई के हमारे जो भी रसोई समय जो बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स आप बोल लो, हमारे खाना बनाने के बाद जो भी बचते हैं, मतलब फल सब्जियां के छिलके हो गए हैं, अंडे के छिलके हो गए हैं, चाय पत्ती बनाने के बाद जो वेस्ट बच जाते हैं, बचे हुए भोजन टुकड़े हो गए हैं, हमारे साग सब्जी के जो भी हमारे छिलके हो गए हैं, कागज़ के टुकड़े हो गए, सूखी पत्तियां हो गई, थोड़ी सी मिट्टी है हमारी सामग्री हो गई. और इसकी विधि बनाने के लिए जब ये चीज़ हम बोलते हैं कुछ चीज़ हमें बनाना है, अगर मैं बोलूँ चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो इट मीन्स हमें कुछ ना कंटेनर चाहिए इसको बनाने के लिए, उसको हवा में तो हम नहीं बना सकते ना, कंटेनर आपको लगेंगे तो ऐसे ही है, जब हमको इसको बनाना है, जब इसकी सामग्री की बात करें तो जाहिर है इसके लिए हमको कुछ बनाने की

चीज चाहिए तभी तो हम इसको बना पाएंगे। वेदर मेरे पास चाहे मेरे पास कंटेनर रहे, एक कंटेनर का हम व्यवस्था कर ले, नहीं तो किसी के पास अगर जमीन है तो गड्ढा खून ले, और गड्ढा भी ऐसा खोनना है, कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो, जिससे हवा आ भी सके जा भी सके, और नमी भी उतना ही मेंटेन रख सके जितने हमें नमी चाहिए। ये चीजों को ध्यान में हमको रखना है। फिर वो क्या, अगर मान लो आपके पास नहीं ज्यादा जमीन है, छोटा सा कोई प्लास्टिक का कंटेनर, उसमें छोटे छोटे आपने छेद कर दिया जिससे हमारा हवा पास होता रहे, हवा आता रहे जाता रहे, जिसको हम इंग्लिश वर्ड्स में बोले तो एरेशन बोलते हैं, मतलब हवा का आदान प्रदान होता रहे, और हमारा मॉइस्चर भी जिसको नमी बोलते हैं हिंदी में वो मेंटेन रहे। ये चीज़ें का हमें व्यवस्था कर लेना है। फिर क्या करना है हमको, उस जो हमारा कंटेनर हमने लिया है, जो हम डब्बा एक बोल लें अगर हिंदी में बोलते हैं, एक डब्बा लें, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा किचन वेस्ट है, जो हमारा रसोई में जो हमारे आ रहे हैं, जो भी हमारे सब चीज़ के बचे हुए जो जिसका मैंने बताया जिक्र किया, उसको एक लेयर डाल देना है आपको, उसको पहले बिछा देना है, पहला लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारी थोड़ी मिट्टी है उस थोड़ी मिट्टी को डाल देना है, उस फिर सेकंड लेयर जिसको बोलते हैं सेकंड लेयर, उस सेकंड लेयर मिट्टी के लेयर को डाल देना है। फिर से इसी मिश्रण को आपको चार पांच लेयर करके ऐसे बनाने हैं, और फिर से इस मिश्रण को क्या करना है आपको, हर दो तीन दिन पे या उसको आपको हिलाते रहना है। हिलाना क्यों है, हिलाने के पीछे भी रीजन है, उसमें जो एरेशन होता है, उसमें जो हवा है, जो नमी है, जितना चाहिए उतना उसमें मेंटेन रहे, उसमें जितना हमें जरूरत है उतना उसमें रहे वो, इसलिए हिलाते रहना उसको, और उसको ज़्यादा भी नमी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, इसको कोशिश करना है कि थोड़ा छायादार जगह पर रखें जहाँ डायरेक्ट सूर्य का धूप ना पड़ता हो, और थोड़ा सूखा रखें, नमी भी उतना ही रहे जितना जरूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं पानी उसमें से निकल रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं जैसे हम बोलते हैं, नहीं, नमी जितनी जरूरत है उतनी ही, कोशिश करें हल्का भुरभुरा टाइप का, सूखे टाइप का रहे, और फिर इसको ढक कर रखना है, और यही इस ढक के बस आपको डालते रहना। आप देखेंगे दो से तीन महीना जैसे होगा ये भीतर ये खाद तैयार हो जाएगा। जैसे आपने जो डाला था जिसके बड़े बड़े टुकड़े थे, आप वो टुकड़े को देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए हैं, और सर हल्के भूरे से काले रंग में बदल जाएंगे, और इनकी गंध से भी पहचान सकोगे कि ये हमारी खाद क्या है, तैयार हो गई है। ये तो पहला हमारा रहा जो हमारा किचन खाद, जिसको हम किचन वेस्ट खाद बोलते हैं। और दूसरी भी विधियां हैं जिसमें अगर मान लो इसी खाद में प्रयोग करने में मैंने अगर जिसको केचुआ होता है, केचुआ का प्रयोग कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते थे, इस खाद को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको, हम केचुआ खाद बोलते हैं। तो इसकी भी सामग्री की हम बात कर लेंगे, क्या क्या हमें सामग्री इनको लगेगी बनाने के लिए। इनकी सामग्री में आपको केचुआ लगेगा ही लगेगा, जब मैंने केचुआ खाद ही बोला तो केचुआ से ही तैयार होगा। रसोई का हमारे जो कचरे हो गए, हमारे जो भी हमारे हो, फल साग सब्जी जितने अंडे के छिलके वो हो गए, वो सारे लगेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, पहले वाली विधि में बताया। दूसरी सूखी पत्तियां भी बताया था, गोबर भी मैंने आपको बताया था। गोबर आप याद रखिए, गोबर जब भी डालना है कम से 15-20 दिन पुराना गोबर डालिएगा, कि ताजा गोबर जो रहता है ना उस पे जल्दी हमारे जो सूक्ष्म जीव है ग्रो करने का ज्यादा चांस रहता है, अटैक ज्यादा करते हैं वो, तो कोशिश कीजिए 15-20 दिन पुराना गोबर ले लीजिएगा। और नमीदार मिट्टी जो हमारी होती है वो मिट्टी का थोड़ा हमको प्रयोग करना है। इसके लिए भी हमें क्या लगेंगे, आपके पास डब्बे हैं तो वो सही है, अगर नहीं है तो आप एक बक्सा ले भी सकते हैं, उसको छेद नुमा बना देंगे जिसे हमारा हवा का आदान प्रदान होता रहे। और फिर उसमें हमें क्या करना है, एक नमी की मिट्टी जो हमने बोला उसको बिछा देना है। फिर उसमें हमें क्या करना है, आपको जो हमारे रसोई के हमारे कचड़े आए सूखी पत्तियां उनको क्लियर बना देना है। फिर हमारे जो केचुए लगे, केचुए के हम मैं ये आपको यहाँ नहीं बताऊंगी कितना स्क्वायर फीट का बना रहे हो, जब हम कभी अपने जाम कॉमर्शियल इसकी खाद की प्रोडक्शन करते हैं इतना स्क्वायर फीट के लिए हमको इतना 1500 तो 2000 केचुए छोड़ने पड़ते हैं, उसमें लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ हमें कोई तय नहीं है, हम अपने घर के लिए बस जो डेली यूज में हम जिसको बर्बाद करते थे फेंक देते हैं रोड पर, ऐसी कचरा फैलता है देखने में हमारा अच्छा नहीं लगता है, जो भी हम जगह पर रहते हैं गंदगी फैलती है, उससे अच्छा है कि इसका हम खाद का प्रयोग कर लें। तो जैसा आप कंटेनर ले लें उसके अनुसार अपनी सूझबूझ को प्रयोग करते हुए आप केचुओं का प्रयोग कीजिए। कितना इसमें अगर बड़ा सा कंटेनर है, मान लो 200-500 लीटर का कंटेनर है, तो आप उसमें कितना केचुआ जाने जिससे मेरा केचुआ बन जाए। केचुआ क्या करता है, जो भी हम ये सब डाल रहे हैं हमारे रसोईया से जो हमारे पदार्थ मिले हैं, जो हमारे किचन वेस्ट मिले हैं, जो हमें सूखी पत्तियां हम डाल रहे हैं, उसको केचुआ क्या करता है, मट्टी हम जो नमीदार डाले उसका ये भोजन का है, भोजन का स्रोत है। और ये जो भोजन के स्रोत में ये खाता है तो खाएगा तो क्या करता है, जब ये उसका काष्ट निकलता है खाने के बाद जो उसकी काष्ट निकलते हैं जिसको हम उसका क्या बोल सकते हैं, हाँ, तो जो मैं बता रही थी केचुए का क्या है, भोजन का स्रोत है। तो भोजन का स्रोत है, जब भोजन करता है तो जाहिर सी बात वो भी मलमूत्र त्याग करता है, और उससे जो मलमूत्र का त्याग होता है और उससे जो खाद बनते जाते हैं ना, वो देखोगे कास्ट जिसको बोलते हैं अर्थ होम कास्ट बोलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक खाद तैयार कर देता है, और ऐसे ही करके इसका भी लेयर तैयार कर देते हैं। और हर इसको ढक कर हमें रखना है कि दूसरा जो सूक्ष्म जीव है उसमें ग्रो ना कर जाए। और थोड़ा इसको अगर आपको गोबर मिलता है तो गोबर डाल दें, नहीं तो थोड़ा नमी मेंटेन करने के कागज जो अवेलेबल होता है ना, तो कागज को थोड़ा गीला करके भी आप फैला सकते हैं। और इसको आप क्या करें, ढक कर रखें, हर 15 दिन पे थोड़ा आपको उलट फेर करना होगा, जिसे हमारा प्रॉपर एरेशन, जिसको हवादार, नमी, हवा, उसकी सब वर्तमान जितनी हमें

0: संतुलित मात्रा में सब उसमें अच्छे से पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मौजूद रहें, और 15 दिन पर जैसे उलट फेर कर रहे हैं तो, और ऐसे ही करना है हमको 2-3 महीने तक। और 2-3 महीने के लास्ट में आप देखेंगे ना, ये केचुआ खाद जो हमारा जैविक खाद केचुआ खाद जो हमारा था, ये बिल्कुल अच्छे तरह अपने हल्के भूरे रंग, इसका भी रंग वैसा ही होगा हल्के भूरे रंग का, इससे काला रंग में अब बिल्कुल दानेदार में ये बदल जाता है, जो अच्छा वाला खाद जैविक खाद बनता हमारा केचुआ के, केचुआ के माध्यम से जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं। और 2-3 महीने में खाद हमारा तैयार करते हैं, कर सकते हैं। ये हमारा केचुआ खाद के बारे में हो गया। इसके अलावा हमारे और चीज़ हैं बहुत सारे, हमारे पारंपरिक खाद तैयार किए जाते थे जो हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे पहले जमाने में, जब हम जीवामृत करते थे हमको वो सब हम तैयार करते थे। और अभी भी हम जब जैविक खादी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, जैविक खेती की बात करें, तो सारे प्रयोग हमारे फिर से हमारे ज्ञान में आ गए हैं और उसको हम प्रयोग कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक ये बात हमारी नहीं पहुँच पा रही उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, हम जहाँ रहते हैं हर हमारे अड़ोस पड़ोस में अवेलेबल है, बस उनको हमको अपने आँख उठाकर देखने की जरूरत है और उसको इस्तेमाल करने, देखने की जरूरत भी है और इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने प्रयोग में लाने की जरूरत है। प्रयोग में लाने के बाद हमें जहाँ उसकी जहाँ इसको उपयोग करना है उसको उपयोग करने की बात है। ये बहुत चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं बट उसको हम ना कभी एक्शन में नहीं ला पाते हैं, तो हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है एंड देन उसको एक्शन में भी लाना है। और तीसरा मैं आपको बताने जा रही थी वैसा जीवामृत, ऐसे तो बहुत तरीके हैं हमारे बनाने के, और तीसरी मैं बता रही हूँ जीवामृत जिसको बड़े इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, मैं उसी खाद को लिस्ट की हूँ यहाँ पर। तीसरी खाद के बारे में बता रही हूँ आपको जीवामृत, ये जीवामृत कैसे तैयार करते हैं। जीवामृत सब समझ ही रहे हो क्या होगा, जो हमारे हमारे मवेशी होते हैं, हमारे गाय भैंस ये सब होते हैं, तो उनकी चीज़ों से हमें तैयार करना है। जिसके यहाँ मवेशी ओवेसी है तो आपको इसके लिए क्या सामग्री लग जाएंगे, गोबर लग जाएंगे, गोमूत्र लग जाएंगे, गुड़ लग जाएगा, थोड़ा बेसन लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगा। जब इसके बनाने की विधि क्या है ना, जब आप इसकी बनाने की विधि बने तो जो इसका अनुपात मैंने बताया ना, अनुपात अभी बोला नहीं है, बस सामग्री में जो बताया इसका अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। कितने अनुपात में आप गोबर ले रहे हो, कितने अनुपात में गोमूत्र ले रहे हो, कितने अनुपात का गुड़ का प्रयोग कर रहे हो, बेसन का प्रयोग और मिट्टी का प्रयोग कर रहे हो। अब बनाने से पहले आती है बात आती है कि आप कितने लीटर क्वांटिटी में, जैसे ये आप यूजुअली क्या होता है इसको मट्टी पे भी प्रयोग करते हैं और पौधे के ऊपर भी प्रयोग करते हैं। ये जो जीवामृत बनाते हैं हम ना, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसको हम बोलते हैं तरल जैविक खाद है, ये तरल नुमा होता है। तो कितने लीटर पानी में इस घोल को तैयार करना चाहते हो, बात ये आती है। तो मैं आपको सामग्री का जो लिस्ट दूंगी 200 लीटर के बेसिस पे दे रही हूँ, आप अपने अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हो, आप अपने अनुसार इसका गणना करके कैलकुलेशन करके आप बढ़ा सका घटा सकना है। अगर मैं 200 लीटर की कैपेसिटी के अनुसार बता रही हूँ आपको, 200 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करने हैं, तो 200 लीटर में कितना किलो गोबर लगेगा। 200 लीटर के लिए आप इसको जरूर कहीं आप होगा सुन रहे होगे, आप इसको मेंशन करना। अगर 200 लीटर पानी में आप घोल तैयार करना चाहते हो उसमें 10 किलो हमको गोबर डालना है। गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए, 15 से 20 दिन, जैसे उसका जो हमारा तापमान हो ना, जो ताज़ा गोबर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें, उसमें तापमान में कमी आ जाए, कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। 10 किलो आपको गोबर प्रयोग करना है और सेम मात्रा में 10 किलो आपको गोमूत्र यूज करना है। और सेम मात्रा, देखो गोबर और गोमूत्र दोनों का मात्रा क्या हो गया, सेम हो गया 200 लीटर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 10-10 गुड़ बोला बेसन बोला, तो ये गुड़ और बेसन का भी मात्रा अनुपात जो है एक सेम रहेगा, एक एक रहेगा, 1 kg गुड़ हो जाएगा, 1 किलो, 1 किलो आपका बेसन हो जाएगा। और थोड़ी मिट्टी प्रयोग करना है हमें, थोड़ी मिट्टी को उसमें 200 लीटर पानी ले लेंगे और घोल को तैयार कर लेते हैं। और इस मिश्रण को हम क्या करते हैं ना, ढक कर रखते हैं हर 2 से 3 दिन पर। इसको हम क्या करते हैं, एक लकड़ी बड़ा सा ले लेते हैं, अगर ड्रम में तैयार कर रहे हो तो, जो हमारे ड्रम होते हैं, और 2-3 दिन पे इस लकड़ी हमारे पास बड़े जो लकड़ी होते हैं कहीं भी ये मिल जाते हैं, उस घोल को हमें मिश्रण को घुलाते रहना है, जिससे प्रॉपर हमारा जो मिक्सिंग हो रही है ना, जब इसका विघटन तैयार हो, जो हम डाल विघटित होता है तो प्रॉपर विघटित हो, पूर्णतः हो जाए ये। और 5 से 7 दिन में ये जीवामित्र आपको देखोगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 5 से 7 दिन ओनली लेगा, 5 से 7 दिन में ये जो जीवामृत हमको तैयार हो जाएगा। और इसका तैयार हो जाने के बाद आप इसका प्रयोग डायरेक्ट आप फसलों पर छिड़काव करके कर सकते हो। ये ना ओनली पोषक तत्व प्रदान करता है पौधों को, इसके अलावा आप जानते हो गोमूत्र, गोबर में बहुत पावर होता है, इसमें जो उसमें रोग लगते हैं, जो उसमें हमारे कीटनाशक कीट लग जाते हैं, उससे भी ये पौधा को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये बहुत चीज़ों के लिए फायदेमंद होता है। ये जो मैं सरल विधियाँ थी वो विधियाँ को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की हूँ अपने तरफ से।
1: अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है।
0: हाँ, अब बात आती कि अब तो हम बनाने की विधि हमने बता दिया, क्या क्या सामग्री लगेंगे, क्या लगेंगे, अब आते किन की बातों को हमें ध्यान रख रहा है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, इन छोटी छोटी बातों का मगर

0: ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा हमारा जैविक खाद घर पे ही हम तैयार कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने अगर आपको बोला है कंटेनर, आपके पास उतनी जगह जमीन नहीं है जहाँ आप गड्ढे खोद कर बना सकें, प्लास्टिंग कर सकें, प्लास्टिक मतलब एक सीमेंटेड आप एक एरिया तैयार कर लो उसके लिए गड्ढा नहीं आपके पास है, तो कंटेनर लेना आता है। कंटेनर आप जब भी लोगे ना, जो हम कंटेनर सामग्री में जो हम सामग्री को डालने के लिए कंटेनर का प्रयोग या डब्बे का प्रयोग जो भी करते हैं उसका चयन सही होना चाहिए। जो भी हम जैविक खाद हमको बनाना है तो कभी भूल कभी जैसे हम कर तो लेते हैं ऐसा, बहुत जगह आप देखो जैविक खाद प्लास्टिक का या धातु का या कोई भी रासायनिक जो हमारे धातु मतलब वो रासायनिक चीज है उसका प्रयोग लोग कर लेते हैं। आप उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, उसका ना करें, आप इसका प्रयोग ना करें। और दूसरी बात है, जब हम खाद बनाने के दौरान जो हम कंटेनर पर्याप्त कंटेनर लेते हैं ना, उसमें कभी कभी बहुत जगह देखा गया कि उसमें पर्याप्त छेद नहीं किया हुआ रहता है। अगर नहीं बनाया आप तो उसमें पर्याप्त हवा और नमी बना नहीं रहता है, और पर्याप्त अगर हवा नमी नहीं बना रहेगा तो खाद हमारा पूर्णतः विघटित नहीं होता है और खाद मेरा अच्छा तैयार नहीं होता है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा हमको सूखापन या बहुत ज़्यादा अधिक नमी में खाद में हमको बनाए नहीं रखना है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही बनाना है। मीन्स बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है उसको और बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं रखना है कि जिससे हमको वहाँ से पानी निकलने लगे। तो अगर ऐसा होगा कंडीशन तो आपकी जो खाद की गुणवत्ता है ना वो प्रभावित हो सकती है। चौथी बात आपको क्या रखना है, हमको जो जैविक खाद की मैंने आपको सामग्री बताया उसका अनुपात आप बिल्कुल सही रखिएगा। जैसे हम जैविक कचरे के लिए हमारे जो हमारे किचन का वेस्ट हो गया, सूखी पत्तियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, इसका अनुपात सही बना कर रखिए कितने कितने जाएंगे जिससे हमारे खाद अच्छे प्रयोग में आ सकें। और चौथी बात है, पांचवी बात यह है, जब हम खाद बनाने के सही स्थान का चयन करते हैं ना, वो स्थान का चयन सही कीजिएगा। वो स्थान जो होना चाहिए आपको डायरेक्ट जो हमारे सूर्य की धूप होती है वो जगह का कभी ना चयन करें। वो जगह कोशिश करें कि छायादार हो, सूखे स्थान पर हो, सूखे स्थान पर हो मतलब ऐसा जगह ना चयन करें जहाँ पानी बहुत जल्दी लग जाता हो, पानी लग जाते हैं जहाँ उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाता है, थोड़े पानी वहाँ पर लगे रह जाते हैं, तो ऐसा स्थान का प्रयोग कभी ना करें। जगह छायादार होने चाहिए, अगर धूप आ रही है तो धूप आए, धूप भी जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए ये कोशिश करनी है। ये पाँच छः बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं।
1: इसके बाद जैविक खाद को हमें स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे स्टोर?
0: अब आते हैं बनाने का, तो ये हो गया, हम जैविक खाद को स्टोर कैसे कर सकते? ऐसा तो नहीं है कि जिस कंटेनर में आपने बनाया उसी में छोड़ दोगे, क्योंकि आपने एक लॉट तैयार कर लिया था। किचन जो हमारे वेस्ट होते हैं उनको कंटिन्यू प्रोसेस है, हम डेली खाना बनाते हैं, डेली हमारे वेस्ट जनरेट होते हैं किचन से, तो आप और बनाना चाहोगे, जो आपने खादें बना लिया अब उसको कैसे उसको हम उसको स्टोर करें, संरक्षित करके अपने जगह पर रखें जिससे हम आगे चल के हम अपने फसल के लिए जो भी हम मतलब छत पे उगाते हैं साग सब्जी उसमें भी प्रयोग कर सकें, चाहे थोड़े से जमीन हमारे हैं वहाँ पर भी फल साग सब्जी उगा रहे हैं उसमें भी प्रयोग कर सकें। तो इसको स्टोर कैसे किया जाए? आपको जैविक खाद को क्या करना है, एक सूखे और छायादार स्थान पर रखें जो बन गए हमारे, और इसे ढक्कन वाले जो कंटेनर होते हैं ना उसका प्रयोग करें, जो बन गया है उस डब्बा में डाल दें और उसका ढक्कन का प्रयोग जरूर करें। अगर ढक कर रखोगे ना जितने सूक्ष्म जीव उस पर ग्रो ना करें, अब बाकी चीज़ में जिसका गुणवत्ता हमारा मेंटेन रखें, और नमी से बहुत ज़्यादा नमी नहीं उसमें होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी, ऐसा नहीं कि जब खाद को आप हाथ में ले उसे पानी निकलने लगे, थोड़ा सा भी दबाया तो पानी निकल जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, नमी से भी उसको बचा कर रखना है। और कंटेनर कैसा प्रयोग करना है, जो डब्बा है उसका जिसका ढक्कन वाला होना चाहिए, उसमें आपको जो हमारे खाद तैयार हो गए उसमें रखें, नमी से बचा कर रखना है। और यही सारी इस तरीके से आप ना जो हमारे बने हुए खाद हैं हमारे जो कंपोस्ट खाद तैयार हो गए हैं उस तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। लंबे तक सुरक्षित रखेंगे तभी आप अपने फसलों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। छोटी सी विधि है कि उसको कैसे प्रयोग कैसे इसको हम स्टोर कर रख सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे जूट सैक जूट वाली बोरा उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, कट लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है हमारा नमी बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, कहीं थोड़ी बारिश वारिश हुई तो नमी वो बहुत इजीली ऑब्जर्व करता है। जो हमारा खाद बनाते हैं ये बहुत पोरस नेचर का होता है तो बहुत जल्दी पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, ये शोषित कर लेता है। तो वो कोशिश करना है कि आप ऐसा कंटेनर लें जिसमें छेद वेद कहीं ना हो, उसमें रख दें, ढक्कन से लगा दें, उसका नमी बहुत ज़्यादा ना जाए, नमी उतना ही जितना ऑलरेडी बना था उतना ही नमी उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उसमें होना चाहिए, तभी आप लंबे समय के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं।
1: जी, जैविक खाद के उपयोग के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ फायदे होंगे अगर किसान भाई जैविक खाद का उपयोग करते हैं।
0: जैविक खाद करने के उपयोग और फायदे तो आपको इस बातें से समझ में आ रही है, मैंने पहले ही बोला जैविक खाद मतलब प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक खाद बोलने का मतलब जहाँ प्राकृतिक चीजों का जिसके जो हमारे यूज में नहीं है उस चीजों का प्रयोग करके हम बनाते हैं उसको हम जैविक खाद कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक चीजों का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो पहला फायदा तो हमारा यही हो गया कि रासायनिक जब इसका प्रयोग से हम खेती करेंगे तो हमारा खेत कैसा होगा, वो रासायनिक मुक्त खेती होगा हमारा, इसमें जैविक खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जो जैविक खाद का प्रयोग करें फसल भी वही खाएगा, क्योंकि फसल का भोजन वही है। तो जो हम और उस फसल का, उस फसल में

0: रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जो फसल आते हैं, जो फसल का इल्ड आता है वो हम खाते हैं, तो जैविक चीजें जो हमारे हैं वो हम तक पहुंचेंगे, तो हम भी शुद्ध, पौधा भी शुद्ध, हमारे मृदा भी शुद्ध, हम भी स्वस्थ, तीनों चीज स्वस्थ हो गए हमारे। हम जो चेन में बोलते हैं ना, एक फूड चेन से हम कनेक्टेड होते हैं, तो फूड चेन हमारा बिल्कुल शुद्धता हो गया, बिल्कुल प्राकृतिक चीजें आ गई, ये फायदा हो गया। प्रकृति का संरक्षण हो ही रहा है, प्रकृति संरक्षण आप इसे समझ सकते हो, जहां रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये जैविक प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना रहे हैं, ऐसी का प्रयोग मिट्टी में कर रहे हैं, और जो चीज मिट्टी में जाती है वो फसल में जाती है, फसल में जो जाती है वही हम खाते हैं, वही जानवर तक पहुंचती है, तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है, और वही मिट्टी में जो चीज डालते हैं तो ये पोषक तत्व, तो मैंने पहले बताया पोषक तत्व प्रदान करता है फसलों को, जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व चाहिए पौधों को वो प्रदान करता है। अब बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं पौधे उसको वहां से ग्रहण किए तो किए, नहीं तो वो बहकर पानी में चला जाता है। अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे पानी भी प्रदूषित होता है, हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है, तो जब हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो जो वहां से बहकर पानी में जाएगा तो वो भी प्राकृतिक है, वो पानी भी हमारा प्रदूषित नहीं होगा, मिट्टी प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा जलवायु प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा हम मनुष्य हम जानवर कोई भी प्रदूषित नहीं होगा, सब प्योर प्राकृतिक रहेंगे। ये हमारे फायदे हो गए, जो हमारे मतलब हमारे इकोसिस्टम में जो भी चीजें आते हैं सब सुरक्षित रहेंगे, सब प्राकृतिक तरह से स्वस्थ रहेंगे, धनी रहेंगे।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय के बारे में, तो इसके क्या कुछ फायदे हैं ये आपने जाना। तो आशा करते हैं कि जैविक खाद की तरफ आप भी जोर देंगे, इस प्राकृतिक खाद की तरफ, और अपनी भूमि, अपनी खेत को, आप अपनी मिट्टी को आप स्वस्थ बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे मुलाकात होगी नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार
1: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया

रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर

0: की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट

0: अल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन।

0: अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh,

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी,
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये

0: विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन

0: अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
2: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
3: हाँ।
2: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
2: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
3: सूरज।
2: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
5: बहुत आसान पूछते हो।
2: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
5: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
2: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
3: हाँ।
2: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
5: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
2: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
6: वो तारा होता है।
2: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक,
7: वो रात और दिन भी बनाता है।
2: एकदम सही एकदम सही,
6: हमें धूप भी देता है।
2: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
5: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
2: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
5: विटामिन डी।
2: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
6: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
2: हाँ हाँ बिल्कुल,
5: पेड़ों को खाना भी देता है।
2: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
5: धीरे धीरे घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
2: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
5: हाँ,
7: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
2: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
5: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
2: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
5: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
6: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
2: ना।
6: मुझे तो सूरज बहुत गंदा लगता है।
2: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
5: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
2: बहुत बड़ा होता है
6: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
2: हम क्योंकि कहीं
5: दूर होता है, इसलिए
2: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
5: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
2: हाँ
6: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
2: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
2: ओह ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
5: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
2: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
6: नहीं
2: है।

0: सूरज आग का गोला लेकिन
1: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है,
1: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके,
1: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है,
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है,
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मौसी कर पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं
2: आऊँ? वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ? चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: डर जाती है। आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: 100 हो जाएंगे, 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
7: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
7: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: तो इसका हल क्या है?
7: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
6: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार, ये है 90.8 MHz से यानी FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली।

0: की ओर। दोस्तों एक बार फिर हम आपकी खिदमत में पेश हैं, यानी उन्नत कृषि कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, तो ज़रूर आपके लिए कुछ खेती बाड़ी की बातें होंगी, जिससे कि आज के हमारे जो युवागण हैं वो भी जुड़ें और वो भी समझें खेती से क्या क्या आप संभावनाएँ आपके लिए लाई जा सकती हैं और कैसे आप खेती कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इससे जुड़े आप जान सकते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसे, और बहुत ही खास विषय लेकर हमारे बीच आज डॉक्टर AK झा हैं, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। हमारा विषय है जल कुंभी के प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। तो आज डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे हम इसे जलकुंभी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें इसके बीच में आएंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
1: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, खास करके जैविक खाद है, जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब गोबर और फसल अवशेष का प्रयोग करके
0: जी
1: केचुआ की सहायता से बनने वाला खाद, जो कि सामान्यतः भूरे रंग का या काले भूरे रंग का होता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
0: जी
1: वर्म मतलब केचुआ और उसकी सहायता से बनने वाला खाद यानी वर्मी कंपोस्ट ये होता है।
0: यानी गोबर और जो केचुआ है उससे बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, और हमारे फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब आज के परिवेश की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो है देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है?
1: देखिए वर्मी कंपोस्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है कि यदि हम समान गोबर की खाद की बात करते हैं तो उसकी तुलना में इसमें पोषक मान काफी होता है, और साथ ही साथ में इसमें एंजाइम हार्मोन ये सारी चीजें होती हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बताऊं, जो गोबर की खाद है उसमें 0.5% नाइट्रोजन होगा, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 1% से ज्यादा नाइट्रोजन होगा। फॉस्फोरस भी गोबर की खाद में सिर्फ 0.2% होगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में यदि देखते हैं तो इसमें 0.8% से ज्यादा आपको फॉस्फोरस होगा। पोटास भी उसमें यदि हम गोबर की खाद में देखते हैं तो सिर्फ 0.5% हो गया, यानी आधा परसेंट, और यदि हम पोटास इसमें देखते हैं वर्मी कंपोस्ट में तो उसमें 0.8% के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो आपका पोषक मान है वो ज़्यादा है, यानी कि कम मात्रा में हम खाद डाल करके वर्मी कंपोस्ट डाल करके ज़्यादा पोषक तत्व की आपूर्ति कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा पहले था क्या था कि हमको गोबर खाद की बहुत ज़्यादा मात्रा लगती थी,
0: बिल्कुल
1: यह जरूरी हो गया हुआ है कि हम ऐसे जैविक खाद की बात करें जिसमें कम मात्रा में हमको प्रयोग करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमको पोषक मान की पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके, जिससे कि कम मात्रा में ही हम अपने खेती को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, हम अपनी मिट्टी को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत है।
0: जी डॉक्टर साहब ये तो बातें आपने बताई कि आजकल जो है क्यों बढ़ रही है इसकी मांग, लेकिन अगर बात करें वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में तो क्या जल कुंभी का उपयोग हम कर सकते हैं, और अगर उसकी जगह पर हम पुआल का उपयोग करें तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा?
1: देखिए एक तो पहली बात कि पुआल आदमी जानवर को खिलाने के लिए भी प्रयोग करता है, तो उतना पुआल तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग फसल जलाते भी हैं। लेकिन ये जो जलकुंभी है ये हमारे यहाँ खास करके यदि देखें तो यह एक प्रॉब्लमेटिक वीड की तरह है। समस्या पैदा करने वाला ये खरपतवार है जो हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित करता है। तो यदि हम यह बात देखें कि जो हमारे पास फालतू में पड़ा हुआ है, यदि हम सिर्फ बिहार की बात देखते हैं तो बिहार में लगभग आपको 9.12 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो कि वेटलैंड है, और वहां पर जो ये वाटर हाइसेंथ यानी जलकुंभी जो है वह एक प्रॉब्लमेटिक वीड है। तो इसका यदि हम प्रयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में तो एक तो ये बात है कि ये फायदेमंद है। दूसरी बात यदि हम पोषक मान की बात यदि देखते हैं तो पोषक मान भी इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि यदि हम इसमें देखें जलकुंभी में नाइट्रोजन आपको ज्यादा है, यानी 2.373% है, जबकि यदि हम पुआल को देखें तो पुआल में सिर्फ 0.61% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फॉस्फोरस इसी तरह से देखें तो जलकुंभी में जहां पर 0.583% है वहां पर पुआल में सिर्फ 0.1% पाया जाता है। पोटास लगभग लगभग दोनों में बराबर पाया जाता है। जस्ता यदि देखते हैं तो 250 ppm के आसपास पाया जाता है जलकुंभी में, जबकि 17.7 यानी 18% के आसपास आपको जस्ता पाया जाता है पुआल में। और इसी तरह से हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा लगभग 1824 ppm पाया जाता है ये जलकुंभी में, लेकिन सिर्फ 57.9 ppm पाया जाता है आपको पुआल में। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि

0: इसमें पोषक मान ज्यादा है। और कोई जो केचुआ की खाद बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वो कहीं बाहर से तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या पोषक मान लाता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: जो आप सबस्ट्रेट यूज करते हैं, उस सबस्ट्रेट में यदि ज्यादा मात्रा में पोषक मान है तो उससे बनने वाला जो बर्मी कंपोस्ट है उसमें ज्यादा पोषक मान होगा। तो इसीलिए यह यदि हम जलकुंभी से बनाए तो उसका पोषक मान ज्यादा होगा। साथ ही साथ जो यह एक समस्या ग्रस्त हमारे पास ये है जो हमारे जल संसाधन को प्रदूषित कर रहा है, उसका एक उपचार भी हो जाएगा, एक उपयोग भी हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आप पुआल के स्थान पर, जैसे मान लीजिए दो भाग आप प्रयोग करते हैं पुआल और तीन भाग प्रयोग करते हैं आप गोबर की खाद, उसके स्थान पर यदि दो भाग यदि आप जलकुंभी को प्रयोग करें और तीन भाग गोबर का प्रयोग करें तो उससे जो बनने वाला बर्मी कंपोस्ट होगा उसका पोषक मान ज्यादा होगा। इसीलिए इसकी संभावना बहुत बढ़िया है और आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि इसका हम प्रयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हम समझ गए कि जल कुंभी का प्रयोग अगर हम ज़्यादा करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, तो बिहार के परिवेश में जो देखा जाता है जल कुंभी का प्रयोग लोग करना चाहते हैं, इसको तो इसकी क्या संभावनाएँ हैं?
0: अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि बिहार में लगभग 9.12 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो समस्याग्रस्त है, खास करके वेटलैंड है। तो उस वेटलैंड में आपको जल कुंभी वैसे ही पैदा हो जाता है और जलकुंभी वहां पर पैदा होकर के वहां न तो कोई फसल पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके जल संसाधन है उसको भी प्रदूषित करता है। तो बिहार में काफी ज्यादा जगह पर आप देखते हैं कि ये जलकुंभी है और काफी ज्यादा मात्रा में है। तो यदि हम बिहार की बात करें, वहां के जल संसाधन को हम ठीक ठाक करना चाहते हैं, उसके क्वालिटी को ठीक रखना चाहते हैं, तो वहां पर काफी इसका इसकी संभावना है, काफी इसका स्कोप है। यानी इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक तरफ तो हमको गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट बनता है और साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो जो हमारा प्रदूषण की समस्या है उससे भी निजात मिलता है। यानी इसकी काफ़ी संभावना है बिहार के परिवेश में।
1: जी, तो इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं बिहार के परिवेश में। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे हैं जलकुंभी का, तो इसका प्रयोग अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो पोषक मान में क्या अंतर आता है?
0: अभी हमने आपको बताया है कि आपने देखा भी है, सुना भी है कि ये जो जलकुंभी है, जलकुंभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं इसकी मात्रा पुआल के तुलना में ज्यादा है। यानी उससे यदि हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो बर्मी कंपोस्ट का पोषक मान जो होगा वो ज्यादा होगा। अब जैसे हम एक बात कहें कि हमने केवल गोबर से यदि बनाया हुआ है या जो जलकुंभी है और इसको जैसे हमने बताया कि 40% आप जलकुंभी ले लीजिए और इसको क्या कहते हैं 60% आप गोबर लीजिए, तो उससे यदि आप बनाते हैं तो उसके पोषक मान में कितना अंतर होता है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि ये जो पैडी स्ट्रॉ है
1: जी,
0: उसको यदि बनाएंगे तो आपको उतना पोषक मान नहीं मिलेगा। सिर्फ गोबर से यदि हम बनाते हैं तो गोबर से बनाते हैं तो 1.667% अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि 1.5% से के आसपास उसमें आपको नाइट्रोजन रहता है। यदि हम वही जलकुंभी और इसका जो अभी हमने बताया दो भाग जलकुंभी और तीन भाग जो आपका गोबर है इसको मिला करके बनाया तो वहां 2% के आसपास 1.983% नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से फास्फोरस भी सिर्फ गोबर से यदि बनाते हैं तो वो 0.08% के आसपास होता है, 0.719% पाया गया हमें। और वहीं पर यदि हम जो जलकुंभी के साथ मिला करके यदि देखा तो वहां पर 0.88% के ऊपर हमको फास्फोरस पाया गया। पोटाश भी यदि हम देखते हैं तो सिर्फ गोबर से बनाते हैं उसकी तुलना में इसमें पोटाश भी थोड़ा सा ज़्यादा हमें मिला। और वहीं पर यदि हम पुआल से बनाते हैं तो पुआल में देखिए फास्फोरस हमने अभी बताया 0.1% ही फास्फोरस होता है, तो उसमें सिर्फ पुआल से यदि आप बनाते हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा कम होगी। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूं मित्रों कि अब जो बर्मी कंपोस्ट है यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आ गया हुआ है। यानी आप ऐसा ही बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या उसको बेच सकते हैं जिसमें 1% कम से कम नाइट्रोजन हो, 0.8% फास्फोरस हो, 0.8% पोटाश हो या उससे ज़्यादा हो, उसी को आप बेच सकते हैं। तो यदि आप इसका व्यापार भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों को मिला और यदि हम उसमें जलकुंभी मिलाते हैं तो यह हमारी समस्या कुछ हद तक दूर करती है। तो इसीलिए इसका प्रयोग काफ़ी फायदेमंद है और ज़रूरी भी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की और जलकुंभी की, तो जलकुंभी का प्रयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कैसे कर सकते हैं वो भी बता दें।
0: अब देखिए एक किसान था सुपौल का, उस वो जो करता

0: था वो क्या करता है, एक भाग आपको ये लेता था जलकुंभी, और पांच भाग इसमें आपको गोबर मिलाता था। अच्छा। और उसमें भी उसके जड़ को काट के हटा देता था जलकुंभी के जड़ को, और उसमें जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है वह भी थोड़ा सा कम है, हालांकि उसी के आसपास है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके जड़ को आपको काट के हटाना है, जो कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पर शोध करके ये देखा गया कि आखिर हम इसमें कितना परसेंट तक मिला सकते हैं। तो हमने देखा, जो हमने पाया है कि इसमें यदि आप 40% तक, यानी दो भाग जितना पुआल का आप करते हैं, यानी 40% तक यदि आप जलकुंभी मिलाते हैं, वहां तक आपका केचुआ उछुआ बढ़िया बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। केचुआ का भी विकास होता रहता है, उसकी मोटाई वगैरह वगैरह भी बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब कि आपको ये करना है कि 40% जो आपका ये है जलकुंभी, उसको आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, 1 इंच के टुकड़े में काट दें, और इसको 60% गोबर इसमें मिला दें। गोबर मिला करके इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें, 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता के लिए, और उसके बाद उसे ढेर बना करके उसमें फिर केचुआ का प्रयोग कर दें। और जैसे आप सामान्य बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं कि उसमें सिंचाई करते हैं, नमी 60-70% बना करके रखते हैं, तो ये आप करके रखेंगे। अब ढेर विधि ज़्यादा आपके लिए सहूलियत है तो ढेर विधि में ही कीजिए। अच्छा। तो ढेर विधि में आपको हमने बताया कि 40% उसमें जलकुंभी लेंगे, 60% गोबर लेंगे, दोनों को मिला करके प्री डाइजेशन के लिए 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उसे ढेर बना लीजिए। ढेर की चौड़ाई कभी भी 4-6 फीट के बीच में ही रखिए।
1: अच्छा।
0: उसकी ऊंचाई 2.5-3 फीट से ज्यादा नहीं रखिए, और लंबाई जितना बड़ा आपका छप्पर है, सेड है, उसी के हिसाब से आप लंबाई रखें। उसके बाद जब आपने देखा कि ये जो हमारा मिश्रण है वो ठंडा हो गया, हाथ डाल करके देखा कि ये ठंडा हो गया, तो उसके बाद उसमें आप केचुआ डाल देते हैं, और केचुआ डाल करके आप उसको छोड़ देते हैं, और यह आपको धीरे धीरे बर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित होने लगता है। जब चाय की पत्ती जैसी संरचना आपको बनना शुरू होता है, उसमें 2-3 दिन के लिए सिंचाई रोकिए, और ऊपर में वो चाय की पत्ती जैसी जो संरचना है उसको हटा लीजिए। हटा करके फिर चाल करके आप पैक कर लीजिए, जिससे कि 15-25% नमी हो, क्योंकि यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत है कि उसमें 15-25% के बीच में नमी रहनी चाहिए। जो आपका टोटल कार्बन है वो 18% से ज्यादा होना चाहिए। तो यह तो गुणवत्ता तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप नमी बरकरार किए हुए हैं, उसके बाद उसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही सुझाव देना चाहूंगा कि आपके पास उतना पुआल है नहीं, उतना गोबर है नहीं। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास पुआल उतना है नहीं जिसका प्रयोग, या भूसा का ही प्रयोग आप वर्मी कंपोस्ट बनाने में करें, और उतना गोबर भी नहीं है। तो गोबर नहीं है तो गोबर का एक 40% सब्स्टिट्यूशन तो इससे हो सकता है, वाटर हाइसेंस से, और वो तो फालतू चीज पड़ा हुआ है। तो उस फालतू चीज का प्रयोग आप बर्मी कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा वो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो जो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है कि यह जो हमारे पास एक वीड है, हमारे पास जो खरपतवार है, एक तरह का ये खरपतवार ही है, इसका आप प्रयोग बर्मी कंपोस्ट बनाने में करें। इससे आपका जो जल संसाधन है वह भी आपको प्रदूषण मुक्त होगा, साथ ही साथ आपको फायदा भी होगा। आप जो बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा। इसके चलते ये होगा कि जहां पर ज्यादा मात्रा में बर्मी कंपोस्ट, अब एक छोटी सी बात समझिए ना, यदि आप बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें 1% नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही, तो वहां पर यदि मान लीजिए 40 क्विंटल लग रहा है तो 2% वाला जो होगा वहां पर आपको सिर्फ 20 क्विंटल ही लगेगा। तो बर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी बचेगी, और तब आप इसका प्रयोग आप अपनी खेती में कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों, आपने सुना कि जल कुंभी का प्रयोग आप करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है, और संभावनाएं भी हमारे बिहार क्षेत्र में इसकी बहुत ही अच्छी है। तो फायदा इसी में है कि आप इसके प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाइए। और साथ ही कुछ अच्छी बातें यहाँ पर आपको जानने को मिली हैं इस संदर्भ में। तो अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 MHz यानी FM ग्रीन। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।

0: आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को, जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी

की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गलाघोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഭാരത് കൃഷി. नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में, जिसमें हम बातें करते हैं किसान भाइयों की. आज किसान भाई, जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, खेती बाड़ी के नए नए गुण अपना रहे हैं और इसी में से एक आता है जलवायु अनुकूल या मौसम अनुकूल खेती. जी हाँ, आज हमारा विषय है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व. और आप सभी को पता है कि वर्षा जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ख़ास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए. तो इस विषय पर खास चर्चा होगी. आज हमारे बीच हैं वरीय वैज्ञानिक अंशुमन कोहली, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं ये, और आज पूरी जानकारी मिलेगी हमें इनसे. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: जी धन्यवाद. किसान भाइयों को, आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार.
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज कहा जाता है कि जैसे कि आज का ये एरा है उसमें मौसम अनुकूल या जलवायु अनुकूल खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये समझा दें, हमारे श्रोताओं को आप ये समझाएं कि मौसम अनुकूल खेती और जलवायु अनुकूल खेती में क्या अंतर है, क्या है ये.
1: धन्यवाद. किसान भाइयों को जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले कुछ और जानकारी मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहूँगा. देखिए, किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम मौसम कहते हैं, और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है. मौसम और जलवायु दोनों के तत्व समान ही हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि तापमान, वायु का दबाव, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इत्यादि. और यदि हम बात करें कि आज गर्मी अधिक है, आज उमस अधिक है, आज वर्षा हो रही है, अथवा आज तेज़ हवा चल रही है, तो यह तो ही मौसम की बात. परंतु यदि हम कहें कि मेघालय में वर्षा अधिक होती है या जून में भागलपुर में उमस अधिक होती है, भागलपुर में वर्षा का वार्षिक औसत 900 मिलीमीटर है इत्यादि, तो यह बात है जलवायु की. अब मौसम के अनुकूल कृषि क्या हुई? जैसे कि रबी और खरीफ की फसलों की खेती, जो कि आमतौर पर सभी किसान करते हैं. कुछ प्रगतिशील किसान ग्रीन हाउस पद्धति से गैर मौसमी फसलों की भी खेती करते हैं तथा भरपूर लाभ उठाते हैं. यह सब अपनी जगह ठीक है, पर जलवायु अनुकूल कृषि क्या हुई? जो हमारे दीर्घकालिक मौसम का जो औसत है उसके अनुरूप की जाए.
0: जी, तो सर आपने अभी कहा था शुरुआत में कि जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो बेहतर तरीके से अगर आप थोड़ा और इसके बारे में जानकारी दें तो और ज़्यादा उन्हें ज्ञान हो जाएगा इनके बारे में.
1: जी, तो हम बात करना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम दीर्घकालिक मौसम के औसत के हिसाब से खेती करें तो वो होगी जलवायु अनुकूल कृषि, यानी उस जलवायु के हिसाब से खरीफ में कौन सी फसलें किस पद्धति से लगाई जाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, तो वो जलवायु के अनुकूल हो सकती हैं. अब किसी भी पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति वहाँ की जलवायु के अनुसार ही अवतरित होते हुए पनपे हैं. सभी पारिस्थितिक क्षेत्रों की पारंपरिक फसलें अधिकतर जलवायु के अनुकूल ही हैं. जो हमारी पुराने ज़माने से जो पारंपरिक फसलें चल रही थीं वो सब जलवायु के अनुकूल ही हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या एवं प्रगति की होड़ में अक्सर गैर टिकाऊ प्रक्रियाओं तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती हानि को कम करने के लिए कृषि में जलवायु के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए. इसमें सूक्ष्म और स्थूल

0: दोनों ही स्तर पर परिवर्तन करने होंगे, सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों स्तर पर, अर्थात किसान के व्यक्तिगत स्तर पर तथा एक वृहद भौगोलिक स्तर पर फसलों का चयन जलवायु के अनुकूल किया जाना चाहिए। मसलन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ के दौरान धान की जगह मक्का का चुनाव करने से भूमिगत जल स्रोतों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह रबी के दौरान गेहूं के स्थान पर वर्षा सिंचित दलहनी एवं तिलहनी फसलों यथा चना, मसूर, खेसारी, तिस्सी, सरसों इत्यादि का चयन पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ माना जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि जलवायु अनुकूल फसलों के चुनाव से हम उस पारिस्थितिकी में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, प्रकाश, वायु अथवा जैव संसाधन कुछ भी हो सकते हैं।
1: तो जैसा कि डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। तो अगर हम बात करते हैं वर्षा जल संचयन की, हम इसे करके कैसे मतलब जलवायु अनुकूल कृषि की ओर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: जी, अब आज की चर्चा का विषय चूंकि जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन है, आगे की चर्चा में हम जल प्रबंधन पर ही केंद्रित रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तम फसलोत्पादन में सिंचाई और जल निकासी का बहुत महत्व है। किसी पारिस्थितिकी में वर्षा का होना या ना होना, किस वेग से होना, कितनी वर्षा होना इत्यादि वहाँ की जलवायु का प्रतीक है। इसी तरह तापमान, आर्द्रता इत्यादि, यह सब भी वहाँ की जलवायु को डिफाइन करते हैं। और जैसा कि आप सभी को भान है, हर फसल के लिए जल की आवश्यकता कितनी हो यह फसल के साथ साथ मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करता है। अर्थात फसल का चुनाव व जलवायु, इन दोनों पर ही यह निर्भर करता है कि जल की आवश्यकता आपकी फसल के लिए कितनी होगी। सिंचाई के लिए जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यथा जीवाश्म ईंधन, भूमिगत जल स्रोत, सतही जल स्रोत इत्यादि, उन सभी का योगदान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सराहनीय है, आशातीत है। साथ ही साथ कृषि हेतु भूमिगत जल के प्रयोग से भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। इसकी वजह से गैर कृषि कार्यों के लिए जल और अधिक गहराई से निकाला जाता है, जिससे कि जल के उपभोग की पर्यावरण लागत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सतही जल के सिंचाई हेतु प्रयोग से सतही जल की उपलब्धता गैर कृषि कार्यों के लिए घट जाती है। वर्षा जल का संचयन करने से जल के भूमिगत एवं सतही संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही साथ कृषि की पर्यावरण लागत भी कम की जा सकती है तथा कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि वर्षा जल संचयन के द्वारा परंपरागत जल स्रोतों के दोहन को कम करके कृषि की पर्यावरण लागत को कम करते हुए जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि के सभी क्रियाओं को बेहतर ढंग से करते हुए तथा जल की बचत करते हुए कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसमें लिमिट लेस तो नहीं है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, और उसी में से एक है हमारा जल। जी हाँ, क्योंकि ये हमें बचाना, इसे संरक्षित रखना है, और क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी में अगर किसान भाइयों से हम इसे जोड़ें, तो खेती के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्षा जल वो संचयन करें तो बेहतर होगा कि उनकी जो पानी है उसकी बर्बादी कम होगी। तो डॉक्टर साहब, कैसे वो वर्षा जल संचयन कर सकते हैं अपनी खेती के लिए, और इसका भरपूर इस्तेमाल वो अगर वर्षा ना हो तो उस समय भी कैसे कर सकते हैं, वो बताएं।
0: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान भाई अपने खेतों में वर्षा का जल संचयन करें। कैसे करें, इस पर अब हम थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए मूल मंत्र एक ही है कि खेत का पानी खेत में ही रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि खेत में जो वर्षा होती है उसका जल खेत में ही इकट्ठा रहे, बाहर बह के ना जाने पाए। इसके लिए किसान भाइयों को खेत में वर्षा जल संचयन हेतु निरंतर प्रयासरत रहना होगा तथा सदैव तैयार रहना होगा। अपने खेत में प्रबंध रखने से

0: यदा कदा पड़ने वाली वर्षा का जल संचय किया जा सकता है, जैसे कि खेत के चारों ओर की मेड़ मजबूत एवं ऊंची रखनी चाहिए ताकि वर्षा का पानी खेतों के अंदर ही एकत्रित रखा जा सके तथा खेत की जमीन में पानी को रिसने के लिए समुचित अवसर मिल सके। और दूसरी बात कि खेत में समुचित मात्रा में कार्बनिक खाद का व्यवहार निरंतर करना चाहिए ताकि मृदा की भौतिक अवस्था स्थिर एवं कायम रह सके तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अच्छी बनी रहे। इसके बाद तीसरी बात कि यथासंभव न्यूनतम जुताई तथा श्रेष्ठ फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाना चाहिए, जो कि मिट्टी की भौतिक अवस्था को अच्छा रखने में सहायक होते हैं तथा वर्षा जल संचयन में मददगार साबित होते हैं। फिर खेतों को जोत के अनुसार लेजर लेवलर इत्यादि उपकरणों की मदद से समतल करना चाहिए ताकि सिंचाई एवं वर्षा जल नियंत्रित रखा जा सके तथा समान रूप से पूरे खेत में सिंचाई एवं जल निकासी की व्यवस्था की जा सके। और फिर किसान भाइयों को यह भी चाहिए कि अपने खेतों में सदैव वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप ही कीटनाशक एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि अपरिहार्य स्थिति में खेत से निकासी किया गया जल पर्यावरण को दूषित ना कर सके। इसके बाद फसल चक्र का सही चुनाव से एक फसल के बाद मृदा में बचा हुआ जल अगली फसल के प्रयोग में आ सकता है, अतः पारिस्थितिकी के अनुसार फसल चक्र का चुनाव करने से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वर्षा जल का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। एक और बात कि आकस्मिक एवं असामयिक वर्षा तथा तीव्र गति की वर्षा होने की स्थिति में खेतों से जल निकासी का भी समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। निकासी किया गया जल किसी गड्ढे या पोखर में इकट्ठा करने से हम आने वाले दिनों में उसको फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। और फिर अंत में एक बात कि खेत के बाहरी किनारों एवं मेड़ों पर साल भर हरी रहने वाली चारे की फसल या घास जैसे कि हाइब्रिड नेपियर इत्यादि लगाने से वर्षा जल का बहाव धीमा होने के साथ साथ मृदा का अपरदन भी कम हो सकता है तथा मृदा की भौतिक अवस्था भी अच्छी बनी रहती है। तो यदि किसान भाई इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है और इस परिस्थिति में सिंचाई के लिए प्रयोग हो रहे जीवाश्म ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के एक कारक के रूप में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ऐसी व्यवस्था होने से हमारा कृषि तंत्र एक बेहतर जल संसाधन प्रबंधन की ओर अग्रसर होगा तथा जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ व्यवस्था का हिस्सा बन सकेगा।
1: जी, तो इस प्रकार आपने श्रोताओं जाना कि कैसे जलवायु अनुकूल कृषि में जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच थे डॉक्टर अंशुमन कोहली, जो कि वरीय वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस खास विषय के बारे में। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं

0: लगा है।
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है। महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि

अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वलिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएँ होती है, कमाने वाली महिलाएँ होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज़ को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीज़ें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि
तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा

अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है, 2400 घंटे सातों दिन।

0: और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
5: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 MHz पर। और हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें हम बातें करते हैं खेती से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज भी कुछ ऐसी ही बातें हम लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। आज का हमारा विषय है केचुआ खाद बनाने का तरीका और इसकी उपयोगिता, यानी कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शिव पूजन यादव, जो कि वैज्ञानिक हैं KVK बसूली महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, जो आप सभी को बताएंगे कि क्या होता है ये केचुआ खाद, इसे बनाने का तरीका क्या है, इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद मैम।
0: सबसे पहले तो केचुआ खाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
8: तो जो हम आज बात करेंगे केचुआ खाद की या वर्मी कंपोस्ट की, तो हम चाहेंगे कि जो, जैसा हम जानते हैं कि विगत वर्षों में जब हरित क्रांति आई, तो हमने रासायनिक खादों का अंधाधुंध और अनियंत्रित तरीकों से प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई, और आज हमारे मिट्टी में पोषक तत्व की भी कमी होने लगी है। ऐसे में हमें ऑर्गेनिक खाद, जिसको हम जैविक खाद कहते हैं, उसमें केचुआ की खाद एक

0: महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो केचुआ की खाद है क्या, तो हम बात करेंगे कि केचुआ जो हमारे अपशिष्ट हैं, चाहे कृषि से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे किचन से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे पशुओं से निकला हुआ गोबर है, गौमूत्र है, उसके द्वारा जब हम उसको सड़ा के केचुआ डाल के, केचुआ अपने मल के रूप में उसको खा के मल के रूप में जो निकालता है या केचुए का कोकून सड़कर खाद बन जाता है, तो इसे हम केचुआ खाद कहते हैं।
1: इसे बनाने की विधि के बारे में जानना चाहेंगे।
0: तो सबसे पहले हम केचुआ खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहला जरूरी होता है कि हम स्थान का चुनाव कैसे करें। जहाँ पे हम केचुआ खाद बनाने जा रहे हैं उसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ जो समतल जगह है उससे लगभग 3 फीट ऊंचा हो, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए और वो जगह छायादार स्थान में होना चाहिए। अगर छायादार स्थान में नहीं है तो हमें टीन का शेड लगाना पड़ेगा जिससे उसको छायादार बनाया जा सके। इसके साथ ही उसकी बनाने की विधि क्या है, तो हम इसको क्यारी बना के ईंट से तैयार, कंक्रीट से तैयार क्यारी बना के उसमें केचुआ की खाद बनाते हैं। तो क्यारी का साइज हमें क्या रखना चाहिए, तो 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की या 50 सेंटीमीटर का क्यारी बनाएंगे। इसमें 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 0.5 मीटर गहरा क्यारी बनाएंगे। इस तरह की अगर हम क्यारी बनाते हैं ईंट से तो उसमें लगभग 5 टन सड़ा हुआ हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है हमारे पास वो उसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें होता है हम उसको अवशिष्ट पदार्थ को किस तरह से क्यारी में डालना है। तो कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जिसको, जिससे भी हम अपना खाद बनाने जा रहे हैं, केचुए की खाद बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी अवशिष्ट हमारे पास है उसको हम कहीं एक छायादार स्थान में ढेर बना के इकट्ठा कर लें और लगभग 15 से 20 दिन तक उसको कूड़ बना के, ढेर बना के रखे रहें और उस पर पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे क्या होगा कि वो पार्शली डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कुछ मात्रा में वो सड़ जाएगा बाहर ही। पूरी तरह अगर हम डायरेक्ट उसको क्यारी में डाल देंगे, बनाने वाले गड्ढे में डाल देंगे, तो उसका तापमान अच्छा नहीं रहेगा और केचुए पे नुकसान पहुंचाएगा केचुए को। तो इसीलिए उसको हम पहले पार्शली डिकम्पोज कर लें, उसके बाद ले जाके हम जिस जो क्यारी हमने बनाई है छायादार स्थान में उसमें हम उसको भर देंगे। भरने के बाद लगभग 4 से 5 दिन तक हम उसको पानी छिड़कते रहेंगे और भर के रखे रहेंगे। जब उसका तापमान एक पूरे गड्ढे में देखेंगे अगर बराबर आ जाता है, लगभग केचुए के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, अगर इस तापमान पे जब हमारा गोबर या जो कंपोस्ट बना रहे हैं, जो भी सड़ा मटेरियल है उसमें भरा हुआ है वो आ जाए, तो हम उसमें केचुआ डालेंगे। एक टंकी में जो एक क्यारी मैंने बनाई है उसमें लगभग 1 किलोग्राम केचुआ डालेंगे, जिसमें लगभग 5,000 केचुआ होंगे। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम केचुआ किस प्रजाति का केचुआ डालेंगे, तो उसमें होता है एसिनिया फोइटिडा है, एडुलस एजेनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केचुआ की प्रजाति है, इसको हम डाल के इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता खाद बदलने की बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ ही हम बात करना चाहेंगे कि उसमें केचुआ भरने के बाद जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको भरने के बाद हम उसमें पानी का छिड़काव 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहेंगे, जिससे उसका तापमान बना रहेगा और उसमें नमी बनी रहेगी और केचुआ अपना विकास उसमें अच्छे से कर पाएगा और खाद को खाकर अच्छे से बदल पाएगा।
1: अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग के बारे में कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: तो जो हमारा खाद बनकर तैयार हुआ है उसको अगर हम एक ही क्यारी में बनाए हैं तब तो हमें लेयर बाय लेयर उसको आसानी से निकालेंगे। अगर कई क्यारी में बना लिए हैं, जैसे अगर हम 100 वर्ग मीटर में अगर हम केचुआ की खाद बना रहे हैं तो इसमें लगभग 90 क्यारी हमारी, जितना मैंने साइज बताया है 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की क्यारी, लगभग 90 क्यारी बन जाएंगी। इस तरह से अगर हम खाद बनाते हैं तो हमें उसको लगभग खाद बनने में लगभग 30 से 40 दिन लगेगा डिकम्पोज होने में। तो उसमें हम 30 से 40 दिन बाद एक क्यारी में ऊपर की 6 इंच लेयर को निकालते रहेंगे और वो खाद केचुआ अपना नीचे की तरफ जाता है तो खाद बनाता हुआ चला जाएगा और हमारा खाद भी हम प्रयोग करते जाएंगे। केचुआ एक क्यारी से इस तरह बनाते हैं तो दूसरी क्यारी में अपने आप ही मूव करता है, चला जाएगा और खाद बनती निकल जाएगी। तो उसको निकालने के बाद हम उसको छानते हैं, 2 मिलीमीटर छन्नी से उसको अच्छे से छान लेंगे, जो उसमें कंकड़ पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे, जो खाद होगी हमारी वो अच्छे से हमें मिल जाएगी। तो इस खाद में जो वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार होगा इसमें लगभग 1.5% नत्र

0: नाइट्रोजन होता है, 1.5 से 3% फास्फोरस होता है और 1.5% के आसपास पोटास होता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी मिट्टी में अभी खासकर कमी दिखने लगी है। तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, उसके साथ ही इसमें बहुत कई तरह के एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो अब इसका प्रयोग कितना करना चाहिए, किस फसल में इसका कितना प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे जो धान्य फसलें हैं, जैसे चावल है, धान है, गेहूं है, ये सब हैं, इसके साथ ही सब्जी है, तिलहन की फसलें हैं, दलहन है, तो इसमें हम 5 से 6 टन बर्मी कंपोस्ट पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करेंगे। इसको हम बुआई से पहले खेत में बिखेर देंगे और उसको जुताई करके अच्छे से खेत में मिला देंगे। इसी के साथ ही अगर हम फलदार वृक्षों में इसको प्रयोग कर रहे हैं तो 200 ग्राम बर्मी कंपोस्ट को हम प्रत्येक पौधे पे डाल के अच्छे से खुरपी से मिला देंगे। इसी तरह अगर हम घास के लान में डाल रहे हैं तो 3 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं।
1: और इससे क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा किसान भाइयों को?
0: तो जैसा मैंने कहा कि बर्मी कंपोस्ट जो हमारा जैविक खाद है, तो जैविक खाद होने के कारण ये इसमें किसी तरह का कोई रसायन नहीं होता है। रसायन ना होने के कारण ये हमारी मृदा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। मृदा के भौतिक गुण में, भौतिक गुण मतलब उसकी संरचना और उसके संगठन में सुधार लाता है। उसी के साथ ही मृदा में वायु संचार, क्योंकि इसका पोरोसिटी अच्छा होता है, तो वायु संचार मृदा में पोरोसिटी बढ़ा के उसका वायु संचार अच्छे से करता है। और जो हमारे बर्मी कंपोस्ट अगर हम खेत में डालते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव, जो हमारे बेनिफिशियल, जो किसान भाइयों के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, उनका भी संख्या बढ़ जाती है, जिससे खेत में वातावरण से नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण बढ़ जाता है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट को लघु या कुटीर उद्योग के रूप में हम बढ़ा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
1: इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: और श्रोताओं, आप सभी से फिर मुलाकात होगी। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो, पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി.
1: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है. हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं. यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से. कैसे इसे उगाते हैं, उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है. वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है. लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की, उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है. तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ. और आज हम जानेंगे कि क्या हैं बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है. तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें. तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आरबी वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर से. तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं?
2: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात. और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं. जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं. परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां. जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें. तो जो अपने सीजन से हटके अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है. मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता है. जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता है उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है. और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है. तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन.
1: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं. यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज़्यादा ही होते हैं. तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके.
2: बिल्कुल.
1: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
2: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है. देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है.
1: जी.
2: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं. और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या, भी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है.
1: जी जी.
2: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है. हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है. इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी. वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं. मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है.
1: जी जी.
2: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
1: प्राइस कम,
2: हाँ, उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं.
1: हाँ.
2: कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं. लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है.
1: जी जी.
2: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर आगेती कर लेते हैं
1: पहले,
2: तो ये, हाँ, थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं मौसम से, थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि 50 रुपए 60 रुपए गोभी

0: जाती है।
1: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से
0: हाँ,
1: थोड़े महीने
0: थोड़ा सा
1: पहले।
0: पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है, तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को
1: बढ़ावा
0: अपनाएं।
1: दें।
0: और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। इस संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की ज़रूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन, पर डे, पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है, और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं, तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां, और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए, वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी, और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें, बेमौसमी सब्जियों का एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे, तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित हैं, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों की खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
1: चैलेंजिंग हो जाता है,
0: चैलेंजिंग होता है, और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंजेज, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है, वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
1: ज्यादा होती है,
0: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ड
1: नहीं
0: कर सकते हैं। तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ड कर सकते हैं, तो उसको एफर्ड मतलब उसको एडाप्ट करें, जो किसान भाई उसको एडाप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ड नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सकें, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत

0: तो हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली, और जो कूलिंग, हाँ ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर से हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर हम उसको हटा देते हैं। अच्छा। तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
1: लो
0: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं तो उसको ले जा करके अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा ये होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
1: हमारे छोटे किसान,
0: हाँ, छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
1: अच्छा।
0: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी हमने फूलगोभी की बात की,
1: हाँ हाँ।
0: वैसे हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी कद्दू की, जिसकी हाँ हम बात करते हैं, कद्दू को
1: ठंडी के,
0: हाँ ठंडी का मौसम
1: आने से पहले, कुछ
0: गर्मी आने से पहले।
1: अच्छा।
0: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च, मार्च में तो सबके, मार्च से अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता
1: जी
0: है
1: जी।
0: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक,
1: मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
0: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा हमने
1: हाँ।
0: किया कि ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया, दिसंबर में ही लगा लिया
1: जी।
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई हैं उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये लो टनल पॉली हाउस को, इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु को, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, कहें तो दुगुना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें,
0: हाँ,
1: तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की, थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
1: मिट्टी चाहिए।
0: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है, या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज,
1: नवसिखिए नहीं होना,
0: हाँ,
1: बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए
0: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
1: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
0: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए

0: जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको पता है, लो वैल्यू में हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफ़ी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है, टमाटर है, तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
1: जी जी जी
0: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
1: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
0: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
1: नहीं है,
0: नहीं होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़वार वाली सब्जियां में वो आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इसे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
1: नहीं
0: कुछ
1: हुआ।
0: नहीं हुआ। तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के, कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है, या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है
1: जी जी।
0: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है
1: जी।
0: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पर खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी
1: जी।
0: 15,000 रुपए आपको लगाना है, जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं
1: 50% सब्सिडी सरकार की, 50%
0: सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको, बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
1: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है, 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके।
0: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती है, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गई, दूसरी उसी सब्जी से सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है, और कम क्षेत्रफल से, देखिए ना आप कितना जो है
1: लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट,
0: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते, हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं, और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर 1 एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है, 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पोली हाउस बनाया है उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है।

0: उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है।
1: जी जी
0: बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं, जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं, तो मेन सीजन में हमारे फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं, तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस, क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया। आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त
1: पैसा
0: निकाल लिया जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में, तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं। और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत

मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना

जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छतरी छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छतरी छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दें, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा

के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में अमेज़न फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं, तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है, और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है, और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है, और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर

0: किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,
5: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और खासकर जब और बात करें किसानों की, तो आप सभी को पता है कि किसान जो हैं आजकल रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो होता है लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे मैं पूछना चाहूंगी, सर कैसे जो किसान हैं वो अपनी उत्पादकता, फसलों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाएं, और तो इन रासायनिक उर्वरकों से बचकर कैसे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से।
6: देखिए, इसमें जो किसान भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद से आजकल क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषित हो रही है और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसको उत्पाद हम खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, उसका जो अवशेष, रासायनिक खादों का अवशेष हमारी बॉडी के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। तो प्रश्न आता है कि हम पोषक तत्व किससे दें। यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक। पहले जानते हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का प्रायोगिक सम्मिश्रण है, जो कि समुचित मात्रा एवं तकनीक से व्यवहार करने पर फसलों की उपज में वृद्धि करता है। जैव उर्वरक कभी भी किसी कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर जाकर के अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए अनुपलब्ध होते हैं या बेकार होते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु जाकर के मिट्टी में अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अघुलनशील या बेकार पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, और उस अवस्था में उपलब्ध कराते हैं जिस अवस्था में पौधा लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सही तरह से करते हैं, तो रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं और पौधों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
5: तो सर ने बताया यहाँ पर कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, आप उनसे हटकर जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों, और उनके महत्व पर और भी ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और इनसे हम और भी बातें जानेंगे। और आगे सर हमें क्या बताना चाहेंगे आप इस जैविक उर्वरक के बारे में?
6: इसके बारे में हमको जानना होगा कि जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनसे क्या लाभ होता है। तो ये हमको जानना बहुत अत्यावश्यक है कि जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में।
5: तो सर ने हमें बताया कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये और किस प्रकार ये रासायनिक खादों से अलग ये अपना काम करता है, सर आप हमें बताना चाहेंगे?
6: देखिए, जैसे कि अभी बताया था कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिर करते हैं या फिक्सेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78.6% नाइट्रोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि कुछ पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि दाल वाली फसलें हैं, चना, मसूर, अरहर, उसकी जड़ों के अंदर ये गांठें बनाता है और गांठों के अंदर उस वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अवस्था में चेंज कर देता है जिस अवस्था में पौधा लेता है, जैसे कि अमोनिकल है या नाइट्रेट है। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता, जो कि हम DAP से यूरिया से देते हैं, तो इस तरह से ये उससे अलग होता है केमिकल से, और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है खेती पर या मिट्टी पर। इसलिए ये बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा होता है पौधों को ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है। तो फास्फोरस मुख्यतः पौधा आयनिक फॉर्म में लेता है, जो कि हम लोग आयन बोलते हैं। और जब हम DAP अप्लाई करते हैं तो DAP या SSP जो फास्फोरस किसान भाई अप्लाई करते हैं, तो उसकी उपयोग क्षमता केवल 15 से 20 प्रतिशत

0: उन्नत कृषि।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
5: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
5: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि।
9: ने हमें बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और साथ ही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है तो इसमें एक जीवाणु का नाम आता है सर, और उसका नाम है एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम। सर, इसका क्या काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपयोगी बातें होंगी उनके लिए।
10: देखिए, अभी जो राइजोम के बारे में बताया, तो राइजोम का प्रयोग केवल दलहनी फसलों में किया जाता है। और अभी आपने जो पूछा है एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम का क्या काम होता है, तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी के अंदर करते हैं। और ये जीवाणु सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब्जी वाली फसल जितनी भी हैं, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी, सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल वाले वृक्ष जैसे कि लीची, आम, अमरूद, पपीता, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कितना नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, यदि किसान भाई साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते हैं अपने खेतों के अंदर, तो ये जीवाणु प्रति हेक्टेयर एक साल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि इनका प्रयोग करते हैं तो हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो कि DAP या यूरिया से देते हैं, उसको सेव कर सकते हैं।
9: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो सर, हमने अभी बहुत सारी बातें जानी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जाना और जीवाणु के बारे में जाना, और इसके बाद सर ऐसा अक्सर देखा गया है कि खेतों में और मिट्टी में खासकर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अगतिशील होते हैं, और इन अगतिशील पोषक तत्वों से पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जैव उर्वरक इन अगतिशील पोषक तत्वों को गतिशील बनाकर जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स या फिर यूं कहें कि पोषक तत्व उपलब्ध करा सके।
10: देखिए, आपने जो बात करी है अगतिशील पोषक तत्व, तो मृदा में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि अगतिशील होते हैं। उसको उदाहरण बताना चाहूंगा,

0: नंबर एक पे आता है फॉस्फोरस, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिंक है और आयरन है। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि मृदा घोल में अगतिशील होते हैं और पौधे की जड़ जहाँ होती है वहाँ तक वो आ नहीं पाते। तो पौधे की जड़ के आसपास जो भी पोषक तत्व होता है फॉस्फोरस जिंक या आयरन वो पौधे के द्वारा यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन उसकी फिर से कमी हो जाती है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो दूर रखा हुआ फॉस्फोरस है वो उसके पास आ नहीं सकता क्योंकि उसका लक्षण होता है कि वो अगतिशील है। तो इसके अंदर एक जैव उर्वरक आता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो माइकोराइजा एक फंगस या फफूंद का एसोसिएशन होता है, सहजीवी होता है हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ में। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ में सहसंबंध स्थापित करता है और ये अपना भोजन उस पौधे से ही लेता है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो हाइफी होती है या माइसिलियम होते हैं ये पौधे की जड़ों के अंदर छेद करके घुस जाते हैं और दूर तक फैल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो दूर तक फैलते हैं कितना फैल जाते हैं, जो मान लीजिए पौधे की जो जड़ है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उसको 8 से 10 सेंटीमीटर तक ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है और 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो भी अनुपलब्ध फॉस्फोरस था उसको ये लेकर के आती है पौधे की जड़ के अंदर दे देती है। तो इसका मुख्य कार्य है कि पौधे की जड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देना और दूर से अगतिशील पोषक तत्वों को मृदा और पौधे की जड़ के अंदर लेकर के आना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। यदि किसान भाई इसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम तक हम कटौती कर सकते हैं जो कि हम रासायनिक खाद के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक खादों के प्रयोग को हम कम कर सकते हैं इसके बायो फर्टिलाइजर के या जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से।
1: या आप फिर यूँ कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करते हैं अगतिशील पोषक तत्वों को मतलब गतिशील बनाने में और पौधों तक इसे अच्छे तरीके से पहुँचाने में।
0: हाँ, क्योंकि जो अगतिशील पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए बेकार पड़े होते हैं क्योंकि पौधे से वो दूर है, पौधे से दूर है, पौधे के जब तक जड़ के पास में नहीं आएगा तो पौधे के लिए तो बेकार है। तो माइक्रोवेव क्या करता है कि जो दूर पड़ा हुआ था अपनी हाइफी के द्वारा उसको पौधे की जड़ के अंदर डाल देता है और पौधे की जब रिक्वायरमेंट होती है उसको वो यूज करने लगता है।
1: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहब, और आगे कुछ बातें और भी जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि। हमारे आज चर्चा का विषय है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। और डॉक्टर साहब से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं जैव उर्वरक के बारे में यानी कि फर्टिलाइजर के बारे में, और अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कैसे ये इनका जो इम्पोर्टेंस है किसानों के लिए, किस तरीके से वो इन्हें अपने खेत में डालकर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सर अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनकी प्रयोग विधि है या फिर क्या होती है।
0: देखिए सबसे अहम पहलू होता है जैव उर्वरकों की मात्रा और उसकी प्रयोग विधि। किसान भाई यदि सही से इसका प्रयोग विधि जानते हैं तभी इसका अच्छी तरह से लाभ मिल पाता है खेत में। तो प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर एक पे आता है बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ द बीज होता है, यानी 20 से 25 ग्राम हम बायोफर्टिलाइजर लेते हैं और 1 kg बीज के लिए लेते हैं। जितना हम बायोफर्टिलाइजर या कल्चर लेते हैं उसका दुगनी मात्रा में पानी लेते हैं, और जितना पानी लेते हैं उसका 10% हम गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का जो गुड़ होता है जैगरी और या गुड़ ले लेते हैं। पानी के अंदर गुड़ को डाल लेते हैं और हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद केवल होता है कि गुड़ को अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए। जब ये गुड़ पानी में घुल जाता है तो उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में जो मैंने अभी मात्रा बताई थी जैव उर्वरक की या बायोफर्टिलाइजर की उसको डाल करके हम एक लकड़ी की सहायता से उसको घोल देते हैं और ये अब ये घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद में जो सारे काम जो कर रहे हैं हम ये छायादार स्थान होना चाहिए या कोई कमरा हो या पेड़ हो उसके नीचे सारा काम करते हैं, और एक फर्श पर पॉली शीट बिछा लेंगे, प्लास्टिक की शीट बिछा लेते हैं, और जो आपके बीज की मात्रा थी उस बीज को हम उस पर पॉलीथीन की शीट पर बिछा डाल देते हैं और ढेर लगा करके छोड़ देते हैं। फिर जो घोल आपने जैव उर्वरक का बनाया उसके ऊपर डाल करके उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं। हथेली से नहीं करेंगे, हथेली से करते हैं तो क्या होता है कि वो लेप उसका आ नहीं पाता है और लेप छूट जाता है। तो उंगलियों की सहायता से हम उस पर लेप लगाते हैं, और लेप लगाने के बाद में उस सॉल्यूशन का लेप लगाने के बाद में उस प्लास्टिक की शीट पर हम बीज को बिछा देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूखने में लगभग 45 से 1 घंटा लगता है, 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। यदि हवा चले जल्दी सूख जाता है, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो देर में सूखता है।

0: सुखाने के बाद जिस खेत में आपको इसको बोना होता है या छींटना होता है, लाइन में लगाना होता है, उस खेत में ले जाते हैं और इसको बुवाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। दूसरा विधि होती है मृदा उपचार। तो बायो फर्टिलाइजर के द्वारा या जैव उर्वरक के द्वारा हम मृदा का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए जो दर है उसकी 2 किलोग्राम पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, चाहे वो एजिटोवेक्टर हो या एजस्पाइलम हो या पीएसबी हो। तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेकर के उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको 5 किलोग्राम कल्चर को, और पूरी नाइट या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद या ओवरनाइट के बाद में सुबह जा करके जिस खेत में बिखेरना होता है उसमें हम इसको बिखेर देते हैं, और हल्का कल्टीवेटर या हैरो से इसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर। ध्यान रखते हैं कि जब हम ब्रॉडकास्ट करें बायो फर्टिलाइजर को खेत के अंदर तो धूप ना हो। तो हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो बखेरते हैं इसको सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, और बखेरने के तुरंत बाद इसको मिक्स करना होता है। तीसरी विधि आती है बिचड़ा उपचार या पौध उपचार। तो पौध उपचार के लिए इसकी जो दर है वो 2 kg पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसको मात्रा को लेकर के 100 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं और एक घोल बन जाता है। घोल बनाने के बाद जो बिछड़ा है वो बिछड़ा को उखाड़ेंगे और उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, और फिर 45 मिनट के बाद में जिस खेत में रोपाई करनी होती है उसमें हम इसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये 3 विधियाँ मैंने बताई हैं। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो इसका भरपूर और जो जितना हर संभव लाभ है वो मिल पाता है, और पौधों को अधिक से अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता हो जाती है।
1: तो सर, आपने बताया अभी जो जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, उनके प्रयोग विधि के बारे में आपने बताया, और अब हम जानना चाहेंगे आपसे और किसान भाइयों, और किसान भाई भी आपसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि हम किन किन फसलों के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो जैव उर्वरक का प्रयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह से किया जाता है, और हर एक फसल के लिए अलग अलग जैव उर्वरक होते हैं। जैसे कि बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए मुख्यतः हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, और ये रिकमेंड करा जाता है, संशोधित किया जाता है कि जब भी हम राइजोबियम का प्रयोग करें उसके साथ में फॉस्फोबैक्टीरियन या पीएसबी का प्रयोग करना चाहिए। तो दलहनी फसलों के लिए 2 जैव उर्वरक मैंने बताए, एक तो राइजोबियम है और दूसरा है पीएसबी। और एजोटोवेक्टर का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों या सब्जी वाली फसलें हों, धान्य फसलें हों, फूल वाली सब फसलें हों, फलों वाली सब फसलें हों। और इसके साथ में भी हम संशोधित किया जाता है कि पीएसबी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि पीएसबी का काम होता है पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराना। जब पौधों को फास्फोरस उपलब्ध ज़्यादा होती है तो पौधों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा होता है एजोस्पाइलम जैव उर्वरक। एजोस्पाइलम का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि धान्य फसलें, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों आदि, और जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं, चाहे वो मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, गोभी हो, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फल वाली फसलें और पुष्प वाली सब फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो पीएसबी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा हमने बताया था माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दाल वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फल वाली फसलें हैं, या फूलों वाली फसलें हैं, या फिर धान्य फसलें होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको किन किन फसलों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात और है जो कि होती है, क्या ध्यान रखें इनका जब हम प्रयोग करते हैं, तब ध्यान रखने योग्य बात है। तो हमेशा बोला जाता है कि नाइट्रोजन वाले बायो फर्टिलाइजर के साथ में पीएसबी या फास्फोरस वाले बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा होता है, कभी भी रासायनिक खादों के साथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइजोबियम भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया, डीएपी भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो डेथ हो जाती है उसकी और वो मर जाता है।
1: तो सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाइयों के लिए, और जितने भी बहनें हैं, किसान बहनें हैं मेरी, उन सभी के लिए सवाल है, और वो ये है कि ये जो जैव उर्वरक हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ, यानी कि इनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है।
0: देखिए, जैव उर्वरक आपको किसी भी जो रासायनिक खाद बेचता है या दवाई बेचता है उनकी दुकानों पर मिल जाते हैं, और यदि आपको हमारे

0: विश्वविद्यालय का लेना है तो हम लोगों के यहाँ पर भी, हम लोगों की जो प्रोडक्शन इकाई है, उत्पादन इकाई है, उसकी क्षमता 500 मेट्रिक टन है। 500 मेट्रिक टन आप जानते हैं कि बहुत होता है, तो साल भर जितना आपको चाहिए उतना उपलब्ध रहता है। तो हमारे यहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बायोलैब है जिसके अंदर जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है, और आपको ये राउंड द ईयर कभी भी आप आए, किसी भी टाइम आए, किसी भी प्रकार का जैव उर्वरक लेना हो तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा।
1: तो किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इसे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम उन्नत कृषि में आए और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए दी हैं, और आपसे आगे भी मुलाकात होगी, हमारे किसान भाइयों और बहनों से भी आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें, खास तौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल ऐसा सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और

वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं या फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था, अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने ज़माने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा शायद, इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएँ बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं, अब हमारा पहनावा ओढ़ावा हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर में जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज़ नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, नहाना चाहिए, आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियाँ, महिलाएँ, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है
है, इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है, तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए ज़रूर, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज़्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं हैं तो भी साफ़ सफाई ज़रूरी होती है ना।

इसलिए नहाइए, पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए। और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है। ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है। तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज़ करना वो रिस्की होता है, और ख़ास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ़ किए रीयूज़ करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन वो भी सेफ़ है, पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखा कर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ ना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे ख़ास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ ख़ास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है, पीरियड्स हैं, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा। लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज़ है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है। तो इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं। होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमज़ोर होती हैं। लेकिन अगर आप

0: सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमज़ोर नहीं होंगी, आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपके नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज़्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर, और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब हैं, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की ज़रूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी ज़रूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे ख़त्म कीजिए, और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है। थोड़े आराम की ज़रूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों,

0: बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्ष

कोषों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज एक बार फिर आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु आप सभी के पास लेकर आई है एक अलग विषय और एक अलग चर्चा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और अक्सर देखा गया है किसान भाइयों की पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों

0: अक्सर देखा गया है कि अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, पशुपालकों को नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है, और इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं पशुओं को भी और पशुपालकों को भी। और इसलिए आज टीकाकरण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बात करते हैं टीकाकरण की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, या फिर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है या फिर टीका क्या होता है।
1: देखिए, टीका वही चीज़ है जो जीव रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई जीवाणु है, विषाणु है, वो यदि पशु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम उसी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंतर्गत इनएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, या फिर उसको पूरी तरह से मार देते हैं, और उसके बाद जब पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो टीका पशु के अंतर्गत, पशु के शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, उसमें एंटीजेनिसिटी रहता है। रोग का जो लक्षण है पशु में नहीं आ पाता है, लेकिन रोग के खिलाफ उसके अंतर्गत एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। ये एंटीबॉडी जितने दिनों तक रहता है शरीर में, यदि उस दरमियान कोई उसी तरह का रोग का जीवाणु प्रवेश करे तो पशु को उससे बचाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर FMD का टीका लगाना है तो FMD का ही वायरस को ही इनएक्टिवेट करके उसके शरीर के अंतर्गत डाला जाता है। ये एक टीका हुआ। और टीकाकरण है कि हम किन किन बीमारी के लिए पशु को टीका लगाते हैं। हर एक बीमारी के लिए टीका अलग अलग होता है।
0: अच्छा, डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों यहाँ पर बताया कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीका होता है, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एंटीबॉडी, जब ये टीकाकरण कराया जाता है पशुओं का, तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है, यानी कि विकसित होता है, और वो जब हमारे जो पशु हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में, या फिर यूँ कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई टीका के बारे में, और आप सबों को मालूम चल गया होगा अब कि टीका क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करें, और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है।
1: देखिए, वर्तमान समय में किसान का जो पशु है जितना भी, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।
0: जी जी।
1: और ये देखा जाता है कि बस बहुत सारे पशु डेथ भी कर मृत हो जाते हैं। पशु की मृत्यु से किसान को तो सीधा नुकसान होता है। यदि पशु नहीं मरते हैं तो पशु के इलाज में किसान का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले टीकाकरण करा लें, कुछ लागत लगता है लेकिन हम पशु को बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग यदि एक पशु को हो जाए तो उस एरिया के कम 2 किलोमीटर तक सभी पशु में एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे पशु उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, और टीकाकरण के द्वारा पशु में किसी भी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। टीकाकरण कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का रोग जो है उससे हम पशु को सुरक्षित रखें।
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुओं को रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कराया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य है। तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालकों से ये आग्रह है कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके पशु अगर बीमार पड़ेंगे तो ही आप टीकाकरण करवाएंगे उनका। उनके बीमार होने से पहले उनका टीकाकरण ज़रूर कराएं, जैसे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं उनके जन्म के बाद ही। तो आप एक शेड्यूल बना लें, या फिर आप कहें कि एक समय तालिका बना लें, और उसमें ये चीज़ पशु जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि पशु चिकित्सक जो होते हैं, आप उनसे जाकर बार बार पूछ सकते हैं कि आपके पशु को किस तरीके का जो टीकाकरण है वो कराया जाए, और क्या क्या ज़रूरी है उनके लिए। तो बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की। और इसके बाद जब हम किसी भी चीज़ को कराते हैं, यहाँ पर बात हो रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसके महत्व को समझे, और तभी हम हमारे अंदर वो उत्सुकता आती है उस बारे में जानने की, और उस बारे में अगर जान जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हम टीकाकरण का महत्व क्या होता है।
1: टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा पशु तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं को उस रोग विशेष से

0: जाता है। विभिन्न जाति के पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके तथा टीका कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। पुनः टीकाकरण या बूस्टर का उद्देश्य शरीर में उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनाए रखना तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। प्रत्येक बीमारी का टीका अलग होता है तथा एक बीमारी का टीका केवल उसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गांव या क्षेत्र में अथवा समूह में रोग हो उसके चारों तरफ के स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित क्षेत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचाव के प्रति सीरम भी उपलब्ध है। इसमें प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारी के विषाणु अथवा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है। जैसे टेटनस के लिए उपलब्ध प्रति सीरम एंटी सीरम कहते हैं। और कुछ ऐसा जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जिसके खिलाफ टीका तो विकसित हुआ है, जैसे थैलेरियासिस, लेकिन एक हीमोप्रोटोजोअन डिजीज है ट्रिपनोसोमियासिस, इसके खिलाफ टीका विकसित करना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी फिक्स नहीं होता है। ये इसके शरीर पे जो एंटीजेनिसिटी है रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन वो बदलते रहते हैं, तो ऐसे रोग के खिलाफ टीका तो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इसके संक्रमण के से हमें अपने पशु को बचा सकते हैं कि कितनी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण और इसके उद्देश्य और महत्व को अगर बताया जाए तो एक ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाया जाता है। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पुनः टीकाकरण यानी कि उसके बाद जो एक लिमिटेशन रहता है उस टीकाकरण का, यानी कि समय समय पर आपको एक डेट दिया जाता है और उस डेट के बाद आपको पुनः टीकाकरण करवाना पड़ता है अपने पशुओं का। और उसका उद्देश्य और उसका महत्व भी यही है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं के अंदर उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया उद्देश्य और महत्व के बारे में टीकाकरण के। और पशुओं को स्वस्थ रखना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है आपके। आप जितना स्वस्थ रहेंगे आपका पशु भी उतना स्वस्थ रहेगा, आप उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप अगर जीवन यापिका करते हैं अपने पशुओं से आपको एक अच्छी आर्थिक सपोर्ट भी मिल सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब पशुओं को टीकाकरण करवाया जाए तो उससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम पशुओं को टीकाकरण करवाने जाएं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें।
0: देखिए, किसान बंधुओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि पशु को पहचानना कि वह बीमार है या स्वस्थ है। जब आप पशु पालन करते हैं तो पशु के व्यवहार लक्षण को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह बीमार पड़ गया, और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई पशु बीमार पड़ा आप उसको तुरंत झुंड से अलग कर दें, बाकी स्वस्थ पशु से बीमार पशु को अलग रखें, उसका खान पान उसका देख रेख बिल्कुल अलग कर दें। और जब ये पता चल जाए कि बीमारी फैल चुका है तो कभी भी बीमारी फैलने के बाद टीकाकरण को ना अपनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो एंटीजन उसके अंदर जा चुका है, और आप फिर से टीकाकरण करते हैं तो पशु और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही अपनाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि टीकाकरण करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है कि आप सुबह में करें, ठंडे समय में करें, शाम के समय करें, दिन में कड़ी दोपहर में कभी उसको ना करें, और जो पशु बीमार हो तो उसको तो बिल्कुल ना करें टीकाकरण। जो गर्भवती पशु हो उसको देखें कि जो टीका आप लगा रहे हैं उस टीके में उसके लिए कोई चेतावनी है क्या कि इसको प्रेग्नेंट को नहीं देना है। कुछ टीका है जो प्रेग्नेंट एनिमल गर्भवती गाय को भी दिया जा सकता है, लेकिन सारा टीका नहीं दिया जा सकता, और उसमें भी होता है कि गर्भधारण की अवधि क्या है, वह शुरू का अंतराल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारा टीका मना होता है, उस समय एबॉर्शन हो सकता है, इसलिए स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करें और देखें कि उम्र क्या है सही सही। बहुत सारा टीका 3 महीना के ही समय अवधि पर किया जा सकता है,
1: यानी कि अलग अलग टीकों का एक अलग अलग उम्र अवधि होता है।
0: हर टीका के लिए एक मिनिमम एज है कि इस एज में आप टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पशु का जो है टीकाकरण करने के बाद उसको रखना कहाँ है, उसको कैसे खिलाना है, उसको सपोज कि हम स्वस्थ पशु को खिलाते हैं, टीकाकरण कर दिए हैं, अब उसको दूसरे तरफ भ्रमण करने ना दें। जैसे सपोज हमारा गाय खुल गया और उस तरफ जा रहा है जिधर बीमारी फैला हुआ है, तो बहुत समय में होता है कि एंटीजन वेरिएबिलिटी होता है कि एक के खिलाफ तो आप टीका

0: लगा दिए हैं, एफएमडी में ही एक स्ट्रेन है उसके खिलाफ लगा दिए हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो है वो उधर रोग फैला हुआ है, उसका उसका टीका आप नहीं लगा पाए हैं। एफएमडी रोग यदि देखा जाए खुरा और मुंहपका, इसके कम से कम 4 और 5 वेरिएंट्स हैं, एशिया ए ओ करके आता है, तो एक के खिलाफ तो आप टीका लगाते हैं। कभी कभी टीकाकरण किया हुआ भी पशु में भी फिर से रोग उत्पन्न होने का सूचना मिली है, तो इसका कारण है कि जो एंटीजेनिसिटी वेरिएबिलिटी है थोड़ा सा अंतर हो जाने पे वो रोग हो सकता है। आप कभी भी पशु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण ना करने दें, और खासकर वैसे समय में जब आपको पता चला हो कि पड़ोस में यह बीमारी फैल चुकी है। ना ही इतना ही है, बल्कि वहाँ से कोई चारा, कोई खाना, कोई आहार पशु का ना खरीदें जिस क्षेत्र में पशु का रोग फैलने का सूचना आपको मिला हो। इसके बाद देखें कि टीका पर जो आप लगा रहे हैं, टीका में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, उस समय के अंतराल ही लगाएं, एक्सपायर्ड टीका कभी इस्तेमाल ना करें। और टीका जो भी आता है वो कोल्ड चेन में मेंटेन होता है, ठंडा में रखते हैं बिल्कुल कम टेम्परेचर पर, उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
1: यानी कि टीका खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके बनने की जो तिथि है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यों के लिए टीकाकरण हो, चाहे वो पशुओं के लिए हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया किसान भाइयों की पशुओं को टीका देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु गर्भवती ना हो, वो बीमार ना हो, स्वस्थ पशुओं को ही टीका करवाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि वातावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, ठंडे वातावरण में पशुओं का टीकाकरण होता है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि,

0: हो जाए, तो टीकाकरण कराने के बाद पशुओं को किस तरीके से रखा जाए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे।
1: बिल्कुल, आप ये तो इंश्योर कीजिए कि जहाँ पशु रखते हैं साफ सफाई पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि पशु का आप टीकाकरण तो कर दिए हैं लेकिन फिर भी दूसरी बीमारी भी हो सकती है उसमें,
0: यानी कि साफ सफाई बहुत
1: उसका
0: जरूरी है।
1: जो आवास प्रबंधन है, बिल्कुल आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, पशु को साफ सुथरा रखें, और उसको जो आप खाना देते हैं वो कभी भी दूषित ना हो, कभी भी गंदा ना हो, कभी भी जो परचेज करते हैं, जो खरीद करके लाते हैं, तो आप देखें कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसके गुणवत्ता सही हो, ऐसे खाना को दें, दूषित क्षेत्र से लाया गया खाना ना दें। चारा आप लाते हैं खेत से काट करके, वहाँ दूसरे पशु भी चरने चले जाते हैं, और बीमार पशु जाकर चारा खाया हो और वहीं से काट करके आप लाए हो, तो वो चारा फिर से मतलब हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु में उम्र के अनुसार उसका प्रबंधन करें, जैसे बड़े पशु को एक साथ रखें, छोटे पशु को एक साथ रखें। कभी कभी कुछ बीमारी सिर्फ छोटे पशु में ज़्यादा हो जाता है, तो आप बड़े पशु को बिल्कुल छोटे पशु से अलग रखें, बछड़ा है बछड़ा को एक साथ रखें, जो गाय है उसको एक साथ रखें, बाछी को एक साथ रखें, अलग अलग रखने से बहुत सारे रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पशु हैं, छोटे और बड़े पशु जो होते हैं उन्हें अलग अलग रखें, और इसके बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, स्वच्छता उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है, और स्वच्छता अगर रहेगी तो आपके पशु बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं टीकाकरण के बाद पशुओं के रखरखाव की, और अब कुछ रोगों के बारे में, क्योंकि रोगों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है, अगर रोग को जानेंगे तभी तो रोग रोधी टीकाकरण हम अपने पशुओं का करा पाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोगों के बारे में जो प्रायः गाय भैंसों में देखा जाता है, और अगर उसके अलावे भी कुछ और रोग हों तो आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे उनके बारे में तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही उनके रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा।
1: हम देखते हैं कुछ जो बहुत कॉमन बीमारी है, जो हो मतलब देखने को मिलता है, आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुरहा मुँहपका रोग, इसको खुरपका मुँहपका रोग से भी जानते हैं रोग के नाम से, यह विषाणु जनित रोग।
0: हाँ, ये किस जानवर में देखा जाता
1: है? ये गाय और भैंस में देखा जाता है, बकरी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम है,
0: गाय और
1: भैंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है गलघोटू बीमारी, हेमराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं इसको, यह गाय और भैंस में बहुत कॉमन है। इस बीमारी से गला में सूजन होता है और पशु यह बिल्कुल समय अंतराल आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी हुई और कब पशु मर गया। कम उम्र का पशु तो जल्दी मर जाता है, गला, इसलिए इसका नाम गला घोटू रखा गया है। यह जीवाणु जनित रोग है।
0: अच्छा,
1: ठीक है। इसके बाद आता है लंगड़ी बीमारी, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, यह भी जीवाणु जनित है, यह भी गाय भैंस में होता है, यह आगे पैर या पीछे पैर में ऐसे सड़न सा रोग हो जाता है, मतलब पशु का शरीर सड़ने लगता है। अच्छा। इसलिए इसका नाम लंगड़ी बीमारी है कि पैर बिल्कुल सड़ जाता है, पशु उस पे चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है।
0: ये किस पशु में ज्यादा पाया जाता है?
1: गाय और भैंस दोनों में यह देखने को मिलता है, और कम छोटा उम्र का आदि पशु है तो उसको यह बुरी तरह प्रभावित करता है, और बहुत ही संक्रामक बीमारी है, एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है। इसके बाद है एक बीमारी, उसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं, इससे इससे होता है कि पशु में एबॉर्शन होता है।
0: अच्छा।
1: यह जो समय से गर्भवती पशु जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, छट जाना कहते हैं, ऐसा हो जाता है तो पशु किसान को बिल्कुल नुकसान होता है।
0: इसमें
1: मृत्यु तो बहुत कम होती है लेकिन यह जो है एबॉर्शन कॉज करता है, पूरा का पूरा एक किसान को जो नई गाय मिलती बछड़ा मिलता वो मर जाता है बछड़ा, तो उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे सावधानी की बात है कि यह बीमारी रोगों जानवर से लोग में भी हो जाता है। यदि जानवर को यह बीमारी हुआ है ब्रुसेलोसिस और आप यदि उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा, और आदमी में इसको माल्टा फीवर कहते हैं।
0: यानी ये तो गंभीर बीमारी हो गई डॉक्टर साहब।
1: जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत ये बीमारी आता है। और ऐसे ही एक और रोग है एंथ्रेक्स डिजीज, एंथ्रेक्स भी जीवाणु के चलते होता है, और एंथ्रेक्स भी जानवर से आदमी में होता है, आदमी में भी यह बीमारी तेजी से फैलता है और आदमी को भी बहुत सारा स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि

0: खुरहा मुंह पका गलघोटू लंगड़ी ब्रुसोलिसिस एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी से समय एक नियमित समय पर टीकाकरण करके हम अपने पशु को अपने पशुपालकों को बिल्कुल बचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: और सर इनके लिए कुछ रोग विरोधी टीकाकरण होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक प्रत्येक रोग के लिए उसके लिए क्या जरूरी है वो बताते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, FMD के नाम से जाना जाता है। यह पशुओं में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है जो विषाणु द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 1 माह तथा दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर दिया जाता है। तत्पश्चात प्रतिवर्ष टीकाकरण करना चाहिए, परंतु अब ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर आप साल में 2 बार टीका कर लें टीकाकरण कराएं। टीके की मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति पशु, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे कहते हैं। मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर महीने में लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोटू हेमराजिक सेप्टिसीमिया। बरसात के मौसम में पाया जाने वाला यह प्रमुख रोग है जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। इससे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु के शुरुआत से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 6 माह की उम्र में और इसके बाद प्रतिवर्ष दिया जाता है। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर है और यह चमड़ी के नीचे दिया जाता है। मानसून के आगमन से पूर्व देना अच्छा होता है। और इसके बाद आता है एक लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी इसमें भी हम पॉलीवेलेंट टीका का प्रयोग करते हैं।
1: पॉलीवेलेंट,
0: हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएंट होता है, 3-4 तरह का जो जीवाणु है वो काउज करता है। आप एक ही वेरिएंट का टीका देंगे तो दूसरा वेरिएंट बीमारी कर देगा, इसलिए इसका वैक्सीन सबको मिला करके पॉलीवेलेंट टीका तैयार किया जाता है। यह भी गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में दिया जाता है और यह प्रथम टीका 6 माह की उम्र से दिया जाता है और प्रतिवर्ष इसको लगवाना चाहिए। इसमें मात्रा जो है 5 मिलीलीटर देते हैं। इसको मांस में भी हम लगाते हैं और अब स्किन के नीचे भी देने वाला टीका आया है। इसके बाद है एक बीमारी ब्रुसेलोसिस के लिए। यह पशु में तीसरे चरण में होने वाले गर्भपात को रोकता है। जो ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है, यह टीका सिर्फ गाय में लगाते हैं या भैंस में या फीमेल पशु में लगाते हैं, मादा पशु में लगाते हैं, ताकि उसी में तो गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है। मेल में होता है यह बीमारी तो उसमें मतलब एक तरह से बीमारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वह सोर्स होता है इन्फेक्शन का, दूसरे गाय में उससे फैलता है। इसलिए इसका मादा बछड़ों में इस रोग का प्रथम टीका 4 से 6 महीने की उम्र में 2 मिलीलीटर मांस में लगाया जाता है। इसके बाद एक बीमारी है एंथ्रेक्स। इस रोग में स्पोर का टीका दिया जाता है। एंथ्रेक्स का स्पोर टीका के रूप में यूज किया जाता है। पशुओं में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह टीका है। 1 मिलीलीटर टीका दिया जाता है।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जो बहुत सारे रोगों के नाम बताए और इसके साथ ही इन्होंने रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में टीकों के नाम भी बताए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब इन सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अगर हमारे किसान भाई या हमारे जो पशुपालक भाई हैं अगर वो सफल टीकाकरण करवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, सावधानियाँ ही मतलब आप एक तरह से टीका अपनाते हैं तो यह एक बचाव है और रोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है।
1: प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन इज प्रिकॉशन कहते हैं,
0: बचाव जो है उपचार से अच्छा है। अगर बीमार पड़ जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इलाज कराने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आर्थिक नुकसान होगा। आप कुछ पैसे लगाएं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता था उससे बच जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि अपने पशु का हर चीज़ कंट्रोल रखें, हर चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। पशु का खाना पीना, उठना बैठना, रहना, कहाँ से आप उसका आहार खरीद करके लाते हैं, कहाँ से चारा काट करके लाते हैं। पशु में आप नियमित रूप से एक पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें और इससे पहले कि बीमारी भयावह हो जाए आप पशु चिकित्सक से यदि संपर्क करते हैं और आप जांच करवाते हैं,

0: आप भी अपना हेल्थ चेकअप कराते होंगे, आजकल हम लोगों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि समय अंतराल पर अपना स्वास्थ्य
1: चेक करवाएं या फिर कुछ
0: जो भी ब्लड शुगर चेक कराएं, क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। तो जानवरों के लिए भी जरूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और इसी क्रम में हम एक और अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। थनेला रोग है, थनेला रोग पशुपालकों में के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक दुधारू पशु में यदि थनेला रोग हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक कदम उठाया है, और यहाँ हमारे एक वैज्ञानिक इस कार्य में जुड़े हैं कि थनेला रोग के प्रति भी हमारे यहाँ टीका डेवलप किया जाए। तो हमारा थनेला रोग के खिलाफ, जो कि आज तक इसका टीका डेवलप नहीं हो सका है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण यह रोग होता है, लेकिन अधिकांश यह किस जीवाणु के चलते होता है हमने उस जीवाणु को पहचाना है। हमारे यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किया गया है कि पहचान किया गया है कि कौन सा जीवाणु अधिक थनेला रोग जानवरों में उत्पन्न करता है, और उसके खिलाफ हम टीका बनाने की ओर अग्रसर हैं।
1: तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्राध्यापक हैं और जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए उनका पशु जो है एक आय का स्रोत होता है, और वही अगर डगमगा जाए, वही ख़राब हो जाए, तो हमारे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए रोगों का पहचान होना चाहिए, और उनके जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और टीकों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और उसके टीकों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी या फिर टीका डेवलप किया गया है। तो सावधानियों के बारे में बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आगे कुछ और बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा।
0: बिल्कुल, हम आपसे यह कहना चाहेंगे किसान बंधु कि यदि आप पशु पालते हैं तो पशु के व्यवहार को समझना सीखें। पशु को आप सुबह शाम खाना देने जाते हैं तो बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला देना है, दूध निकाल लेना है और बस उससे कोई मतलब नहीं रहा, बांध दिए रस्सी में बंधा हुआ है और दिन भर में एक बार पानी भी नहीं कोई पूछा, आप चले गए किसी काम से बाहर, ऐसा नहीं हो। आप पशु के साथ जुड़ें, उसके व्यवहार को समझें। बिल्कुल कभी नहीं प्यासी पशु आपसे पानी मांगेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे प्यास लगा है पानी दीजिए,
1: लेकिन मनुष्य के जैसे जुबान नहीं है,
0: जुबान नहीं है, वो वॉइसलेस क्रिएचर है, वो बेजुबान एक जीव है। आप उसकी आंख देख करके, उसका व्यवहार देख के समझ सकते हैं कि वह स्वस्थ है या बीमार पड़ गई, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है। आप यदि सुबह शाम उससे उसके पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो बिना बात किए भी बहुत कुछ आप उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पशु जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण दिखाए, खाना नहीं खाए, बैठा रहे, सर झुकाए, कान उसका नीचे झुका हुआ है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि ठीक हो जाएगा, आप तुरंत संपर्क करें पशु चिकित्सक से और उचित उपचार कराएं। और हमेशा आप देखते रहें अगल बगल के क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैला है,
1: इस बात का भी ध्यान रखना।
0: हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से हम देखते हैं ठंडे के दिन में खुरहा मुँहपका रोग बहुत फैलता है, ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में खुरपका मुँहपका रोग FMD के नाम से जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज। यह रोग ठंडी के दिन में फैलता है। और दूसरा है गलघोटू और लंगड़ी बीमारी, यह बरसात के सीजन में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर महीने में ये रोग ज़्यादा फैलता है। तो आप अपने पशु को इस समय में इस रोग से बचाएं, और प्रत्येक 3 से 4 महीने पर कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें, जो पेट के अंदर रहने वाले परजीवी से आपके पशु को बचा सकते हैं। लीवर में भी लीवर फ्लू या अंतः परजीवी होते हैं, उससे पशु को एक तरह से पाचन में शरीर के खाने पीने का नुकसान होता है कि आप खिलाएंगे बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है, उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण कराएं और कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, गाय खा रही है, लेकिन उसका शरीर
1: जो पोषक तत्व उनके शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है।
0: हाँ, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से कोई अंतः परजीवी है, पेट में जोंक हो गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसलिए आप डिवर्मिंग भी निश्चित समय अवधि पर जरूर करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक नवजात शिशु जन्म लेता है वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी

0: हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें पता चलता है उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उससे पता चलता है कि वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी या फिर कहीं उसके बॉडी पर कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसी मतलब चेकअप हम करते रहते हैं बच्चों की। तो उसी तरीके से आपको अपने पशुओं को की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके पशु भी बेजुबान हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आप उनके पास कुछ टाइम बिताइए, तो आपको, अगर आप नए पशुपालक हैं तो आप उनके पास कुछ टाइम बिताएं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि किस दिक्कत के लिए वो किस तरीके का इशारा कर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, आपने बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों, हमारे पशुपालक भाइयों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, और अब अगले विषय के साथ, अगले चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों, समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए, जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं। और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं, और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देखरेख, उस पैसे की देखरेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये

0: वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
1: First.

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फास्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर से सस्य फसलों के लिए, और बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
2: उमा, अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है। और हमारी जो बिहार की किसान है उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे

0: पोषक तत्व हैं, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में जरूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फास्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फास्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें, और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
1: तो मैम फास्फोरस क्या है अब ये बताइए।
0: जी, फास्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं की अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें, तो उसमें ऐसे नाम है, अगर आप सुने होंगे एटीपी, एडीपी, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी कोशिकाओं के लिए फास्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए। तो फास्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसमें फास्फोरस जरूरी होती है, जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन, और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
1: तो मैम सस्य फसलों में अगर हम फास्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है?
0: जी, हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों जरूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है, जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फास्फोरस बहुत इम्पोर्टेंट या जरूरी होती है, यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में, उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फास्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फास्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
1: मैम जब फास्फोरस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
0: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है, और जलोढ़ मिट्टी गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फॉस्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना

0: देता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फॉस्फरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 टू 13.6 मिलीग्राम पर केजी फॉस्फरस होता है, जो मध्यम वर्गीय होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फॉस्फरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फॉस्फरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में, वो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 या 30% तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फॉस्फरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं, देन इसका सिर्फ 15 से 20% यानी 15 से 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फॉस्फरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फॉस्फरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल, अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फॉस्फरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 से 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
1: तो मैम, ऐसे में फॉस्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फॉस्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फॉस्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फॉस्फोरस पे वो तो हमारा ज्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में, जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उस के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉयल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फॉस्फरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फॉस्फरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फॉस्फरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ, यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूर, जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए, उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी, चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, साइट स्पेसिफिक पिक क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में

0: जितना फास्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो। तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी, यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे ये 20-30% फास्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
1: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
0: जी जरूर। फास्फोरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फास्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
1: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू वेरी मच उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में

27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है, इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, तारानी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओ, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओ, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है,

बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओ आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे 2 मिनट बात तो कर ले। श्रोताओ ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओ एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है, और क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या, तो श्रोताओं वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें, तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है, फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओ अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है। यही तो बात है श्रोताओ, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है, नहीं ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह जी उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल, आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी। और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप

0: हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
3: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
6: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
6: जी जी चलो चलो देखते हैं।
3: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
7: अहोम के महाराज की जय हो।
8: जय हो, जय हो।
7: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
9: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: हाँ, अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में यह संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त

0: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
2: ओह।
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
2: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
2: ओह।
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
2: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
2: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
3: जी।
2: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
2: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
2: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।

देखो कितने अच्छे हैं, देखो कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन सबको देख के। अरे यहाँ तो भवरा भी है। अरे तू

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को।
2: हाँ।

0: पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
1: कमजोर भी हो गई है।
0: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
1: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो। कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
0: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
1: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया।
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया। हाँ। देखोगी? एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, आई पसंद। और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मगर मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी, देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज।
4: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
4: मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,

0: बात है, क्या हुआ खुशी?
1: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया, तोते कितने सुंदर हैं।
0: अरे सुन तो,
1: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
0: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बात देखी तुमने?
0: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
0: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
3: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे

0: किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा, थैंक यू, नमस्कार सभी को।
0: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
1: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
0: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
1: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते, हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली, एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं। आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो पदभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें। जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना। DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं, हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपके बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए। उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरण दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, मैंने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होता है हैंड से, हैंड हैरो, यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि हाँ के

किसान, तो स्पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है, तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं। पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं, यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर। तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया, पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपके सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए, क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं, उसे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने। और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले, फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम 1 kg प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया, बुआई करने के आधे घंटे पहले मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई, उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बार लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें, DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे। जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी
फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम SSP डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम, पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 kg प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम MOP यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 100 से मतलब 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो

0: फर्टिलाइजर्स आते हैं तो आपको वैसे डालना है, तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस SSP और MOP दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है यानी जब उसकी फलियाँ आती हैं तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर DSR में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने मैंने बताया जैसे ड्राई DSR होती है, वेट DSR होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर DSR के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप DSR आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये DSR की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं DSR का वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन DSR में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसकी वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है DSR में वो होती है कि वीडिंग, आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को मतलब वीड्स को खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं DSR के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो DSR में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके DSR के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम DSR पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
0: अभी हम जो धान की बुआई DSR के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका PHB 71 हो गया, पूसा RH 10 हो गया, ठीक है, और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे अपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
1: जी मैम। तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए। बिल्कुल एक

0: है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुवाई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुवाई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 390।

बासी, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों।

जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्ज की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक, उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं,

0: उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
1: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग 6 इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
0: और तुमने वीडियो देखा?
1: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
2: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
1: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है, पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
0: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है, उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100 सवा 100 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
1: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
0: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
2: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
1: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
0: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
1: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
0: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
2: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्च

0: खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है: वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
1: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
0: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
2: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
0: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
2: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
0: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
2: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
1: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
0: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।

0: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
1: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
1: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
1: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
0: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
0: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही

0: निर्णय तक पहुंचता है।
1: शुक्रिया टीकन भाभी आपका और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
1: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यूविन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर

दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ഭാരത് കൃഷി. नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को आरजे अनु का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि. और आज बातें करने वाले हैं हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में. और आप सभी को पता है किसान भाई, आप सभी चाहते हैं कि आपके संपूर्ण क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली पैदावार हो. तो किसान भाइयों, देखा गया है कि आप सभी के पास एक अच्छा प्रबंधन नहीं उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार उपलब्ध नहीं हो पाती है. तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और आज इनसे हम बातें करेंगे इसी प्रबंधन के बारे में, यानी कि हमारा जो आज का जो विषय है, चर्चा का विषय है, वो है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन. तो सबसे पहले तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM है क्या?
1: सबसे पहले बिहार के किसान भाइयों को नमस्कार. जैसा कि आज का जो टॉपिक है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपका प्रश्न है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है. तो जो पोषक तत्व तो हम दो या दो से अधिक सोर्स से देते हैं, तो वहाँ पर हम उसको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर लेते हैं. जैसे हम पोषक तत्व तो जो है उसकी पूर्ति के लिए, फसल में पूर्ति के लिए हम नीम के खली का प्रयोग करते हैं, भूरी खाद का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, केक्स का प्रयोग करते हैं और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं. तो हम किसी दो सोर्स, जो हमारी सोर्स हैं, जो उसके दो से अधिक को हम जब एक साथ मिला करके प्रयोग करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी जो उपयोग क्षमता है, वो बढ़ जाती है. साथ ही साथ जो मृदा का जो भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल अवस्था है, वो बेटर होता है. अल्टीमेटली जो क्या होता है, जो मृदा स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव कर जाती है. तो दो से अधिक सोर्स को हम एक साथ जब मिला कर देते हैं, तो उसको हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कह सकते हैं. तो इस प्रकार हम इसमें हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करेंगे.
0: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जब दो पोषक तत्वों को मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है.
1: सोर्स जो है,
0: हाँ, सोर्स उन्हें मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, जिससे कि फसलों को और भी ज्यादा पोषण मिलता है. तो सर, अब ये बात हो गई कि पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, और इसके बाद हम जानना चाहेंगे आपसे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्यों किया जाए.
1: जैसा कि आज की जो हमारी मृदा स्वास्थ्य है, वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है. अगर हम बात करें 1950 की, तो हमारे जो स्वास्थ्य मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा थी, वो 1.2% थी. लेकिन करंट में क्या है, जो है ये मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो घट करके 0.3% या उससे कम रह गई है. इसका वजह क्या है कि हम दिन पर दिन उच्च उत्पादन वाली फसलों को लेते गए, लेकिन हम उसमें जो खाद का प्रयोग है उसको कम करते गए, अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग करते गए. तो जरूरी है कि हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्बनिक स्रोत वाले खाद हैं, जैसे हमारा हरी खाद है, भूरी खाद है, नीलहरी शैवाल है, अजोला है, फसल अवशेष है, केक्स है, जो खलियां हैं, इनका भी प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जो मृदा की जो सस्टेनेबिलिटी है, मृदा की जो लंबी अवधि तक उत्पादन करने की क्षमता है, वो बनी रहे और मृदा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे.
0: सर, आपने यहाँ पर अभी हरी खाद के बारे में कहा, तो हम जानना चाहेंगे कि हरी खाद किस तरीके से किसानों की मदद कर सकता है इस प्रबंधन में, या फिर इसका जो महत्व है वो किस तरीके से यहाँ किसानों को.
1: जी हाँ, जो हरी खाद

है, हरी खाद देखा जाए तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व को प्रदान करने का एक सोर्स है, और हरी खाद के द्वारा हम सबसे कम खर्च में एक अच्छा पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हरी खाद में हमें जो हरी खाद की फसलें हैं, जैसे आपका ढैंचा है, सनई है, मूंग है, और भी जो हमारी दलहनी फसलें हैं, उनको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के लिए हमें करना क्या होता है कि फसल की बुआई से 2 महीना पहले, जो हमारा मुख्य फसल है, धान की हम बुआई करने जा रहे हैं या रोपाई करने जा रहे हैं, तो उससे कम से कम 2 महीना पहले हमें हरी खाद को जो है खेत में बुआई करना होता है। इसके लिए जैसे हम बात करते हैं ढैंचा की, क्योंकि ढैंचा जो है एक बहुत ऐसी फसल है जो दलहनी होते हुए जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन, जो जलमग्न कंडीशन है, फ्लडिंग कंडीशन है, वहाँ पर भी ढैंचा आसानी से हरी खाद के रूप में हो जाता है। और जो है जो इसको हम करीब 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, और सिंपल जो है जुताई करके बरसात का जो फर्स्ट बार पानी मिलता है या हमारे पास सिंचाई की सुविधा है, तो हम 15 मई के आसपास ही हम जो है इसकी खेतों में बुआई करते हैं। या हमारा जो गेहूं की कटाई हो जाती है, गेहूं की कटाई समाप्त हो जाए, खेत हमारा खाली होता है, तुरंत हम हल्का सिंचाई करके, या अगर बरसात हो जाती है किसी कारणवश, तो हम तुरंत उसी नमी पर ढैंचा की बुआई करते हैं। और हमें ध्यान देना होता है कि जब ढैंचा में जो है फूल आने की स्थिति होती है, या 50 से 55 दिन का जब हो जाता है, एक अच्छी बढ़वार हो जाती है 5 से 6 फीट की, उसी समय हम मिट्टी पलटने वाले हल से, चाहे वो ट्रैक्टर ड्रॉन हो या बुलक ड्रॉन हो, मिट्टी पलटने वाले हल से हम इसको जमीन में मिला देते हैं अच्छी तरह से। तो धीरे धीरे जो है 15 से 20 दिनों में ये ढैंचा जो है जमीन में धीरे धीरे गल सड़ जाता है, और अच्छी तरह सड़ने के बाद, अर्थात पलटने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही हमें धान की रोपाई करनी होती है। क्योंकि अगर हम ढैंचा को जमीन में अच्छे से मिला देते हैं और तुरंत अगर धान की बुआई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ढैंचा हम पलट दिए होते हैं, तो वो जमीन से जो है थोड़ा सा 15 दिन तक माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए वो जमीन से नाइट्रोजन लेता है, तो फसल का बढ़वार रुक जाता है और कभी कभी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हम इसको लगभग जब ढैंचा हमारा 45 से 50 दिन का होता है, उस समय हम इसको जमीन में मिला देते हैं, और जमीन में मिलाने के बाद इसके 2-3 बार जुताई कर लेते हैं, जिससे अच्छी तरह से उसमें वो सड़ गल जाए। और जमीन में मिलाने के कम 15 से 18 दिन बाद ही, या यो कहिए 15 से 20 दिन बाद ही, हमको मुख्य फसल धान की रोपाई करनी होती है। और देखा जाए तो जो ढैंचा है, ढैंचा 2 प्रकार का है, इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं सिस्पनिया रोस्टाटा और सिस्पनिया एक्युलेटा। जो सिस्पनिया रोस्टाटा है ढैंचा है, ये जो है न्यूडूल, जो इसकी जड़ें होती हैं, इस जड़ों में आप देखेंगे गुलाबी रंग का गांठ बनता है, और उस गुलाबी रंग के गांठ में जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है आवास करता है, और वहीं राइजोबियम जो है गांठों में रहते हुए जब राइजोबियम मरता है, तो जमीन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जमीन में देता चला जाता है। जो वातावरण में हमारे 78% नाइट्रोजन है, उसको जमीन में ला देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जनरली जो है ढैंचा बोने के लगभग 25 से 28 दिन बाद उसकी जड़ों में ये रजुबियों वाले पिंक कलर की जो है गुलाबी रंग की गांठें बनना शुरू होती हैं, तो 28 दिन के बाद ही वो गांठें बनना शुरू होती हैं, तो 28 से कम 50 दिन तक वो गांठें बनती जाती हैं, संख्या उनका बढ़ता जाता है, और इस तरह से लगभग 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है फिक्स कर लेता है। जबकि हमको धान में जनरली 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात अगर सुगंधित धान है तो केवल हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देते हैं, और अगर हमारा हाइब्रिड धान है तो 120 किलोग्राम देते हैं। तो देखा जाए तो सुगंधित धान की उत्पादन हम केवल ढैंचा की ग्रीन मैन्योरिंग करके, हरी खाद के प्रयोग करके ही हम सुगंधित धान का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको हाइब्रिड धान लेना है या हाई यील्डिंग धान लगाना है, तो हमें लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है अलग प्रकार के सोर्स देना होता है, जो उसको हम फर्टिलाइजर के माध्यम से भी दे सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जब हम ढैंचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो 80 किलोग्राम तक तो नाइट्रोजन देता ही है, लेकिन साथ में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, पोटास तथा जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे है जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इन सभी को भी वो जमीन में दे देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जमीन में जो हमारे फसल उत्पादन के लिए माइक्रो और माइक्रो पोषक तत्व चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, और भी जो पोषक तत्व चाहिए, जो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लगभग उनका एक बेल बैलेंस कॉम्बिनेशन में ये पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे जो है हमारे जो मिट्टी की जो भौतिक अवस्था है वो तो सुधर ही रही है, केमिकल अवस्था जो है, रासायनिक अवस्था सुधर रही है, साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल, जो हमारे मृदा में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है।
और इस प्रकार देखा जाए तो दो तीन साल अगर हम ढांचे का प्रयोग खेत में करते हैं तो जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुधर जाता है और हम

0: जो है अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से हम उत्पादनता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो सर ने अभी बताया हमें कि हरी खाद का इस्तेमाल, साथ ही इसके महत्व के बारे में भी बताया, लेकिन एक बात सर मैं आपको बताऊं कि अगर जो किसान है, आपसे पूछना भी चाहूंगी और हमारे किसान भी आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद क्या इस महंगाई के इस दौर में क्या हरी खाद उनके लिए अच्छा सोर्स माना जाएगा अगर महंगाई के नजरिए से देखा जाए तो?
0: ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज देखिए जो हमारा भारत सरकार है वो जनरली 75% सब्सिडी पर आप किसान भाइयों को फर्टिलाइजर देती है, अर्थात जितना हमारे देश में 20 से 22 मिलियन टन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है उस सभी फर्टिलाइजर पर 75% तक सब्सिडी देती है। तो अब आप देखिए गवर्नमेंट पर ओवरऑल कितना ज़्यादा बर्डन पड़ता है। पहले हम जो आज से 1950 से पहले खेती करते थे, हर साल जो है किसान भाई लोग हरी खाद का प्रयोग करते थे खेतों में, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन 4 गुना से 5 गुना बढ़ चुकी है तो हरी खाद के लिए अब किसान भाइयों के पास समय नहीं मिल पाता है, वो लगातार इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं जिससे वो धीरे धीरे हरी खाद को भूल गए हैं। लेकिन हमारी स्वास्थ्य सॉइल मृदा का जो स्वास्थ्य है वो इतना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इतना खराब हो चुका है कि आज हरी खाद की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो लगभग लगभग जो फसल उत्पादन में 3/4 फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ती है वो हरी खाद से पूरी होती है। और हरी खाद से हम बताएं सबसे सस्ता जो है स्रोत है, हरी खाद जो है पोषक तत्व प्रदान करने का सबसे सस्ता स्रोत है। आपको करना क्या, आप देखिए एक हेक्टेयर के लिए आपको करीब 30 से 35 किलोग्राम ढांचा लगाना पड़ता है। अब ढांचा लगाने के बाद उसको 50 दिन पर सीधे जमीन में इनकॉर्पोरेट करना है, तो अब 50 किलो ढांचे का कीमत जो है आपका 1500 रुपया से ऊपर नहीं हो पाता है, अर्थात देखा जाए तो केवल एक बोरी DAP के बराबर हमारा खर्च हो रहा है और उससे हमको करीब 10 बोरी DAP के बराबर का लाभ मिल रहा है। तो हम क्यों ना उस लाभ को लेना चाहें। हमें सच कहिए तो जो हमारा ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री से फर्टिलाइजर मिलता है उसके प्रयोग को हम जीरो कर सकते हैं। अच्छा। अगर लगातार हम ढांचे का प्रयोग करें, क्रॉप रेसिड्यू का प्रयोग करें, जो फसल अवशेष है उसका प्रयोग करें, भूरी खाद का प्रयोग करें, अजोला का प्रयोग करें, नील हरी शैवाल का प्रयोग करें, और जो हमारी केक्स हैं जो उसको हम केक्स विभिन्न प्रकार के हैं इन सब का प्रयोग करें, मतलब जो पोषक तत्व के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न स्रोत हैं, इन सभी का एक साथ समन्वित प्रयोग करें तो हो सकता है हम जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उसके प्रयोग को हमें जरूरत ही न पड़े, तो हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपनी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो है एक स्वस्थ फसल के उत्पादन की कामना कर सकते हैं। और आज उसी की जरूरत है क्योंकि आज आप देखिए कि सब जगह जो है जो हमारा प्रोड्यूस मिल रहा है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर द्वारा प्रोड्यूस है जिससे हमको विभिन्न प्रकार के बीमारियां और रोगों का सामना करना पड़ रहा है। आज पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा वो लोग उपयोग करते हैं जिससे वहाँ देखिए जो ग्राउंड वाटर, आपको बता दें कि जितना हम नाइट्रोजन डालते हैं उसका केवल 30 से 35% भाग ही पौधा उपयोग कर पाता है, बाकी 60 से 65% भाग जो है विभिन्न प्रकार से नष्ट हो जाता है। 15 से 17% जो है ऊर्ध्वाकरण द्वारा वो ऊपर उड़ करके नष्ट हो जाता है, 25 से 30% लीचिंग ग्लासेस द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है, भूमिगत जल में चला जाता है और उसी भूमिगत जल को हम पीते हैं। तो आजकल पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, जो हमारा भूमिगत जल है वहाँ पर नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो वहाँ आप देखेंगे कि बच्चों में जो है नीला पीला होना, उनका कलर जो है नीला होता है जब जन्म लेते हैं, बहुत से बच्चे नीले कलर के जन्म लिए होते हैं, इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और ये जो है नाइट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो आज की तो सख्त जरूरत है कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें और अपने बजट को भी सुरक्षित रखें। इस प्रकार हरी खाद का उपयोगिता ओवरऑल देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है और हम कम खर्च में कम बजट में हरी खाद को अच्छे से अपना करके अपने मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं तथा पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्रति हेक्टेयर 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च होता है फर्टिलाइजर में, उसमें हम 3/4 भाग तक कटौती कर सकते हैं, अर्थात करीब 8 से 10 हज़ार रुपया हम बचा सकते हैं सिर्फ फर्टिलाइजर के द्वारा जो हम राइस में देते हैं, धान में देते हैं। अगर हम हरी खाद देते हैं तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया हम अलग से बचा लेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब ने अभी हम बताया कि जो हरी खाद है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है हमारे किसान भाइयों के लिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि 50 हेक्टेयर ज़मीन के लिए 1500 रुपये लगभग खर्च होते हैं, और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के जो हानिकारक जो तरीके हैं क्रियाओं के बारे में सर ने बताया, और बच्चों में जैसे कि बीमारियाँ फैल रही है, और युवाओं में और जो बुज़ुर्ग लोग हैं सभी में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर साहब ने। और

0: अब हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जब किया जाए तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सर, तो ऐसे कुछ बातों के बारे में बताएंगे आप जिसका ध्यान खासतौर पर हमारे किसान भाई और बहन रखें।
1: देखिए, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हम किस फसल के लिए समेकित पोषक तत्व देने जा रहे हैं। जैसे आज जो हमारा टॉपिक है वो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जो है धान में करना है, तो धान के लिए जो हमारा पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, अगर हम हाइब्रिड या हाई यील्डिंग वैरायटी लगाते हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश देने की जरूरत पड़ती है। तो अब हमें 120 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसको हम बेस मान लेते हैं, उसको हम विभिन्न प्रकार के स्रोत हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमको सबसे चीपेस्ट सोर्स हरी खाद है, तो अब हम हरी खाद देते हैं तो जनरली अगर एक अच्छी फसल है हरी खाद की तो 80 किलोग्राम तक जो है ढैंचा या सनई के द्वारा हम अगर हरी खाद दे रहे हैं तो 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ढैंचा में एक प्रजाति और है जैसे सिस्बनिया रोस्टाटा कहते हैं साइंटिफिकली, जिसमें जड़ में भी गांठ बनती है और तना में भी गांठ बनता है, दोनों में राइजोबियम रहता है। तो सिस्बनिया रोस्टाटा जो ढैंचे की प्रजाति है इससे करीब 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स रहता है। तो आप देखिए, अगर हम सिस्बनिया रोस्टाटा को ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमारा 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। उसी रेशियो में 0.2% उसमें फास्फोरस भी होता है और 0.4% तक जो है पोटाश भी होता है। तो देखा जाए तो धान के लिए जितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश चाहिए सिस्बनिया रोस्टाटा के केवल ग्रीन मैन्योरिंग से ही अकेले जो है ढैंचा की सिस्बनिया रोस्टाटा की जो ढैंचा वाली प्रजाति है केवल इससे हमारा अकेले जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, हमें अलग से फर्टिलाइजर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम सिस्बनिया एक्विलेटा प्रयोग करते हैं जो केवल जड़ों में गांठें बनती हैं तो केवल उससे 80 किलोग्राम तक मिलता है नाइट्रोजन, तो बाकी हमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है 40 किलोग्राम वो अलग से देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको ध्यान ही देना होगा मुख्य रूप से कि हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट डाल रहे हैं। जैसे हरी खाद डाल रहे हैं तो हरी खाद से हमारा कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश या सूक्ष्म पोषक तत्व ये सब जमीन को मिल रहा है। फिर उसके बाद फसल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके आधार पर हम दूसरी खाद, चाहे फसल अवशेष है चाहे सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, उसके माध्यम से बाकी फुलफिल करेंगे। वैसे अमूमन देखा जाए तो जो हमारा अब तक का रिकमेंडेशन है, जनरली अगर हमारे पास हरी खाद और या ऑर्गेनिक खादों की कमी है तो हम क्या करते हैं, 3/4 मतलब 75% भाग जो है हम फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं और 25% भाग जो है पोषक तत्व का वो है वो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक स्रोत हैं, जो कार्बनिक स्रोत हैं फर्टिलाइजर के खाद के, उससे देते हैं, चाहे हरी खाद के रूप में दे दें या भूरी खाद के रूप में दे दें, चाहे नीलरी सरवाल से दे दें या अजोला से दे देते हैं या फसल अवशेष से दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हरी खाद और ये सब विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक खाद हैं इनकी उपलब्धता है तो हम कोशिश करेंगे कि जो है अधिक से अधिक मात्रा इनसे दिया जाए, बचा हुआ मात्रा जो है वो फर्टिलाइजर के माध्यम से दिया जाए, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उससे दिया जाए।
0: तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया कि अगर आप नाइट्रोजन पोटास या जो भी सूक्ष्म जीव पोषक तत्व हैं आप अपने मिट्टी को या खेत में जो मृदा है आपकी आप उसमें डाल रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो मिट्टी कितने परसेंट में या फिर कितने प्रतिशत वो उसे कंज्यूम कर रही है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर हरी खाद है तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर नहीं है तो इसके अल्टरनेटिव जो तरीके हैं उनके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया आपको। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं और आपको बता दूँ किसान भाइयों की हाल ही में एक अनुसंधान में पाया गया है कि समेकित पोषक तत्व जैसे कि गोबर की खाद या हरी खाद या फसल अवशेषों के भूसे द्वारा कुल पोषक तत्वों के 50 से 75% आपूर्ति में फसल प्रणाली की उपज में वृद्धि हुई है और इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए आप इस पोषक तत्व प्रबंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन INM का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप अपना सकते हैं। आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM के बारे में। और डॉक्टर साहब, आपने हरी खाद के बारे में बहुत सारी बातें बताई और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद के अलावे क्या कुछ ऐसे कार्बनिक खाद हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
1: जी हाँ, जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया, हरी खाद जो है एक सबसे सस्ता स्रोत है, सोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट है आजकल बहुत आसानी से मिल जा रहा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे पास

विभिन्न फसलों के अवशेष हैं उनको भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। और जो हमारे पास खलियां हैं, जैसे कि पहले हम लोग के पास नीम की खली हुआ करती थी, महुआ की खली हुआ करती थी, मूंगफली की खली हुआ करती थी, इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया गोबर की सड़ी हुई खाद, चूंकि हम बात कर रहे हैं गोबर की सड़ी हुई खाद की, किसान भाई लोग अक्सर क्या करते हैं गोबर की कच्ची खाद डाल देते हैं खेत में, तो उसे क्या होता है कच्ची खाद में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे दीमक और कटवर्म का प्रकोप बढ़ जाता है। तो कृपया आप लोग से अनुरोध होगा हमारा कि आप गोबर की खाद जो भी है 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल जो भी आपके पास उपलब्ध है, वैसे तो अमूमन जो है कम से कम 10 से 15 टन डालना चाहिए, लेकिन आपके पास उतना उपलब्ध नहीं है, आप 10 क्विंटल भी अगर खेत में डालते हैं तो बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। उसका कलर जब भूरे रंग का हो जाए सड़े हुए गोबर का, उसको पका दे गड्ढे में, जो है अच्छे से डिकम्पोज करिए, अच्छे से सड़ाइए और सड़े हुए गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। देखा गया है कि गोबर के खाद में लगभग 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस और 0.5% पोटास होता है। तो आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि हम इतना क्विंटल अगर दे रहे हैं तो कितना के जी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास हमारे ज़मीन को मिल रहा है। बाकी मात्रा आप जो है बर्मी कंपोस्ट से भी दे सकते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट भी क्या है, जनरली जो हमारा कछुआ है अर्थवर्म है, अर्थवर्म को हम अधसड़े गोबर पर रिएक्ट करा करके उसे हम बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह दानेदार जो है मटेरियल, वो कछुआ चूँकि इसको खाता है और खाने के बाद कास्टिंग करता है, तो जो चाय की पत्ती जैसा गंधहीन जो है दानेदार बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और बर्मी कंपोस्ट में जनरली 2% तक नाइट्रोजन, 1 से 1.5% तक फास्फोरस और इस तरह से लगभग 1.5% तक पोटास भी होता है। देखा जाए तो बर्मी कंपोस्ट FYM मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा जो है पोषक तत्व रखता है। साथ ही साथ बर्मी कंपोस्ट में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स भी होते हैं जो कि फसल की ग्रोथ और विकास के लिए बहुत सहायक होते हैं। लेकिन बर्मी कंपोस्ट चूँकि महंगा पड़ जाता है, मार्केट में 6 से 7 रुपये किलो है, तो इसका प्रयोग आप बाजार से खरीदने जाते हैं तो महंगा पड़ता है। आप अपने घर पे ही बर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं और तैयार करके अपने खेतों में डाल सकते हैं, धान है या विभिन्न प्रकार की जो महंगी सब्जियां हैं उनमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फसल अवशेष है, हम जनरली देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे फसलें हैं, चाहे रबी की फसलें मक्का हो या गेहूँ हो, इसको हम लोग आग लगा करके जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि एक साइड में जो है हमारे पास जो है जो मृदा की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और पोषक तत्व जो क्रॉप रेसिड्यू में जो अवशेष में पोषक तत्व होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण का बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण होता है और जो कि हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बेहतर होगा कि जो रेसिड्यू है, जो फसल के अवशेष हैं, उसको हमें सब समय ज़मीन में ही इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए और उसको जो है ज़मीन में जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ज़मीन में जोताई करके मिला देते हैं तो धीरे धीरे सड़ गल जाता है और फसलों को एक अच्छी प्रकार का पोषक तत्व देता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जनरली 3/4 भाग जो है 75 से 80% भाग जो है जो पोषक तत्व जमीन से पौधा लेता है उसका 75 से 80% भाग जो है जब हम उसके डंठल को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जमीन में मिला देते हैं, तो 75 से 80% भाग वापस जमीन को मिल जाता है। अर्थात जो आपका पोषक तत्व जमीन से लिया गया है उसका 75 से 80% तक जो है वापस जमीन में मिल जाता है अगर हम उसके रेसिड्यू को जलाने के बजाय हम उसको जमीन में मिला देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप रेसिड्यू का भी जो फसल अवशेष है उसका पूरा का प्रयोग करें, उसको जलाएं नहीं, उसको ज़मीन में ही इनकॉर्पोरेट करें तो उससे भी कुछ पोषक तत्व जो है आपको रिवर्स वापस मिल जाते हैं और भूमि का जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन रहती है। जो विभिन्न प्रकार के माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो बने रहते हैं जिसे हम सॉइल फ्लोरा और फौना कहते हैं, वो भी जो है ज़मीन में अच्छे कंडीशन में मेंटेन रहते हैं। तो इससे किसान भाइयों आपके जो मृदा का स्वास्थ्य दिन पर दिन ईयर आफ्टर ईयर जो है मेंटेन होता जाएगा और आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए जो हमारे समेकित पोषक तत्व प्रबंधन है इसमें हमें फोकस करना है आज के डेट में कि हम अधिक से अधिक जो है ऑर्गेनिक स्रोत के ऑर्गेनिक जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग करें, जैसे हरी खाद है, भूरी खाद है, नीलहरी सवाल है, सड़ी हुई गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट है और जो कुछ खलियां इत्यादि हैं उनका भी प्रयोग करें। एक हमने बात कहा भूरी खाद, भूरी खाद हम धान जो धान की रोपित धान है उसमें नहीं कर सकते, केवल जो धान की हम सीधी बुआई करते हैं उसी समय हम ढैंचा 30 किलो ले लेते हैं और 30 kg जो है धान ले लेते हैं और सीड ड्रिल
के द्वारा तैयार खेत में हम सीधे बुआई कर देते हैं, तो धान और ढैंचा साथ साथ चलते हैं। उसके बाद जब 30 दिन का हो जाता है धान, तो उसमें हम 240 डाल करके 600 से 650 ग्राम सक्रिय तत्व 240 का लेते हैं और छिड़काव कर देते हैं, या कोई दूसरी हर्बिसाइड जो धान में प्रयोग की जाती है उसका हम प्रयोग कर देते हैं।

0: तो ढांचा जो है वहीं गल करके मर जाता है, और धीरे धीरे जमीन में वो मिल करके एक अच्छा जो है हरी खाद भूरी खाद का के रूप में वो पोषक तत्व प्रदान करता है, और साथ साथ जो मृदा का टेम्परेचर है उसको भी बैलेंस किया रहता है, जो मृदा की भौतिक और रासायनिक और जैविक अवस्थाएं हैं उनको सुरक्षित रखता है और मृदा स्वास्थ्य को मेंटेन करता है। इस प्रकार से आप जो है हरी खाद हुआ, भूरी खाद हुआ, नील हरित शैवाल हुआ, अजोला केक्स यानी खलियाँ तथा फसल अवशेष का प्रयोग करते हुए, साथ में जो है थोड़ी बहुत मात्रा में आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करके आप अपनी फसल को तथा मृदा को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया अभी कि जो कार्बनिक खाद हैं इसके रूप में आप जो गोबर खाद हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही रवि फसल के जो अवशेष हैं उसे बिल्कुल ना जलाएं, बल्कि उसे जो अपने खेत में अगर आप गाड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि हरी खाद, भूमि खाद, उजोला का इस्तेमाल करके आप अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, तो आज आप सभी के साथ यहाँ पर हमारे उन्नत कृषि प्रोग्राम में थे डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, और इन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों और बहनों को। डॉक्टर साहब आप हमारे इस प्रोग्राम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद और आप लोग सभी लोग को नमस्कार।
1: तो अगली बार अगले प्रोग्राम में अगले विषय के साथ अगले चर्चा के साथ फिर से हाजिर रहूंगी मैं आप सभी के साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए और टीबी को हराए। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15 गुना 15 सेंटीमीटर

मीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर

किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को, जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गलाघोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं?

0: चलो बताती हूँ बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो आज के समय में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से चीजें बदल रही है, ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आप प्राकृतिक खेती की ओर अपने कदम बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बने। तो आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भर गांव के निर्माण में प्राकृतिक खेती की भूमिका। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे। मैम, आप हैं प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
4: मैम। सबसे पहला सवाल कि प्राकृतिक खेती है क्या?
6: जी, प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें खेती के लिए प्रकृति के नियमों का पालन किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके स्थानीय संसाधनों जैसे कि देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, फसल अवशेष, जीवाणु और जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता हो। इसका उद्देश्य केवल फसल उगाना नहीं है बल्कि मिट्टी को जीवित रखना, पानी बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना और किसान की आय बढ़ाना भी है।
4: जी मैम, साथ ही हम आत्मनिर्भर गांव के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर गांव का क्या अर्थ है?
6: जी, हम जैसा कि पहले से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी देखा था कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर गांव का भारत हो। तो आत्मनिर्भर गांव वह ऐसा है गांव है जहां की किसान उत्पादन करे, गांव में ही मूल्य संवर्धन हो, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को आजीविका के अवसर मिले और गांव अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे, किसी पर निर्भर ना रहे।
4: तो ऐसे में प्राकृतिक खेती और आत्मनिर्भरता का क्या संबंध है?
6: जी, बहुत ही गहरा संबंध है। जब किसान प्राकृतिक खेती अपनाता है तो सबसे पहले उसकी खेती की लागत कम होती है। आज रासायनिक खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि आदानों की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्राकृतिक खेती में अधिकांश कृषि आदान खेत और गांव में ही तैयार किए जाते हैं। जब हम बीज, खाद, कीट प्रबंधन के लिए किसान को बाजार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा तो उसकी बचत बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, और यही बचत आगे चलकर किसान की आय में वृद्धि का आधार बनती है।

0: से मिट्टी भी बचेगी और पानी भी। जैसे कि हम कहते हैं कि स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल और स्वस्थ परिवार। लगातार रासायनिक खेती से मिट्टी की जैविक शक्ति कम हो जाती है। प्राकृतिक खेती मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को सक्रिय बनाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही मल्चिंग और प्राकृतिक तरीकों से नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये लाभकारी है। आज हर व्यक्ति सुरक्षित और रसायन मुक्त भोजन चाहता है। यदि किसान प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो वे केवल फसल ही नहीं उगाते बल्कि लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। स्वस्थ भोजन का अर्थ है स्वस्थ समाज, और इसी तरह हम आत्मनिर्भर गांव भी बन सकते हैं।
1: अभी मैम आपने स्वस्थ समाज की बात की, तो क्या अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की तो उसका समाज पर भी असर पड़ता है या बस ये खेती तक ही सीमित?
0: बिल्कुल, ये खेती तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे गांव में अनेक रोजगार पैदा हो सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि क्या क्या रोजगार इसमें पैदा हो सकते हैं, तो प्राकृतिक कृषि में जो आदानों की, जो इनपुट्स की यूज होती है, उसका निर्माण कर सकते हैं, बीज उत्पादन कर सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं प्राकृतिक ढंग से, ब्रांडिंग, स्थानीय बाजार, ऑनलाइन बिक्री, कृषि पर्यटन एवं इस तरह की बहुत सारे आयाम हैं जिससे कि वो रोजगार भी पैदा कर सकते हैं।
1: किसान उत्पादक संगठन की भी क्या इसमें कोई भूमिका होती है?
0: जी बिल्कुल, एक अकेला किसान जो नहीं कर सकता, एक समूह में अगर वो जुट जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि गांव के किसान मिलकर किसान उत्पादक संगठन बनाते हैं तो प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों की सामूहिक ब्रांडिंग और विपणन की जा सकती है। सामूहिक प्रयासों से बेहतर बाजार मिलता है, उचित मूल्य मिलता है, भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधा विकसित होती है और किसानों की सौदेबाजी और उनके मूल भाव करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
1: जी मैम, और अभी जलवायु परिवर्तन के बारे में काफी चर्चा हो रही है, तो क्या ऐसे में प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण हो जाता है?
0: जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल मौसम लगातार बदल रहा है, कभी अधिक वर्षा, कभी सूखा, कभी अत्यधिक गर्मी। ऐसे समय में प्राकृतिक खेती मिट्टी की संरचना को मजबूत बनाकर खेती को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करती है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में टिकाऊ कृषि प्रणालियों पर इतना जोर दिया जा रहा है।
1: और मैम, अगर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहे तो?
0: जी, किसान बंधुओं को कुछ आवश्यक कार्य जो है वो पहले कर लेने चाहिए। जैसे कि शुरुआत में छोटे स्तर में इसको शुरुआत कीजिए, अपने खेत में कुछ हिस्सों में प्राकृतिक खेती को अपनाइए। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और अपना जो भी आपका अनुभव रहा हो उसे साझा कर दूसरे किसानों को भी प्रेरित करिए और धीरे धीरे पूरा गांव इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। और अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगी किसान भाइयों को कि आत्मनिर्भर गांव केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बनते, वे बनते हैं किसानों की जागरूकता और सामूहिक प्रयास और स्थानीय संसाधनों की बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से। प्राकृतिक खेती हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपनी मिट्टी, पानी, बीज और जैव विविधता की रक्षा करेंगे तो हमारा गांव भी समृद्ध होगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो याद रखिए किसान भाइयों, आत्मनिर्भर गांव की शुरुआत आत्मनिर्भर खेत से होती है और आत्मनिर्भर खेत की नींव प्राकृतिक खेती होती है। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि आत्मनिर्भर गांव की नींव प्राकृतिक खेती होती है। तो किसान भाई बहनों, आप इन बातों का ध्यान रखें और जैसे कि मैम ने कहा कि आप छोटे स्तर पर शुरू करें प्राकृतिक खेती करना, एक छोटे से हिस्से से शुरू करें तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखेंगे और अपनी मिट्टी से ढेर सारा प्यार करेंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से

0: बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25

मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को, जैसे कि मक्का, मक्का

आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वाकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: बातचीत की कला। बातचीत करना एक महान कला है और यह आवश्यक है कि हम इसे समझें। मेरी मित्र कल्याणी के पास अपने चारों ओर के वातावरण, जैसे फूलों और पक्षियों, नगरों और गांवों, पर्यावरण और प्रदूषण, योग तथा जड़ी बूटियों, साहित्य तथा धर्म, रंगमंच तथा संगीत और कई अन्य बातों के बारे में ज्ञान का भंडार है। वो जीवन की हर वस्तु में रुचि लेती है, उसमें जीवन तथा चेतना है। उसके साथ बातचीत करना वास्तव में एक शिक्षा है, क्योंकि वर्षों में अपने अनुभवों से उसने जो कुछ भी जाना है, सीखा है, वे अनुभव तथा ज्ञान की बातें वो बड़े उत्साह से बताती है और लोगों से बातें करने में उसे आनंद मिलता है। फिर मेरा एक दूसरा मित्र डेनियल है, जो विज्ञान तथा इतिहास जैसे विषयों के बारे में बहुत तो नहीं जानता, परंतु उसने कई जगहों की यात्रा की है और कई बार वो पर्वतारोहण भी कर चुका है। उसके अनुभवों की कहानियां बड़ी रोमांचक होती हैं और उन्हें सुनने में बहुत मजा आता है। उसकी बातें उत्साहपूर्ण होती हैं और वो कई लोगों के समान बातचीत पर केवल अपना ही अधिकार नहीं जमाता। बातचीत के दौरान वो दूसरों के अनुभव संबंधी छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उन्हें भी इस बातचीत का एक अंग बना देता है। इस कारण उसकी बातें सुनते कोई नहीं थकता, क्योंकि डेनियल की बातें सुनने वाला भी बातचीत में भाग जो लेता है। बेगम खातून का स्वभाव अलग है। शर्मीले स्वभाव की वो स्त्री बहुत मृदु स्वर में धीरे से बोलती है। उनकी सीधी सादी बातों से दिल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो तुमसे तुम्हारी कुशलता, तुम्हारी प्रिय वस्तुओं के विषय में पूछेंगी और ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगी जिनमें आपको मजा आएगा। ये बात कितनी सच है ना, कि हमें उन लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है जो मृदुभाषी होते हैं और जो अपनी बात दूसरों पर नहीं थोपते। दूसरे प्रकार के लोग मोहन चाचा और उनके मित्रों जैसे होते हैं। वे हमेशा अखबारों तथा पत्रिकाओं में आई खबरों के बारे में जोर शोर से बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, किसी के पक्ष में अथवा किसी के विपक्ष में बोलते हैं। उनके सरकार को लेकर, व्यापार तथा उद्योग, कपड़े और हथकरघा, अमरीका तथा रूस को लेकर तरह तरह के विचार है। वे इन विषयों पर बोलते ही चले जाते हैं, कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। कभी कभी इस बातचीत की शुरुआत तो ठीक से होती है, लेकिन शीघ्र ही ये बातचीत एक गर्मा गर्म बहस का रूप धारण कर लेती है। इस कारण कई बार इस बहस का शोर रेडियो में आ रहे उस शोर के समान होता है जब रेडियो की सुई ठीक

0: स्थान पर नहीं होती। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही विचारों को बताना चाहे तो वहां विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। इस कारण अनीता चाची अपने घर में इस प्रकार के शोरगुल व विवादों से इतनी तंग हैं कि वे इनकी अनसुनी कर देती हैं और कोने में बैठकर बुनाई करने में व्यस्त रहती हैं। उन्हें ये सब कुछ अपने बचपन के दिनों से बहुत अलग लगता है, जब हर व्यक्ति बहुत ही धीरे बोलता था। घर आने वाले अतिथि अपने साथ प्रसन्नता लाते थे। क्या तुमने एक और बात पर गौर किया है? अक्सर लोग अपने से उच्च वर्ग के लोगों के साथ बहुत ही आदरपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु अपने से निम्न वर्ग जैसे नौकरों आदि के साथ बहुत ही कठोर तथा रूखा व्यवहार करते हैं। अब हम देखिए कि स्कूलों में बच्चे किस प्रकार बोलते हैं। जब आधी छुट्टी में तुम सब साथ होते हो तो किस विषय पर बातें करते हो? शायद अपनी छुट्टियों के बारे में, अपनी खरीदी वस्तु के बारे में, तुम क्या करना चाहते हो इस बारे में, और साथ ही शिक्षकों के बारे में। पर इतना तो तुम मानोगे कि जब तुम बातें करते हो तो तुम में से कई एक साथ बोलते हैं। कोई किसी की नहीं सुनता, कोई धीमे स्वर में नहीं बोलता, कई बार छात्र चिल्लाते हैं। वार्तालाप की कला बिल्कुल भिन्न है। वार्तालाप में अपनी आवाज को ऊंची कर पंचम स्वर में बोलना सभ्य नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब में इतनी शक्ति है और इतना बांटने की क्षमता भी है, परंतु ये बहुत दुख की बात है कि इनमें से कई दूसरों की बातों को सुनना नहीं जानते, है ना? एक बात पर और ध्यान दो। स्कूल में हम अपनी ही एक भाषा बना लेते हैं। कभी कभी ये अपभाषा होती है और कभी कभी एकदम काम चलाऊ। क्या तुमने अपनी भाषा पर ध्यान दिया है और देखा है कि तुम लोगों के साथ बोलने में कितने मधुर और नम्र हो? क्या तुम सरलता तथा सहजता से वार्तालाप कर सकते हो? क्या तुम शर्मीले और अल्पभाषी हो? अगर ऐसा है तो क्या तुमने इसके कारण पर कभी अपने आप से प्रश्न किया है? क्या तुम में सुनने का धैर्य है? क्या तुम्हारा दिमाग एक खुली किताब है? और क्या तुम दूसरों के दृष्टिकोण को देख सकते हो? इस अल्पायु में क्या तुम वार्तालाप की कला सीखना चाहोगे? भविष्य में जब तुम किसी वार्तालाप के बीचों बीच हो तो क्या थोड़ी देर ठहर कर स्वयं पर ध्यान दोगे?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक

0: साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किस प्रकार से परवल की खेती की जाती है और क्या समस्याएं आती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी ही बातों के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर RV वर्मा। सर, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि परवल के क्या फायदे होते हैं?
6: देखिए, परवल जो है, जिसको कुकुरबिटेसी कहते हैं या लतेर वाले जो है फैमिली जो कहते हैं, उस फैमिली का एक ऐसा पौधा है जो लगभग 7 से 8 महीने तक फल देता है, और यह फल समझिए इमरजेंसी पीरियड में भी देता है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर जब पानी आता है उस समय, और अन्य सब्जियां सब खत्म जब हो जाती हैं, तो उस समय भी मार्केट में आपको जो है परवल मिलता है। और परवल की उपयोगिता ही बहुत ही ज़बरदस्त है। परवल एक ऐसा फ्रूट है, समझ लीजिए फ्रूट इस वेजिटेबल में आता है ये, कि इसमें जो है एक तो सबसे पहले कि इसमें विटामिन A, B और C पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है, जिससे आप शुगर फ्री के शुगर वाले पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल कम 0.3% के आसपास होती है, इसलिए जो मोटापा जो है उसको भी कम करता है। ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जो होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं लो एनर्जी के कारण जो है, तो ये लो एनर्जी कारण जो बहुत सारे रोगों में कभी कभी आप देखते हैं जॉइंटिस सब हो जाता है, तो उसमें भी हम परवल का चोखा या परवल की जो है सब्जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप परवल की सब्जी लीजिए, तो ये हल्की होती है। इसके तमाम इसके एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी वेट को आपको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो परवल की आप देखते हैं स्वीट्स भी बनते हैं आजकल, जो परवल की मिठाई बनती है, तो परवल की ये तमाम सारी उपयोगिताएँ हैं। और ऐसी फसल भी है जो आपको 7 से 8 महीने तक फल भी देती है, तो इन सब सारी उपयोगिताओं को देखते हुए परवल का स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है, और परवल की खेती हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसकी खेती सफलतापूर्वक आप करें, इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
5: जी सर।

0: लाभदायक होती है, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं भी आती है। तो परवल की खेती में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं?
1: हाँ देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परवल की खेती में देखिए, एक तो होता है सेक्स की प्रॉब्लम उसमें, कि उसमें जो है नर और मादा दोनों जो है अलग अलग होते हैं। ये डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट मतलब जिसमें एक पौधे पर होगा तो केवल नर ही होगा और दूसरे पर होगा तो केवल मादा ही होगा। और हमेशा फल जो होता है वो मादा पुष्प पे ही आता है, नर पुष्प पे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसान भाई के खेत में ऐसा भी पौधा दिखाई पड़ता है कि जिसमें केवल फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है। तो किसान भाई क्या करते हैं, उसको खेत से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जब नर पौधा नहीं रहेगा तो पोलिनेशन की समस्या हो जाती है, और पोलिनेशन नहीं होगा तो पता चला आपके पौधे में फूल तो आ रहा है लेकिन वो फूल जो है पीला होकर के फिर से सूख जा रहा है। इसका कारण यही है कि वहाँ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डायोसियस पौधा है, और जब भी लगाना है इसको तो नर और मादा दोनों ले जाके लगाना है, और दोनों को लगाने का एक जो अनुपात होता है वो 9:1 का अनुपात होता है। यानी 9 पौधे अगर आप मादा आप ले जाते हैं तो एक पौधे नर आप ज़रूर ले जाइए। इससे उसका रेशियो मेंटेन रहता है और परागण के लिए पौधे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बहुत दूर 1.5 किलोमीटर तक दूर तक इसका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, बट उतना दूर से परागण आएगा और परागित करने में उसको समय लगेगा, फिर जो है नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वहाँ आपकी जो प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 9:1 का रेशियो आप उसमें रखें। 9:1 रेशियो रखेंगे तो उसका जो है पोलिनेशन अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या इसमें ये होती है, एक तो ये आगे प्लांटिंग रेशियो कि 9:1 में आप प्लांटिंग करिए, इससे आपको नर और मादा का जो है 9 मादा और एक जो है नर, तो इससे आपके ऊपर। दूसरा ये होता है इसमें कि देखिए, इसमें सीड प्रोपोगेशन हम नहीं करते हैं। कभी कभी ये किसान भाई कहते हैं कि उन्हें हम बीज से ही कर लें, तो बीज से करने में समस्या ये होती है कि जो आप एक तो पहले बीज इसका ऐसा होता है कि आप जैसे पकने के बाद इसको निकालिएगा, 2 मिनट के लिए हवा में छोड़िएगा तो फिर जमेगा ही नहीं। तो उसमें ये होता है कि तुरंत उसका फल पका हुआ निकालिए, तुरंत उसको जमीन में लगाना होता है। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि इसके बीज को अगर लगाते हैं तो उसमें 50% नर आ जाता है और 50% मादा आ जाती है, और ये नर और मादा का अनुपात जो 50-50% जो हो जाता है लगभग जो है, यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसमें फ्लावर या फूल नहीं आ जाता है। तो फूल आने के लिए आप साल भर इंतजार करिएगा, साल भर आप खेत को फंसा के रखिएगा, अब तब जब फूल आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो नर है और ये मादा है, तो आपके खेत की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज़ ये कि ये लंबा समय लेता है, क्योंकि एक साल भर की बताया हमने कि इसको ये पूरा साल भर चलता रहता है। ये बायनियल मतलब ये जो है पेरेनियल पौधा है, एक बार लगाइएगा तो 3 साल तक इससे काटिएगा, कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी जो हमको बीज से इसका जो है प्रोपेगेशन नहीं करना है, इसका प्रोपेगेशन हमेशा कटिंग से करना है, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो उपयुक्त मतलब प्रजाति हो उसी को लेना है, अन्यथा आपकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पैदावार घट सकती है।
0: तो सर हमें विस्तार से बताइए कि प्रवर्धन कैसे करें।
1: हाँ, इसके प्रवर्धन के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमने बता दिया कि एक जो है 9:1 रेशियो में आपको नर और मादा लेना है। अब नर और मादा में अब क्या लेना है, एक तो इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, सीड से प्रोपगेशन नहीं करते हैं। तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो इसमें हम उसकी वाइन लेते हैं, और वाइन कैसी होगी, एकदम मेच्योर वाइन हो, जो साल भर पुरानी हो गई हो। ऐसा नहीं कि टेंडर वाइन लीजिएगा, टेंडर वाइन लीजिएगा तो वो जो है सूख जाएगा। तो हमेशा आपको मेच्योर, जो मेच्योर वाइन होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा जब मेच्योर वाइन हो जाती है जनरली जो जड़ से निकलती है, देखिए जब खूब मेच्योर हो जाती है तो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी व्हाइटिश हो जाती है, जो ग्रीनिश रहती है उसका रूप बदल के हल्का सा लाइट व्हाइटिश कलर में आ जाता है, तो समझिए कि वाइन पूरी तरह से मेच्योर हो गई है। तो सबसे तो पहले कि आपको 1 ईयर ओल्ड मेच्योर वाइन सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, उस वाइन को अगर काट लीजिए, काटने के बाद उसको कितना लंबा रखेंगे, तो कम से कम जो है उसको 50-60 सेंटीमीटर उसको लंबा रखिए। और उसको क्या करिएगा, उसको अंग्रेजी का 8 जो होता है उसके आकार में आप उसको मोल्ड कर लीजिए, 8 के आकार का बना लीजिए, और दोनों सिराओं को फिर मोड़ दीजिए। 8 के आकार के जो दोनों लास्ट की सिराएं हैं उसको आपस में मोड़ दीजिए,

0: बीच में उसे मिट्टी डाल करके जो है बीच में मिट्टी से उसको एक गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप इसका कल्टीवेशन करें तो सॉयल आपकी एकदम सैंडी लोम सॉयल हो जिसमें बालू की मात्रा बढ़िया हो, उसमें इसकी उपज जो है ज्यादा अच्छी होगी। कड़ी मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी उपज थोड़ी कम हो जाएगी। और उसमें अगर बालू कड़ी मिट्टी है या लोमी मिट्टी है तो इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि आपको जो उस मिट्टी में जो है बालू, गंगा बालू अगर मिलता है तो गंगा बालू और आपका जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फ्यूराडान मिला करके उसको बढ़िया से उसका पिट बना लें, फिर उस पिट में लगाएंगे तो वो जो है आप जो है 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा जो वाइन लिए थे उसको आठ के आकार में बना लिया और उसके दोनों को वाइन्स को आप ऊपर ले लेते हैं छोर को जो है और साइड से जो है मिट्टी में दबा करके उसको पूरी तरह से उसको दबा देते हैं। हल्का हल्का सा वो दिखाई पड़ता है जो सूर्य की रोशनी उसको मिलते रहे, हल्का सा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसके साथ कोई मरोगत मत करिए। अगर उसमें मान लीजिए आपने प्रेस नहीं किया है, बढ़िया से दबाया नहीं है तो होता क्या है, कभी कभी जब आप पानी देते हैं तो उसमें होल बन जाता है, तो जब होल बन जाएगा तो वहां से हवा चला जाएगा और हवा जाएगा तो उसके सूखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, पौधा लगेगा। आप कहेंगे कि हमने पौधा लाया था स्वस्थ लगाया लेकिन चला नहीं, तो इससे देखना है लगाते समय उसकी वाइन्स को खूब बढ़िया मिट्टी से दबा दीजिए ताकि मिट्टी का संपर्क उससे खूब अच्छी तरह से हो जाए और उसका जो नमी बराबर मिलती रहे। तो ये करना, लगाने के बाद आप उस पर मल्च डाल दीजिए, मल्च डालने के बाद उसको जो हल्की सी सुबह शाम सिंचाई करते रहिए। तो ये तो इससे हम प्रोपगेशन करते हैं वाइन से, सीड से हम नहीं करते जैसा पहले बता दिया था। तो इसका प्रोपगेशन हम वाइन से ही करते हैं, वाइन वन ईयर ओल्ड वाइन्स लेते हैं, मेच्योर वाइन लेते हैं 50 से 60 सेंटीमीटर लगते हैं जिसमें 8, 7 से 8 कम से कम नोड हो, इसको ध्यान में रखना है कि इसलिए कि नोड से ही जो है जड़ें निकलती हैं, तो जब नोट्स नहीं रहेगा तो जड़ें नहीं निकलेंगी। अगर एक नोट्स लगाइएगा तो एक नोट्स मान लीजिए वीक हो गए या खत्म हो गए तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए 6 से 7 उसमें नोट रखिए जिससे कोई भी नोट्स उसमें चलेगी, रूट्स निकल जाएगी तो पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने बताई, एक तो ये बता दिया वाइन से आपको लगाना है तो आप अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर वो भी 15 अक्टूबर के आसपास लगाए जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर स्प्राउट नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने डारमेंट रहती है, अक्टूबर लास्ट अक्टूबर से लेकर के नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने डारमेंट रहती है, इसमें आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा इसका तरीका एक और है, मान लीजिए आपके पास जो है सैपलिंग, दूसरा तरीका है सैपलिंग तैयार करना। आप कुछ नहीं है, मान लीजिए आपकी वाइन ख़त्म हो रही है तो आप क्या करिएगा, आप अक्टूबर या सितंबर या जनवरी, सितंबर या अगस्त कभी भी जो है आप उसकी सैपलिंग तैयार कर लीजिए। सैपलिंग तैयार करने के लिए 2 तरीके हुए, एक तो आप पोली बैग ले लीजिए, पोली बैग में 2 से 3 नोड लेकर के उसको जो है अंदर जो है पोली बैग मिट्टी भरे रहते हैं उसमें आप उसको दबा दीजिए तो उससे वो स्प्राउट कर जाएगा, स्प्राउट कर जाएगा तो वो चलेगा। उस आप जो है सैपलिंग को आप रखे रहिए, उसके देख रेख करते रहिए। जैसे मान लीजिए आप नहीं लगा पाए, आपका खेत खाली नहीं है, तो आप फरवरी में आपका खेत खाली हो तो आप उसको फरवरी में सीधे उस सैपलिंग को खेत में ले जाइए और उसमें लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया चलेगा, उसमें स्प्राउटिंग बहुत फास्ट होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ कवर करेगा, आपका फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है सैपलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें 2 से 3 नोट जरूर रखिए, एक नोट पर मत लगाइए उसको, और 2 से 3 नोट रहेगा तो उसमें रूटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो सैपलिंग से आप जो है फरवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं।
1: जी सर, तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रबंधन का सही समय क्या है।
0: हाँ, देखिए इसका जो है, जब ये हम इसको जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो बहुत अच्छा महीना है, इसमें स्प्राउटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर काट करके वाइन वैसे भी लगा दिएगा या उसको दबा दीजिएगा तो चल जाएगी, लेकिन इस समय चूंकि परवल जो है एकदम अपने पीक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है, इसलिए कोई भी किसान अपने खेत से वाइन आपको नहीं देगा। लेकिन ये आपका मार्च से स्टार्ट हो करके और अक्टूबर तक फ्रूटिंग देता है, देखिए 7 से 8 महीने फल देता है, तो जब सितंबर के लास्ट तक जो है समझिए इसकी फ्रूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वीक हो जाती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। अक्टूबर में इसको लगाने का समय जो है सबसे बढ़िया क्या होता है कि अक्टूबर में आप जो है जो वाइन्स जैसे हमने बताया, लगाने की विधि जैसे हमने बताई है, आप जो इसको खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करके इसमें 2 तरीके से, एक तो आप पंडाल विधि से भी आप लगा सकते हैं, मचान विधि जिसको कहते हैं, पंडाल बना लीजिए और

0: या तो एक ऐसे पोल गाड़ करके सीधा दो दो मीटर की दूरी पे आप पोल गाड़ करके उस पर रस्सी तान करके वैसे भी लगा सकते हैं, या ओपन फील्ड कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए मान लिया हम कह रहे हैं कि दो दो मीटर दूरी पे लगाइएगा, तो दो दो मीटर की दूरी पे लगाइएगा। अगर फील्ड में लगाना है तो आप दो दो मीटर की दूरी पे लगाइए बेहिचक, इसलिए कि इसकी वाइन जब फैलती है तो जगह जगह पे अपनी रूट्स को जमीन में पकड़ है, उसको आसानी से वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप जो है पोल पे लगाइएगा तो पोल पे हमेशा जो है दो मीटर पोल से पोल की दूरी होगी और पौधे से पौधे की दूरी एक मीटर होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं तो कम से कम आपको जो है 5000 कटिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पोल पे लगाते हैं तो 5000 कटिंग जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं, इसे ओपन में 2x2 पे लगाते हैं, तो लगभग 2500 आपके कटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख लेना हमको कि किस विधि से आप लगा रहे हैं उसमें कितनी हमको कटिंग मिल रही है, कितनी अगर नहीं भी मिली है, कम भी मिली है जो है, तो आप फील्ड में लगा दीजिए, आप उससे अगले साल उसको प्रोपगेट कर लीजिए, उससे आप वाइन बना लीजिए अगर अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है तो।
1: जी सर, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की तो।
0: हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है जितनी भी कुकुरबिटेसी सब्जी होती है, लतेर वाली सब्जियां होती है, एक जनरल फंडामेंटल बता दें कि इन सब्जियों में जो है नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा देंगे, और लेकिन इसके देने से पहले हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद भी इसमें देंगे। उसके अतिरिक्त ये होगा आपका 100-60-60 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन इसलिए हम जनरली कुकुरबिट्स में 80 के आसपास चलती है, लेकिन इसमें हमने 100 इसलिए कहा कि ये चूंकि ये लंबे अवधि की क्रॉप है, हमने बताया कि एक बार आप मार्च में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं तो चलती है, फिर अक्टूबर तक चलती है, तो ये लंबी अवधि की क्रॉप है, इसलिए मैं थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो 100 किलोग्राम है। इससे ज़्यादा जहाँ भी नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो समझिए उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आती है। हालांकि नर इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नर अलग ही होता है और मादा अलग होता है, लेकिन जनरल कुकुरबिट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप खाद जो है 20 से 25 टन FYM, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस या 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास संभव है तो इसमें आप जो है नीम की खली ये थोड़ा सा जो है नहीं ज़्यादा मिलता है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास जो है प्रति प्लांट नीम की खली से मिला दें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। खास करके जो है परवल में निमेटोड की एक समस्या आती है जो लगातार 2-3 दिन तक आप छोड़ दें, 2-3 साल तक छोड़ देते हैं, तो वो सब समस्याओं से समाधान इसका होता रहेगा।
1: सर अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं?
0: अब देखिए इसमें वैसे तो बिहार में जो है इसकी बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब तमाम तरह की जो है प्रजातियां हम उगाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है उपजाऊ प्रजातियां हैं, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें जैसे राजेंद्र परवल 1 अपने यहाँ बहुत ज़्यादा राजेंद्र परवल है, राजेंद्र परवल 2 है, अभी नई वेराइटी अभी गवर्नमेंट से रिलीज हुई अपने यहाँ की जो है सबौर परवलन है, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसमें धारी नहीं होता है, उसमें सीड्स कम होते हैं, मिठाई के लिए भी अच्छी है और जो है सब्जी के लिए भी अच्छी है। तो एक सबौर परवल 1 है, दूसरा स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण रेखा है, तो ये सब जो है प्रजातियां जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, इन सब उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के आप इसका कटिंग प्राप्त कर लें और इनको लगा करके इसकी आप खेती करें, ये ज़्यादा उपजाऊ हैं और ज़्यादा आपको उपज देंगी, आपके लिए लाभदायक होंगे।
1: सर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कीट और व्याधि कौन कौन से होते हैं परवल में और कैसे बचें?
0: देखिए जनरल जो है एक जो है शुरू में जो सबसे कीट लगता है जिसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल, ये तो सारे कुकुरबिट्स का एक पेस्ट हम इसको बोलते हैं, तो ये रेड पम्पकिन बीटल होता है, ये जो जैसे हालांकि इसमें तो कॉटिलेडन नहीं निकलता है, इससे निकलता है स्प्राउटिंग होती है, तने से स्प्राउटिंग होती है इसके, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुकुरबिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, रेड पम्पकिन बीटल आता है जो कॉटिलेडन निकलती है उसी को खा जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन इस खेत में चूंकि हमारा चलता है स्टेम से निकलता है, इसलिए इसमें उसकी इनिशियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम इसकी नहीं रहती। इसकी प्रॉब्लम फ्रूटिंग स्टेज में आकर के एक फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे जबरदस्त रहती है। ये

0: फ्लाई क्या करती है, कभी कभी किसान भाई के प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे फल तो लग रहा है लेकिन वो सड़ जा रहा है, पक जा रहा है, तो उसकी समस्या में हमने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई है ये भी एक कारण है। एक तो कारण ये है कि हमने बताया कि आपने जो प्लांटिंग रेशियो अगर मेंटेन नहीं किया है, नर और मादा का अनुपात अगर मेंटेन नहीं किया है, तो एक तो फर्टिलाइजर नहीं रहा, वो भी एक समस्या है। और दूसरी समस्या, जैसे ये फ्लावर आपका फ्रूट जब लगता है उसमें, ये जो है फ्रूट फ्लाई है उसमें डंक मार देता है और फिर उसमें जो है सड़न पैदा होने लगती है, पीला पड़ जाता है। तो ये दोनों समस्या है। इसके निदान के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है फिरामोन ट्रैप, एक फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप ले लीजिए, 5-6 ट्रैप ले लीजिए, 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। और उसको जो है चारों कोने पे बीच में लगा दीजिए। वो क्या करता है कि जितने भी जो है ये जो है मेल मेल जितने भी आपका जो है फ्रूट फ्लाइज है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, और उस फिरामोन ट्रैप में ल्यूर जो होता है वो जो है पॉइजनस होता है, ये जैसे उसमें मेल जाता है उसी में वो मर जाता है। तो इससे होता क्या, उसकी प्रजनन जो है रुक जाती है और फिर बाद में वो फैल नहीं पाता है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उसमें फ्रूट फ्लाई की आती है, दूसरा कभी कभी ये स्टेम ब्लाइट की भी समस्या आती है, स्टेम ब्लाइट कर स्टेम रॉट की जो है कभी कभी उसका तना भी सड़ने लगता है। रोग के बारे में अगर कहें तो कभी कभी उसके गमोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तने निकल जब पुराने हो जाते हैं तो वहां से गम जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में किसान भाई जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% यानी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उस पर 2-3 छिड़काव कर दें, उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो पौधा आपका अच्छी तरह से चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी इसमें जो है निमेटोड की है, ये हमने बताया कि ये पेरेनियल क्रॉप है, तो पेरेनियल क्रॉप है तो चूंकि 1 साल लगाते हैं, और ऐसी फसल है कि 1 साल लगाते हैं और इसको 3 साल तक काटते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि 1 साल लगाइए 3 साल काटिए, लेकिन 3 साल का और पहले साल की तुलना में दूसरे और तीसरे साल फलत ज्यादा अच्छी आती है। तो ये बात हमको ध्यान देखनी है कि जो है अगर पहले साल हम इसको लगाते हैं तो दूसरी साल उसका मेंटेनेंस करें, और दूसरी साल से जनरली जब 2 साल से ज्यादा होता है तो निमेटोड की समस्या शुरू हो जाती है। निमेटोड क्या होता है, उसके अंदर गांठ बना लेता है, उसके जड़ों में गांठ बना लेता है, और पौधे का जो सिस्टम होता है जो उस पर जिससे पानी ऊपर जाता है वो पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे खनिज लौड ऊपर जाता है सब उसको ब्लॉक कर देगा तो पौधे को मिलेगा नहीं, तो अंत में क्या होता है पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो ये निमेट तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो नीम वाला जो है हमने बताया कि नीम की खली उसका आप प्रयोग करते रहें, फ्यूराडान भी समय समय पे जो है पर पौधे आप 10 से 15 ग्राम या 2 से 3 ग्राम आप जो है देते रहिए समय समय पे, ताकि उसमें इस तरह की समस्या ना आए। और उसके मिट्टी को हमेशा उसके थोड़ा सा कभी जाँच करते भी रहिए कि इसमें निमेटोज की समस्या नहीं आ रही है। तीसरा है उसको रोटेशन भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक वहीं छोड़े रह रहे हैं, आप 3 साल के बाद फील्ड को बदल दीजिए, क्रॉप रोटेशन कर लीजिए। इससे करने से क्या होता है कि वो निमेटोड अपना घर नहीं बना पाता है और उसमें जो निमेटोड की समस्या नहीं रहती है। तो क्रॉप रोटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी हमको देख लेना है। तो ये सब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो इसमें जो आती हैं, बाकी तो ये जो है पेरेनियल क्रॉप है, चलती रहती है।
1: सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो परवल की खेती करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए परवल की खेती के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है कि ये पेरेनियल क्रॉप है और एक बार जब लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक ये फसल देती है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जब भी आप इसको लगाइए तो इसमें सेक्स रेशियो, इसके प्लांटिंग रेशियो जो है जरूर मेंटेन रखिए, जो 9 संबंध है 1 के अनुपात में होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप जो है इसको लगाते हैं तो 3 साल के बाद एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर जरूर कर दें, और संभव है तो 100 ग्राम जो है नीम की खली उसमें जरूर दिया करें। इस तरह से अगर आप तकनीकी अपनाते हैं तो आपको जो है इससे लगभग जो है 250-300 के आसपास आपको उपज पैदावार मिल जाएगी, जो आपको 8 महीने तक देती है और इमरजेंसी क्रॉप के रूप में भी आपको ये फ्रूट देती है, फल देती है, सब्जी देती है। तो इससे आप जो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकते हैं।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, अगर आप परवल की खेती करते हैं तो जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से खेती कीजिए और कुछ बातों का ध्यान रखें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: तभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम, किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो तकनीकी के प्रयोग से कैसे पौधों में रोग निवारण किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे नैनो तकनीक क्या है और भी इसके बारे में बहुत सी बातें हम जानने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अभिषेक कुमार सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
3: सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर नैनो तकनीक है क्या?
5: यह बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करने वाली तकनीकी है, जो उन्नत वैज्ञानिक तरीका है जिसका प्रयोग पौधों के रोकथाम और बचाव के लिए बहुत बेहद उच्च प्रणाली के तरीका से किया जाता है, जिसे कि नैनो तकनीकी कहा जाता है।
3: और सर, नैनो तकनीकी की विशेषताएं क्या क्या है?
5: अभी किसान भाई को नैनो तकनीकी क्यों चाहिए, तो इससे पहले भी हमने बातें की थी, लेकिन फिर भी पुनः यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि यह जो तकनीकी है जो किसान भाइयों के लिए नया है और यह बहुत सुरक्षित माना जाता है। जो हम पहले उपयोग करते थे उसके, जो परंपरागत उपयोग करते थे उसके अपेक्षा यह बहुत सुरक्षित माना जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है ना, जो इसमें लागत है वह भी किसान भाई के लिए कम होते हैं, और इसके अलावा भी जो पर्यावरण अनुकूल होते हैं, यह क्योंकि इसमें किसी तरह की जैविक, जो हम लोग परंपरागत जो रसायन यूज करते थे वैसा नहीं होते हैं, यह और इसमें अवशेष भी कम बचते हैं जिससे कि उसका जो प्रभाव जो बाद में होता है वह भी कम हो जाता है। और जो नैनो आधारित उत्पाद होते हैं जैसे, और इसका जो मिट्टी में जल में जो है ना प्रदूषण भी कम करते हैं, और इसके सहायता से नैनोकन की सहायता से, नैनो तकनीकी की सहायता से जो दवा है या पोषक तत्व जो हम बनाते हैं नैनो तकनीकी से, वह भी जो है ना पौधे को सीधे पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको मिलते हैं, तो इसमें जो है ना पौधे को बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना लाभ मिलता है, जिससे यह तकनीकी बहुत अच्छा माना जा रहा है।
3: यस सर। तो सर, इस तकनीक के उपयोग से

0: पौधों में रोग निवारण की भी आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन निवारण से पहले जरूरी है कि हम कारणों को समझें। तो सर आप ये बताइए कि पौधों में रोगों के होने का कारण क्या क्या होता है?
1: पौधों में रोग होने के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं किसान भाई को जानना चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि वे जो हमारे मिट्टी है उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की ही कमी हो जाती है, उसके कारण भी जो है ना आगे पौधे में बर्बाद कम हो जाती है। या क्या होता है कि कभी कभी जो है ना किसान भाई जो डेली का जो उसका खेत का जो सही ढंग से जुता

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: कि प्रबंधन बहुत जरूरी होता है और प्रबंधन से भी जरूरी है कि रोकथाम करें। तो रोकथाम करें और नैनो तकनीकी को अपनाएं। और कुछ खास बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और खास बात ये कि अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
1: उन्नत कृषि
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
2: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू तेरे कितने दोस्त है?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
4: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
4: टीकू वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है।

अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब

शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, अगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित

0: हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आम का मौसम लगभग जा चुका है और फल तोड़ाई भी लगभग हो चुकी है, और फल तोड़ाई के बाद भी जरूरी होता है कि आप बागों का उचित प्रबंधन करें ताकि अगले वर्ष अधिक फल हो, अगले वर्ष भी आपको मुनाफा अच्छा हो। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि फल तोड़ाई उपरांत आम के बागों का प्रबंधन किस प्रकार करें। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर उद्यान विभाग फल से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि अभी आम के बागों से करीब सभी किस्मों के फल तोड़ाई हो चुकी है, तो अभी प्रबंधन कैसे करना चाहिए जिससे कि अगले वर्ष अधिक मात्रा में फल हो।
1: सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि फल तोड़ाई के बाद पौधों में खाद एवं उर्वरक का कमी हो जाता है एवं पौधों के समुचित विकास एवं फलन के लिए नियमित रूप से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर वृक्षों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनसे कम उपज प्राप्त होता है तथा फलों की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की हो जाती है। पानी के जरिए ही वृक्षों के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जल जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन इत्यादि कामों में आवश्यक होता है। इसके बिना ये सब कार्य जो है अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के अभाव में वृक्षों की वढ़वार एवं फलत पर गहरा असर पड़ता है। पौधे भूमि से पोषण एवं जल के माध्यम से ही लेते हैं तथा यह जल पौधों को पाले से भी बचाता है। समुचित सिंचाई एवं उर्वरक से फलों का उपज, स्वाद, मिठास, गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। जल एवं पोषक प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि कब दी जाए, कहाँ दी जाए एवं कितनी मात्रा में दी जाए ताकि जल एवं पोषक का अधिकतम उपयोग तथा मिट्टी एवं पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जल एवं पोषक प्रबंधन के साथ साथ डालियों की हल्की कटाई छटाई भी आवश्यक है। यह कार्य भी फल तुराई के तुरंत बाद ही करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त फल एवं अधिक फलन के लिए आवश्यक है कि पौधे के मांग के अनुरूप उसका पोषण प्रबंधन किया जाए। पौधे की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए सभी 16 अनिवार्य पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक है। सही समय पर सही उर्वरक एवं सही मात्रा का प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
0: तो मैम, उचित समय क्या होता है जब आम के पौधों में पोषण की मात्रा देनी चाहिए?
1: आम में पोषण देने का उचित समय जुलाई अगस्त माह है, लेकिन पोषक तत्वों का अधिक वर्षा से होने वाली क्षति को देखते हुए कंपोस्ट की पूरी मात्रा एवं उर्वरक की 75% मात्रा जुलाई में और शेष मात्रा का प्रयोग अप्रैल के प्रथम माह में करना लाभप्रद है।
0: मैम, जब हम एक वयस्क पौधे की बात करते हैं तो आम के एक वयस्क पौधे में कुल खाद की कितनी मात्रा होनी चाहिए?
1: आम के वयस्क पेड़ में अनुशंसित खाद एवं उर्वरक की मात्रा इस प्रकार है। इसे प्रति पौधे खाद एवं उर्वरकों की मात्रा में 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरियट ऑफ पोटास एक वयस्क पेड़ के लिए अनुशंसित है। यह मात्रा 10 साल के बाद स्थिर हो जाता है। 10 साल के ऊपर जो पौधे हैं उसमें यही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ लगेगा। इस तरह से उर्वरक का डोज दिया जा सकता है।
0: अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की, तो मैम आम के बागों में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
1: पौधों की सिंचाई के समय हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई कब करनी चाहिए और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए। अब सबसे पहला है सिंचाई कब करें। उद्यान की सिंचाई की आवश्यकता स्थान विशेष की वर्षा के परिणाम एवं वितरण, मिट्टी के प्रकार एवं बनावट, वातावरण की आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। चिकनी मिट्टी को बलुई मिट्टी की अपेक्षा एक बार में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, परंतु बलुई मिट्टी में

0: लगे हुए बाग की सिंचाई कम अंतराल पे और कम मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। एक बार में इतना ही पानी दिया जाए जो संपूर्ण जल क्षेत्र को जड़ क्षेत्र को अच्छी तरह नम कर सके। जहां वर्षा कम होती है और इसका वितरण भी अनियमित हो तो सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई जल की आवश्यकता वृक्ष की आयु पर भी निर्भर करता है। आम के वृक्ष फल देने की स्थिति में आने के बाद बाग की सिंचाई का व्यवस्था बदल जाता है। फल देने वाले वृक्षों को नवंबर से मार्च तक आमतौर पर सिंचित नहीं करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इस अवधि में फूल धारण करने के लिए आवश्यक आंतरिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए इस अवस्था में सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि में सिंचाई करने से संभव है कि वृक्षों में मंजर कम आए या फूल आने के बाद झड़ जाए। अतः यह जान लें कि फलने वाले वृक्षों की सिंचाई, फल निकलने एवं स्पष्ट रूप से दाने लग जाने के बाद ही करना लाभकारी होता है। फलों के लगने तथा विकास के दौरान किसी भी अवस्था में पानी की कमी से फलों का विकास प्रभावित होता है तथा फल झड़ने की समस्या भी आती है। फल लगने के उपरांत 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि फल पूर्णतया विकसित ना हो जाए। एक बार की सिंचाई में इतना पानी अवश्य देना चाहिए कि वृक्षों का संपूर्ण जड़ क्षेत्र नम हो जाए। आम जैसे बहुवर्षीय वृक्षों की जड़ें काफी गहराई तक जाती है, परंतु प्रभावी रेशेदार जड़ों का अधिकांश भाग मिट्टी की सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक होती है। सिंचाई इतनी अवश्य करनी चाहिए ताकि जड़ क्षेत्र में पर्याप्त पानी बना रहे और पौधे का विकास ठीक प्रकार से हो। आवश्यकता से ज़्यादा या कम सिंचाई पौधे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब सिंचाई किस प्रकार करें, तो सिंचाई करने का है जैसे कि पारंपरिक सिंचाई विधि है या आधुनिक सिंचाई विधि है। अब पारंपरिक सिंचाई की बात करें तो इसमें फ्लड इरिगेशन है या क्यारी विधि से है, नाली विधि से है और रिंग विधि से है, थाला विधि से जिसको बोलते हैं। इन सबों में थाला विधि सर्वोत्तम पाया गया है। इसके लिए वृक्ष के चारों तरफ 2 से 3 फीट की दूरी पर थाला बनाकर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। आधुनिक सिंचाई पद्धति में ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर मेथड से पौधे का सिंचाई किया जा सकता है। इस विधि से करने पर जो सिंचाई जल का बहुत सेव होता है, बचता है। इस तरह से किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं अपने बगीचे का।
1: तो किसान भाई बहनों जो बागवानी करते हैं और आम के फल की तुड़ाई हो चुकी है, तो इस प्रकार से आप अपने बगीचों का प्रबंधन जरूर करें तो अगले वर्ष भी अच्छी गुणवत्ता वाले और अधिक फल आएंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ,
2: मैं बताती

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है, और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी

तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारे परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही हैं, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है। और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा।
और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और

भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, न सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले, बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी, आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे, अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना ज़रूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा, समझेगा, समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये ज़रूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले ख़ास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव

0: खिलाफ पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं, और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है, और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है, और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं, और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV

0: टीका माँ बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

കൃഷി. हेलो नमस्कार, तो लीजिए आपकी आरजी अनु हाजिर है एक बार फिर से आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हाँ, हम लेकर आते हैं किसान भाइयों के लिए उनके सवालों का जवाब, यानी कि हमारे जो आज विशेषकर हम जो टॉपिक लाते हैं उनमें आपके सवालों के जवाब छिपे रहते हैं. और फिलहाल आज एक और विशेष विषय है हमारे पास, और वो ये है कि आय सृजन के लिए

0: अनाज की फसल का गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन आप कैसे करें किसान भाइयों? तो किसान भाइयों, देखा जाता है कि आप अपनी फसलों को उगाने में कई ज़्यादा लागत लगाते हैं, लेकिन कई बार आपको हानि इसलिए हो जाती है कि आप गुणवत्ता वाले जो बीज हैं वो नहीं डाल पाते हैं, और कम गुणवत्ता वाले बीजों से आपको पड़ जाती है हानि, यानी कि आपकी जितनी भी लागत है आप उससे कहीं ना कहीं जो मुनाफा है बहुत कम पाते हो। तो अब यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि आपकी जो बीज है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, और इसलिए आज बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ पर हमारे साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। और आज के एक्सपर्ट हैं हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी लोगों को। हाँ बताइए।
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बीज उत्पादन किस तरह किसानों के लिए एक व्यवसाय बनकर इन दिनों उभरा है।
1: सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज़ आप लोगों को सभी लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो गुणवत्ता युक्त बीज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इसका फसल उत्पादन में बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अगर आप कुछ भी आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या पेस्टिसाइड है, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं कंट्रोल के लिए, उसका इफेक्ट आपको डायरेक्ट देखना है तो सबसे पहले आपको गुणवत्ता युक्त बीज का ही इस्तेमाल करना होगा। इसलिए कि अगर आप अकेला अगर सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो उपज है लगभग 10-15% जो है प्रतिशत अपने आप ही बढ़ जाएगा। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा चीज़ है कि जैसे हम बिहार राज्य में ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो हम गुणवत्ता युक्त बीज का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी संख्या या उसका प्रतिशत बहुत कम है। तो अभी मेरा यही एक है कि आप सभी लोग से है कि आप उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का इस्तेमाल ज़रूर करें पहला, और दूसरा ये है कि अभी बिहार राज्य में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी बीज का गुणवत्ता युक्त बीज है उसका मैक्सिमम ज़्यादातर जो हिस्सा है जो इसको जिसका इस्तेमाल होना चाहिए वो सब बाहर से आ रहा है, और हम लोग यहाँ पे जो उत्पादन करके जैसे सेल करना होता है या बेचना होता है उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है जिसका हम इस्तेमाल एज ए रोजगार के रूप में हम कर सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि अगर आप ये देखिए कि जैसे हम धान का बीज है, धान का जैसे हम अनाज हम बेचते हैं तो हमको मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा मिलता है तो 15 या 16 या बहुत अच्छा होगा तो 20 रुपये मिलेगा पर केजी के हिसाब से, हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप इसी को बीज के फॉर्म में अगर आप थोड़ा मेहनत करके उसको अच्छे से साफ सफाई करके उसका उत्पादन जो है थोड़ा ध्यान में रख के अगर आप करके उसका अच्छे से स्टोरेज करके अगर आप रखते हैं और बीज को उच्च गुणवत्ता के साथ अगर आप बेचते हैं तो आप यही समझिए कि इसका मुनाफा जो है आपका लगभग डबल हो जाता है, क्योंकि कप का प्राइस कम से कम उसमें 35-40 रुपया पर केजी आपको मिलेगा। एक तो ये सीधा 50% का मुनाफा है जो डायरेक्ट जो है वो प्रोड्यूसर के हाथ में है। तो एक चीज सबसे बड़ा गैप ये है, और अभी बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा उन उच्च गुणवत्ता बीज की आवश्यकता है, चाहे वो धान हो, मकई हो, चाहे वो आपका वेजिटेबल क्रॉप हो, कोई किसी में भी हो, सब में उसकी आवश्यकता है।
0: हाँ, और कहीं ना कहीं जब गुणवत्ता के अच्छे गुणवत्ता के बीज रहेंगे तभी फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, और तभी आपको मार्केट में जो प्राइस है उसके वो अच्छे मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और जानते हैं कि बीज उत्पादन को किस तरह किसान भाई अपने लिए रोजगार के अवसर के लिए उपयोग कर सकते हैं।
1: सबसे पहले तो देखिए, अपने एक चीज़ है कि आप अपने स्तर से भी एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे हर साल जैसे हम लोग बीज जो है हम खरीद, जैसे होता है कभी कभी हम लोग नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है आप नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन हमारा ये सुझाव होता है कि आप हर साल बीज जो है खरीदने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बीज को इस बार अगर आप लगा रहे हैं अगले बार उसी में से काट करके फिर आप रख के फिर लगा रहे हैं तो वो उपज आपको अगले साल नहीं देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है जो आपको जो प्रोडक्शन है जो आप चाह रहे हैं कि हमको इतना उपज मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो अगले साल से ही घटना शुरू हो जाता है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जैसे आप कोई भी जैसे बीज उत्पादन में रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले पहला काम ये है कि आप एक छोटे से 1 एकड़ एरिया से आप पहले उस टेक्निक को थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला आपको एक है कि जैसे आप धान का उत्पादन कर रहे हैं तो आप कुछ करें या ना करें, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बगल वाले जो खेत है उससे आपको जो पृथक्करण है वो मिनिमम 3 मीटर जो है आप जरूर मेंटेन कीजिए, सबसे पहला यहाँ है, और उसके बाद जो है उसके रख रखाव पे काफ़ी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप हार्वेस्ट करते हैं उसको कटाई करते हैं, कटाई से लेकर के उसके बाद आपको स्टोरेज से लेकर के हर चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इसको बीज के रूप में इस्तेमाल करना है, कहीं से भी इसमें मिक्सचर होने का चांस नहीं होना चाहिए। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जब आप ये धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल

0: के अंतराल में आप जब ये टेक्निक सीख जाते हैं, आपको तकनीकी मालूम हो जाती है, तब आप ऐसे इसको रोजगार के रूप में इस्तेमाल इसको आगे लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक तो सबसे पहले आप एक छोटा सा कोई फर्म है, जैसे आप कोई कंपनी है या चार पांच लोग मिल करके, जैसे अभी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो चुका है, उसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके आप एक कंपनी फ्लोट कर दीजिए मार्केट में। उसका आप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो होता है, अगर आप किसी मान लीजिए कि आप एक भागलपुर जिला में बेचना चाह रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है वहां पे आप लाइसेंस ले लीजिए। अगर आप पूरे बिहार में बेचना चाहते हैं तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप उनसे लाइसेंस ले लीजिए, और लाइसेंस लेकर के आप पूरी तरह से इसको एक कमर्शियल के फॉर्म में आप इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि आप कैसे इसे व्यवसाय यानी कि रोजगार के अवसर के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को किस हद तक बीज उत्पादन से फायदे की उम्मीद हो सकती है?
0: इसमें बहुत सारा चीज है। जब सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, हम जैसे आमतौर पर क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक दसला वेराइटी चलती है, जैसे लोकल वेराइटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा होता है उसका, नो डाउट उसका मतलब हर चीज में अच्छा है, आपका टेस्ट में अच्छा है, प्रोडक्शन में अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन उस वैरायटी को हम सिर्फ यहीं पे कुछ ही जगह पे ही या एक ब्लॉक में लग रहा है, चाहे चार पांच विलेज में लग रहा है, हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसी वैरायटी को, उसी किस्म को जो आप दसला बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर संस्था है जो दिल्ली में है जिसका सेंटर और जगह भी है, जिसको हम लोग पीपी व्यूहार एक्ट बोलते हैं, अथॉरिटी बोलते हैं, उसका आपको सारा चीज हमारी यूनिवर्सिटी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप उसको रजिस्टर करा लीजिए और फिर उसका प्रोडक्शन शुरू कीजिए। उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा उसमें मुनाफे की उम्मीद होती है, क्योंकि दसला वैरायटी हम सभी लोग यूज करते हैं लेकिन उसका कमर्शियल कुछ नहीं हो पाया है।
1: अच्छा।
0: एक तो ये है, और उसका जो सीड प्रोडक्शन का काम है, उसका सीड प्रोडक्शन का काम शुरू कीजिए, क्योंकि वो किसी के पास नहीं है। अगर वो कोई लेने आएगा तो सिर्फ आपसे लेगा, और उसका जो एरिया है या क्षेत्र का जो विस्तार होना है वो होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा, आपका सीड का जो सेलिंग वो बढ़ता जाएगा और आपका मुनाफा यूं ही बढ़ता जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो आप पहले से ग्रो कर रहे हैं, उसमें नया कुछ भी नहीं है। आप उसको बस किसी सिंपल सा है, यहाँ आकर के एक बार जो है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय मतलब स्टाफ से मिल करके आप उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए और उसका सीड प्रोडक्शन का काम उसको शुरू कर दीजिए। अब जहां भी दिक्कत होगा, यूनिवर्सिटी है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, हम लोग हैं सारा चीज बताने के लिए।
1: तो यहाँ पर हमने जाना कि किसान भाई कैसे बीज उत्पादन से फायदे मिल सकता है इन्हें, और इसके बाद किसान भाई बीज उत्पादन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और इनमें इनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ, सबसे पहले ये है कि बीज, जैसे बीज उत्पादन की शुरुआत अगर आप करना चाह रहे हैं, तो जैसे पहले मैंने भी बताया था कि एक एक एकड़ एरिया से पहले कुछ टेक्निक्स होते हैं, उस टेक्निक्स को आप सीख लीजिए थोड़ा बहुत। आप उस आपको उसके लिए बगल के कृषि विज्ञान केंद्र है, या अगर आपका जैसे आप यूनिवर्सिटी के नियर बाई हैं, विश्वविद्यालय के नज़दीक है, तो वहाँ आ जाइए, कृषि विज्ञान केंद्र में आ जाइए। हम लोग थोड़ा सा आपको एक टेक्निक सिखाएंगे, हमारे यहाँ कई प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, तो वो हम एक टेक्निक सिखाने के बाद आपको हम कुछ नॉलेज से होता है, कुछ ज्ञान जो स्टार्टिंग जो ज्ञान होता है वो हम आपको दे देंगे। उसके बाद जो है आप प्रोडक्शन का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक या दो एकड़ एरिया से ही शुरू करना है। और इसके बाद आप सबसे पहले कि आपको तो ये पता जरूर होगा कि आपके यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी कौन चल रही है। जैसे मान लीजिए अगर आप गेहूं में है तो कौन सी वैरायटी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, हो सकता है कि धान में होगा तो धान में कौन सी वैरायटी अच्छा काम कर रही है, मकई में तो मकई में कौन सी कर रही है। आप बहुत बड़े लेवल पर मत जाइए, अभी कंपनी की शुरुआत आपको करनी है तो एक बहुत छोटे लेवल से कीजिए, और उसमें जहां आपको दिक्कत होगा, जैसे इसमें कई ग्रुप है, जैसे आप अगर आपको फाउंडेशन से प्रोडक्शन करना है, आधारित बीज बनाना है, या आपको ये सर्टिफाइड बीज बनाना है, जैसे प्रमाणित बीज बोलते हैं, तो अगर आपको आधारित बीज बनाना है तो उसके लिए आपको ब्रीडर सीड की आवश्यकता पड़ेगी जो यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर आपको सर्टिफाइड सीड बनाना है तो उसको आपको फाउंडेशन सीड की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में अच्छा कर रही है और उसका जो बीज है हमको कहाँ से उपलब्ध होगा। अगर वो बीज अगर आपको मिल जाता है तो फर्दर आप जो है सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर किसान भाई, अभी ध्यान रखने की बात है, तो अगर वो बाजार जाते हैं बीज खरीदने के लिए, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना?
0: हाँ, देखिए बाजार अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले जो आप अभी तो बहुत सारा जैसे बाजार में भी जो मटेरियल मिल रहा है बीज के नाम पे जो बेचा जा रहा है, जो हम लोग देखते हैं

0: सर ऑब्जर्वेशन भी है कि वो उस तरह से ऑथेंटिक नहीं है, बस लेकर के आ रहे हैं, किसी तरह पैक कर दे रहे हैं, सेल कर दे। आप टैग जरूर देखिए, बोरे पे जहां भी कुछ लगा हो टैग देखिए, संस्था का नाम देखिए कि किस संस्था ने इस बीज को ये प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किसने किया है और किस संस्था ने इसका प्रमाणीकरण किया है। क्या वो बिहार स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से प्रमाणित है? अगर टीएल अगर बेच रहे हैं तो तब आप उसमें जो प्रोड्यूसर का एक टैग होगा जिसमें टैग लगा रहता है कि आपको वो देना ही देना है। दो तरह का टैग आपको किसी भी सीड लेवल पे दो तरह का टैग होता है, एक आपका सीट फाउंडेशन सीट या सर्टिफाइड सीट का टैग होता है और एक होता है अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर अलग से लेबल जिसको बोलते हैं वो लगा होगा। तो बीज के बोरे पे मिनिमम एक टैग तो जरूर होगा, उसमें आपका सारा डिटेल लिखा होगा, कौन सी किस्म है, कितना उसका प्योरिटी परसेंटेज है, क्या मॉइस्चर परसेंट है और उसके बाद कितना किलोग्राम है, ये सारा चीज लिखा होगा, उसको देख करके परचेज कीजिए।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना, डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आप अपनी जो मुनाफा है उसे दोगुना करने के लिए कैसे गुणवत्ता वाली बीज खरीद सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। और यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले आपको, जैसे कि बीज उत्पादन के लिए किस तरह आप इसे व्यवसाय बना सकते हैं बीज उत्पादन के तौर पर। और इसके बाद आपने जाना कि किसान भाई कि आप कैसे इससे फ़ायदे पा सकते हैं यानी कि बीज उत्पादन से। तो इस तरीके से आप बीज उत्पादन कीजिए और साथ ही गुणवत्ता वाले बीज लाइए बाज़ार से और उसे बोइए और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लाइए और मुनाफा भी दुगना पाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी थे और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आगे आपसे अगले विषय पर बातें होंगी, जाते जाते आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब?
0: एक्चुअली थोड़ा एक छोटा सा मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि आप लोग जैसे किसान भाई आप यूज़ करते हैं तो एक तो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज यूज कीजिए, जो यूनिवर्सिटी का बीज है आप कोशिश कीजिए, अगर आप नियर बाई हैं तो ज़रूर उसको परचेज कीजिए, साथ ही अगर किसी विज्ञान केंद्र के आसपास हैं तो आप वहाँ से लीजिए। क्योंकि आज ही अभी के दौर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बीज है जिसका हमको पता नहीं चल रहा है कहाँ से आया, कैसे आया और उसका क्या प्रोडक्शन होगा, क्या क्वालिटी है, कुछ पता नहीं है। तो आप जब भी परचेज कीजिए किसी ऑथेंटिक सोर्स से परचेज कीजिए, एक पर्टिकुलर शॉप से परचेज कीजिए कि जहां पे कि ये बीज हमको सही मिलता है। और एक चीज और है, हमेशा हर साल जो है आप बीज अगर हो सके तो मेरा अनुरोध आपसे यही होगा कि बीज बचा करके हम लोग जो रखते हैं उस ट्रेडिशन को मेरे हिसाब से जो हमारा रिसर्च कहता है उसको अब फिलहाल बंद करने की आवश्यकता है। आप अब हर साल जो है अगर आप कुछ ही बीज खरीदते हैं आप कुछ ही बीज खरीदिए लेकिन हर साल खरीदिए। और जहां तक हम लोग बीज का जो ज्यादा हम दर यूज करते हैं तो जो हम लोगों का रिकमेंडेशन जहां जाता है आप कोशिश कीजिए कि आप उसी रिकमेंडेशन को यूज कीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर प्लांट पॉपुलेशन अगर फील्ड में होगा तो उससे आपको उपज में कोई ज्यादा अंतर मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपका लागत बढ़ेगा।
1: कहने का मतलब कि आप जो बीज स्टोर करके रखते हैं कहने की उनकी गुणवत्ता जो है कम होती
0: कम हो जाएगी
1: तो इसलिए आप स्टोर करके ना रखें।
0: कोशिश कीजिए कि आप अगर हर साल खरीद सकते हैं तो वह बहुत अच्छा है।
1: तो आपने जाना किसान भाइयों कि कैसे आप इस तरीके से जांच परख करके गुणवत्ता वाली बीज ले सकते हैं और इसके साथ ही आप दुगना मुनाफा पा सकते हैं। तो आइए आज के लिए तो बस इतना ही, अगले दिन आपसे अलग विषय पर मैं बातें करूंगी और अगले एक्सपर्ट को मैं लेकर आऊंगी। तो सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम और रखिए अपना ख्याल। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू।

0: हमारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग, तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई

नो तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्र

अब सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्ज की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गलाघोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है।

ही नहीं, कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए, आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं, और आपको छुट्टी दे रहे हैं कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का होता है, जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है, यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा, फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज़ का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफ़ी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10-2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4-6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है, यानी कि 4-6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई
करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है ये। आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जाग कर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है।

वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50-80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30-90 मिनट की देरी हो सकती है। इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए, आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आपको ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2-3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा, इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज़ सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फ़ोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं, फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है,

0: शक्ल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि। उन्नत कृषि, जहां हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के बारे में और उनसे जुड़ी बातें। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्नी मिलेट के बारे में, और किस तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए, क्या विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर, जब हम बात कर रहे हैं कॉर्नी मिलेट की, तो क्या कॉर्नी मिलेट जलवायु के अनुकूल होता है?
5: देखिए, कॉर्नी, जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉक्सटेल बोलते हैं, इटालियन मिलेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सभी मिलेट्स का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। सिर्फ ये कॉर्नी ही एक ऐसी फसल है जिसका एशिया में उत्पादन जन्म स्थान है, जो कि चाइना हो जाता है। तो इसको हम सेटारिया टेलकर के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में फॉक्सटेल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, टेल मतलब पूंछ। तो इसकी जो बालियाँ होती हैं लोमड़ी की पूंछ की तरह बिल्कुल लटकी रहती हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर अलग अलग प्रजातियों की लंबाई होती है बालियों की, मतलब कुछ बालियां जैसे SI 3156 है, इसकी बाली सबसे लंबी होती है, 32 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, अर्थात 1 फीट की लंबाई हो जाती है इसकी बालियों की। तो ये सभी फसलें, चूँकि कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, अधिक तापमान में को भी सह करके उत्पादन दे देती हैं, हमारे बिहार राज्य में खरीफ मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, गर्मी के मौसम में भी उगाई जा सकती हैं। हमारे किसानों के लिए तो बहुत एक अल्टरनेटिव, सच कहा जाए तो जो मूंग होता है, मूंग का एक अल्टरनेटिव फसल है गर्मी के लिए। वहीं बरसात के लिए जिन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति है, वहां तो ये बहुत ही रामबाण साबित हो रही हैं, क्योंकि मात्र 90 दिनों में पककर तैयार होने वाली ये कौनी आपको प्रति एकड़ 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता दे रही है। और इसका चावल मार्केट में देखिए तो 150 रुपये किलो तक का चावल है, और वो भी समय पर मिल नहीं पा रहा है। हमारे ऋषि मुनि इन सभी फसलों का सेवन करके 200 साल तक जीवित रहा करते थे। तो इस जलवायु अनुकूल फसल को उगाना तो हमारे लिए बहुत ही

0: लाभकारी है ही, हम पूरे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को भी संतुलित कर सकते हैं इन सब की खेती को बढ़ावा दे करके।
1: जी सर, और अगर हम बात करें कि कब हमें कौनी मिलेट की खेती करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए?
0: तो कौनी की जो उपयुक्त समय होती है बुआई का, खरीफ मौसम में हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक, जब कभी भी खेत हमको खाली मिल जाए और खेत में सफिशियंट मॉइस्चर हो, नमी हो, उस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये 85 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाता है, 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो अब देखा जाए कि अगर हम, कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि इसकी बुआई लोग क्या करते हैं कि इनका सरसों है, मसूर है, चना है, इसकी कटाई करने के बाद बुआई मार्च के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं। तो जब मार्च के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो इनकी फसल जून के प्रथम सप्ताह में पक करके तैयार होती है। फिर दूसरी फसल 15 जून तक बरसात मिल जाता है, या कभी कभी 20 जून तक बरसात का पानी मिलता है, तुरंत उसमें दूसरी फसल दे देते हैं इसी कौनी की। तो 20 जून को बुआई करते हैं तो पुनः 3 महीने, जुलाई, अगस्त, 20 सितंबर तक पक के तैयार हो जाती है। तो हम देखा जाए तो गर्मी और खरीफ में एक एक फसल बड़े आराम से इसकी ले सकते हैं और अच्छे उत्पादन दे देती है। तो खरीफ मौसम में सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बात करें तो 15 मई से लेकर के आप 15 जून या लेट कंडीशन में 15 जुलाई तक भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपको खेत खाली हो रहा है तो आप 30 जुलाई तक भी कर रहे हैं तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, हम लोग ऐसा रिसर्च करके देख चुके हैं। तो इसका हम यूँ कर सकते हैं 15 मई से लेकर 30 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले खेती कर सकते हैं। 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जब बुआई करेंगे तो थोड़ा सा 5 से 10% उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत लंबा विंडो है। आप 15 मार्च से लेकर 10 मार्च से लेकर के आप देखा जाए तो 30 अगस्त तक जब भी आपका खेत खाली है आप बुआई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी फसल है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खेती कैसे करें। तो जैसे हम बाकी मिलेट्स या दूसरे फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं, वैसे ही इसकी भी खेत की तैयारी करनी होगी। 2 से 3 बार जुताई करके पाटा कर दें, खेत अच्छे से तैयार हो जाए। तो खरीफ मौसम में अगर हम रेज बेड पे लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। रेज बेड के पीछे हमारा कहने का मतलब यह है कि फसल के बीज के पास कभी भी जल का जमाव नहीं होना चाहिए, ऊपरी और मध्यम ऊपरी ज़मीन में ही इसकी खेती करें, जहाँ कहीं बरसात का पानी न जमा होने पाए वहीं खेती करें इसकी। तो अच्छे से तैयार खेत में हम रेज बेड या ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से बेड बनाकर खेती करें। वो सुविधा नहीं है तो हम फ्लैट मेथड्स में सीधा बुआई कर सकते हैं, कतार से कतार की दूरी 9 से 10 इंच रख सकते हैं। बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न रखें, अन्यथा ज़्यादा गहराई पर जाने पर बीज का जमाव नहीं होता है। अब बात आती है इसमें उपयुक्त प्रजातियों की, क्योंकि जो भी प्रजातियाँ हैं अगर हम परंपरागत अपनी पुरानी प्रजातियाँ लेंगे तो उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप कहिएगा कि धान की तुलना में प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप जो अभी हम बताने जा रहे हैं उन प्रजातियों का प्रयोग करेंगे तो धान से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि कौनी का एक प्रजाति है SIA 3156, दूसरा है SIA 326 और तीसरा प्रजाति है SIA 3088, चौथा है श्री लक्ष्मी। ये चारों प्रजातियाँ हम ले सकते हैं। एक प्रजाति हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, राजेंद्र कौनी 1, इसको भी ले सकते हैं। SIA 3156 सबसे अच्छी प्रजाति है, इसका हम लोग अपने रिसर्च स्टेशन पर 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले चुके हैं। जब हम लोग इसको BBF पर लगाते हैं, ब्रॉड बेड फरो पर लगाता है, फील्ड में पानी का जमाव कभी नहीं होता है, तब अच्छे कंडीशन में 11 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों के पास सुविधा है तो आप BBF पे बुआई करें, रेज बेड बनाकर बुआई करें, नहीं तो कतारों की दूरी 9 इंच रखते हुए 10 इंच रखते हुए आप फ्लैट मेथड में बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बुआई का इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं, लेकिन छिटकवा विधि में आपको बीज दर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रति एकड़ इसका जो बीज दर है वो 4 किलोग्राम पर्याप्त हो जाता है, लेकिन आप छिटकवा विधि से लगा रहे हैं तो वहाँ पे बीज दर 25% बढ़ाना होगा, अर्थात आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना पड़ेगा। तो छिटकवा विधि से भी बुआई करके खेत में मिलाया जा सकता है, बस उथली जुताई करनी होगी वहाँ, जो 1 इंच से गहराई पर बीज न जाने पाए। तो इस तरह से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आता है इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की। चूंकि ये फसलें ऐसी हैं जो कमजोर भूमि में

0: भी हो जाती हैं, इनको कम खाद की जरूरत पड़ती है, पानी की जितने जरूरत होती है उससे ज्यादा बरसात हो रहा होता है तो पानी की अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में अगर इसकी हम खेती करते हैं तो जनरली एक सिंचाई देने की जरूरत पड़ जाती है, और कभी कभी अगर हाई टेम्परेचर है, गर्मी ज्यादा है तो वहाँ दो सिंचाई भी, तो गर्मी में तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा आपको जब सिंचाई की सुविधा हो तभी गर्मी की खेती करें, 15 मार्च 10 मार्च को बुआई करें, नहीं तो सिर्फ खरीफ फसल की बुआई करें अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो। जब बरसात का पानी मिलता है आपको मई के अंतिम सप्ताह में या 15 जून तक, जब भी सिंचाई का बरसात का पानी मिलता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी लेट मानसून आता है तो आप लेट से भी बुआई कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया इसकी बुआई हम लोग 15 अगस्त तक भी अगर करते हैं तो भी कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी विभिन्न टाइम पर विभिन्न विधियों से बुआई कर सकते हैं। किसी कारणवश हमको इंटेंसिफिकेशन करना है तो हम इसकी नर्सरी डाल करके रोपाई भी कर सकते हैं। लगभग 22 से 25 दिन का बिचड़ा जो है हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में मेंटेन करते हुए 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रोपाई में जितना खर्च होता है उतना हमारा निराई में खर्चा बच जाता है, क्योंकि जब हम रोपाई करेंगे तो एक निराई का खर्चा बच जाएगा। अब खरपतवार प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर समय पर हम खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं कि फसल का उत्पादन, जैसा हमने बताया 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता है, लेकिन अच्छे कंडीशन में अगर ज़्यादा खरपतवार, बहुत हैवी खरपतवार लग जा रहा है तो आपको 5 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ उत्पादन नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय पर विशेषकर बुआई से 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत आपका खरपतवार से फ्री होना चाहिए। अब खरपतवार को हटाने के लिए, खरपतवार को न आने देने के लिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए आपको बहुत सी विधियाँ हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन फसलों को लगाना है तो कहीं कहीं जहाँ हमारे पास हर्बिसाइड नहीं है वहाँ हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं, जो भी परेनियल खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार के बीज भी नीचे चले जाते हैं तो खरपतवार कम आते हैं, तो वो विधि भी लगाई सकती है। दूसरा है कि हम बहुत से हमारे पास आजकल पावर बीडर आ गए हैं, पावर बीडर का प्रयोग करके हम लोग कतारों के बीच में मशीन चला करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते। दूसरा है मैनुअल बीडर, आजकल मैनुअली जो मानव चालित यंत्र हैं उसका भी कतारों के बीच में प्रयोग करके हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पौधों के किनारे पर खरपतवार उसको हम मैनुअली लेबर से निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं रसायन का, इसके लिए पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त हो जाता है, अर्थात यूं कहें कि 1 से 1.25 लीटर बाजार का पेंडीमिथिलीन प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना है बुआई के तुरंत बाद, बुआई के 24 घंटे के अंदर दे देना है। दवा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना हो। अगर आपका कृषि वैज्ञानिक से सलाह मिली है कि बरसात होने वाली है तो कदापि प्रयोग न करें। पेंडीमिथिलीन का प्रयोग आपको तभी करना है जब मौसम साफ सुथरा रहे और अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना रहे, तभी प्रयोग करें, क्योंकि इन सब का बीज की बुआई हम लोग उथला करते हैं, 2 सेंटीमीटर हमने बताया गहराई पर करते हैं, और अगर पेंडीमिथिलीन हम देते हैं और उसके तुरंत बाद 10 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो क्या होगा कि पेंडीमिथिलीन रिस करके बीज के संपर्क में चला जाएगा और इसके कौनी के बीज को भी जमने नहीं देता है, तो ये सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ती है। किसान भाइयों की सुविधा के लिए बता दें कि आप 30 ml पेंडीमिथिलीन दवा प्रति टंकी की दर से प्रयोग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी पानी जरूरत पड़ती है इस तरह से, लेकिन ध्यान रखना होगा बुआई के तुरंत बाद करें या 24 घंटे के अंदर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते बरसात होने की संभावना नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें हर्बिसाइड हमारे पास अभी तक जो मार्केट में उपलब्ध है इन सब फसलों के लिए केवल 2,4-D ही है, और 2,4-D जो हमारा 58% का है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D 80% का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D एक लो कंसंट्रेशन का आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 58% का अगर दवा है तो उसका जनरली 25 ml प्रति टंकी पानी की दर से व्यवहार करें तो आपकी फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो मर जाते हैं, लेकिन जो सक्रिय पत्ती और बाकी खरपतवार है वो बचे रहते हैं, तो उनको आपको लेबर लगा करके ही निराई करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरह से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल कौनी बीज उपलब्ध हो जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से।
0: किसान भाइयों के लिए एक और मेरे पास एक ऑफर है, जो हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके तहत हम लोग बीज उपलब्धता के अनुसार पर 25 से 30 किसानों को हम लोग निःशुल्क इसका बीज वितरित करेंगे। जो भी इच्छुक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनको निःशुल्क हम लोग बीज उपलब्ध करा देंगे 2 kg प्रति फार्मर्स। जिन किसानों को ज़्यादा एरिया में लगाना है वो लोग बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो लोग इस फसल की उत्पादन कर सकते हैं, उसके लिए बिहार सरकार इनको

0: ₹4,000 तक का अनुदान दे रही है, ₹2,000 इनके खाते में डाल देती है, जबकि ₹2,000 का विभिन्न प्रकार के इनपुट्स इनको उपलब्ध करके देती है।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।
2: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
4: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जो सालों भर मिलता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर लोगों का पसंदीदा भी होता है. शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्हें केला पसंद नहीं है. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं केले की वैज्ञानिक खेती के बारे में. किस प्रकार से केले की वैज्ञानिक खेती की जा सकती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि प्रकाश. मैम, आप हैं फल विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद उमा.
0: तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में केला की कौन सी प्रमुख किस्में हैं जो लगाई जाती है.
1: बिहार में केले की काफ़ी सारी किस्में लगाई जाती हैं. इसमें से कुछ पारंपरिक

0: किस्में भी हैं और कुछ उन्नत किस्में भी हैं जो लगाई जाती हैं। पारंपरिक किस्मों में चिनिया, मालभोग, अल्पान, कोठिया, ये सारी किस्में हैं। और इसमें से जो चिनिया, मालभोग और अल्पान हैं, ये जनरली हम पका कर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कोठिया और गोरैया, ये जो है कोठिया, मुठिया और गोरैया, ये तीन जो हमारी किस्में हैं, ये सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है, कच्चे खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ उन्नत किस्में हैं जो अभी किसान भाइयों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है G9 वेराइटी, या फिर ग्रैंड, जिसे ग्रैंड नैने बोलते हैं, और G9 के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार में खासकर की नौगछिया और भागलपुर से के आसपास के ज़िलों में ये G9 वेराइटी आजकल किसान ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो उपज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा जो लोकल वेराइटीज़ है, हमारी पारंपरिक वेराइटीज़ है, जैसे कि चिनिया, अल्पान और मालभोग, स्वाद की वजह से ये ज़्यादा लोकप्रिय हैं जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं उसके लिए। तो किसान भाई अपने दोनों तरह की किस्में लगाते हैं।
1: जी मैम, और अब बात करते हैं भूमि की तैयारी कैसे की जा सकती है और किस प्रकार की मिट्टी उचित होती है केला के फसल के लिए।
0: तो केला जो है वो केला की जो मिट्टी की ज़रूरतें हैं बहुत ख़ास नहीं है केला को, लेकिन एक समतल की मिट्टी चाहिए जो कि दोमट होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए, और इस मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 तक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बस ध्यान रखने की बात यह है कि जो मिट्टी है उसमें पानी रुके ना, निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पर्याप्त नमी, लेकिन वो पर्याप्त नमी भी रहे, ऐसा ना हो कि ज़्यादा बलवी मिट्टी है जिसमें नमी ना रहे, या फिर ज़्यादा गीली मिट्टी हो जिसमें अधिक नमी रह जाए। मिट्टी सबसे अच्छी होगी अगर दोमट मिट्टी है और उपजाऊ है, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, ऐसी मिट्टी केले की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। जब किसान भाई केले के बगान लगाना चाहें तो उसके पहले उसमें अच्छा होगा कि अगर कोई हरी खाद की वाली फसलें जैसे सनई, ढेंचा या लोबिया लगाकर उसे मिट्टी में मिला दें, तो इससे मिट्टी की जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो अच्छा बढ़ जाएगा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद खेत की अच्छी तरह 3-4 बार जुताई कर लें, अप्रैल मई के महीने में उसे खेत को सूरज की धूप लगने दें ताकि जो भी कीटाणु हैं वो मर जाएं और जो मिट्टी है हमारी वो कीटाणु रहित हो जाए। इसके बाद केले के पौधे लगाने के पहले 60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद लें, जो कि 60 सेंटीमीटर कम से कम 60 सेंटीमीटर गहरा हो। इन गड्ढों को खोदकर उसकी मिट्टी बाहर निकाल लें और फिर उसे 15-20 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उस गड्ढे को खुली धूप में छोड़ने से जो भी अंदर के जो भी कीड़े हैं, मकौड़े हैं या फिर किसी तरह के कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। इसके बाद जब केला का पौधा आप लगा रहे हों तो उस मिट्टी में आप 20 किलोग्राम कंपोस्ट, 1 किलोग्राम नीम की खली तथा 100 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट डाल दें। इसके अलावा 20 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाकर उस गड्ढे को आप भर दें और जो सकर्स लगाएं वो गड्ढे के बीचों बीच लगाएं।
1: मैम, अब आप हमें ये बताइए कि पौध प्रवर्धन क्या होता है, साथ ही पौधा लगाने का समय, उचित समय और रोपण की उचित दूरी क्या होनी चाहिए।
0: केले का पौध प्रवर्धन हम मेनली सकर्स के थ्रू करते हैं। सकर्स कहें तो जो आप केले के पौधे लगाते हैं उसके साइड से जो नए पौधे होते हैं उसे ही हम सकर्स कहते हैं। और ये सकर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सकर्स और दूसरे होते हैं स्वॉट सकर्स। तो जो हमारा केला को हम जब पौध प्रवर्धन की बात करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर स्वॉट सकर्स या तलवारनुमा सकर्स को इस्तेमाल, जिसे हम तलवारनुमा सकर्स बोलते हैं हिंदी में, उसे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ये स्वॉट सकर्स होते हैं ये ज़्यादातर जो मदर प्लांट होती है उसके पास होते हैं। ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और इसमें जो फल लगते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और बात अब आती है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि वो स्वॉट सकर है या वाटर सकर है। तो आप देखेंगे कि जो केले के साइड से जो सकर्स निकलते हैं उसमें कुछ सकर्स होते हैं जिसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और कुछ होते हैं जिसकी पत्तियाँ नुकीली होती है, पतली होती है और नुकीली होती है। तो जो नुकीली पत्तियां वाले सकर्स होते हैं हमें वही सकर्स को लेना चाहिए पौध प्रवर्धन के लिए। इसके अलावा जब हमने सकर्स ले लिया है तो हमें ध्यान

0: रखना है कि जब हम ये सकर्स लाएं तो किसी ऐसे खेत से लाएं जहां पे पहले से कोई किसी तरह की बीमारी ना हो, जिस खेत में साफ सुथरा खेत हो और वहां जो केले लगे हुए हैं उसमें किसी भी तरह की बीमारी ना हो। अगर किसी तरह की बीमारी है तो वहां उस जगह उस खेत से नए सकर्स लेने से किसान भाइयों को बचना चाहिए। अब इन सकर्स को लाते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि सकर्स आपके हेल्दी सकर्स हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा छोटे सकर्स आप ले आएँ, कम से कम वो सकर्स 1.5 से 2 किलो के होने चाहिए। इसके अलावा जब आप सकर्स को आप लगाते हैं तो उसे गड्ढे में बहुत ज़्यादा अंदर भी ना डालें। अभी जब पौध प्रबंधन की बात करते हैं तो सकर्स के अलावा हम टिश्यू कल्चर के पौधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बिहार सरकार के द्वारा G9 वैरायटी के जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पे किसानों को दिए जाते हैं। तो जो ये टिश्यू कल्चर के पौधे होते हैं वो पौधे अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर के पौधों से ही पौध प्रबंधन करें, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उसमें किसी भी तरह की रोग व्याधि नहीं होती है और वो उसका जो उपज होता है ये देखा गया है कि नॉर्मल जब हम वाटर स्वॉट सकर्स या नॉर्मल खेत के सकर्स से जब हम ग्रो करते हैं और जब हम टिश्यू कल्चर के पौधे से ग्रो करते हैं तो देखा गया है कि जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे होते हैं उनका उपज ज़्यादा होता है। तो अगर आपके इलाके में टिश्यू कल्चर वाले पौधे मिल रहे हैं तो कृपया आप उसी को पहले लगाएं। फिर ये जो सकर्स हम लगाते हैं, ये केले को हम सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि वो जून जुलाई या अगस्त के महीने में लगाएं तो उसमें सिंचाई की प्रबंधन ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है तो इस वक्त किसान ज़्यादा अच्छे से वो पौधे लगने की जो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और सकर्स जल्दी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इन पौधों को जो लगाना है कितनी दूरी पे लगाना है, तो दूरी की बात करें तो अगर किसी बोनी किस्म को लगा रहे हैं तो आप 1.8 बाय 1.8 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, और अगर बहुत लंबी किस्में हैं जैसे मालभोग हैं, चिनिया हैं, ये जो लंबी किस्में हैं इनको अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर या 2.5 बाय 2.5 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं।
1: जी मैम, अब आप हमें ये बताइए कि सिंचाई के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए।
0: केले के पौधों को उनके पूरे जीवन चक्र में लगभग 900 से 1200 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत होती है, और यह पानी की ज़रूरत या तो बारिश से हो जाए या फिर आर्टिफिशियली इरीगेशन दे के सिंचाई करके दी जाए, दोनों से दिए जा सकते हैं। और इसमें हर चरण विकास के हर चरण में पानी की ज़रूरत होती है। ये केला सूखा ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में 3 से 4 दिन के अंतराल पे तथा ठंडी के मौसम पे हर 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि पैदावार ज़्यादा अच्छे हों। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन में एक और चीज़ की ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है कि जब हम सिंचाई करें तो या तो हम ड्रिप इरिगेशन लगा दें जिससे कि जितनी ज़रूरत है हर पौधे को उतना ही पानी दिया जाए, या अगर फ्लडिंग या चैनल इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वो पानी पानी केले के पौधों के पास ज़्यादा दिन तक रुका ना रहना चाहिए। ये पौधों को अगर पानी रुका रह जाएगा तो पौधों के विकास में रुकावट कर सकता है। उसके बाद बात आती है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन केले में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केला पोटेशियम का एक हैवी फीडर है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम चाहिए। अगर बात करें तो एक केले के पौधे को उसके पूरे जीवन चक्र में 300 ग्राम नाइट्रोजन, 45 से 50 ग्राम फॉस्फोरस और 400 ग्राम पोटेशियम की ज़रूरत होती है। इसमें से जो खाद है और पौधे लगाने के समय ही हम खाद 20 किलोग्राम खाद और 1 किलोग्राम नीम की खली डाल सकते हैं, और साथ ही जो फास्फोरस है वो भी हम जब हम पौधे लगा रहे होते हैं उसी वक्त डाल दें। उसके अलावा जो नाइट्रोजन और पोटाश है ये आप 5 विभाजित खुराक में डालें। जैसे कि अगर आपने पहले लगाने के पहले महीने में नाइट्रोजन डाला है, फिर आप तीसरे महीने में डालें, पांचवें महीने में डालें, फिर सातवें महीने में डालें। इसी तरह से पोटेशियम का भी है कि अगर

0: आपको 400 ग्राम पोटेशियम डालना है तो आप उसे पांच खुराकों में विभाजित करें और पहले महीने, तीसरे महीने, पांचवें महीने, सातवें महीने और आखिरी खुराक जो फूल निकलते हैं उस वक्त आप डालें। इस तरीके से खाद एवं उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो इससे आपके जो केले हैं उसकी वो फली बहुत अच्छी और भरी हुई होंगी और आपका जो उपज है वो ज़्यादा अच्छा आएगा।
1: और मैम, अब हमारे किसान भाई बहनों को आप ये बताइए कि केले की फसल में उसके तुड़ाई तक क्या क्या ऐसे विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है?
0: तो केले में काफ़ी सारे कार्य होते हैं जो बुआई से लेके फसल कटने तक हमें करना होता है। उसमें से सबसे पहले आती है डीलीफिंग, यानी कि पत्तियों को हटाना। केले के पौधे से अतिरिक्त पत्तियों को हमें समय पर हटाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके जो पुराने पत्तियां होती है वो सूख जाते हैं या गिर जाते हैं, तो आप उन्हें समय समय पर हटाकर खेत से बाहर कर दें, ताकि वो क्या होता है कि जो ये सूखी हुई पत्तियां होती है इसमें कीड़े मकौड़ों का घर हो जाते हैं। तो अगर वही सूखी पत्तियां वहीं गिरी रहेंगी तो उसमें कीड़े ज़्यादा अच्छे से पनप सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप केले के पत्ते हटा, जो भी सूखे हुए पत्ते हैं आप उन्हें हटाकर बाहर निकाल दें। दूसरा आता है वीडिंग, खरपतवार निराई गुराई। केले के जो बगान होते हैं उसमें निराई गुराई करना एक बहुत बहुत आवश्यक कार्य है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी खरपतवार होते हैं उसमें भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाते हैं, उनको एक घर मिल जाता है। और केले में जो कीड़े मकोड़े हैं वो बीमारियों को फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए केले के खेत को आप जितने साफ तरीके से साफ सुथरा रख सके उतना अच्छा होगा केले के अच्छे पैदावार के लिए। उसके बाद आता है डीनेवलिंग। डीनेवलिंग होता है कि जो नर पुष्प होते हैं, आप देखेंगे जब एक गोंद में से सारे फल निकल जाते हैं उसके बाद लास्ट आखिर में एक फूल बचा रहता है, कली बची रह जाती है, तो उसे भी हमें हटा देना चाहिए, ताकि जितनी भी एनर्जी है या जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो केला वो फल में दे सके और फल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो सके। इसके बाद आता है फूल हटाना। ये आप अगर छोटी बौनी किस्में हैं और फूल तक अगर आपके हाथ पहुंच रहे हैं तो आप जो सूखे हुए फूल हैं, जो केले के फली लग गई है उसके नीचे जो सूखी फूल है वो भी आप हटा सकते हैं। उसके बाद आता है गुच्छों को ढकना या बंच कवरिंग, जिसे बंच कवरिंग भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें क्या होता है कि जो जब घोंद बाहर निकल रहा होता है उस वक्त ही हमें गुच्छों को, जो गुच्छे बाहर आ जाते हैं पेड़ से, तो हमें उसे ढकना चाहिए। वो ढकने के लिए या तो आप पीपी बैग्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे जनरली हम पीपी बैग से या फिर छिद्रयुक्त पॉलीथीन या फिर नॉन वुवन बैग से ढक देते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि जो फल हैं उसमें एक तो डायरेक्ट सन धूप नहीं लगती है और उससे टेम्परेचर, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो स्केरिंग बीटल होता है, जो आप देखे होंगे कि केले के फल पे धब्बे हो जाते हैं, वो स्केरिंग बीटल के वजह से होती है। और जब अगर हम बंच कवरिंग कर दें तो ये जो स्केरिंग बीटल से नुकसान होता है, जो केलों पे धब्बे होते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। बंच कवरिंग करने से जो किसान भाई कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल की ज़रूरत भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्केरिंग बीटल होते हैं उसी की रोकथाम के लिए किसान भाई कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। बट इस स्केरिंग बीटल को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस बंच को ढक दें। जब बंच निकल रहा है उसी वक्त स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आप उसे ढक देंगे तो वो स्केरिंग बीटल उसे नुकसान ही नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको कीटनाशक देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद दूसरा आता है डीसकरिंग, या फिर जो सकर्स होते हैं। आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके चारों तरफ छोटे छोटे और नए पौधे आते रहते हैं, तो आपको किसान भाइयों को ये छोटे छोटे जो सकर्स निकलते रहते हैं उसे समय समय पर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सकर्स क्या होते हैं कि अगर आप इसे भी साथ साथ में ग्रो करने देंगे तो ये सकर्स भी मिट्टी से वो खाद लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे जो आपने मेन पौधे के लिए दिया था। तो इसलिए कोशिश करें कि सारे सकर्स

0: आप हटा दें और एक बार जब फूल आ जाए, फल आने लगे, तब रेटूनिंग के लिए आप एक शकर को रखें, उसे बढ़ने दें। जब फूल आके फल आ जाए, उसके बाद आप एक शकर को मेंटेन करके रख सकते हैं, जो आप अगले साल, जिससे आप अगले साल फसल लेने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आगे बताना भूल गई थी कि अगर आप केले की खेती करते हैं तो तीन बार से ज़्यादा एक ही शकर से आप ग्रो नहीं करेंगे, मतलब तीन रेटूनिंग के बाद आप फसल चक्र अपनाएं और उस खेत को पूरा खाली करके उसमें कुछ और फसल लगा दें, चाहे आप मक्का लगा दें या फिर धान लगा दें, गेहूं लगा दें, कुछ भी लगा दें, और उसके बाद एक साल का गैप छोड़ें, उसके बाद ही दूसरा फसल लगाएं उसमें। फिर आता है एक क्रॉपिंग, यानी कि सहारा देना। जब केले के घौन निकल जाते हैं और फलियां बड़ी होने लगती हैं तो केले के पेड़ फलों के भार से झुक जाते हैं, तो इस वक्त ज़रूरी है कि केले के पौधे को सहारा दिया जाए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बांस से हम केले के पौधे को सहारा दे देते हैं, और इससे क्या होता है कि फल पेड़ गिरते नहीं, झुकते नहीं हैं और ना गिरते हैं। बहुत बार संभावना होती है कि जो फल है वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो पौधे झुक जाते हैं और झुककर गिर जाते हैं, तो इससे फलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए जब फल आ जाए, पूरा गोंद बाहर आ जाए और सारे फल निकल जाए, तो बांस की सहायता से पौधों को आप सहारा दे दें।
1: मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि तुड़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए और उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: तो जब केले की तुराई की बात होती है तो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तुराई करें वो जब केले परिपक्व हो जाए उसके बाद ही करें। बहुत बार किसान क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम दूर कहीं किसी दूर बाज़ार में हमें केले बेचने हैं तो वो अपरिपक्व स्टेज पे ही केला को तोड़ लेते हैं या हार्वेस्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप परिपक्वता के पहले उसे तोड़ेंगे तो वो इथिलीन देने से वो पक तो जाएगा या फिर रखे भी वो पक जाएगा, लेकिन जो उसका स्वाद है वो ख़राब हो जाएगा। जो अंदर की जो फली है, वो उसका जो गूदा है, उस पर ना वो स्वाद आएगा ना ही वो उतना भरेगा। तो अभी आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप इंतज़ार करें कि जब वो केला परिपक्व हो जाए तभी तोड़ें। अब बात आती है कि आप कैसे जानेंगे कि ये केला परिपक्व हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप केले का एक एक जो फली है उसे देखें। तो जब कच्चा रहता है तो आप देखेंगे वो उसके चारों तरफ किनारे नुकीले होते हैं, मतलब किनारे गोल नहीं होते हैं। तो जब केले परिपक्व हो जाते हैं तो उसके किनारे गोल हो जाते हैं, केला पूरा ही गोल हो जाता है। अगर केले गोल हो चुके हैं तो यानी कि वो परिपक्व हो चुके हैं। वो केले आपको दिखेंगे वो गहरे हरे रंग से वो हल्के हरे रंग की तरफ, उसका रंग, छिलके का रंग बदलने लगता है, तथा अगर कुछ केले गोंद में कुछ केले पीले पड़ने लगते हैं तो समझना चाहिए कि अब ये केले परिपक्व हो चुके हैं और हम इसकी तुराई कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश किस्मों में 90 से एक फूल निकलने के 90 से 100 दिन के 120 दिन तक में केला परिपक्व हो जाता है और आप इसकी तुराई कर सकते हैं।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से मैम ने बताया, आप उस प्रकार से केले की खेती कर सकते हैं और जिन भी बातों का ध्यान रखने की बात मैम ने कही, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके केले के जो फसल होंगे वो बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे उत्पादन का आप लाभ उठाएंगे। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही आप अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,
3: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान।

0: कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
1: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग, तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए

5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड

को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूले और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें, और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि

0: कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं, परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
1: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
0: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
1: तो मैम, खरीफ प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
0: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है, परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
1: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
0: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम,

0: सल्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की एक तिहाई तथा स्फूर पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में दो बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी दो बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजिम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविच या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी?

0: नहीं होती है खरी प्याज की।
1: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काटकर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
0: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी को आरजे अनु का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और लेकर आए हैं हम आपके लिए, जी हां, सिर्फ आपके लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जो आपको देता है बहुत सारी उन्नत बातों की जानकारी। वैसे हर विषय में जो है हम कुछ खास बातें लेकर आते हैं। अभी फ़िलहाल रवि फसलों की बात, हम इस फसलों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जब रवि फसलों की बात होती है तो दलहनी फसलों को हम छोड़ नहीं सकते। जी हां, दलहनी फसलों की आज बात होगी, और ख़ास तौर पर आपकी आय से जुड़ी बात होगी। जी हाँ, आज आपको बता दें कि हमारा विषय है किसान की आय को दुगना करने के लिए रवि दलहन फसल की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग। वैसे दोस्तों, हम बात करें किसान भाइयों की, तो किसान भाई हमेशा अपने मेहनत लगाते हैं इन दलहनी फसलों को उपजाने में, लेकिन जब आधुनिक तकनीक को उनसे जोड़ दिया जाए, उनकी मेहनत के साथ जोड़ दिया जाए, तो उनकी आय और भी ज़्यादा हो सकती है, दोगुना हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और सबसे पहले तो जहाँ तक हमारा विषय है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, वैसे तो पौष्टिकता की बात करें तो दाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे खाने में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। अब मुझे लगता है कि दाल के बिना हमारा जो खाना है, हमारा जो आहार है, वो अधूरा रहता है। तो सबसे पहले इसके महत्व को हम जानना चाहेंगे, भारत में दालों का क्या महत्व है।
1: किसान बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में दालें जो है मुख्य रूप से प्रोटीन स्रोत के रूप में भोजन का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा टिकाऊ कृषि हेतु भी मृदा की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करने एवं आहार तथा चारे के विभिन्न रूपों में उपयोग आदि इन फसलों के लाभ हैं। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर दलहन की वर्तमान उत्पादकता को दुगना किया जा सकता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो महत्व जाना हमने कि कैसे, मतलब क्या इसके पौष्टिकता के महत्व हमने जाना कि

0: प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमारे जो गरीब हैं वो भी अगर दाल को अपने डाइट में शामिल करें तो उन्हें जो अतिरिक्त उनके शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो आय को दुगना करने के लिए कौन कौन सी तकनीक हमारे किसान भाइयों की मेहनत के साथ जोड़ा जा सकता है?
1: यदि हम उन्नत तकनीकियों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले उन्नतशील प्रजातियों के चयन की बात आती है, तत्पश्चात फसल उत्पादन तकनीक की, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कृषि रसायनों का उपयोग, दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र, मृदा का चुनाव एवं खेत की तैयारी, बीजोपचार, उचित बीज दर एवं बुवाई का समय, पौधों की उचित संख्या, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी इत्यादि है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो मुख्य रूप से बिहार में रवी दलहन फसलों में कौन कौन से प्रमुख दालों की हम बात कर सकते हैं?
1: देखिए, मुख्य रूप से जो जिनका क्षेत्रवार हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे बिहार में मसूर की जो खेती सबसे अधिक
0: जी
1: स्तर पर की जाती है, तत्पश्चात चने की खेती की जाती है। रबी फसलों की बात करें तो इसमें जो है कि विभिन्न दलहनी फसलों के जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों का विकास हुआ है, जिससे उत्पादकता में जो उतार चढ़ाव में कमी जो होती थी उसमें कमी आई है।
0: अच्छा।
1: तथा उत्पादकता में स्थायित्व आया है। अतः विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, जिसे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बोलते हैं, या गैर परंपरागत क्षेत्रों के लिए उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, अतः इनके प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक आपने बात की कौन कौन सी
0: तकनीक
1: दलहनी फसलें जो मुख्य रूप से हैं, उसमें चना और मसूर के बारे में बताया। मसूर में भी दो तरह की किस्में होती हैं, छोटे दाने वाली और बड़े दाने वाली। इसी प्रकार से चने में दो तरह की किस्में हैं, देसी चना और काबुली चना।
0: अच्छा।
1: मसूर में यदि हम छोटे दाने वाले किस्मों की बात करें तो इसमें अरुण, हल 57, NDL1, KLS 218, PL 406, PL 639, PL 6, PL 7 और शिवालिक इत्यादि हैं। जबकि बड़े दानों में IPL 406, DPL 15, DPL 62, DPL 81 और K75, जिसे मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग हम कर सकते हैं। जबकि देसी चने में GCP 105, DCP 92-3, PUSA 256, JG 14, PUSA 362, PG 186 एंड PUSA 372 इत्यादि प्रमुख हैं। काबुली चने के बारे में यदि हम कहें तो इसमें उन्नत किस्मों में सुभरा, पूसा चमत्कार और GNG 1969 इत्यादि प्रमुख हैं।
0: अच्छा, और जहाँ तक तकनीक की बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तो फसल उत्पादन तकनीक के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कुछ?
1: जी, इन सभी तकनीकों के बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं, जिसमें हमने आपको उन्नतशील प्रजातियों के चयन के बारे में आप बताया। अब हम बात करेंगे फसल उत्पादन तकनीक के बारे में। इसमें महत्व है कि सिंचाई, उर्वरक तथा कृषि रसायनों के प्रयोग के बारे में यदि हमारे कृषक बंधु जागरूक हुए तो दलहन की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। सामयिक बुवाई के साथ साथ पर्याप्त पौधों की संख्या, राइजोबियम कल्चर तथा कवकनाशियों से बीजोपचार, खरपतवार प्रबंधन तथा संसाधन संरक्षण तकनीक जैसे बिना लागत के अथवा न्यूनतम निवेश वाले आदान भी उत्पादकता की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र को अपनाएं, जैसा कि उत्तर पूर्वी मैदानों एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में रबी ऋतु हेतु यदि आप चना ले रहे हैं या मसूर ले रहे हैं, इसके साथ आप सरसों, चाहे तो सूरजमुखी या अलसी प्रमुख रूप से इंटर क्रॉप के रूप में ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मृदा एवं खेत की तैयारी। तो प्रमुख ध्यान देने योग्य बात यह है कि उचित जल निकास वाले खेत जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक ना हो तथा पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच हो एवं बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी दलहनी फसलों के आदर्श होती हैं। दलहनी फसलों को सामान्यतः बहुत अच्छे खेत की आवश्यकता नहीं होती है। एक गहरी जुताई के बाद क्रॉस हैरोइंग तथा पाटा लगाने से बुआई हेतु खेत तैयार हो जाता है। मसूर जैसी दलहनी फसलों को यूटेरा पद्धति से बुआई करने हेतु किसी भी प्रकार की कृषण क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि बीजों को पहले बीजोपचार करना जब बहुत ज़रूरी होता है, तो किन चीज़ों से बीजोपचार करें, कैसे करें, उसके बारे में बताएं।
1: जी, बुआई से पूर्व बीजों का उपचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों से बचाव हेतु बीजों को

0: कवकनाशी जैसे कैप्टॉन या थीरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एवं फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राइजोबियम एवं फास्फेट घुलनशील जीवाणु जिसे PSB कहते हैं 15 से 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी देखा जाए हमारे बिहार क्षेत्र में रवि दलहनी फसलों की हम बात करते हैं तो चना और मसूर जो है एक प्रमुख दलहनी फसल है हमारे बिहार क्षेत्र की, तो इसकी बीज दर क्या होती है ये जानना चाहेंगे हम, और बुआई का उचित समय क्या है इसका?
0: जी, बुआई हेतु बीज शुद्ध रोग तथा भौतिक क्षति मुक्त तथा 90 से 95% अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। चने की बात करेंगे यदि हम, तो इसमें छोटी दाने वाली प्रजातियां जिनके 100 दाने का वजन 12 से 15 ग्राम होता है की बीज दर 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर होती है तथा मध्यम एवं बड़े दाने वाली प्रजातियां जिनके बीजों का 100 दाने का वजन 25 ग्राम तक होता है कि 80 से 85 केजी प्रति हेक्टेयर उचित रहती है। बुआई का उचित समय उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरानी दशाओं में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा तथा सिंचित दशाओं में नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। मसूर की बात करते हैं तो छोटे दाने वाली प्रजातियां हेतु बीज की दर 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर तथा बड़े दाने वाली प्रजातियां हेतु 55 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर उचित होती है। उत्तर पूर्वी मैदानों में या मध्य क्षेत्र में भी नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई का उचित समय है। यदि नमी की कमी है तो उस अवस्था में मध्य अक्टूबर बुआई का उचित समय होता है। बुआई में देरी की अवस्था में अथवा धान से खाली हुए क्षेत्रों में उटेरा पद्धति से बुआई हेतु बीज दर 15 से 20% बढ़ा देनी चाहिए।
1: अच्छा, इन फसलों की सस्य क्रियाओं की भी बात करते हैं हम, तो उनके बारे में बताएं हमें।
0: जी, सस्य क्रियाओं से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चने में और मसूर में पौधों की प्रॉपर संख्या का होना आवश्यक है। अतः चने में 33 से 40 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर तथा मसूर में 80 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर उपयुक्त माने जाते हैं। सस्य क्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं हम उर्वरक प्रबंधन की, तो सामान्य दशाओं में जो नाइट्रोजन है आपका 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम तथा पोटेशियम 20 किलोग्राम एवं गंधक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई से पूर्व आधारीय प्रयोग संस्तुत किया जाता है। फली बनते समय अथवा देर से बोई गई फसल में शाखाओं के बनते समय 2% यूरिया या DAP के घोल से छिड़काव करने से समुचित पैदावार मिलती है। मृदा में विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर 15 से 20 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर तथा 1 से 1.5 केजी अमोनियम मोलिब्डेट का प्रयोग की संस्तुति की जाती है। इसके बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। उत्पादकता में कमी को रोकने हेतु फसलों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक है। इसके लिए गुड़ाई एवं हाथ से निकाई जैसी कर्षण क्रियाओं के साथ खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग उचित रहता है। खरपतवारों की आरंभिक वृद्धि पर नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पैंडी मिथिलिन 1 से 1.5 केजी AI प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जहां तक जल प्रबंधन की बात है तो हल्की मृदाओं में अधिकांशतः शीतकालीन दलहनी फसलों में शाखाएं निकलते समय तथा फली बनते समय 1 से 2 सिंचाई लाभप्रद पाई गई है। फूल आने की अवस्था में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फूलों के गिरने तथा अतिरिक्त वानस्पतिक वृद्धि होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दलहनी फसलों में स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करना सर्वोत्तम है। संसाधन संरक्षण में धान मसूर फसल प्रणाली में इनके फसल अवशेष के समावेश से उत्पादकता में वृद्धि होती है। धान कटने के बाद नो टिल सीड ड्रिल की सहायता से चना की बुआई करने और धान की पुआल की पलवार खेत में छोड़ने पर मृदा में नमी का पर्याप्त संरक्षण होता है और चना की उपज में वृद्धि होती है।
1: जी।
0: यदि मक्का और चना फसल प्रणाली अपनाई गई है तो मक्का में 30 केजी फास्फोरस प्लस 5 टन गोबर की खाद तथा चना में 40 केजी फास्फोरस और PSB के प्रयोग से फास्फोरस की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है।
1: तो डॉक्टर साहब अभी एक और जो दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है उन्नत कृषि यंत्र और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी, तो इसका महत्व तो क्या है इसमें?
0: देखिए, उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इसमें उन्नत कृषि यंत्रों में जैसे मानव संचालित नो टिल सीड ड्रिल आता है, ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही कम खर्च वाला तथा धान से खाली हुए खेतों में संचित नमी में लाइन से बुआई

0: लिए उपयुक्त होता है।
1: ये उन्नत कृषि यंत्र महंगे होते हैं या फिर मतलब नहीं, हमारे छोटे किसान भाई
0: कम खर्च वाले हैं और छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं।
1: अच्छा,
0: और इसकी बुआई क्षमता केवल दो व्यक्तियों की सहायता से 0.05 हेक्टेयर प्रति घंटा की जा सकती है। इसके बाद बात आती है वर्टिकल थ्रेसर की। न्यूनतम समायोजन के साथ विभिन्न दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है वर्टिकल थ्रेसर। और चना के लिए इसकी क्षमता जो है 300 केजी प्रति घंटा है।
1: अच्छा।
0: इसके बाद बिनुवर आता है, सक्शन बिनुवर। इसकी ओसाई क्षमता, ये ओसाई के लिए प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। इसकी ओसाई क्षमता जो है 150 केजी प्रति घंटा है। इसके द्वारा धूल, मिट्टी और हल्के अपमिश्रण चूषण विधि द्वारा परिचालक की विपरीत दिशा में उड़ा दिए जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जहाँ तक फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें, क्योंकि दलहनी फसलों में जैविक और अजैविक दोनों तरह के कारक होते हैं जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों का जैविक तथा अजैविक कारकों से बचाव अत्यंत आवश्यक है। समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन, जिसमें रोगरोधी प्रजातियों के स्वस्थ बीजों का प्रयोग, कृषण क्रियाओं में बदलाव, कवकनाशी तथा जीवनाशी तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है, उत्पादकता को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चने की बात करें तो बुआई से पहले क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में आपको बताते हैं। बुआई के पूर्व रोगरोधी प्रजातियों का चयन करें। सूत्रकृमि, जिसे हम नेमेटोड्स बोलते हैं, ग्रसित खेतों में गर्मी में गहरी जुताई तथा निबोली के चूर्ण का 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बुआई के समय उचित समय से बुआई करना अत्यंत आवश्यक है। कार्बेंडाजिम प्लस थीरम, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम सीड अथवा ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम और 1 ग्राम कार्बोक्सिन प्रति किलोग्राम सीड से बीज उपचार करें। निमेटोड से ग्रसित मृदा में कार्बोसल्फान 1% से बीजों का उपचार करें। खड़ी फसल में फली भेदक चना में बहुत लगते हैं, तो फली भेदक कीट से होने वाली क्षति को कम करने के लिए पहली बात की 4 से 5 यौन आकर्षण जाल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नंबर 2, चिड़ियों को बैठने के लिए टी आकार के अड्डों का प्रावधान करें, इसमें 35 से 40 टी आकार के अड्डे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। यदि फली भेदक का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अभिप्राय यह है कि 1 से 2 लार्वा प्रति मीटर पक्ती में पहुंच जाए तो कीटनाशी का छिड़काव करें। इसमें सबसे पहले निबोली के 5% शत का प्रथम छिड़काव करें। द्वितीय छिड़काव NPB न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु का 250 लार्वा समतुल्य प्रति हेक्टेयर की दर से करें और अंत में आवश्यकता होने पर इंडेक्सोकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी का तृतीय छिड़काव करें। मसूर में बुआई के पूर्व क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों तथा सूत्रकृमि से होने वाली क्षति से बचाव के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। बुआई के समय सामयिक बुआई से फसल को उकटा रोग से होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। मृदा जनित रोगों पर नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम प्लस थीरम अथवा ट्राइकोडर्मा प्लस कार्बोक्सिन से बीजोपचार करें। अलसी के साथ अंतःशस्य क्रियाएँ एवं मिश्रित खेती से उकटा रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है। खड़ी फसल में माहू का प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 0.03% का छिड़काव करें। रतुआ रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 0.02 से 0.03% अथवा मैंकोजेप 0.02% का छिड़काव करें। रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। आदि इन सभी उन्नत तकनीकियों को अपनाकर किसान भाई अपनी आय को दुगना कर सकते हैं तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने विस्तार में जाना कि कैसे आप अपने आय को दुगना कर सकते हैं रवि दलहन फसलों की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहे उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?

0: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद

कर सकती हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है, और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है, और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वलिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएँ होती है, कमाने वाली महिलाएँ होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज़ को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो महिलाएं

कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देखरेख, उस पैसे की देखरेख और सारी चीज़ें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही

ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं, और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज़ को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फास्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर से सस्य फसलों के लिए, और बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
2: उमा, अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है। और हमारी जो बिहार की किसान हैं उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक

0: पोषक तत्व है, जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों के बात करें, और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
1: तो मैम फॉस्फोरस क्या है अब ये बताइए।
0: जी, फॉस्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें, तो उसमें ऐसे नाम है, अगर आप सुने होंगे, एटीपी, एडीपी, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग, चाहे मनुष्य हैं, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी कोशिकाओं के लिए फॉस्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएं। तो फॉस्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रिया हैं जिसमें फॉस्फोरस जरूरी होती है, जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन, और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
1: तो मैम सस्य फसलों में अगर हम फॉस्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है?
0: जी, हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है, जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं, तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा, वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फॉस्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट या जरूरी होती है। यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फॉस्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का, वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी, मैंने पहले भी बताया, मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में, उसमें भी आपको फॉस्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में, उसकी जो खराब स्थिति परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फॉस्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फॉस्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
1: मैम जब फॉस्फोरस इतना इम्पॉर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की क्या स्थिति है?
0: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है, और जलोढ़ मिट्टी गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग, हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फॉस्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर, वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे, तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फॉस्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फॉस्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फॉस्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं, तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है। और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फॉस्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फॉस्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम

0: लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 टू 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्ग के होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 या 30 प्रतिशत तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत यानी 15 से 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नट से अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 से 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
1: तो मैम ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसकी इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है उस के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फास्फोरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फास्फोरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फास्फोरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फास्फोरस जो दे रहे हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूर जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फास्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फास्फोरस की वो फास्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फास्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो। तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी, यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग

0: बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। अच्छा। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे, ये 20-30% फॉस्फरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
1: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो।
0: जी जरूर, फॉस्फरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
1: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू वेरी मच उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

98 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत

पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है, इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का।

छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, तारानी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आपसे पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? और क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी

0: ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट, फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
3: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
6: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
6: जी जी, चलो चलो देखते हैं।
3: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
7: अहोम के महाराज की जय हो।
8: जय हो, जय हो।
7: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
9: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: kaput, a ti सुंदर, हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की।

0: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
2: ओ।
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
2: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बुहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
2: ओ।
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
2: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
2: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
3: जी।
2: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
2: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
2: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है।

0: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
1: ठीक कह रही हो तुम। पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
0: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
1: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया
2: नमस्ते। नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा, मामा जी आए हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया। हाँ। देखोगी? एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। आई पसंद? और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है। देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसे नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे, इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा,
2: ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी, खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज
4: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
4: बहुत अच्छी है। फूल फूल फिर से, वाह। तोते तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी।
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
4: मैं तो बाहर जा रही हूँ।
1: अरे
4: देखो चिड़िया।

0: अरे सुंदर है,
1: अरे सुन तो।
0: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
3: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने

0: वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा, थैंक यू, नमस्कार सभी को।
0: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
1: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
0: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
1: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते, हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली, एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं, आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर, आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें। जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना। DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं, हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपकी बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए। उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरण दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं, तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, मैंने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होता है हैंड से, हैंड हैरो यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके

सीड ड्रिल है तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है मैंने बताया, पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी आपकी सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उससे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं, और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम 1 kg प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया, बुआई करने के आधे घंटे पहले मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक, उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बन लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे, जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम SSP डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम MOP यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए तो आपकी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप

0: कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, SSP और MOP दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है यानी जब उसकी फलियां आती हैं तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर DSR में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने, मैंने बताया, जैसे ड्राई DSR होती है, वेट DSR होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर DSR के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप DSR आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये DSR की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं DSR का वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन DSR में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसके वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है DSR में वो होती है कि वीडिंग, आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए, जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे, आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को, मतलब वीड्स को, खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं DSR के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरह से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो DSR में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके DSR के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम DSR पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
0: अभी हम जो धान की बुआई DSR के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका PHB 71 हो गया, PUSA RH 10 हो गया, ठीक है, और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे आपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
1: जी। मैम, तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज

0: इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: तभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग, तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की

खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा 1.5 से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।

0: अरे टीकन भाभी बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ा कर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
0: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग 6 इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
0: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
2: सुनीता तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
0: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है, पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100 सवा 100 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
0: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है, पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
2: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
0: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
0: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका

0: छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
1: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
0: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
1: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
0: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने? कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
0: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
0: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
1: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई,

0: तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
0: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
0: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
0: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
0: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
0: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
2: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
0: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
2: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
0: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
2: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।

और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं। अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है। बस

0: साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यूविन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन

हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को आरजे अनु का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज ये बातें करने वाले हैं हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। और आप सभी को पता है किसान भाई, आप सभी चाहते हैं कि आपके संपूर्ण क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली पैदावार हो। तो किसान भाइयों, देखा गया है कि आप सभी के पास एक अच्छा प्रबंधन नहीं उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज इनसे हम बातें करेंगे इसी प्रबंधन के बारे में, यानी कि हमारा जो आज का जो विषय है, चर्चा का विषय है, वो है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। तो सबसे पहले तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM है क्या?
1: सबसे पहले बिहार के किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आज का जो टॉपिक है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपका प्रश्न है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। तो जो पोषक तत्व हम दो या दो से अधिक सोर्स से देते हैं, तो वहाँ पर हम उसको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कर लेते हैं। जैसे हम पोषक तत्व जो है उसकी पूर्ति के लिए, फसल में पूर्ति के लिए हम नीम के खली का प्रयोग करते हैं, भूरी खाद का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, केक्स का प्रयोग करते हैं और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। तो हम किसी दो सोर्स, जो हमारी सोर्स हैं, जो उसके दो से अधिक को हम जब एक साथ मिला करके प्रयोग करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी जो उपयोग क्षमता है, वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो मृदा का जो भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल अवस्था है, वो बेटर होता है। अल्टीमेटली जो क्या होता है, जो मृदा स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो दो से अधिक सोर्स को हम एक साथ जब मिला कर देते हैं, तो उसको हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करेंगे।
0: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जब दो पोषक तत्वों को मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है।
1: सोर्स जो है,
0: हाँ, सोर्स उन्हें मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, जिससे कि फसलों को और भी ज्यादा पोषण मिलता है। तो सर, अब ये बात हो गई कि पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, और इसके बाद हम जानना चाहेंगे आपसे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्यों किया जाए।
1: जैसा कि आज की जो हमारी मृदा स्वास्थ्य है, वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। अगर हम बात करें 1950 की, तो हमारे जो स्वास्थ्य मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा थी वो 1.2% थी। लेकिन करंट में क्या है, जो है ये मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो घट करके 0.3% या उससे कम रह गई है। इसका वजह क्या है कि हम दिन पर दिन उच्च उत्पादन वाली फसलों को लेते गए, लेकिन हम उसमें जो खाद का प्रयोग है उसको कम करते गए, अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग करते गए। तो जरूरी है कि हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्बनिक स्रोत वाले खाद हैं, जैसे हमारा हरी खाद है, भूरी खाद है, नीलहरी शैवाल है, अजोला है, फसल अवशेष है, केक्स है, जो खलियां हैं, इनका भी प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जो मृदा की जो सस्टेनेबिलिटी है, मृदा की जो लंबी अवधि तक उत्पादन करने की क्षमता है, वो बनी रहे और मृदा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
0: सर, आपने यहाँ पर अभी हरी खाद के बारे में कहा, तो हम जानना चाहेंगे कि हरी खाद किस तरीके से किसानों की मदद कर सकता है इस प्रबंधन में, या फिर इसका जो महत्व है वो किस तरीके से यहाँ किसानों को।
1: जी हाँ, जो हरी खाद है, हरी खाद देखा जाए तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रदान करने का एक

0: सोर्स है और हरी खाद के द्वारा हम सबसे कम खर्च में एक अच्छा पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हरी खाद में हमें जो हरी खाद की फसलें हैं, जैसे आपका ढैंचा है, सनई है, मूंग है और भी जो हमारी दलहनी फसलें हैं, उनको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के लिए हमें करना क्या होता है कि फसल की बुआई से 2 महीना पहले, जो हमारा मुख्य फसल है, जैसे धान की हम बुआई करने जा रहे हैं या रोपाई करने जा रहे हैं, तो उससे कम से कम 2 महीना पहले हमें हरी खाद को जो है खेत में बुआई करना होता है। इसके लिए जैसे हम बात करते हैं ढैंचा की, क्योंकि ढैंचा जो है एक बहुत ऐसी फसल है जो दलहनी होते हुए जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन, जो जलमग्न कंडीशन है, फ्लडिंग कंडीशन है, वहाँ पर भी ढैंचा आसानी से हरी खाद के रूप में हो जाता है। और जो है जो इसको हम करीब 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं और सिंपल जो है जुताई करके बरसात का जो फर्स्ट बार पानी मिलता है या हमारे पास सिंचाई की सुविधा है, तो हम 15 मई के आसपास ही हम जो है इसकी खेतों में बुआई करते हैं। या हमारा जो गेहूं की कटाई हो जाती है, गेहूं की कटाई समाप्त हो जाए, खेत हमारा खाली होता है, तुरंत हम हल्का सिंचाई करके, या अगर बरसात हो जाती है किसी कारणवश, तो हम तुरंत उसी नमी पर ढैंचा की बुआई करते हैं। और हमें ध्यान देना होता है कि जब ढैंचा में जो है फूल आने की स्थिति होती है या 50 से 55 दिन का जब हो जाता है, एक अच्छी बढ़वार हो जाती है 5 से 6 फीट की, उसी समय हम मिट्टी पलटने वाले हल से, चाहे वो ट्रैक्टर ड्रॉन हो या बुलक ड्रॉन हो, मिट्टी पलटने वाले हल से हम इसको जमीन में मिला देते हैं अच्छी तरह से। तो धीरे धीरे जो है 15 से 20 दिनों में ये ढैंचा जो है जमीन में धीरे धीरे गल सड़ जाता है, और अच्छी तरह सड़ने के बाद, अर्थात पलटने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही हमें धान की रोपाई करनी होती है। क्योंकि अगर हम ढैंचा को जमीन में अच्छे से मिला देते हैं और तुरंत अगर धान की बुआई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ढैंचा हम पलट दिए होते हैं तो वो जमीन से जो है थोड़ा सा 15 दिन तक माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए वो जमीन से नाइट्रोजन लेता है, तो फसल का बढ़वार रुक जाता है और कभी कभी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हम इसको लगभग जब ढैंचा हमारा 45 से 50 दिन का होता है, उस समय हम इसको जमीन में मिला देते हैं, और जमीन में मिलाने के बाद इसके 2-3 बार जुताई कर लेते हैं, जिससे अच्छी तरह से उसमें वो सड़ गल जाए। और जमीन में मिलाने के कम से कम 15 से 18 दिन बाद ही, या यूँ कहिए 15 से 20 दिन बाद ही हमको मुख्य फसल धान की रोपाई करनी होती है। और देखा जाए तो जो ढैंचा है, ढैंचा 2 प्रकार का है, इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं सिस्पिनिया रोस्टाटा और सिस्पिनिया एक्विलेटा। जो सिस्पिनिया रोस्टाटा है, ढैंचा है, ये जो है न्यूडूल, जो इसकी जड़ें होती हैं, इस जड़ों में आप देखेंगे गुलाबी रंग का गांठ बनता है, और उस गुलाबी रंग के गांठ में जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है आवास करता है, और वहीं राइजोबियम जो है गांठों में रहते हुए जब राइजोबियम मरता है तो जमीन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जमीन में देता चला जाता है, जो वातावरण में हमारे 78% नाइट्रोजन है उसको जमीन में ला देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जनरली जो है ढैंचा बोने के लगभग 25 से 28 दिन बाद उसकी जड़ों में ये राइजोबियम वाले पिंक कलर की जो है गुलाबी रंग की गांठें बनना शुरू होती हैं, तो 28 दिन के बाद ही वो गांठें बनना शुरू होती हैं, तो 28 से कम 50 दिन तक वो गांठें बनती जाती हैं, संख्या उनका बढ़ता जाता है, और इस तरह से लगभग 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है फिक्स कर लेता है। जबकि हमको धान में जनरली 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात अगर सुगंधित धान है तो केवल हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देते हैं, और अगर हमारा हाइब्रिड धान है तो 120 किलोग्राम देते हैं। तो देखा जाए तो सुगंधित धान की उत्पादन हम केवल ढैंचा की ग्रीन मैन्योरिंग करके, हरी खाद के प्रयोग करके ही हम सुगंधित धान का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको हाइब्रिड धान लेना है या हाई यील्डिंग धान लगाना है तो हमें लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है अलग प्रकार के सोर्स देना होता है, जो उसको हम फर्टिलाइजर के माध्यम से भी दे सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जब हम ढैंचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो 80 किलोग्राम तक तो नाइट्रोजन देता ही है, लेकिन साथ में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, पोटास तथा जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे है जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इन सभी को भी वो जमीन में दे देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जमीन में जो हमारे फसल उत्पादन के लिए माइक्रो और माइक्रो पोषक तत्व चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, और भी जो पोषक तत्व चाहिए, जो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं लगभग, उनका एक वेल बैलेंस कॉम्बिनेशन में ये पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे जो है हमारे जो मिट्टी की जो भौतिक अवस्था है वो तो सुधर ही रही है, केमिकल अवस्था जो है, रासायनिक अवस्था सुधर रही है, साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल, जो हमारे मृदा में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और इस प्रकार देखा जाए तो दो तीन साल अगर हम ढांचे का प्रयोग खेत में करते हैं तो जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुधर जाता है और हम जो है अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो सर

0: ने अभी बताया हमें कि हरी खाद का इस्तेमाल, साथ ही इसके महत्व के बारे में भी बताया। लेकिन एक बात सर मैं आपको बताऊं कि अगर जो किसान है, आपसे पूछना भी चाहूंगी और हमारे किसान भी आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद क्या इस महंगाई के इस दौर में क्या हरी खाद उनके लिए अच्छा सोर्स माना जाएगा अगर महंगाई के नजरिए से देखा जाए तो?
1: ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज देखिए जो हमारा भारत सरकार है वो जनरली 75% सब्सिडी पर आप किसान भाइयों को फर्टिलाइजर देती है, अर्थात जितना हमारे देश में 20 से 22 मिलियन टन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है उस सभी फर्टिलाइजर पर 75% तक सब्सिडी देती है। तो अब आप देखिए गवर्नमेंट पर ओवरऑल कितना ज़्यादा बर्डन पड़ता है। पहले हम जो आज से 1950 से पहले खेती करते थे, हर साल जो है किसान भाई लोग हरी खाद का प्रयोग करते थे खेतों में, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन 4 गुना से 5 गुना बढ़ चुकी है तो हरी खाद के लिए अब किसान भाइयों के पास समय नहीं मिल पाता है। वो लगातार इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं जिससे वो धीरे धीरे हरी खाद को भूल गए हैं, लेकिन हमारी स्वास्थ्य सॉइल मृदा का जो स्वास्थ्य है वो इतना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इतना खराब हो चुका है कि आज हरी खाद की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो लगभग लगभग जो फसल उत्पादन में 3/4 फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ती है वो हरी खाद से पूरी होती है। और हरी खाद से हम बताएं सबसे सस्ता जो है स्रोत है, हरी खाद जो है पोषक तत्व प्रदान करने का सबसे सस्ता स्रोत है। आपको करना क्या, आप देखिए एक हेक्टेयर के लिए आपको करीब 30 से 35 किलोग्राम ढांचा लगाना पड़ता है। अब ढांचा लगाने के बाद उसको 50 दिन पर सीधे जमीन में इनकॉर्पोरेट करना है, तो अब 50 किलो ढांचे का कीमत जो है आपका 1500 रुपया से ऊपर नहीं हो पाता है, अर्थात देखा जाए तो केवल एक बोरी DAP के बराबर हमारा खर्च हो रहा है और उससे हमको करीब 10 बोरी DAP के बराबर का लाभ मिल रहा है। तो हम क्यों ना उस लाभ को लेना चाहें, हमें सच कहिए तो जो हमारा ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री से फर्टिलाइजर मिलता है उसके प्रयोग को हम जीरो कर सकते हैं। अगर लगातार हम ढांचे का प्रयोग करें, क्रॉप रेसिड्यू का प्रयोग करें, जो फसल अवशेष है उसका प्रयोग करें, भूरी खाद का प्रयोग करें, अजोला का प्रयोग करें, नील हरित शैवाल का प्रयोग करें, और जो हमारी केक्स हैं जो उसको हम केक्स विभिन्न प्रकार के हैं इन सब का प्रयोग करें, मतलब जो पोषक तत्व के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न स्रोत हैं, इन सभी का एक साथ समन्वित प्रयोग करें तो हो सकता है हम जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उसके प्रयोग को हमें जरूरत ही न पड़े, तो हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो है एक स्वस्थ फसल के उत्पादन की कामना कर सकते हैं। और आज उसी की जरूरत है क्योंकि आज आप देखिए कि सब जगह जो है जो हमारा प्रोड्यूस मिल रहा है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर द्वारा प्रोड्यूस है जिससे हमको विभिन्न प्रकार के बीमारियां और रोगों का सामना करना पड़ रहा है। आज पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा वो लोग उपयोग करते हैं जिससे वहाँ देखिए जो ग्राउंड वाटर, आपको बता दें कि जितना हम नाइट्रोजन डालते हैं उसका केवल 30 से 35% भाग ही पौधा उपयोग कर पाता है, बाकी 60 से 65% भाग जो है विभिन्न प्रकार से नष्ट हो जाता है, 15 से 17% जो है ऊर्ध्वाकरण द्वारा वो ऊपर उड़ करके नष्ट हो जाता है, 25 से 30% लीचिंग ग्लासेस द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है, भूमिगत जल में चला जाता है और उसी भूमिगत जल को हम पीते हैं। तो आजकल पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, जो हमारा भूमिगत जल है वहाँ पर नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो वहाँ आप देखेंगे कि बच्चों में जो है नीला पीला होना, उनका कलर जो है नीला होता है जब जन्म लेते हैं, बहुत से बच्चे नीले कलर के जन्म लिए होते हैं, इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं और ये जो है नाइट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो आज की तो सख्त जरूरत है कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें और अपने बजट को भी सुरक्षित रखें। इस प्रकार हरी खाद का उपयोगिता ओवरऑल देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है और हम कम खर्च में कम बजट में हरी खाद को अच्छे से अपना करके अपने मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं तथा पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्रति हेक्टेयर 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च होता है फर्टिलाइजर में, उसमें हम 3/4 भाग तक कटौती कर सकते हैं, अर्थात करीब 8 से 10 हज़ार रुपया हम बचा सकते हैं सिर्फ फर्टिलाइजर के द्वारा जो हम राइस में देते हैं, धान में देते हैं। अगर हम हरी खाद देते हैं तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया हम अलग से बचा लेंगे।
0: तो डॉक्टर साहब ने अभी हम बताया कि जो हरी खाद है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है हमारे किसान भाइयों के लिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि 50 हेक्टेयर ज़मीन के लिए 1500 रुपये लगभग खर्च होते हैं और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के जो हानिकारक जो तरीके हैं क्रियाओं के बारे में सर ने बताया और बच्चों में जैसे कि बीमारियाँ फैल रही है और युवाओं में और जो बुज़ुर्ग लोग हैं सभी में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर साहब ने। और अब हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जब किया जाए तो उस समय

0: कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सर, तो ऐसे कुछ बातों के बारे में बताएंगे आप जिसका ध्यान खास तौर पर हमारे किसान भाई और बहन रखें।
1: देखिए, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हम किस फसल के लिए समेकित पोषक तत्व देने जा रहे हैं। जैसे आज जो हमारा टॉपिक है वो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जो है धान में करना है, तो धान के लिए जो हमारा पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, अगर हम हाइब्रिड या हाई यील्डिंग वैरायटी लगाते हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देने की जरूरत पड़ती है। तो अब हमें 120 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसको हम बेस मान लेते हैं, उसको हम विभिन्न प्रकार के स्रोत हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमको सबसे चीपेस्ट सोर्स हरी खाद है, तो अब हम हरी खाद देते हैं तो जनरली अगर एक अच्छी फसल है हरी खाद की तो 80 किलोग्राम तक जो है ढैंचा या सनई के द्वारा हम अगर हरी खाद दे रहे हैं तो 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ढैंचा में एक प्रजाति और है जैसे सिजबनिया रोस्टाटा कहते हैं साइंटिफिकली, जिसमें जड़ में भी गांठ बनती है और तना में भी गांठ बनता है, दोनों में राइजोबियम रहता है। तो सिजबनिया रोस्टाटा जो ढैंचे की प्रजाति है इससे करीब 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स रहता है। तो आप देखिए, अगर हम सिजबनिया रोस्टाटा को ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमारा 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। उसी रेशियो में 0.2% उसमें फास्फोरस भी होता है और 0.4% तक जो है पोटास भी होता है। तो देखा जाए तो धान के लिए जितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास चाहिए सिजबनिया रोस्टाटा के केवल ग्रीन मैन्योरिंग से ही अकेले जो है ढैंचा की सिजबनिया रोस्टाटा की जो ढैंचा वाली प्रजाति है केवल इससे हमारा अकेले जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, हमें अलग से फर्टिलाइजर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम सिजबनिया एक्विलेटा प्रयोग करते हैं जो केवल जड़ों में गांठें बनती हैं तो केवल उससे 80 किलोग्राम तक मिलता है नाइट्रोजन, तो बाकी हमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है 40 किलोग्राम वो अलग से देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको ध्यान ही देना होगा मुख्य रूप से कि हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट डाल रहे हैं। जैसे हरी खाद डाल रहे हैं तो हरी खाद से हमारा कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या सूक्ष्म पोषक तत्व ये सब जमीन को मिल रहा है। फिर उसके बाद फसल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके आधार पर हम दूसरी खाद, चाहे फसल अवशेष है चाहे सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, उसके माध्यम से बाकी फुलफिल करेंगे। वैसे अमूमन देखा जाए तो जो हमारा अब तक का रिकमेंडेशन है, जनरली अगर हमारे पास हरी खाद या ऑर्गेनिक खादों की कमी है तो हम क्या करते हैं, 3/4 मतलब 75% भाग जो है हम फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं और 25% भाग जो है पोषक तत्व का वो है वो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक स्रोत हैं, जो कार्बनिक स्रोत हैं फर्टिलाइजर के खाद के, उससे देते हैं, चाहे हरी खाद के रूप में दे दें या भूरी खाद के रूप में दे दें, चाहे नीलरी सरवाल से दे दें या अजोला से दे देते हैं या फसल अवशेष से दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हरी खाद और ये सब विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक खाद हैं इनकी उपलब्धता है तो हम कोशिश करेंगे कि जो है अधिक से अधिक मात्रा इनसे दिया जाए, बचा हुआ मात्रा जो है वो फर्टिलाइजर के माध्यम से दिया जाए, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उससे दिया जाए।
0: तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया कि अगर आप नाइट्रोजन पोटास या जो भी सूक्ष्म जीव पोषक तत्व हैं आप अपने मिट्टी को या खेत में जो मृदा है आपकी आप उसमें डाल रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो मिट्टी कितने परसेंट में या फिर कितने प्रतिशत वो उसे कंज्यूम कर रही है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर हरी खाद है तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर नहीं है तो इसके अल्टरनेटिव जो तरीके हैं उनके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया आपको। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं और आपको बता दूँ किसान भाइयों की हाल ही में एक अनुसंधान में पाया गया है कि समेकित पोषक तत्व जैसे कि गोबर की खाद या हरी खाद या फसल अवशेषों के भूसे द्वारा कुल पोषक तत्वों के 50 से 75% में फसल प्रणाली की उपज में वृद्धि हुई है और इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए आप इस पोषक तत्व प्रबंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन INM का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप अपना सकते हैं। आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM के बारे में। और डॉक्टर साहब, आपने हरी खाद के बारे में बहुत सारी बातें बताई और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद के अलावे क्या कुछ ऐसे कार्बनिक खाद हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
1: जी हाँ, जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया, हरी खाद जो है एक सबसे सस्ता स्रोत है, सोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट है आजकल बहुत आसानी से मिल जा रहा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे पास विभिन्न फसलों के अवशेष हैं उनको भी हम प्रयोग में ला सकते हैं, और जो हमारे पास

खलियां हैं, जैसे कि पहले हम लोग के पास नीम की खली हुआ करती थी, महुआ की खली हुआ करती थी, मूंगफली की खली हुआ करती थी, इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया गोबर की सड़ी हुई खाद, चूंकि हम बात कर रहे हैं गोबर की सड़ी हुई खाद की, किसान भाई लोग अक्सर क्या करते हैं, गोबर की कच्ची खाद डाल देते हैं खेत में, तो उसे क्या होता है, कच्ची खाद में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे दीमक और कटवर्म का प्रकोप बढ़ जाता है। तो कृपया आप लोग से अनुरोध होगा हमारा कि आप गोबर की खाद जो भी है, 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल जो भी आपके पास उपलब्ध है, वैसे तो अमूमन जो है कम से कम 10 से 15 टन डालना चाहिए, लेकिन आपके पास उतना उपलब्ध नहीं है, आप 10 क्विंटल भी अगर खेत में डालते हैं तो बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। उसका कलर जब भूरे रंग का हो जाए सड़े हुए गोबर का, उसको बकायदे गड्ढे में जो है अच्छे से डिकम्पोज करिए, अच्छे से सड़ाइए और सड़े हुए गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। देखा गया है कि गोबर के खाद में लगभग 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस और 0.5% पोटास होता है। तो आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि हम इतना क्विंटल अगर दे रहे हैं तो कितना केजी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास हमारे ज़मीन को मिल रहा है। बाकी मात्रा आप जो है बर्मी कंपोस्ट से भी दे सकते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट भी क्या है, जनरली जो हमारा कछुआ है अर्थवर्म है, अर्थवर्म को हम अधसड़े गोबर पर रिएक्ट करा करके उसे हम बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह दानेदार जो है मटेरियल, वो कछुआ चूँकि इसको खाता है और खाने के बाद कास्टिंग करता है, तो जो चाय की पत्ती जैसा गंधहीन जो है दानेदार बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और बर्मी कंपोस्ट में जनरली 2% तक नाइट्रोजन, 1 से 1.5% तक फास्फोरस और इस तरह से लगभग 1.5% तक पोटास भी होता है। देखा जाए तो बर्मी कंपोस्ट FYM मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा जो है पोषक तत्व रखता है। साथ ही साथ बर्मी कंपोस्ट में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स भी होते हैं जो कि फसल की ग्रोथ और विकास के लिए बहुत सहायक होते हैं। लेकिन बर्मी कंपोस्ट चूँकि महंगा पड़ जाता है, मार्केट में 6 से 7 रुपये किलो है, तो इसका प्रयोग आप बाजार से खरीदने जाते हैं तो महंगा पड़ता है। आप अपने घर पे ही बर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं और तैयार करके अपने खेतों में डाल सकते हैं, धान है या विभिन्न प्रकार की जो महंगी सब्जियां हैं उनमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फसल अवशेष है, हम जनरली देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे फसलें हैं, चाहे रबी की फसलें मक्का हो या गेहूँ हो, इसको हम लोग आग लगा करके जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि एक साइड में जो है हमारे पास जो है जो मृदा की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और पोषक तत्व जो क्रॉप रेसिड्यू में जो अवशेष में पोषक तत्व होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण का बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण होता है और जो कि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बेहतर होगा कि जो रेसिड्यू है, जो फसल के अवशेष हैं, उसको हमेशा समय ज़मीन में ही इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए और उसको जो है ज़मीन में जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ज़मीन में जोताई करके मिला देते हैं तो धीरे धीरे सड़ गल जाता है और फसलों को एक अच्छी प्रकार का पोषक तत्व देता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जनरली 3/4 भाग जो है 75 से 80% भाग जो है जो पोषक तत्व जमीन से पौधा लेता है उसका 75 से 80% भाग जो है जब हम उसके डंठल को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जमीन में मिला देते हैं, तो 75 से 80% भाग वापस जमीन को मिल जाता है। अर्थात जो आपका पोषक तत्व जमीन से लिया गया है उसका 75 से 80% तक जो है वापस जमीन में मिल जाता है अगर हम उसके रेसिड्यू को जलाने के बजाय हम उसको जमीन में मिला देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप रेसिड्यू का भी जो फसल अवशेष है उसका पूरा का पूरा प्रयोग करें, उसको जलाएं नहीं, उसको ज़मीन में ही इनकॉर्पोरेट करें, तो उससे भी कुछ पोषक तत्व जो है आपको रिवर्स वापस मिल जाते हैं और भूमि का जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन रहती है, जो विभिन्न प्रकार के माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं वो बने रहते हैं जिसे हम सॉइल फ्लोरा और फौना कहते हैं, वो भी जो है ज़मीन में अच्छे कंडीशन में मेंटेन रहते हैं। तो इससे किसान भाइयों आपके जो मृदा का स्वास्थ्य दिन पर दिन ईयर आफ्टर ईयर जो है मेंटेन होता जाएगा और आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए जो हमारे समेकित पोषक तत्व प्रबंधन है इसमें हमें फोकस करना है आज के डेट में कि हम अधिक से अधिक जो है ऑर्गेनिक स्रोत के, ऑर्गेनिक जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग करें, जैसे हरी खाद है, भूरी खाद है, नीलहरी सवाल है, सड़ी हुई गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट है और जो कुछ खलियां इत्यादि हैं उनका भी प्रयोग करें। एक हमने बात कहा भूरी खाद, भूरी खाद हम धान जो धान की रोपित धान है उसमें नहीं कर सकते, केवल जो धान की हम सीधी बुआई करते हैं उसी समय हम ढैंचा 30 किलो ले लेते हैं और 30 kg जो है धान ले लेते हैं और सीड ड्रिल के द्वारा तैयार खेत में हम सीधे बुआई कर देते हैं, तो धान और ढैंचा साथ साथ चलते हैं। उसके बाद जब 30 दिन का हो जाता है धान तो उसमें हम 2,4-D डाल करके 650 से 650 ग्राम सक्रिय तत्व 2,4-D का लेते हैं और छिड़काव कर देते हैं, या कोई दूसरी हर्बिसाइड जो धान में प्रयोग की जाती है उसका हम प्रयोग कर देते हैं, तो ढैंचा जो है वहीं गल करके मर जाता है और धीरे धीरे ज़मीन में वो मिल करके एक अच्छा जो है

0: हरी खाद भूरी खाद का के रूप में वो पोषक तत्व प्रदान करता है, और साथ साथ जो मृदा का टेम्परेचर है उसको भी बैलेंस किया रहता है, जो मृदा की भौतिक रासायनिक और जैविक अवस्थाएं हैं उनको सुरक्षित रखता है और मृदा स्वास्थ्य को मेंटेन करता है। इस प्रकार से आप जो है हरी खाद हुआ, भूरी खाद हुआ, नीलहरित शैवाल हुआ, अजोला केक्स यानी खलियां तथा फसल अवशेष का प्रयोग करते हुए, साथ में जो है थोड़ी बहुत मात्रा में आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करके आप अपनी फसल को तथा मृदा को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया अभी कि जो कार्बनिक खाद है इसके रूप में आप जो गोबर खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही रवि फसल के जो अवशेष हैं उसे बिल्कुल ना जलाएं, बल्कि उसे जो अपने खेत में अगर आप गाड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि हरी खाद, भूमि खाद, उजोला का इस्तेमाल करके आप अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, तो आज आप सभी के साथ यहाँ पर हमारे उन्नत कृषि प्रोग्राम में थे डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, और इन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों और बहनों को। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और आप लोग सभी लोग को नमस्कार।
1: तो अगली बार अगले प्रोग्राम में अगले विषय के साथ अगले चर्चा के साथ फिर से हाजिर रहूंगी मैं आप सभी के साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि

पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15-20% की वृद्धि कर दें। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वाकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150-200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6-7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: सामुदायिक रेडियो FM3। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT presents ऑडियो बुक आवर वंडरस वर्ल्ड, टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर ग्रेड 5।
3: पेज नंबर 112, यूनिट 4, थिंग्स अराउंड अस। अबाउट द यूनिट, दिस यूनिट at the preparatory stage aims to familiarize students with various things around them, how things work and how things are made. In grade 3 and 4, students have engaged with local toys like spinners and paper boats to understand how they work. They have also learned about how things are made by exploring the processes of bricks, paper, etc. While making things with locally available materials, students learn useful methods of sustainable development, including refuse, reduce, reuse, repurpose, and recycle, the 5 R's, so that they can make responsible decisions. By making things with their own hands, they develop a deeper appreciation for the materials we use in everyday life and also learn to connect and care for their environment. In grade 5, this unit invites students to explore how everyday things like energy and cloth are made and used. Through simple activities and local examples, they learn how energy enables movement and light, how threads become fabric, and why reusing things and clean energy matter. It helps them see the unseen processes behind familiar things in their homes and surroundings. At the bottom of the page, there is a picture depicting a river flowing through a green landscape. A boy is kneeling at the river's edge, launching a small paper boat into the water. In the background, there is a water mill and a large wooden water wheel. Page number 113. Note to the teacher. The unit consists of 2 chapters. Chapter 7, Energy, How Things Work, and Chapter 8, Clothes, How Things Are Made. Chapter 7, Energy, How Things Work. Energy, How Things Work introduces students to the concept of energy by connecting it with everyday experiences. They learn about the different forms of energy used at home and society. Through hands-on activities and examples, students explore how energy makes things work and the importance of using clean and efficient energy. The simple hands-on activities and

0: नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो आज के समय में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से चीजें बदल रही है, ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आप प्राकृतिक खेती की ओर अपने कदम बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बने। तो आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भर गांव के निर्माण में प्राकृतिक खेती की भूमिका। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे। मैम, आप हैं प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद
5: मैम। सबसे पहला सवाल कि प्राकृतिक खेती है क्या?
7: जी, प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें खेती के लिए प्रकृति के नियमों का पालन किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके स्थानीय संसाधनों जैसे कि देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, फसल अवशेष, जीवाणु और जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता हो। इसका उद्देश्य केवल फसल उगाना नहीं है बल्कि मिट्टी को जीवित रखना, पानी बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना और किसान की आय बढ़ाना भी है।
5: जी मैम, साथ ही हम आत्मनिर्भर गांव के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर गांव का क्या अर्थ है?
7: जी, हम जैसा कि पहले से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी देखा था कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर गांव का भारत हो। तो आत्मनिर्भर गांव वह ऐसा है गांव है जहां की किसान उत्पादन करे, गांव में ही मूल्य संवर्धन हो, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को आजीविका के अवसर मिले और गांव अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे, किसी पर निर्भर ना रहे।
5: तो ऐसे में प्राकृतिक खेती और आत्मनिर्भरता का क्या संबंध है?
7: जी, बहुत ही गहरा संबंध है। जब किसान प्राकृतिक खेती अपनाता है तो सबसे पहले उसकी खेती की लागत कम होती है। आज रासायनिक खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि आदानों की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्राकृतिक खेती में अधिकांश कृषि आदान खेत और गांव में ही तैयार किए जाते हैं। जब हम बीज, खाद, कीट प्रबंधन के लिए किसान को बाजार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा तो उसकी बचत बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, और यही बचत आगे चलकर किसान की आय में वृद्धि का आधार बनती है। इससे मिट्टी भी बचेगी और पानी भी। जैसे कि हम कहते हैं कि स्वस्थ मिट्टी

0: स्वस्थ फसल और स्वस्थ परिवार। लगातार रासायनिक खेती से मिट्टी की जैविक शक्ति कम हो जाती है। प्राकृतिक खेती मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को सक्रिय बनाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही मल्चिंग और प्राकृतिक तरीकों से नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये लाभकारी है। आज हर व्यक्ति सुरक्षित और रसायन मुक्त भोजन चाहता है। यदि किसान प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो वे केवल फसल ही नहीं उगाते बल्कि लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। स्वस्थ भोजन का अर्थ है स्वस्थ समाज, और इसी तरह हम आत्मनिर्भर गांव भी बन सकते हैं।
1: अभी मैम आपने स्वस्थ समाज की बात की, तो क्या अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की तो उसका समाज पर भी असर पड़ता है या बस ये खेती तक ही सीमित?
0: बिल्कुल, ये खेती तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे गांव में अनेक रोजगार पैदा हो सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि क्या क्या रोजगार इसमें पैदा हो सकते हैं, तो प्राकृतिक कृषि में जो आदानों की, जो इनपुट्स की यूज होती है, उसका निर्माण कर सकते हैं, बीज उत्पादन कर सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं प्राकृतिक ढंग से, ब्रांडिंग, स्थानीय बाजार, ऑनलाइन बिक्री, कृषि पर्यटन एवं इस तरह की बहुत सारे आयाम है जिससे कि वो रोजगार भी पैदा कर सकते हैं।
1: किसान उत्पादक संगठन की भी क्या इसमें कोई भूमिका होती है?
0: जी बिल्कुल, एक अकेला किसान जो नहीं कर सकता, एक समूह में अगर वो जुट जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि गांव के किसान मिलकर किसान उत्पादक संगठन बनाते हैं तो प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों की सामूहिक ब्रांडिंग और विपणन की जा सकती है। सामूहिक प्रयासों से बेहतर बाजार मिलता है, उचित मूल्य मिलता है, भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधा विकसित होती है और किसानों की सौदेबाजी और उनके मूल भाव करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
1: जी मैम, और अभी जलवायु परिवर्तन के बारे में काफी चर्चा हो रही है, तो क्या ऐसे में प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण हो जाता है?
0: जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल मौसम लगातार बदल रहा है, कभी अधिक वर्षा, कभी सूखा, कभी अत्यधिक गर्मी। ऐसे समय में प्राकृतिक खेती मिट्टी की संरचना को मजबूत बनाकर खेती को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करती है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में टिकाऊ कृषि प्रणालियों पर इतना जोर दिया जा रहा है।
1: और मैम, अगर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
0: जी, किसान बंधुओं को कुछ आवश्यक कार्य जो है वो पहले कर लेने चाहिए, जैसे कि शुरुआत में छोटे स्तर में इसको शुरुआत कीजिए। अपने खेत में कुछ हिस्सों में प्राकृतिक खेती को अपनाइए। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और अपना जो भी आपका अनुभव रहा हो उसे साझा कर दूसरे किसानों को भी प्रेरित करिए और धीरे धीरे पूरा गांव इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। और अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगी किसान भाइयों को कि आत्मनिर्भर गांव केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बनते, वे बनते हैं किसानों की जागरूकता और सामूहिक प्रयास और स्थानीय संसाधनों की बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से। प्राकृतिक खेती हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपनी मिट्टी, पानी, बीज और जैव विविधता की रक्षा करेंगे तो हमारा गांव भी समृद्ध होगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो याद रखिए किसान भाइयों, आत्मनिर्भर गांव की शुरुआत आत्मनिर्भर खेत से होती है और आत्मनिर्भर खेत की नींव प्राकृतिक खेती होती है। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि आत्मनिर्भर गांव की नींव प्राकृतिक खेती होती है। तो किसान भाई बहनों, आप इन बातों का ध्यान रखें और जैसे कि मैम ने कहा कि आप छोटे स्तर पर शुरू करें प्राकृतिक खेती करना, एक छोटे से हिस्से से शुरू करें तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखेंगे और अपनी मिट्टी से ढेर सारा प्यार करेंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें।

0: संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: कभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा

अरहर का दो भाग, तिल का एक भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि एक भाग अरहर का और दो भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को, जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत।

0: संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: बातचीत की कला। बातचीत करना एक महान कला है और ये आवश्यक है कि हम इसे समझें। मेरी मित्र कल्याणी के पास अपने चारों ओर के वातावरण, जैसे फूलों और पक्षियों, नगरों और गांवों, पर्यावरण और प्रदूषण, योग तथा जड़ी बूटियों, साहित्य तथा धर्म, रंगमंच तथा संगीत और कई अन्य बातों के बारे में ज्ञान का भंडार है। वो जीवन की हर वस्तु में रुचि लेती है, उसमें जीवन तथा चेतना है। उसके साथ बातचीत करना वास्तव में एक शिक्षा है, क्योंकि वर्षों में अपने अनुभवों से उसने जो कुछ भी जाना है, सीखा है, वे अनुभव तथा ज्ञान की बातें वो बड़े उत्साह से बताती है और लोगों से बातें करने में उसे आनंद मिलता है। फिर मेरा एक दूसरा मित्र डेनियल है, जो विज्ञान तथा इतिहास जैसे विषयों के बारे में बहुत तो नहीं जानता, परंतु उसने कई जगहों की यात्रा की है और कई बार वो पर्वतारोहण भी कर चुका है। उसके अनुभवों की कहानियां बड़ी रोमांचक होती हैं और उन्हें सुनने में बहुत मजा आता है। उसकी बातें उत्साहपूर्ण होती हैं और वो कई लोगों के समान बातचीत पर केवल अपना ही अधिकार नहीं जमाता। बातचीत के दौरान वो दूसरों के अनुभव संबंधी छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उन्हें भी इस बातचीत का एक अंग बना देता है। इस कारण उसकी बातें सुनते कोई नहीं थकता, क्योंकि डेनियल की बातें सुनने वाला भी बातचीत में भाग जो लेता है। बेगम खातून का स्वभाव अलग है। शर्मीले स्वभाव की वो स्त्री बहुत मृदु स्वर में धीरे से बोलती है। उनकी सीधी सादी बातों से दिल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो तुमसे तुम्हारी कुशलता, तुम्हारी प्रिय वस्तुओं के विषय में पूछेंगी और ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगी जिनमें आपको मजा आएगा। ये बात कितनी सच है ना, कि हमें उन लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है जो मृदुभाषी होते हैं और जो अपनी बात दूसरों पर नहीं थोपते। दूसरे प्रकार के लोग मोहन चाचा और उनके मित्रों जैसे होते हैं। वे हमेशा अखबारों तथा पत्रिकाओं में आई खबरों के बारे में जोर शोर से बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, किसी के पक्ष में अथवा किसी के विपक्ष में बोलते हैं। उनके सरकार को लेकर, व्यापार तथा उद्योग, कपड़े और हथकरघा, अमरीका तथा रूस को लेकर तरह तरह के विचार है।

0: वे इन विषयों पर बोलते ही चले जाते हैं, कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। कभी कभी इस बातचीत की शुरुआत तो ठीक से होती है, लेकिन शीघ्र ही ये बातचीत एक गर्मा गर्म बहस का रूप धारण कर लेती है। इस कारण कई बार इस बहस का शोर रेडियो में आ रहे उस शोर के समान होता है जब रेडियो की सुई ठीक स्थान पर नहीं होती। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही विचारों को बताना चाहे तो वहाँ विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। इस कारण अनीता चाची अपने घर में इस प्रकार के शोरगुल व विवादों से इतनी तंग हैं कि वे इनकी अनसुनी कर देती हैं और कोने में बैठकर बुनाई करने में व्यस्त रहती हैं। उन्हें ये सब कुछ अपने बचपन के दिनों से बहुत अलग लगता है, जब हर व्यक्ति बहुत ही धीरे बोलता था। घर आने वाले अतिथि अपने साथ प्रसन्नता लाते थे। क्या तुमने एक और बात पर गौर किया है? अक्सर लोग अपने से उच्च वर्ग के लोगों के साथ बहुत ही आदरपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु अपने से निम्न वर्ग जैसे नौकरों आदि के साथ बहुत ही कठोर तथा रूखा व्यवहार करते हैं। अब हम देखिए कि स्कूलों में बच्चे किस प्रकार बोलते हैं। जब आधी छुट्टी में तुम सब साथ होते हो तो किस विषय पर बातें करते हो? शायद अपनी छुट्टियों के बारे में, अपनी खरीदी वस्तु के बारे में, तुम क्या करना चाहते हो इस बारे में, और साथ ही शिक्षकों के बारे में। पर इतना तो तुम मानोगे कि जब तुम बातें करते हो तो तुम में से कई एक साथ बोलते हैं। कोई किसी की नहीं सुनता, कोई धीमे स्वर में नहीं बोलता, कई बार छात्र चिल्लाते हैं। वार्तालाप की कला बिल्कुल भिन्न है। वार्तालाप में अपनी आवाज को ऊंची कर पंचम स्वर में बोलना सभ्य नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब में इतनी शक्ति है और इतना बांटने की क्षमता भी है, परंतु ये बहुत दुख की बात है कि इनमें से कई दूसरों की बातों को सुनना नहीं जानते, है ना? एक बात पर और ध्यान दो। स्कूल में हम अपनी ही एक भाषा बना लेते हैं। कभी कभी ये अपभाषा होती है और कभी कभी एकदम काम चलाऊ। क्या तुमने अपनी भाषा पर ध्यान दिया है और देखा है कि तुम लोगों के साथ बोलने में कितने मधुर और नम्र हो? क्या तुम सरलता तथा सहजता से वार्तालाप कर सकते हो? क्या तुम शर्मीले और अल्पभाषी हो? अगर ऐसा है तो क्या तुमने इसके कारण पर कभी अपने आप से प्रश्न किया है? क्या तुम में सुनने का धैर्य है? क्या तुम्हारा दिमाग एक खुली किताब है? और क्या तुम दूसरों के दृष्टिकोण को देख सकते हो? इस अल्पायु में क्या तुम वार्तालाप की कला सीखना चाहोगे? भविष्य में जब तुम किसी वार्तालाप के बीचों बीच हो तो क्या थोड़ी देर ठहर कर स्वयं पर ध्यान दोगे?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किस प्रकार से परवल की खेती की जाती है और क्या समस्याएं आती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी ही बातों के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर RV वर्मा। सर, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद।
6: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि परवल के क्या फायदे होते हैं?
7: देखिए, परवल जो है, जिसको कुकुरबिटेसी कहते हैं या लतेर वाले जो है फैमिली जो कहते हैं, उस फैमिली का एक ऐसा पौधा है जो लगभग 7 से 8 महीने तक फल देता है, और यह फल समझिए इमरजेंसी पीरियड में भी देता है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर जब पानी आता है उस समय, और अन्य सब्जियां सब खत्म जब हो जाती हैं तो उस समय भी मार्केट में आपको जो है परवल मिलता है। और परवल की उपयोगिता ही बहुत ही ज़बरदस्त है। परवल एक ऐसा फ्रूट है, समझ लीजिए फ्रूट इस वेजिटेबल में आता है ये, कि इसमें जो है एक तो सबसे पहले कि इसमें विटामिन A, B और C पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है, जिससे आप शुगर फ्री के शुगर वाले पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल कम 0.3% के आसपास होती है, इसलिए जो मोटापा जो है उसको भी कम करता है। ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जो होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं, लो एनर्जी के कारण जो है। तो ये लो एनर्जी कारण जो बहुत सारे रोगों में कभी कभी आप देखते हैं जॉइंटिस जब हो जाता है, तो उसमें भी हम परवल का चोखा या परवल की जो है सब्जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप परवल की सब्जी लीजिए, तो ये हल्की होती है। इसके तमाम

0: एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी वेट को आपको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो परवल की आप देखते हैं स्वीट्स भी बनते हैं आजकल, जो परवल की मिठाई बनती है, तो परवल की ये तमाम सारी उपयोगिताएं हैं। और ऐसी फसल भी है जो आपको 7 से 8 महीने तक फल भी देती है। तो इन सब सारी उपयोगिताओं को देखते हुए परवल का स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है और परवल की खेती हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसकी खेती सफलतापूर्वक आप करें, इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
1: जी सर, लाभदायक होती है लेकिन कई बार कुछ समस्याएं भी आती है, तो परवल की खेती में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं?
0: हाँ देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परवल की खेती में। देखिए, एक तो होता है सेक्स की प्रॉब्लम उसमें, कि उसमें जो है नर और मादा दोनों जो है अलग अलग होते हैं। ये डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट मतलब जिसमें एक पौधे पर होगा तो केवल नर ही होगा और दूसरे पर होगा तो केवल मादा ही होगा। और हमेशा फल जो होता है वो मादा पुष्प पे ही आता है, नर पुष्प पे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसान भाई के खेत में ऐसा भी पौधा दिखाई पड़ता है कि जिसमें केवल फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है। तो किसान भाई क्या करते हैं, उसको खेत से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जब नर पौधा नहीं रहेगा तो पोलिनेशन की समस्या हो जाती है, और पोलिनेशन नहीं होगा तो पता चला आपके पौधे में फूल तो आ रहा है लेकिन वो फूल जो है पीला होकर के फिर से सूख जा रहा है। इसका कारण यही है कि वहाँ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डायोसियस पौधा है और जब भी लगाना है इसको तो नर और मादा दोनों ले जाके लगाना है, और दोनों को लगाने का एक जो अनुपात होता है वो 9:1 का अनुपात होता है। यानी 9 पौधे अगर मादा आप ले जाते हैं तो 1 पौधे नर आप ज़रूर ले जाइए, इससे उसका रेशियो मेंटेन रहता है और परागण के लिए पौधे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बहुत दूर 1.5 किलोमीटर तक दूर तक इसका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, बट उतना दूर से परागण आएगा और परागित करने में उसको समय लगेगा, फिर जो है नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वहाँ आपकी जो प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 9:1 का रेशियो आप उसमें रखें। 9:1 रेशियो रखेंगे तो उसका जो है पोलिनेशन अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या इसमें ये होती है, एक तो ये आ गई प्लांटिंग रेशियो कि 9:1 में आप प्लांटिंग करिए, इससे आपको नर और मादा का जो है 9 मादा और 1 जो है नर, तो इससे आपके ऊपर। दूसरा ये होता है इसमें कि देखिए, इसमें सीड प्रोपोगेशन हम नहीं करते हैं। कभी कभी ये किसान भाई कहते हैं कि उन्हें हम बीज से ही कर लें, तो बीज से करने में समस्या ये होती है कि जो आप एक तो पहले बीज इसका ऐसा होता है कि आप जैसे पकने के बाद इसको निकालिएगा 2 मिनट के लिए हवा में छोड़िएगा तो फिर जमेगा ही नहीं। तो उसमें ये होता है कि तुरंत उसका फल पका हुआ निकालिए, तुरंत उसको जमीन में लगाना होता है। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि इसके बीज को अगर लगाते हैं तो उसमें 50% नर आ जाता है और 50% मादा आ जाती है, और ये नर और मादा का अनुपात जो 50-50% जो हो जाता है लगभग जो है, यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसमें फ्लावर या फूल नहीं आ जाता है। तो फूल आने के लिए आप साल भर इंतज़ार करिएगा, साल भर आप खेत को फंसा के रखिएगा, तब जब फूल आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो नर है और ये मादा है, तो आपके खेत की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा चीज़ ये कि ये लंबा समय लेता है, चूँकि एक साल भर की बताया हमने कि इसको ये पूरा साल भर चलता रहता है। ये बायनियल मतलब ये जो है पेरेनियल पौधा है, एक बार लगाइएगा तो 3 साल तक इससे काटिएगा, कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी जो हमको बीज से इसका जो है प्रोपेगेशन नहीं करना है, इसका प्रोपेगेशन हमेशा कटिंग से करना है जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो उपयुक्त मतलब प्रजाति हो उसी को लेना है, अन्यथा आपकी जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पैदावार घट सकती है।
1: तो सर हमें विस्तार से बताइए कि प्रवर्धन कैसे करें?
0: हाँ, इसके प्रवर्धन के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमने बता दिया कि एक जो है 9:1 रेशियो में आपको नर और मादा लेना है। अब नर और मादा में अब क्या लेना है, एक तो इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, सीड से प्रोपगेशन नहीं करते हैं। तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो इसमें हम उसकी वाइन लेते हैं, और वाइन कैसी होगी, एकदम मेच्योर वाइन हो जो साल भर पुरानी हो गई हो। ऐसा नहीं कि टेंडर वाइन लीजिएगा, टेंडर वाइन लीजिएगा तो वो जो है सूख जाएगा। तो हमेशा आपको मेच्योर वाइन होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा जब मेच्योर वाइन हो जाती है जनरली जो जड़ से निकलती है, देखिए जब खूब मेच्योर हो जाती है तो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी व्हाइटिश हो जाती है, जो ग्रीनिश रहती है उसका रूप बदल के हल्का सा लाइट व्हाइटिश कलर में आ जाता है, तो समझिए कि वाइन पूरी तरह से मैच्योर हो गई है। तो सबसे तो

कि आपको 1 ईयर ओल्ड मेच्योर वाइन सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, उस वाइन को अगर काट लीजिए, काटने के बाद उसको कितना लंबा रखेंगे, तो कम से कम जो है उसको 50 टू 60 सेंटीमीटर उसको लंबा रखिए। और उसको क्या करिएगा, उसको अंग्रेजी का आठ जो होता है उसके आकार में आप उसको मोल्ड कर लीजिए, आठ के आकार का बना लीजिए, और दोनों सिराओं को फिर मोड़ दीजिए, आठ

0: कल्टीवेशन करें तो सॉयल आपकी एकदम सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें बालू की मात्रा बढ़िया हो, उसमें इसकी उपज जो है ज्यादा अच्छी होगी। कड़ी मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी उपज थोड़ी कम हो जाएगी। और उसमें अगर बालू कड़ी मिट्टी है या लोमी मिट्टी है तो इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि आपको जो उस मिट्टी में जो है बालू, गंगा बालू अगर मिलता है तो गंगा बालू और आपका जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फ्यूराडान मिला करके उसको बढ़िया से उसका पिट बना लें, फिर उस पिट में लगाएंगे तो वो जो है आप जो है 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा जो वाइन लिए थे उसको आठ के आकार में बना लिया। और उसके दोनों को वाइन्स को आप ऊपर ले लेते हैं छोर को जो है, और साइड से जो है मिट्टी में दबा करके उसको पूरी तरह से उसको दबा देते हैं। हल्का हल्का सा वो दिखाई पड़ता है, जो सूर्य की रोशनी उसको मिलते रहे, हल्का सा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसके साथ कोई मरोगत मत करिए। अगर उसमें मान लीजिए आपने प्रेस नहीं किया है, बढ़िया से दबाया नहीं है, तो होता क्या है कभी कभी जब आप पानी देते हैं तो उसमें होल बन जाता है, तो जब होल बन जाएगा तो वहां से हवा चला जाएगा और हवा जाएगा तो उसके सूखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, पौधा लगेगा। आप कहेंगे कि हमने पौधा लाया था स्वस्थ लगाया लेकिन चला नहीं, तो इससे देखना है लगाते समय उसकी वाइन्स को खूब बढ़िया मिट्टी से दबा दिए ताकि मिट्टी का संपर्क उससे खूब अच्छी तरह से हो जाए और उसका जो नमी बराबर मिलती रहे। तो ये करना, लगाने के बाद आप उस पर मल्च डाल दीजिए, मल्च डालने के बाद उसको जो हल्की सी सुबह शाम सिंचाई करते रहिए। तो ये तो इससे हम प्रोपगेशन करते हैं वाइन से, सीड से हम नहीं करते, जैसा पहले बता दिया था। तो इसका प्रोपगेशन हम वाइन से ही करते हैं, वाइन वन ईयर ओल्ड वाइन्स लेते हैं, मेच्योर वाइन लेते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर लगते हैं, जिसमें 8, 7 से 8 कम से कम नोड हो, इसको ध्यान में रखना है कि इसलिए कि नोड से ही जो है जड़ें निकलती हैं, तो जब नोट्स नहीं रहेगा तो जड़ें नहीं निकलेंगी। अगर एक नोट्स लगाइएगा तो एक नोट्स मान लीजिए वीक हो गए या खत्म हो गए तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए 6 से 7 उसमें नोट रखिए, जिससे कोई भी नोट्स उसमें चलेगी, रूट्स निकल जाएगी तो पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने बताई, एक तो ये बता दिया वाइन से आपको लगाना है तो आप अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर वो भी 15 अक्टूबर के आसपास लगाए जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर स्प्राउट नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने डारमेंट रहती है, अक्टूबर लास्ट अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने डारमेंट रहती है, इसमें आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा इसका तरीका एक और है, मान लीजिए आपके पास जो है सैपलिंग, दूसरा तरीका है सैपलिंग तैयार करना। आप कुछ नहीं है, मान लीजिए आपकी वाइन खत्म हो रही है तो आप क्या करिएगा, आप अक्टूबर या सितंबर या जनवरी, सितंबर या अगस्त कभी भी जो है आप उसकी सैपलिंग तैयार कर लीजिए। सैपलिंग तैयार करने के लिए 2 तरीके हुए, एक तो आप पोली बैग ले लीजिए, पोली बैग में 2 से 3 नोड लेकर के उसको जो है अंदर जो है पोली बैग मिट्टी भरे रहते हैं उसमें आप उसको दबा दीजिए तो उससे वो स्प्राउट कर जाएगा, स्प्राउट कर जाएगा तो वो चलेगा। उस आप जो है सैपलिंग को आप रखे रहिए, उसके देख रेख करते रहिए। जैसे मान लीजिए आप नहीं लगा पाए, आपका खेत खाली नहीं है, तो आप फरवरी में आपका खेत खाली हो तो आप उसको फरवरी में सीधे उस सैपलिंग को खेत में ले जाइए और उसमें लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया चलेगा, उसमें स्प्राउटिंग बहुत फास्ट होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ कवर करेगा, आपका फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है सैपलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें 2 से 3 नोट जरूर रखिए, एक नोट पे मत लगाइए उसको, और 2 से 3 नोट रहेगा तो उसमें रूटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो सैपलिंग से आप जो है फरवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं।
1: जी सर, तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रबंधन का सही समय क्या है।
0: हाँ, देखिए इसका जो है, जब ये हम इसको जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो बहुत अच्छा महीना है, इसमें स्प्राउटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर काट करके वाइन वैसे भी लगा दीजिएगा, उसको दबा दीजिएगा तो चल जाएगी, लेकिन इस समय चूंकि परवल जो है एकदम अपने पीक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है, इसलिए कोई भी किसान अपने खेत से वाइन आपको नहीं देगा। लेकिन ये आपका मार्च से स्टार्ट हो करके और अक्टूबर तक फ्रूटिंग देता है, देखिए 7 से 8 महीने फल देता है। तो जब सितंबर के लास्ट तक जो है समझिए इसकी फ्रूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वीक हो जाती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। अक्टूबर में इसको लगाने का समय जो है सबसे बढ़िया क्या होता है कि अक्टूबर में आप जो है जो वाइन्स जैसे हमने बताया, लगाने की विधि जैसे हमने बताई है, आप जो इसको खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करके इसमें 2 तरीके से, एक तो आप पंडाल विधि से भी आप लगा सकते हैं, मचान विधि जिसको कहते हैं, पंडाल बना लीजिए, और या तो एक ऐसे पोल गाड़ करके सीधा 2-2 मीटर की दूरी पे आप पोल गाड़ करके उस पर रस्सी तान करके वैसे भी लगा सकते हैं, या ओपन

0: फील्ड कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए मान लिया हम कह रहे हैं कि दो दो मीटर दूरी पे लगाइएगा, तो दो दो मीटर की दूरी पे लगाइएगा। अगर फील्ड में लगाना है तो आप दो दो मीटर की दूरी पे लगाइए बेहिचक, इसलिए कि इसकी वाइन जब फैलती है तो जगह जगह पे अपनी रूट्स को जमीन में पकड़ती जाती है, तो जो एरिया खाली रहता है उसको आसानी से वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप जो है पोल पे लगाइएगा तो पोल पे हमेशा जो है दो मीटर पोल से पोल की दूरी होगी और पौधे से पौधे की दूरी एक मीटर होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं तो कम से कम आपको जो है 5000 कटिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पोल पे लगाते हैं तो 5000 कटिंग जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं इसे ओपन में 2x2 पे लगाते हैं तो लगभग 2500 आपकी कटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख लेना हमको कि किस विधि से आप लगा रहे हैं उसमें कितनी हमको कटिंग मिल रही है, कितनी अगर नहीं भी मिली है, कम भी मिली है जो है, तो आप फील्ड में लगा दीजिए, आप उससे अगले साल उसको प्रोपगेट कर लीजिए, उससे आप वाइन बना लीजिए अगर अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है तो।
1: जी सर, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की तो।
0: हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है जितनी भी कुकुरबिटेसी सब्जी होती है, लतेर वाली सब्जियां होती है, एक जनरल फंडामेंटल बता दें कि इन सब्जियों में जो है नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की मात्रा देंगे, और लेकिन इसके देने से पहले हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद भी इसमें देंगे। उसके अतिरिक्त ये होगा आपका 100-60-60 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन इसलिए हम जनरली कुकुरबिट्स में 80 के आसपास चलती है, लेकिन इसमें हमने 100 इसलिए कहा कि चूंकि ये लंबे अवधि की क्राप है, हमने बताया कि एक बार आप मार्च में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं तो चलती है, फिर अक्टूबर तक चलती है, तो ये लंबी अवधि की क्राप है, इसलिए मैं थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है तो 100 किलोग्राम है। इससे ज़्यादा जहाँ भी नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो समझिए उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आती है। हालांकि नर इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नर अलग ही होता है और मादा अलग होता है, लेकिन जनरल कुकुरबिट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप खाद जो है 20 से 25 टन FYM, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस एंड 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास संभव है तो इसमें आप जो है नीम की खली ये थोड़ा सा जो है नहीं ज़्यादा मिलता है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास जो है प्रति प्लांट नीम की खली से मिला दें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। खास करके जो है परवल में निमेटोड की एक समस्या आती है जो लगातार 2-3 दिन तक आप छोड़ दें, 2-3 साल तक छोड़ देते हैं तो वो सब समस्याओं से समाधान इसका होता रहेगा।
1: सर अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं?
0: अब देखिए इसमें वैसे तो बिहार में जो है इसकी बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब तमाम तरह की जो है प्रजातियां हम उगाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है उपजाऊ प्रजातियां हैं, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें जैसे राजेंद्र परवल 1 अपने यहाँ बहुत ज़्यादा राजेंद्र परवल है, राजेंद्र परवल 2 है, अभी नई वेराइटी अभी गवर्नमेंट से रिलीज हुई अपने यहाँ की जो है सबौर परवलन है, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसमें धारी नहीं होता है, उसमें सीड्स कम होते हैं, मिठाई के लिए भी अच्छी है और जो है सब्जी के लिए भी अच्छी है। तो एक सबौर परवल 1 है, दूसरा स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण रेखा है, तो ये सब जो है प्रजातियां जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, इन सब उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के आप इसका कटिंग प्राप्त कर लें और इनको लगा करके इसकी आप खेती करें, ये ज़्यादा उपजाऊ हैं और ज़्यादा आपको उपज देंगी, आपके लिए लाभदायक होंगे।
1: सर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कीट और व्याधि कौन कौन से होते हैं परवल में और कैसे बचें?
0: देखिए जनरल जो है एक जो है शुरू में जो सबसे कीट लगता है जिसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल, ये तो सारे कुकुरबिट्स का एक पेस्ट हम इसको बोलते हैं, तो ये रेड पम्पकिन बीटल होता है, ये जो जैसे हालांकि इसमें तो कॉटिलीडर नहीं निकलता है, इससे निकलता है स्प्राउटिंग होती है, तने से स्प्राउटिंग होती है इसके, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुकुरबिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, रेड पम्पकिन बीटल आता है जो कॉटिलीडर निकलती है उसी को खा जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन इस खेत में चूंकि हमारा चलता है स्टेम से निकलता है, इसलिए इसमें उसकी इनिशियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम इसकी नहीं रहती। इसकी प्रॉब्लम फ्रूटिंग स्टेज में आकर के एक फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे जबरदस्त रहती है। ये फ्रूट फ्लाई क्या करती है, कभी कभी किसान भाई के प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे फल तो लग रहा है लेकिन वो सड़ जा रहा है,

0: पक जा रहा है, तो उसकी समस्या में हमने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई है ये भी एक कारण है। एक तो कारण ये है कि हमने बताया कि आपने जो प्लांटिंग रेशियो अगर मेंटेन नहीं किया है, नर और मादा का अनुपात अगर मेंटेन नहीं किया है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं रहा, वो भी एक समस्या है। और दूसरी समस्या, जैसे ये फ्लावर आपका फ्रूट जब लगता है उसमें, ये जो है फ्रूट फ्लाई उसमें डंक मार देता है और फिर उसमें जो है सड़न पैदा होने लगती है, पीला पड़ जाता है। तो ये दोनों समस्या है। इसके निदान के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है फिरामोन ट्रैप, एक फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप ले लीजिए, 5-6 ट्रैप ले लीजिए, एक एकड़ के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। और उसको जो है चारों कोने पे बीच में लगा दीजिए। वो क्या करता है कि जितने भी जो है ये जो है मेल जितने भी आपका जो है फ्रूट फ्लाइज है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, और उस फिरामोन ट्रैप में ल्यूर जो होता है वो जो है पॉइजनस होता है, ये जैसे उसमें मेल जाता है उसी में वो मर जाता है। तो इससे होता क्या, उसकी प्रजनन जो है रुक जाती है और फिर बाद में वो फैल नहीं पाता है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उसमें फ्रूट फ्लाई की आती है, दूसरा कभी कभी ये स्टेम ब्लाइट की भी समस्या आती है, स्टेम ब्लाइट कर स्टेम रॉट की जो है, कभी कभी उसका तना भी सड़ने लगता है। रोग के बारे में अगर कहें तो कभी कभी उसके गमोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तने निकल जब पुराने हो जाते हैं तो वहाँ से गम जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में किसान भाई जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% यानी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उस पर 2-3 छिड़काव कर दें, उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो पौधा आपका अच्छी तरह से चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी इसमें जो है निमेटोड की है, ये हमने बताया कि ये पेरेनियल क्रॉप है, तो पेरेनियल क्रॉप है तो चूंकि 1 साल लगाते हैं, और ये ऐसी फसल है कि 1 साल लगाते हैं और इसको 3 साल तक काटते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि 1 साल लगाइए 3 साल काटिए, लेकिन 3 साल का और पहले साल की तुलना में दूसरे और तीसरे साल फलत ज्यादा अच्छी आती है। तो ये बात हमको ध्यान देखनी है कि जो है अगर पहले साल हम इसको लगाते हैं तो दूसरी साल उसका मेंटेनेंस करें, और दूसरी साल से जनरली जब 2 साल से ज़्यादा होता है तो निमेटोड की समस्या शुरू हो जाती है। निमेटोड क्या होता है, उसके अंदर गांठ बना लेता है, उसके जड़ों में गांठ बना लेता है, और पौधे का जो सिस्टम होता है जो उस पर जिससे पानी ऊपर जाता है वो पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे खनिज लौड़ ऊपर जाता है सब उसको ब्लॉक कर देगा, तो पौधे को मिलेगा नहीं, तो अंत में क्या होता है पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो ये निमेट, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो नीम वाला जो है हमने बताया कि नीम की खली उसका आप प्रयोग करते रहें, फ्यूराडान भी समय समय पे जो है पर पौधे आप 10 से 15 ग्राम या 2 से 3 ग्राम आप जो है देते रहिए समय समय पे, ताकि उसमें इस तरह की समस्या ना आए। और उसके मिट्टी को हमेशा उसके थोड़ा सा कभी जाँच करते भी रहिए कि इसमें निमेटोज की समस्या नहीं आ रही है। तीसरा है उसको रोटेशन भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक वहीं छोड़े रह रहे हैं। आप 3 साल के बाद फील्ड को बदल दीजिए, क्रॉप रोटेशन कर लीजिए। इससे करने से क्या होता है कि वो निमेटोड अपना घर नहीं बना पाता है और उसमें जो निमेटोड की समस्या नहीं रहती है। तो क्रॉप रोटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी हमको देख लेना है। तो ये सब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो इसमें जो आती हैं, बाकी तो ये जो है पेरेनियल क्रॉप है, चलती रहती है।
1: सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो परवल की खेती करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए परवल की खेती के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है कि ये पेरेनियल क्रॉप है और एक बार जब लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक ये फसल देती है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जब भी आप इसको लगाइए तो इसमें सेक्स रेशियो, इसके प्लांटिंग रेशियो जो है जरूर मेंटेन रखिए, जो 9 संबंध है 1 के अनुपात में होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप जो है इसको लगाते हैं तो 3 साल के बाद एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर जरूर कर दें, और संभव है तो 100 ग्राम जो है नीम की खली उसमें जरूर दिया करें। इस तरह से अगर आप तकनीकी अपनाते हैं तो आपको जो है इससे लगभग जो है 250-300 के आसपास आपको उपज पैदावार मिल जाएगी, जो आपको 8 महीने तक देती है और इमरजेंसी क्रॉप के रूप में भी आपको ये फ्रूट देती है, फल देती है, सब्जी देती है। तो इससे आप जो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकते हैं।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, अगर आप परवल की खेती करते हैं तो जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से खेती कीजिए और कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: Stay glass.

0: को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम, किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो तकनीकी के प्रयोग से कैसे पौधों में रोग निवारण किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे नैनो तकनीक क्या है और भी इसके बारे में बहुत सी बातें हम जानने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अभिषेक कुमार सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
3: सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर नैनो तकनीक है क्या?
5: यह बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करने वाली तकनीकी है, जो उन्नत वैज्ञानिक तरीका है जिसका प्रयोग पौधों के रोकथाम और बचाव के लिए बहुत बेहद उच्च प्रणाली के तरीका से किया जाता है, जिसे कि नैनो तकनीकी कहा जाता है।
3: और सर, नैनो तकनीकी की विशेषताएं क्या क्या है?
5: जी, अभी किसान भाई को नैनो तकनीकी क्यों चाहिए, तो इससे पहले भी हमने बातें की थी, लेकिन फिर भी पुनः यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि यह जो तकनीकी है जो किसान भाइयों के लिए नया है और यह बहुत सुरक्षित माना जाता है। जो हम पहले उपयोग करते थे उसके, जो परंपरागत उपयोग करते थे उसके अपेक्षा यह बहुत सुरक्षित माना जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है ना, जो इसमें लागत है वह भी किसान भाई के लिए कम होते हैं और इसके अलावा भी जो पर्यावरण अनुकूल होते हैं, यह क्योंकि इसमें किसी तरह की जैविक, जो हम लोग परंपरागत जो रसायन यूज करते थे वैसा नहीं होते हैं यह, और इसमें अवशेष भी कम बचते हैं जिससे कि उसका जो प्रभाव जो बाद में होता है वह भी कम हो जाता है। और जो नैनो आधारित उत्पाद होते हैं जैसे, और इसका जो मिट्टी में जल में जो है ना प्रदूषण भी कम करते हैं, और इसके सहायता से नैनोकन की सहायता से, नैनो तकनीकी की सहायता से जो दवा है या पोषक तत्व जो हम बनाते हैं नैनो तकनीकी से, वह भी जो है ना पौधे को सीधे पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको मिलते हैं, तो इसमें जो है ना पौधे को बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना लाभ मिलता है, जिससे यह तकनीकी बहुत अच्छा माना जा रहा है।
3: यस सर, तो सर इस तकनीक के उपयोग से पौधों में रोग निवारण की भी आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन निवारण से पहले ज़रूरी है कि हम कारणों को समझें।

0: तो सर आप ये बताइए कि पौधों में रोगों के होने का कारण क्या क्या होता है?
1: पौधों में रोग होने के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं किसान भाई को जानना चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि वे जो हमारे मिट्टी है उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की ही कमी हो जाती है, उसके कारण भी जो है ना आगे पौधे में बर्बाद कम हो जाती है। या क्या होता है कि कभी कभी जो है ना किसान भाई जो डेली का जो उसका खेत का जो सही ढंग से जुताई बुआई या सिंचाई नहीं कर पाते, उसके कारण में भी रोग की जो है ना जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। तीसरा है कि कीट के भी द्वारा जो है ना पौधों में रोग आ सकते हैं, संक्रमण हो सकते हैं। कीट कहीं दूसरे जगह गए, उसमें कहीं संक्रमित पौधे पे आए तो उसके थ्रू भी द्वारा भी पौधों में रोग होने की संभावना होती है। और कभी कभी क्या होता है या बहुत यात्रा में भी कभी कभी देखने को मिलता है कि जो इसमें प्रत्यक्ष रूप से जीवाणु या विषाणु या फफूंदी भी पौधों में आ जाते हैं, जिससे कि जो है ना पौधों में रोग होने की जो है ना कारण और जो है ना मात्रा बढ़ जाते हैं।
0: सर कारणों के बारे में तो अब जान लिया, अब जरूरी है कि हम इसके रोकथाम की बात करें। रोकथाम कैसे किया जाए?
1: यहाँ पे मैं किसान भाई को एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा और किसान भाई इस चीज़ को जानते भी हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जब हम किसी खेत में किसी पौधे को लगाने के बारे में सोचें या उसमें किसी तरह का खेती का कृषि का कार्य करने का हम प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम जो है ना समय पे जो है ना खेत की जुताई जरूर करें। जुताई करने से क्या होता है कि जो अंदर जो छिपे रहते हैं जीवाणु विषाणु बाहर आ जाते हैं और बाहर में धूप और जो तापमान है उसके कारण जो है ना जीवाणु और विषाणुओं का प्रकोप कम होने लगता है, क्योंकि उसकी जो है ना ग्रोथ कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी पूर्णतः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और दूसरा है कि समय पे हम उसकी बुआई करें। कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई खेती तो करते हैं लेकिन समय पे उसकी बुआई नहीं कर पाते हैं, तो जब हम उसमें देरी करते हैं, लेट होता है, तो जो है ना तो स्वाभाविक है कि जो है ना पौधों में रोगों की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, तो वह भी समय पे करने का कोशिश करें। और तीसरा है कि जो है ना उसमें सिंचाई भी करना चाहिए समय समय पर। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है जो किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि जिस खेत में हम कृषि कार्य करते हैं ना उसमें हमेशा समय समय पर जो है ना जो खाद है, जो अपना देसी खाद है, उर्वरक है, और जैसे कि जो अपना गाय का है या जो है ना जो उसका गोबर है वह सब जो है ना प्रचुर मात्रा में डालना चाहिए। इससे भी जो है ना इसकी रोकथाम में सहायता मिलती है।
0: रोकथाम के बाद अब फिर भी अगर पौधों में रोग हो जाते हैं तो उन रोगों की पहचान कैसे करें?
1: अभी जो नैनो तकनीकी है उसमें जो है ना एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो नैनो संवेदक आया है, जिसको नैनो सेंसर बोलते हैं, और इसकी महत्ता बहुत हो जाती है कि इसके नैनो संवेदक के द्वारा हम जो है ना इसका जो है ना बहुत पहले ही बहुत अर्ली स्टेज में जो है ना प्रारंभिक अवस्था में ही हम जो है ना रोगों की पहचान कर सकते हैं, पोषक तत्वों की कमी कर सकते हैं। तो नैनो संवेदक क्या है? यह एक जो है ना नैनो तकनीकी का सूक्ष्म उपकरण होते हैं जो कि नैनो स्केल पे काम करते हैं, और इसमें जो भी जीवाणु विषाणु और जो भी चीज़ होते हैं जिसको पता लगाना होता है उसमें जो जैव रासायनिक चीज़ होते हैं या भौतिक गुणों के आधार पे बहुत आसान से नैनो संवेदक उसका पता कर लेते हैं कि यह आखिर क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, फफूंदी है, या किसके कारण, या पोषक तत्वों की कमी है, और या और अधिक और कोई चीज़ की कमी है, तो उसके आधार पर यह जो है ना नैनो संवेदक बहुत अच्छा से पता कर लेते हैं। और इसकी यह भी खासियत है कि यह छोटे आकार के होते हैं, कम मात्रा में रसायन अगर होते भी हैं, जीवाणु विषाणु कम भी होते हैं तो पर भी वह उसका पता आसानी से कर पाते हैं। और दूसरी बात है कि अगर कीटों की या तापमान के बदलाव के भी कारण कुछ अंतर होते हैं तो वह भी जो है ना नैनो संवेदक आसानी से उसको पहचान कर लेते हैं।
0: सर पहचान के बाद अब बात निवारण की, तो इन रोगों का निवारण कैसे करेंगे?
1: निवारण

0: मुख्यतः तीन तरह से हम कर सकते हैं कि सर्वप्रथम हम यहाँ पे सलाह देंगे किसान भाई की को, किसान भाई बहनों को, कि पौधों में जो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावें, कुछ जो नैनोकण अभी मिलते हैं, जो नैनोकण बनाया जा रहा है, जैसे उसमें काइटोसोन नैनोकण होते हैं, यह पौधों के जो है ना प्रतिरोधक जो क्षमता होते हैं उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में बहुत कारगर उपाय कारगर साबित हो रहे हैं, जिससे कि विभिन्न तरह के जो पौधों में संक्रमण होता है उससे यह बचाने में बहुत मदद करते हैं। फिर है कि जब यह हमको पता चल जाता है कि हम उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावें, तो दूसरा है कि कुछ जो नैनोकण होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से ही पोषक तत्व के तरह काम करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड नैनोकण है तो उसमें हमसे उससे जब जिंक ऑक्साइड का हम प्रयोग करेंगे तो उससे जो है ना जिंक पोषक तत्व की उपलब्धता हो जाती है। उसी तरह जो है आयरन ऑक्साइड के भी नैनोकण मिलते हैं, उसमें जो है ना बहुत मात्रा में आयरन जो है ना पोषक तत्व के रूप में जो है ना पौधे मौजूद होते हैं और पौधे बहुत आसानी से ले लेते हैं। अच्छा। और इसका प्रत्यक्ष उसका जो है ना लाभ मिल पाता है। तो इस तरह से जैसे नैनो फास्फोरस है, नैनो नाइट्रोजन है, तो इस तरह के जो पोषक तत्व हैं वो उसका उपयोग हम कर सक करने से क्या होता है कि वह प्रत्यक्ष रूप से उसमें लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा भी अगर रोग हो जाए तो बहुत तरह के जो है ना जैसे कीटनाशक भी होते हैं, फुफंदी नाशक होते हैं, जीवाणुनाशक नैनोकण होते हैं या विषाणु नाशक नैनोकण होते हैं, तो उसका उपयोग किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। जैसे कॉपर नैनोकण है या फुफंदी नाशक होते हैं, फुफंदी तरह के अगर रोग आवे तो उसको आसानी से किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह जिंक ऑक्साइड भी है, यह भी फुफंदी नाशक में काम करते हैं। सिल्वर नैनोकण है, यह भी बहुत आसानी से इसमें काम करते हैं। इसी तरह जो है ना और भी बहुत सारे नैनोकण हैं जो बहुत आसानी से जो है ना रोगों का निवारण करते हैं, क्योंकि यह जो है ना जो नैनोकण बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होता है जो बहुत आसानी से जीवाणु विषाणु या कीटों का जो उसका जो कोशिका झिल्ली होती है बहुत आसानी से अंदर जाके उसको जो है ना उसकी जो क्रियाएं है रोक देती है और उसको नष्ट कर देता है।
1: तो दोस्तों आज हमने बात की कि किस तरीके से नैनो तकनीकी के इस्तेमाल से पौधों में रोग निवारण किया जा सकता है, और इस बारे में आज हमें जानकारी दी डॉक्टर अभिषेक कुमार ने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: दोस्तों उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों को आप अपनाकर आप अपनी फसलों को स्वस्थ रखेंगे, और साथ ही जिस तरीके से सर ने बताया कि प्रबंधन बहुत जरूरी होता है और प्रबंधन से भी जरूरी है कि रोकथाम करें, तो रोकथाम करें और नैनो तकनीकी को अपनाएं। और कुछ खास बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और खास बात ये कि अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
2: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू तेरे कितने दोस्त है?
8: तीनू, नीनू,

0: और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुवाई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुवाई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4

वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वाकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आम का मौसम लगभग जा चुका है और फल तोड़ाई भी लगभग हो चुकी है, और फल तोड़ाई के बाद भी जरूरी होता है कि आप बागों का उचित प्रबंधन करें ताकि अगले वर्ष अधिक फल हो, अगले वर्ष भी आपको मुनाफा अच्छा हो। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि फल तोड़ाई उपरांत आम के बागों का प्रबंधन किस प्रकार करें। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर उद्यान विभाग फल से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
1: मैम सबसे पहला सवाल यही है कि अभी आम के बागों से करीब सभी किस्मों के फल तोड़ाई हो चुकी है, तो अभी प्रबंधन कैसे करना चाहिए जिससे कि अगले वर्ष अधिक मात्रा में फल हो।
2: सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि फल तोड़ाई के बाद पौधों में खाद एवं उर्वरक का कमी हो जाता है एवं पौधों के समुचित विकास एवं फलन के लिए नियमित रूप से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर वृक्षों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनसे कम उपज प्राप्त होता है तथा फलों की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की हो जाती है। पानी के जरिए ही वृक्षों के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जल जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन इत्यादि कामों में आवश्यक होता है। इसके बिना ये सब कार्य जो है अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के अभाव में वृक्षों की बढ़वार एवं फलत पर गहरा असर पड़ता है। पौधे भूमि से पोषण एवं जल के माध्यम से ही लेते हैं तथा यह जल पौधों को पाले से भी बचाता है। समुचित सिंचाई एवं उर्वरक से फलों का उपज, स्वाद, मिठास, गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। जल एवं पोषक प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि कब दी जाए, कहाँ दी जाए एवं कितनी मात्रा में दी जाए ताकि जल एवं पोषक का अधिकतम उपयोग तथा मिट्टी एवं पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जल एवं पोषक प्रबंधन के साथ साथ डालियों की हल्की कटाई छटाई भी आवश्यक है। यह कार्य भी फल तुराई के तुरंत बाद ही करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त फल एवं अधिक फलन के लिए आवश्यक है कि पौधे के मांग के अनुरूप उसका पोषण प्रबंधन किया जाए। पौधे की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए सभी 16 अनिवार्य पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक है। सही समय पर सही उर्वरक एवं सही मात्रा का प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: तो मैम उचित समय क्या होता है जब आम के पौधों में पोषण की मात्रा देनी चाहिए?
2: आम में पोषण देने का उचित समय जुलाई अगस्त माह है, लेकिन पोषक तत्वों का अधिक वर्षा से होने वाली क्षति को देखते हुए कंपोस्ट की पूरी मात्रा एवं उर्वरक की 75% मात्रा जुलाई में और शेष मात्रा का प्रयोग अप्रैल के प्रथम माह में करना लाभप्रद है।
1: मैम जब हम एक वयस्क पौधे की बात करते हैं तो आम के एक वयस्क पौधे में कुल खाद की कितनी मात्रा होनी चाहिए?
2: आम के वयस्क पेड़ में अनुशंसित खाद एवं उर्वरक की मात्रा इस प्रकार है, जैसे प्रति पौधे खाद एवं उर्वरकों की मात्रा में 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास एक वयस्क पेड़ के लिए अनुशंसित है। यह मात्रा 10 साल के बाद स्थिर हो जाता है। 10 साल के ऊपर जो पौधे हैं उसमें यही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ लगेगा। इस तरह से उर्वरक का डोज दिया जा सकता है।
1: अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की, तो मैम आम के बागों में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए?

0: पौधों की सिंचाई के समय हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई कब करनी चाहिए और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए। अब सबसे पहला है सिंचाई कब करें। उद्यान की सिंचाई की आवश्यकता स्थान विशेष की वर्षा के परिणाम एवं वितरण, मिट्टी के प्रकार एवं बनावट, वातावरण की आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। चिकनी मिट्टी को बलुई मिट्टी की अपेक्षा एक बार में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, परंतु बलुई मिट्टी में लगे हुए बाग की सिंचाई कम अंतराल पे और कम मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। एक बार में इतना ही पानी दिया जाए जो संपूर्ण जल क्षेत्र को जड़ क्षेत्र को अच्छी तरह नम कर सके। जहां वर्षा कम होती है और इसका वितरण भी अनियमित हो तो सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई जल की आवश्यकता वृक्ष की आयु पर भी निर्भर करता है। आम के वृक्ष फल देने की स्थिति में आने के बाद बाग की सिंचाई का व्यवस्था बदल जाता है। फल देने वाले वृक्षों को नवंबर से मार्च तक आमतौर पर सिंचित नहीं करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इस अवधि में फूल धारण करने के लिए आवश्यक आंतरिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए इस अवस्था में सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि में सिंचाई करने से संभव है कि वृक्षों में मंजर कम आए या फूल आने के बाद झड़ जाए। अतः यह जान लें कि फलने वाले वृक्षों की सिंचाई, फल निकलने एवं स्पष्ट रूप से दाने लग जाने के बाद ही करना लाभकारी होता है। फलों के लगने तथा विकास के दौरान किसी भी अवस्था में पानी की कमी से फलों का विकास प्रभावित होता है तथा फल झड़ने की समस्या भी आती है। फल लगने के उपरांत 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि फल पूर्णतया विकसित ना हो जाए। एक बार की सिंचाई में इतना पानी अवश्य देना चाहिए कि वृक्षों का संपूर्ण जड़ क्षेत्र नम हो जाए। आम जैसे बहुवर्षीय वृक्षों की जड़ें काफी गहराई तक जाती है, परंतु प्रभावी रेशेदार जड़ों का अधिकांश भाग मिट्टी की सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक होती है। सिंचाई इतनी अवश्य करनी चाहिए ताकि जड़ क्षेत्र में पर्याप्त पानी बना रहे और पौधे का विकास ठीक प्रकार से हो। आवश्यकता से ज़्यादा या कम सिंचाई पौधे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब सिंचाई किस प्रकार करें, तो सिंचाई करने का है जैसे कि पारंपरिक सिंचाई विधि है या आधुनिक सिंचाई विधि है। अब पारंपरिक सिंचाई की बात करें तो इसमें फ्लड इरिगेशन है या क्यारी विधि से है, नाली विधि से है और रिंग विधि से है, थाला विधि से जिसको बोलते हैं। इन सबों में थाला विधि सर्वोत्तम पाया गया है। इसके लिए वृक्ष के चारों तरफ 2 से 3 फीट की दूरी पर थाला बनाकर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। आधुनिक सिंचाई पद्धति में ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर मेथड से पौधे का सिंचाई किया जा सकता है। इस विधि से करने पर जो सिंचाई जल का बहुत सेव होता है, बचता है। इस तरह से किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं अपने बगीचे का।
1: तो किसान भाई बहनों जो बागवानी करते हैं और आम के फल की तुड़ाई हो चुकी है, तो इस प्रकार से आप अपने बगीचों का प्रबंधन जरूर करें तो अगले वर्ष भी अच्छी गुणवत्ता वाले और अधिक फल आएंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है।
2: टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्त।

0: का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से ज़रा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी

को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है, और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है, और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए, और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से, उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही हैं, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है, और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है।
वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है,

बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे

तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी, आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे, अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना ज़रूरी है नौकरी करना, उतना ही ज़रूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना ज़रूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा, समझेगा, समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये ज़रूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है।

0: माइक्रोडोज बच्चे कहते हैं और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको

0: कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

കൃഷി. हेलो नमस्कार, तो लीजिए आपकी आरजी अनु हाजिर है एक बार फिर से आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हाँ, हम लेकर आते हैं किसान भाइयों के लिए उनके सवालों का जवाब, यानी कि हमारे जो आज विशेषकर हम जो टॉपिक लाते हैं उनमें आपके सवालों के जवाब छिपे रहते हैं. और फिलहाल आज एक और विशेष विषय है हमारे पास, और वो ये है कि आय सृजन के लिए अनाज की फसल का गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन आप कैसे करें किसान भाइयों. तो किसान भाइयों, देखा जाता है कि आप अपनी फसलों को उगाने में कई ज़्यादा लागत लगाते हैं, लेकिन

0: कई बार आपको हानि इसलिए हो जाती है कि आप गुणवत्ता वाले जो बीज हैं वो नहीं डाल पाते हैं, और कम गुणवत्ता वाले बीजों से आपको पड़ जाती है हानि, यानी कि आपकी जितनी भी लागत है आप उससे कहीं ना कहीं जो मुनाफा है बहुत कम पाते हो। तो अब यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि आपकी जो बीज है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, और इसलिए आज बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ पर हमारे साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। और आज के एक्सपर्ट हैं हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार सभी लोगों को। हाँ बताइए।
0: तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बीज उत्पादन किस तरह किसानों के लिए एक व्यवसाय बनकर इन दिनों उभरा है।
1: सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज आप लोगों सभी लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो गुणवत्ता युक्त बीज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इसका फसल उत्पादन में बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अगर आप कुछ भी आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या पेस्टिसाइड है, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं कंट्रोल के लिए, उसका इफेक्ट आपको डायरेक्ट देखना है तो सबसे पहले आपको गुणवत्ता युक्त बीज का ही इस्तेमाल करना होगा। इसलिए कि अगर आप अकेला अगर सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो उपज है लगभग 10-15% जो है प्रतिशत अपने आप ही बढ़ जाएगा। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा चीज़ है कि जैसे हम बिहार राज्य में ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो हम गुणवत्ता युक्त बीज का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी संख्या या उसका प्रतिशत बहुत कम है। तो अभी मेरा यही एक है कि आप सभी लोग से है कि आप उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का इस्तेमाल ज़रूर करें पहला, और दूसरा ये है कि अभी बिहार राज्य में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी बीज का गुणवत्ता युक्त बीज है उसका मैक्सिमम ज़्यादातर जो हिस्सा है जो इसको जिसका इस्तेमाल होना चाहिए वो सब बाहर से आ रहा है, और हम लोग यहाँ पे जो उत्पादन करके जैसे सेल करना होता है या बेचना होता है उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है जिसका हम इस्तेमाल एज ए रोजगार के रूप में हम कर सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि अगर आप ये देखिए कि जैसे हम धान का बीज है, धान का जैसे हम अनाज हम बेचते हैं तो हमको मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा मिलता है तो 15 या 16 या बहुत अच्छा होगा तो 20 रुपये मिलेगा पर केजी के हिसाब से, हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप इसी को बीज के फॉर्म में अगर आप थोड़ा मेहनत करके उसको अच्छे से साफ सफाई करके उसका उत्पादन जो है थोड़ा ध्यान में रख के अगर आप करके उसका अच्छे से स्टोरेज करके अगर आप रखते हैं और बीज को उच्च गुणवत्ता के साथ अगर आप बेचते हैं तो आप यही समझिए कि इसका मुनाफा जो है आपका लगभग डबल हो जाता है, क्योंकि कप का प्राइस कम से कम उसमें 35 से 40 रुपया पर केजी आपको मिलेगा। एक तो ये सीधा 50% का मुनाफा है जो डायरेक्ट जो है वो प्रोड्यूसर के हाथ में है। तो एक चीज सबसे बड़ा गैप ये है, और अभी बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा उन उच्च गुणवत्ता बीज की आवश्यकता है, चाहे वो धान हो, मकई हो, चाहे वो आपका वेजिटेबल क्रॉप हो, कोई किसी में भी हो, सब में उसकी आवश्यकता है।
0: हाँ, और कहीं ना कहीं जब गुणवत्ता के अच्छे गुणवत्ता के बीज रहेंगे तभी फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, और तभी आपको मार्केट में जो प्राइस है उसके वो अच्छे मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और जानते हैं कि बीज उत्पादन को किस तरह किसान भाई अपने लिए रोजगार के अवसर के लिए उपयोग कर सकते हैं।
1: सबसे पहले तो देखिए अपने एक चीज़ है कि आप अपने स्तर से भी एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे हर साल जैसे हम लोग बीज जो है हम खरीद जैसे होता है कभी कभी हम लोग नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है आप नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन हमारा ये सुझाव होता है कि आप हर साल बीज जो है खरीदने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बीज को इस बार अगर आप लगा रहे हैं अगले बार उसी में से काट करके फिर आप रख के फिर लगा रहे हैं तो वो उपज आपको अगले साल नहीं देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है जो आपको जो प्रोडक्शन है जो आप चाह रहे हैं कि हमको इतना उपज मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो अगले साल से ही घटना शुरू हो जाता है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जैसे आप कोई भी जैसे बीज उत्पादन में रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले पहला काम ये है कि आप एक छोटे से 1 एकड़ एरिया से आप पहले उस टेक्निक को थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला आपको एक है कि जैसे आप धान का उत्पादन कर रहे हैं तो आप कुछ करें या ना करें, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बगल वाले जो खेत है उससे आपको जो पृथक्करण दूरी है वो मिनिमम 3 मीटर जो है आप जरूर मेंटेन कीजिए, सबसे पहला यहाँ है, और उसके बाद जो है उसके रख रखाव पे काफ़ी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप हार्वेस्ट करते हैं उसको कटाई करते हैं, कटाई से लेकर के उसके बाद आपको स्टोरेज से लेकर के हर चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इसको बीज के रूप में इस्तेमाल करना है, कहीं से भी इसमें मिक्सचर होने का चांस नहीं होना चाहिए। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जब आप ये धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल के अंतराल में आप जब ये टेक्निक सीख जाते हैं, आपको तकनीकी मालूम हो जाती है, तब आप ऐसे इसको रोजगार के रूप में इस्तेमाल, इसको आगे लेके जा सकते हैं। उसके

0: आपको एक तो सबसे पहले आप एक छोटा सा कोई फर्म है, जैसे आप कोई कंपनी है या चार पांच लोग मिल करके, जैसे अभी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो चुका है, उसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके आप एक कंपनी फ्लोट कर दीजिए मार्केट में। उसका आप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो होता है, अगर आप किसी मान लीजिए कि आप एक भागलपुर जिला में बेचना चाह रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है वहाँ पर आप लाइसेंस ले लीजिए। अगर आप पूरे बिहार में बेचना चाहते हैं तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप उनसे लाइसेंस ले लीजिए, और लाइसेंस लेकर के आप पूरी तरह से इसको एक कमर्शियल के फॉर्म में आप इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि आप कैसे इसे व्यवसाय यानी कि रोजगार के अवसर के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को किस हद तक बीज उत्पादन से फायदे की उम्मीद हो सकती है?
0: इसमें बहुत सारा चीज है। जब सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, हम जैसे आमतौर पर क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक दसला वेराइटी चलती है, जैसे लोकल वेराइटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा होता है उसका, नो डाउट उसका मतलब हर चीज में अच्छा है, आपका टेस्ट में अच्छा है, प्रोडक्शन में अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन उस वैरायटी को हम सिर्फ यहीं पे कुछ ही जगह पे ही या एक ब्लॉक में लग रहा है, चाहे चार पांच विलेज में लग रहा है, हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसी वैरायटी को, उसी किस्म को जो आप दसला बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर संस्था है जो दिल्ली में है जिसका सेंटर और जगह भी है, जिसको हम लोग पीपी व्यवहार एक्ट बोलते हैं, अथॉरिटी बोलते हैं, उसका आपको सारा चीज हमारी यूनिवर्सिटी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप उसको रजिस्टर करा लीजिए और फिर उसका प्रोडक्शन शुरू कीजिए। उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा उसमें मुनाफे की उम्मीद होती है, क्योंकि दसला वैरायटी हम सभी लोग यूज करते हैं लेकिन उसका कमर्शियल कुछ नहीं हो पाया है।
1: अच्छा।
0: एक तो ये है, और उसका जो सीड प्रोडक्शन का काम है, उसका सीड प्रोडक्शन का काम शुरू कीजिए, क्योंकि वो किसी के पास नहीं है। अगर वो कोई लेने आएगा तो सिर्फ आपसे लेगा, और उसका जो एरिया है या क्षेत्र का जो विस्तार होना है वो होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा आपका सीड का जो सेलिंग वो बढ़ता जाएगा और आपका मुनाफा यूं ही बढ़ता जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो आप पहले से ग्रो कर रहे हैं, उसमें नया कुछ भी नहीं है। आप उसको बस किसी सिंपल सा है, यहाँ आकर के एक बार जो है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय मतलब स्टाफ से मिल करके आप उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए और उसका सीड प्रोडक्शन का काम उसको शुरू कर दीजिए। अब जहां भी दिक्कत होगा, यूनिवर्सिटी है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, हम लोग हैं सारा चीज बताने के लिए।
1: तो यहाँ पर हमने जाना कि किसान भाई कैसे बीज उत्पादन से फायदे मिल सकता है इन्हें, और इसके बाद किसान भाई बीज उत्पादन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और इनमें इनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ, सबसे पहले ये है कि बीज, जैसे बीज उत्पादन की शुरुआत अगर आप करना चाह रहे हैं तो जैसे पहले मैंने भी बताया था कि एक एक एकड़ एरिया से पहले कुछ टेक्निक्स होते हैं, उस टेक्निक्स को आप सीख लीजिए थोड़ा बहुत। आप उस आपको उसके लिए बगल के कृषि विज्ञान केंद्र है, या अगर आपका जैसे आप यूनिवर्सिटी के नियर बाई हैं, विश्वविद्यालय के नज़दीक है, तो वहाँ आ जाइए, कृषि विज्ञान केंद्र में आ जाइए। हम लोग थोड़ा सा आपको एक टेक्निक सिखाएंगे, हमारे यहाँ कई प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, तो वो हम एक टेक्निक सिखाने के बाद आपको हम कुछ नॉलेज से होता है कुछ ज्ञान जो स्टार्टिंग जो ज्ञान होता है वो हम आपको दे देंगे। उसके बाद जो है आप प्रोडक्शन का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक या दो एकड़ एरिया से ही शुरू करना है। और इसके बाद आप सबसे पहले कि आपको तो ये पता जरूर होगा कि आपके यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी कौन चल रही है। जैसे मान लीजिए अगर आप गेहूं में है तो कौन सी वैरायटी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, हो सकता है कि धान में होगा तो धान में कौन सी वैरायटी अच्छा काम कर रही है, मकई में तो मकई में कौन सी कर रही है। आप बहुत बड़े लेवल पर मत जाइए, अभी कंपनी की शुरुआत आपको करनी है तो एक बहुत छोटे लेवल से कीजिए, और उसमें जहां आपको दिक्कत होगा, जैसे इसमें कई ग्रुप है, जैसे अगर आपको फाउंडेशन से प्रोडक्शन करना है, आधारित बीज बनाना है, या आपको ये सर्टिफाइड बीज बनाना है जैसे प्रमाणित बीज बोलते हैं, तो अगर आपको आधारित बीज बनाना है तो उसके लिए आपको ब्रीडर सीड की आवश्यकता पड़ेगी जो यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर आपको सर्टिफाइड सीड बनाना है तो उसको आपको फाउंडेशन सीड की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में अच्छा कर रही है और उसका जो बीज है हमको कहाँ से उपलब्ध होगा। अगर वो बीज अगर आपको मिल जाता है तो फर्दर आप जो है सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर किसान भाई अभी ध्यान रखने की बात है तो अगर वो बाजार जाते हैं बीज खरीदने के लिए तो उनको किन बातों का ध्यान रखना?
0: हाँ, देखिए बाजार अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले जो आप अभी तो बहुत सारा जैसे बाजार में भी जो मटेरियल मिल रहा है बीज के नाम पे जो बेचा जा रहा है, जो हम लोग देखते हैं बहुत सारा ऑब्जर्वेशन भी है कि वो उस तरह से ऑथेंटिक नहीं है, बस लेकर के आ रहे हैं किसी तरह पैक कर दे रहे हैं सेल कर दे। आप टैग जरूर देखिए, बोरे पे

0: यहाँ भी कुछ लगा हो, टैग देखिए, संस्था का नाम देखिए कि किस संस्था ने इस बीज को ये प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किसने किया है और किस संस्था ने इसका प्रमाणीकरण किया है, क्या वो बिहार स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से प्रमाणित है। अगर TL अगर बेच रहे हैं तो तब आप उसमें जो प्रोड्यूसर का एक टैग होगा जिसमें टैग लगा रहता है कि आपको वो देना ही देना है। दो तरह का टैग आपको किसी भी सीड लेवल पर दो तरह का टैग होता है, एक आपका ब्रीडर सीड फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड का टैग होता है और एक होता है अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर अलग से लेबल जिसको बोलते हैं वो लगा होगा। तो बीज के बोरे पे मिनिमम एक टैग तो जरूर होगा, उसमें आपका सारा डिटेल लिखा होगा, कौन सी किस्म है, कितना उसका प्योरिटी परसेंटेज है, क्या मॉइस्चर परसेंट है और उसके बाद कितना किलोग्राम है, ये सारा चीज लिखा होगा, उसको देख करके परचेज कीजिए।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना, डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आप अपनी जो मुनाफा है उसे दोगुना करने के लिए कैसे गुणवत्ता वाली बीज खरीद सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। और यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले आपको, जैसे कि बीज उत्पादन के लिए किस तरह आप इसे व्यवसाय बना सकते हैं बीज उत्पादन के तौर पर। और इसके बाद आपने जाना कि किसान भाई कि आप कैसे इससे फ़ायदे पा सकते हैं यानी कि बीज उत्पादन से। तो इस तरीके से आप बीज उत्पादन कीजिए और साथ ही गुणवत्ता वाले बीज लाइए बाज़ार से और उसे बोइए और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लाइए और मुनाफा भी दुगना पाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी थे और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आगे आपसे अगले विषय पर बातें होंगी, जाते जाते आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब?
0: एक्चुअली एक छोटा सा मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि आप लोग जैसे किसान भाई आप यूज़ करते हैं तो एक तो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज यूज कीजिए, जो यूनिवर्सिटी का बीज है आप कोशिश कीजिए, अगर आप नियर बाई हैं तो ज़रूर उसको परचेज कीजिए, साथ ही अगर किसी विज्ञान केंद्र के आसपास हैं तो आप वहाँ से लीजिए, क्योंकि आज ही अभी के दौर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बीज है जिसका हमको पता नहीं चल रहा है कहाँ से आया, कैसे आया और उसका क्या प्रोडक्शन होगा, क्या क्वालिटी है, कुछ पता नहीं है। तो आप जब भी परचेज कीजिए किसी ऑथेंटिक सोर्स से परचेज कीजिए, एक पर्टिकुलर शॉप से परचेज कीजिए कि जहां पे कि ये बीज हमको सही मिलता है। और एक चीज और है, हमेशा हर साल जो है आप बीज अगर हो सके तो मेरा अनुरोध आपसे यही होगा कि बीज बचा करके हम लोग जो रखते हैं उस ट्रेडिशन को मेरे हिसाब से जो हमारा रिसर्च कहता है उसको अब फिलहाल बंद करने की आवश्यकता है। आप अब हर साल जो है अगर आप कुछ ही बीज खरीदते हैं आप कुछ ही बीज खरीदिए लेकिन हर साल खरीदिए। और जहां तक हम लोग बीज का जो ज्यादा हम दर यूज करते हैं तो जो हम लोगों का रिकमेंडेशन जहां जाता है आप कोशिश कीजिए कि आप उसी रिकमेंडेशन को यूज कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर प्लांट पॉपुलेशन अगर फील्ड में होगा तो उससे आपको उपज में कोई ज्यादा अंतर मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपका लागत बढ़ेगा।
1: कहने का मतलब कि आप जो बीज स्टोर करके रखते हैं कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता जो है कम होती
0: कम हो जाएगी
1: है। तो इसलिए आप स्टोर करके ना रखें,
0: कोशिश कीजिए कि आप अगर हर साल खरीद सकते हैं तो वह बहुत अच्छा है।
1: तो आपने जाना किसान भाइयों कि कैसे आप इस तरीके से जांच परख करके गुणवत्ता वाली बीज ले सकते हैं और इसके साथ ही आप दुगना मुनाफा पा सकते हैं। तो आइए आज के लिए तो बस इतना ही, अगले दिन आपसे अलग विषय पर मैं बातें करूंगी और अगले एक्सपर्ट को मैं लेकर आऊंगी। तो सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम और रखिए अपना ख्याल। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त।

0: 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए, ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग, तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को, जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी

तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डाले। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर ले और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या

हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए, आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं, और आपको छुट्टी दे रहे हैं कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का होता है, जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है, और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10-2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है?
अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त

में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जाकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50 से 80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30 से 90 मिनट की देरी हो सकती है। इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए, अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो। ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब है और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए, आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आप को ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2-3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा, इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज़ सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि 1/2 घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फ़ोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके

0: अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस एक हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि एक महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है। अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि। उन्नत कृषि, जहां हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के बारे में और उनसे जुड़ी बातें। आज हम बात करने वाले हैं कौनी मिलेट के बारे में और किस तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए, क्या विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर, जब हम बात कर रहे हैं कौनी मिलेट की, तो क्या कौनी मिलेट जलवायु के अनुकूल होता है?
5: देखिए, कौनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉक्सटेल बोलते हैं, इटालियन मिलेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सभी मिलेट्स का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। सिर्फ ये कौनी ही एक ऐसी फसल है जिसका एशिया में उत्पादन जन्म स्थान है, जो कि चाइना हो जाता है। तो इसको हम सेटारिया टेलकर के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में फॉक्सटेल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, टेल मतलब पूँछ। तो इसकी जो बालियाँ होती हैं लोमड़ी की पूँछ की तरह बिल्कुल लटकी रहती हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर अलग अलग प्रजातियों की लंबाई होती है बालियों की। मतलब कुछ बालियां जैसे SI 3156 है, इसकी बाली सबसे लंबी होती है, 32 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, अर्थात 1 फीट की लंबाई हो जाती है इसकी बालियों की। तो ये सभी फसलें, चूँकि कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, अधिक तापमान में को भी सह करके उत्पादन दे देती हैं। हमारे बिहार राज्य में खरीफ मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, गर्मी के मौसम में भी उगाई जा सकती हैं। हमारे किसानों के लिए तो बहुत एक अल्टरनेटिव, सच कहा जाए तो जो मूंग होता है, मूंग का एक अल्टरनेटिव फसल है गर्मी के लिए। वहीं बरसात के लिए जिन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति है, वहां तो ये बहुत ही रामबाण साबित हो रही हैं।

0: क्योंकि मात्र 90 दिनों में पककर तैयार होने वाली ये कौनी आपको प्रति एकड़ 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता दे रही है। और इसका चावल मार्केट में देखिए तो 150 रुपये किलो तक का चावल है, और वो भी समय पर मिल नहीं पा रहा है। हमारे ऋषि मुनि इन सभी फसलों का सेवन करके 200 साल तक जीवित रहा करते थे। तो इस जलवायु अनुकूल फसल को उगाना तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है ही। हम पूरे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को भी संतुलित कर सकते हैं इन सब की खेती को बढ़ावा दे करके।
1: जी सर, और अगर हम बात करें कि कब हमें कौनी मिलेट की खेती करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए,
0: तो कौनी की जो उपयुक्त समय होती है बुआई का, खरीफ मौसम में हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक, जब कभी भी खेत हमको खाली मिल जाए और खेत में सफिशियंट मॉइस्चर हो, नमी हो, उस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये 85 से 90 दिनों में पककर तैयार होती है, 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो अब देखा जाए कि अगर हम कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि इसकी बुआई लोग क्या करते हैं कि इनका सरसों है, मसूर है, चना है, इसकी कटाई करने के बाद बुआई मार्च के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं। तो जब मार्च के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो इनकी फसल जून के प्रथम सप्ताह में पक करके तैयार होती है। फिर दूसरी फसल 15 जून तक बरसात मिल जाता है, या कभी कभी 20 जून तक बरसात का पानी मिलता है, तुरंत उसमें दूसरी फसल दे देते हैं इसी कौनी की। तो 20 जून को बुआई करते हैं तो पुनः 3 महीने जुलाई अगस्त 20 सितंबर तक पक के तैयार हो जाती है। तो हम देखा जाए तो गर्मी और खरीफ में एक एक फसल बड़े आराम से इसकी ले सकते हैं और अच्छे उत्पादन दे देती है। तो खरीफ मौसम में सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बात करें तो 15 मई से लेकर के आप 15 जून या लेट कंडीशन में 15 जुलाई तक भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपको खेत खाली हो रहा है तो आप 30 जुलाई तक भी कर रहे हैं तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, हम लोग ऐसा रिसर्च करके देख चुके हैं। तो इसका हम यूँ कर सकते हैं 15 मई से लेकर 30 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले खेती कर सकते हैं। 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जब बुआई करेंगे तो थोड़ा सा 5-10% उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत लंबा विंडो है। आप 15 मार्च से लेकर 10 मार्च से लेकर के आप देखा जाए तो 30 अगस्त तक जब भी आपका खेत खाली है आप बुआई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी फसल है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खेती कैसे करें। तो जैसे हम बाकी मिलेट्स या दूसरे फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं, वैसे ही इसकी भी खेत की तैयारी करनी होगी। 2 से 3 बार जुताई करके पटा कर दें, खेत अच्छे से तैयार हो जाए। तो खरीफ मौसम में अगर हम रेज बेड पे लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। रेज बेड के पीछे हमारा कहने का मतलब ये है कि फसल के बीज के पास कभी भी जल का जमाव नहीं होना चाहिए, ऊपरी और मध्यम ऊपरी ज़मीन में ही इसकी खेती करें, जहाँ कहीं बरसात का पानी ना जमा होने पाए वहीं खेती करें इसकी। तो अच्छे से तैयार खेत में हम रेज बेड या ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से बेड बनाकर खेती करें। वो सुविधा नहीं है तो हम फ्लैट मेथड्स में सीधा बुआई कर सकते हैं, कतार से कतार की दूरी 9 से 10 इंच रख सकते हैं। बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न रखें, अन्यथा ज़्यादा गहराई पर जाने पर बीज का जमाव नहीं होता है। अब बात आती है इसमें उपयुक्त प्रजातियों की, क्योंकि जो भी प्रजातियाँ हैं अगर हम परंपरागत तो अपनी पुरानी प्रजातियां लेंगे तो उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप कहिएगा कि धान की तुलना में प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप जो अभी हम बताने जा रहे हैं उन प्रजातियों का प्रयोग करेंगे तो धान से ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि कौनी का एक प्रजाति है SIA 3156, दूसरा है SIA 326 और तीसरा प्रजाति है SIA 3088, चौथा है श्री लक्ष्मी। ये चारों प्रजातियां हम ले सकते हैं। एक प्रजाति हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, राजेंद्र कौनी 1, इसको भी ले सकते हैं। SIA 3156 सबसे अच्छी प्रजाति है, इसका हम लोग अपने रिसर्च स्टेशन पर 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले चुके हैं। जब हम लोग इसको BBF पर लगाते हैं, ब्रॉड बेड फरो पर लगाता है, फील्ड में पानी का जमाव कभी नहीं होता है, तब अच्छे कंडीशन में 11 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों के पास सुविधा है तो आप BBF पे बुआई करें, रेज बेड बनाकर बुआई करें, नहीं तो कतारों की दूरी 9 इंच रखते हुए 10 इंच रखते हुए आप फ्लैट मेथड में बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बुआई का इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं, लेकिन छिटकवा विधि में आपको बीज दर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रति

एकड़ इसका जो बीज द्रव है वो 4 किलोग्राम पर्याप्त हो जाता है, लेकिन आप छिटकवा विधि से लगा रहे हैं तो वहां पे बीज दर 25% बढ़ाना होगा, अर्थात आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना पड़ेगा। तो छिटकवा विधि से भी बुआई करके खेत में मिलाया जा सकता है, बस उथली जुताई करनी होगी वहां, जो 1 इंच से गहराई पर बीज न जाने पाए। तो इस तरह से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आता है इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि ये फसलें ऐसी हैं जो

0: करते हैं तो जनरली एक सिंचाई देने की जरूरत पड़ जाती है, और कभी कभी अगर हाई टेम्परेचर है, गर्मी ज्यादा है, तो वहाँ दो सिंचाई भी दे। तो गर्मी में तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा, आपको जब सिंचाई की सुविधा हो तभी गर्मी की खेती करें, 15 मार्च 10 मार्च को बुआई करें, नहीं तो सिर्फ खरीफ फसल की बुआई करें अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो। जब बरसात का पानी मिलता है आपको मई के अंतिम सप्ताह में या 15 जून तक, जब भी सिंचाई का बरसात का पानी मिलता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी लेट मानसून आता है तो आप लेट से भी बुआई कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया इसकी बुआई हम लोग 15 अगस्त तक भी अगर करते हैं तो भी कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी विभिन्न टाइम पर विभिन्न विधियों से बुआई कर सकते हैं। किसी कारणवश हमको इंटेंसिफिकेशन करना है तो हम इसकी नर्सरी डाल करके रोपाई भी कर सकते हैं। लगभग 22 से 25 दिन का बिचड़ा जो है हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में मेंटेन करते हुए 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रोपाई में जितना खर्च होता है उतना हमारा निराई में खर्चा बच जाता है, क्योंकि जब हम रोपाई करेंगे तो एक निराई का खर्चा बच जाएगा। अब खरपतवार प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर समय पर हम खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं कि फसल का उत्पादन, जैसा हमने बताया 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता है, लेकिन अच्छे कंडीशन में अगर ज़्यादा खरपतवार, बहुत हैवी खरपतवार लग जा रहा है तो आपको 5 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ उत्पादन नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय पर विशेषकर बुआई से 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत आपका खरपतवार से फ्री होना चाहिए। अब खरपतवार को हटाने के लिए, खरपतवार को न आने देने के लिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए आपको बहुत सी विधियां हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन फसलों को लगाना है तो कहीं कहीं जहां हमारे पास हर्बिसाइड नहीं है वहां हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं, जो भी परेनियल खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार के बीज भी नीचे चले जाते हैं तो खरपतवार कम आते हैं, तो वो विधि भी लगाई सकती है। दूसरा है कि हम बहुत से हमारे पास आजकल पावर बीडर आ गए हैं, पावर बीडर का प्रयोग करके हम लोग कतारों के बीच में मशीन चला करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है मैनुअल ब्रीडर, आजकल मैनुअली जो मानव चालित यंत्र हैं उसका भी कतारों के बीच में प्रयोग करके हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पौधों के किनारे पर खरपतवार उसको हम मैनुअली लेबर से निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं रसायन का, इसके लिए पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त हो जाता है, अर्थात यूं कहें कि 1 से 1.25 लीटर बाजार का पेंडीमिथिलीन प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना है बुआई के तुरंत बाद, बुआई के 24 घंटे के अंदर दे देना है। दवा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना हो। अगर आपका कृषि वैज्ञानिक से सलाह मिली है कि बरसात होने वाली है तो कदापि प्रयोग न करें। पेंडीमिथिलीन का प्रयोग आपको तभी करना है जब मौसम साफ सुथरा रहे और अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना रहे, तभी प्रयोग करें। क्योंकि इन सब का बीज की बुआई हम लोग उथला करते हैं, 2 सेंटीमीटर हमने बताया गहराई पर करते हैं, और अगर पेंडीमिथिलीन हम देते हैं और उसके तुरंत बाद 10 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो क्या होगा कि पेंडीमिथिलीन रिस करके बीज के संपर्क में चला जाएगा और इसके कौनी के बीज को भी जमने नहीं देता है, तो ये सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ती है। किसान भाइयों की सुविधा के लिए बता दें कि आप 30 ml पेंडीमिथिलीन दवा प्रति टंकी के दर से प्रयोग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी पानी जरूरत पड़ती है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना होगा बुआई के तुरंत बाद करें या 24 घंटे के अंदर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते बरसात होने की संभावना नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें हर्बिसाइड हमारे पास अभी तक जो मार्केट में उपलब्ध है इन सब फसलों के लिए केवल 2,4-D ही है, और 2,4-D जो हमारा 58% का है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D 80% का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D एक लो कंसंट्रेशन का आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 58% का अगर दवा है तो उसका जनरली 25 ml प्रति टंकी पानी की दर से व्यवहार करें तो आपके फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो मर जाते हैं, लेकिन जो सकरी पत्ती और बाकी खरपतवार है वो बचे रहते हैं, तो उनको आपको लेबर लगा करके ही निराई करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरह से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल कौनी बीज उपलब्ध हो जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके
0: से। किसान भाइयों के लिए एक और मेरे पास एक ऑफर है, जो हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके तहत हम लोग बीज उपलब्धता के अनुसार पर 25 से 30 किसानों को हम लोग निःशुल्क इसका बीज वितरित करेंगे। जो भी इच्छुक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनको निःशुल्क हम लोग बीज उपलब्ध करा देंगे 2 kg प्रति फार्मर्स। जिन किसानों को ज़्यादा एरिया में लगाना है वो लोग बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो लोग इस फसल की उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार इनको 4,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, 2,000 रुपये इनके खाते में डाल देती है, जबकि 2,000 रुपये का विभिन्न प्रकार के इनपुट्स इनको उपलब्ध करके देती है।

0: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।
1: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो। खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो।
2: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे। हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
4: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
5: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
6: क्या क्या क्या?
3: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
6: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
3: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
7: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त?
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन। सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जो सालों भर मिलता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा भी होता है। शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्हें केला पसंद नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं केले की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किस प्रकार से केले की वैज्ञानिक खेती की जा सकती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि प्रकाश। मैम, आप हैं फल विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
0: तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में केला की कौन सी प्रमुख किस्में हैं जो लगाई जाती है।
1: बिहार में केले की काफ़ी सारी किस्में लगाई जाती हैं। इसमें से कुछ पारंपरिक किस्में भी हैं और कुछ उन्नत किस्में भी हैं जो लगाई जाती हैं। पारंपरिक किस्मों में चिनिया, मालभोग, अल्पान, कोठिया, ये सारी किस्में

0: और इसमें से जो चिनिया, मालभोग और अल्पान है, ये जनरली हम पकाकर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कोठिया और गोरैया, ये जो है कोठिया, मुठिया और गोरैया, ये तीन जो हमारी किस्में हैं, ये सब्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, कच्चे खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ उन्नत किस्में हैं जो अभी किसान भाइयों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है G9 वैरायटी, या फिर ग्रैंड, जिसे ग्रैंड नैने बोलते हैं, और G9 के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार में खासकर की नौगछिया और भागलपुर से के आसपास के जिलों में ये G9 वैरायटी आजकल किसान ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो उपज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा जो लोकल वैरायटीज़ है, हमारी पारंपरिक वैरायटीज़ है, जैसे कि चिनिया, अल्पान और मालभोग, स्वाद की वजह से ये ज़्यादा लोकप्रिय हैं जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं उसके लिए। तो किसान भाई अपने दोनों तरह की किस्में लगाते हैं।
1: जी मैम, और अब बात करते हैं भूमि की तैयारी कैसे की जा सकती है और किस प्रकार की मिट्टी उचित होती है केला के फसल के लिए।
0: तो केला जो है वो केला की जो मिट्टी की ज़रूरतें हैं बहुत खास नहीं है केला को, लेकिन एक समतल की मिट्टी चाहिए जो कि दोमट होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए, और इस मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 तक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बस ध्यान रखने की बात यह है कि जो मिट्टी है उसमें पानी रुके ना, निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पर्याप्त नमी, लेकिन वो पर्याप्त नमी भी रहे, ऐसा ना हो कि ज़्यादा बलवी मिट्टी है जिसमें नमी ना रहे, या फिर ज़्यादा गीली मिट्टी हो जिसमें अधिक नमी रह जाए। मिट्टी सबसे अच्छी होगी अगर दोमट मिट्टी है और उपजाऊ है, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, ऐसी मिट्टी केले की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। जब किसान भाई केले के बगान लगाना चाहें तो उसके पहले उसमें अच्छा होगा कि अगर कोई हरी खाद की वाली फसलें जैसे सनई, ढेंचा या लोबिया लगाकर उसे मिट्टी में मिला दें, तो इससे मिट्टी की जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो अच्छा बढ़ जाएगा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद खेत की अच्छी तरह 3-4 बार जुताई कर लें, अप्रैल मई के महीने में उसे खेत को सूरज की धूप लगने दें ताकि जो भी कीटाणु हैं वो मर जाएं और जो मिट्टी है हमारी वो कीटाणु रहित हो जाए। इसके बाद केले के पौधे लगाने के पहले 60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद लें, जो कि 60 सेंटीमीटर कम से कम 60 सेंटीमीटर गहरा हो। इन गड्ढों को खोदकर उसकी मिट्टी बाहर निकाल लें और फिर उसे 15-20 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उस गड्ढे को खुली धूप में छोड़ने से जो भी अंदर के जो भी कीड़े हैं, मकौड़े हैं या फिर किसी तरह के कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। इसके बाद जब केला का पौधा आप लगा रहे हों तो उस मिट्टी में आप 20 किलोग्राम कंपोस्ट, 1 किलोग्राम नीम की खली तथा 100 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट डाल दें। इसके अलावा 20 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाकर उस गड्ढे को आप भर दें और जो सकर्स लगाएं वो गड्ढे के बीचों बीच लगाएं।
1: मैम, अब आप हमें ये बताइए कि पौध प्रवर्धन क्या होता है, साथ ही पौधा लगाने का समय, उचित समय और रोपण की उचित दूरी क्या होनी चाहिए।
0: केले का पौध प्रवर्धन हम मेनली सकर्स के थ्रू करते हैं। सकर्स कहें तो जो आप केले के पौधे लगाते हैं उसके साइड से जो नए पौधे होते हैं उसे ही हम सकर्स कहते हैं। और ये सकर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सकर्स और दूसरे होते हैं स्वॉर्ड सकर्स। तो जो हमारा केला को हम जब पौध प्रवर्धन की बात करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर स्वॉर्ड सकर्स या तलवारनुमा सकर्स को इस्तेमाल, जिसे हम तलवारनुमा सकर्स बोलते हैं हिंदी में, उसे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ये स्वॉर्ड सकर्स होते हैं ये ज़्यादातर जो मदर प्लांट होती है उसके पास होते हैं। ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और इसमें जो फल लगते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और बात अब आती है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि वो स्वॉर्ड सकर है या वाटर सकर है। तो आप देखेंगे कि जो केले के साइड से जो सकर्स निकलते हैं उसमें कुछ सकर्स होते हैं जिसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और कुछ होते हैं जिसकी पत्तियाँ नुकीली होती है, पतली होती है और नुकीली होती है। तो जो नुकीली पत्तियां वाले सकर्स होते हैं हमें वही सकर्स को लेना चाहिए पौध प्रवर्धन के लिए। इसके अलावा जब हमने सकर्स ले लिया है तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये सकर्स लाएं तो किसी ऐसे खेत से लाएं जहां पे पहले से किसी तरह की बीमारी ना हो, जिस खेत में साफ़ सुथरा खेत हो और वहाँ

0: जो केले लगे हुए हैं उसमें किसी भी तरह की बीमारी ना हो। अगर किसी तरह की बीमारी है तो वहाँ उस जगह उस खेत से नए सकर्स लेने से किसान भाइयों को बचना चाहिए। अब इन सकर्स को लाते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि सकर्स आपके हेल्दी सकर्स हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा छोटे सकर्स आप ले आएँ, कम से कम वो सकर्स 1.5 से 2 किलो के होने चाहिए। इसके अलावा जब आप सकर्स को आप लगाते हैं तो उसे गड्ढे में बहुत ज़्यादा अंदर भी ना डालें। अभी जब पौध प्रबंधन की बात करते हैं तो सकर्स के अलावा हम टिश्यू कल्चर के पौधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बिहार सरकार के द्वारा G9 वैरायटी के जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पे किसानों को दिए जाते हैं। तो जो ये टिश्यू कल्चर के पौधे होते हैं वो पौधे अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर के पौधों से ही पौध प्रबंधन करें, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उसमें किसी भी तरह की रोग व्याधि नहीं होती है और वो उसका जो उपज होता है ये देखा गया है कि नॉर्मल जब हम स्वॉट सकर्स या नॉर्मल खेत के सकर्स से जब हम ग्रो करते हैं और जब हम टिश्यू कल्चर के पौधे से ग्रो करते हैं तो देखा गया है कि जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे होते हैं उनका उपज ज़्यादा होता है। तो अगर आपके इलाके में टिश्यू कल्चर वाले पौधे मिल रहे हैं तो कृपया आप उसी को पहले लगाएं। फिर ये जो सकर्स हम लगाते हैं, ये केले को हम सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि वो जून जुलाई या अगस्त के महीने में लगाएं तो उसमें सिंचाई की प्रबंधन ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है तो इस वक्त किसान ज़्यादा अच्छे से वो पौधे लगने की जो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और सकर्स जल्दी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इन पौधों को जो लगाना है कितनी दूरी पे लगाना है, तो दूरी की बात करें तो अगर किसी बौनी किस्म को लगा रहे हैं तो आप 1.8 बाय 1.8 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, और अगर बहुत लंबी किस्में हैं जैसे मालभोग हैं, चिनिया है, ये जो लंबी किस्में हैं इनको अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर या 2.5 बाय 2.5 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं।
1: जी मैम, अब आप हमें ये बताइए कि सिंचाई के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए।
0: केले के पौधों को उनके पूरे जीवन चक्र में लगभग 900 से 1200 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत होती है, और यह पानी की ज़रूरत या तो बारिश से हो जाए या फिर आर्टिफिशियली इरीगेशन दे के सिंचाई करके दी जाए, दोनों से दिए जा सकते हैं। और इसमें विकास के हर चरण में पानी की ज़रूरत होती है। ये केला सूखा ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में 3 से 4 दिन के अंतराल पे तथा ठंडी के मौसम पे हर 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि पैदावार ज़्यादा अच्छे हों। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन में एक और चीज़ की ध्यान रखना बहुत ज़रूरत है कि जब हम सिंचाई करें तो या तो हम ड्रिप इरिगेशन लगा दें जिससे कि जितनी ज़रूरत है हर पौधे को उतना ही पानी दिया जाए, या अगर फ्लडिंग या चैनल इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वो पानी केले के पौधों के पास ज़्यादा दिन तक रुका ना रहना चाहिए। ये पौधों को अगर पानी रुका रह जाएगा तो पौधों के विकास में रुकावट कर सकता है। उसके बाद बात आती है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन केले में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केला पोटेशियम का एक हैवी फीडर है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम चाहिए। अगर बात करें तो एक केले के पौधे को उसके पूरे जीवन चक्र में 300 ग्राम नाइट्रोजन, 45 से 50 ग्राम फॉस्फोरस और 400 ग्राम पोटेशियम की ज़रूरत होती है। इसमें से जो खाद है और पौधे लगाने के समय ही हम खाद 20 किलोग्राम खाद और 1 किलोग्राम नीम की खली डाल सकते हैं, और साथ ही जो फास्फोरस है वो भी हम जब हम पौधे लगा रहे होते हैं उसी वक्त डाल दें। उसके अलावा जो नाइट्रोजन और पोटैश है ये आप 5 विभाजित खुराक में डालें, जैसे कि अगर आपने पहले लगाने के पहले महीने में नाइट्रोजन डाला है, फिर आप तीसरे महीने में डालें, पांचवें महीने में डालें, फिर सातवें महीने में डालें। इसी तरह से पोटेशियम का भी है कि अगर आपको 400 ग्राम पोटेशियम डालना है तो आप उसे 5 खुराकों में विभाजित करें, और पहले महीने, तीसरे महीने, पांचवें महीने सात

0: पत्ते मैंने और आखिरी खुराक जो फूल निकलते हैं उस वक्त आप डालें। इस तरीके से खाद एवं उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो इससे आपके जो केले हैं उसकी वो फली बहुत अच्छी और भरी हुई होंगी और आपका जो उपज है वो ज़्यादा अच्छा आएगा।
1: और मैम अब हमारे किसान भाई बहनों को आप ये बताइए कि केले की फसल में उसके तुड़ाई तक क्या क्या ऐसे विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है।
0: तो केले में काफ़ी सारे कार्य होते हैं जो बुआई से लेके फसल कटने तक हमें करना होता है। उसमें से सबसे पहले आती है डीलीफिंग, यानी कि पत्तियों को हटाना। समय केला केले के पौधे से अतिरिक्त पत्तियों को समय समय पर हटाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके जो पुराने पत्तियां होती है वो सूख जाते हैं या गिर जाते हैं, तो आप उन्हें समय समय पर हटाकर खेत से बाहर कर दें ताकि वो क्या होता है कि जो ये सूखी हुई पत्तियां होती है इसमें कीड़े मकौड़ों का घर हो जाते हैं। तो अगर वही सूखी पत्तियां वहीं गिरी रहेंगी तो उसमें कीड़े ज़्यादा अच्छे से पनप सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप केले के पत्ते हटा, जो भी सूखे हुए पत्ते हैं आप उन्हें हटाकर बाहर निकाल दें। दूसरा आता है वीडिंग, खरपतवार निराई गुराई। केले के जो बगान होते हैं उसमें निराई गुराई करना एक बहुत बहुत आवश्यक कार्य है, क्योंकि क्या होता है कि जो जो भी खरपतवार होते हैं उसमें भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाते हैं, उनको एक घर मिल जाता है। और केले में जो कीड़े मकोड़े हैं वो बीमारियों का फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए केले के खेत को आप जितने साफ तरीके से साफ सुथरा रख सके उतना अच्छा होगा केले के अच्छे पैदावार के लिए। उसके बाद आता है डीनेवलिंग। डीनेवलिंग होता है कि जो नर पुष्प होते हैं, आप देखेंगे जब एक गोंद में से सारे सारे फल निकल जाते हैं उसके बाद लास्ट आखिर में एक फूल बचा रहता है, कली बची रह जाती है, तो उसे भी हमें हटा देना चाहिए ताकि जितनी भी एनर्जी है या जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो केला वो फल में दे सके और फल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो सके। इसके बाद आता है फूल हटाना। ये आप अगर छोटी बौनी किस्में हैं और फूल तक अगर आपके हाथ पहुंच रहे हैं तो आप जो सूखे हुए फूल हैं, जो केले के फली लग गई है उसके नीचे जो सूखी फूल है वो भी आप हटा सकते हैं। उसके बाद आता है गुच्छों को ढकना या बंच कवरिंग, जिसे बंच कवरिंग भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें क्या होता है कि जो जब गोंद बाहर निकल रहा होता है उस वक्त ही हमें गुच्छों को, जब गुच्छे बाहर आ जाते हैं पेड़ से, तो हमें उसे ढकना चाहिए। वो ढकने के लिए या तो आप पीपी बैग्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे जनरली हम पीपी बैग से या फिर छिद्र युक्त पॉलीथिन या फिर नॉन वुवन बैग से ढक देते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि जो जो फल हैं उसमें एक तो डायरेक्ट सन धूप नहीं लगती है और उससे टेम्परेचर, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो स्केरिंग बीटल होता है, जो आप देखे होंगे कि केले के फल पे धब्बे हो जाते हैं, वो स्केरिंग बीटल के वजह से होती है। और जब अगर हम बंच कवरिंग कर दें तो ये जो स्केरिंग बीटल से नुकसान होता है, जो केलों पे धब्बे होते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। बंच कवरिंग करने से जो किसान भाई कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल की ज़रूरत भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्केरिंग बीटल होते हैं उसी की रोकथाम के लिए किसान भाई कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। बट इस स्केरिंग बीटल को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस बंच को ढक दें। जब बंच निकल रहा है उसी वक्त स्टार्टिंग के टाइम पर अगर आप उसे ढक देंगे तो वो स्केरिंग बीटल उसे नुकसान ही नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको कीटनाशक देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद दूसरा आता है डीसकरिंग, या फिर जो जो सकर्स होते हैं। आप देखेंगे कि केले के जो पौधे होते हैं उसके चारों तरफ छोटे छोटे और नए पौधे आते रहते हैं, तो आपको किसान भाइयों को ये छोटे छोटे जो सकर्स निकलते रहते हैं उसे समय समय पर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सकर्स क्या होते हैं कि अगर आप इसे भी साथ साथ में ग्रो करने देंगे तो ये सकर्स भी मिट्टी से वो खाद लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे जो आपने मेन पौधे के लिए दिया था। तो इसलिए कोशिश करें कि सारे सकर्स को आप हटा दें और एक बार जब फूल आ जाए, फल आने लगे, तब रेटूनिंग के लिए आप एक सकर को रखें, उसे बढ़ने दें। जब फूल आके फल आ जाए

0: उसके बाद आप एक शक्कर को मेंटेन करके रख सकते हैं जो आप अगले साल, जिससे आप अगले साल फसल लेने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आगे बताना भूल गई थी कि अगर आप केले की खेती करते हैं तो तीन बार से ज़्यादा एक ही शक्कर से आप ग्रो नहीं करेंगे, मतलब तीन रेटूनिंग के बाद आप फसल चक्र अपनाएं और उस खेत को पूरा खाली करके उसमें कुछ और फसल लगा दें, चाहे आप मक्का लगा दें या फिर धान लगा दें, गेहूं लगा दें, कुछ भी लगा दें, और उसके बाद एक साल का गैप छोड़ें, उसके बाद ही दूसरा फसल लगाएं उसमें। फिर आता है एक क्रॉपिंग, यानी कि सहारा देना। जब केले के घौन निकल जाते हैं और फलियां बड़ी होने लगती हैं तो केले के पेड़ फलों के भार से झुक जाते हैं, तो इस वक्त ज़रूरी है कि केले के पौधे को सहारा दिया जाए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बांस से हम केले के पौधे को सहारा दे देते हैं, और इससे क्या होता है कि फल पेड़ गिरते नहीं, झुकते नहीं हैं और ना गिरते हैं। बहुत बार संभावना होती है कि जो फल है वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो पौधे झुक जाते हैं और झुककर गिर जाते हैं, तो इससे फलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए जब फल आ जाए, पूरा गोंद बाहर आ जाए और सारे फल निकल जाए, तो बांस की सहायता से पौधों को आप सहारा दे दें।
1: मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि तुड़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए और उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: तो जब केले की तुराई की बात होती है तो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तुराई करें वो जब केले परिपक्व हो जाए उसके बाद ही करें। बहुत बार किसान क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम दूर कहीं किसी दूर बाज़ार में हमें केले बेचने हैं तो वो अपरिपक्व स्टेज पे ही केला को तोड़ लेते हैं या हार्वेस्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप परिपक्वता के पहले उसे तोड़ेंगे तो वो इथिलीन देने से वो पक तो जाएगा या फिर रखे भी वो पक जाएगा, लेकिन जो उसका स्वाद है वो ख़राब हो जाएगा। जो अंदर की जो फली है, वो उसका जो गूदा है, उस पर ना वो स्वाद आएगा ना ही वो उतना भरेगा। तो अभी आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप इंतज़ार करें कि जब वो केला परिपक्व हो जाए तभी तोड़ें। अब बात आती है कि आप कैसे जानेंगे कि ये केला परिपक्व हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप केले का एक एक जो फली है उसे देखें। तो जब कच्चा रहता है तो आप देखेंगे वो उसके चारों तरफ किनारे नुकीले होते हैं, मतलब किनारे गोल नहीं होते हैं। तो जब केले परिपक्व हो जाते हैं तो उसके किनारे गोल हो जाते हैं और केला पूरा ही गोल हो जाता है। अगर केले गोल हो चुके हैं तो यानी कि वो परिपक्व हो चुके हैं। वो केले आपको दिखेंगे वो गहरे हरे रंग से वो हल्के हरे रंग की तरफ, उसका रंग, छिलके का रंग बदलने लगता है, तथा अगर कुछ केले गोंद में कुछ केले पीले पड़ने लगते हैं तो समझना चाहिए कि अब ये केले परिपक्व हो चुके हैं और हम इसकी तुराई कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश किस्मों में 90 से एक फूल निकलने के 90 से 100 दिन के 120 दिन तक में केला परिपक्व हो जाता है और आप इसकी तुराई कर सकते हैं।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाई बहनों, जिस प्रकार से मैम ने बताया, आप उस प्रकार से केले की खेती कर सकते हैं और जिन भी बातों का ध्यान रखने की बात मैम ने कही, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके केले के जो फसल होंगे वो बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे उत्पादन का आप लाभ उठाएंगे। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही आप अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग, तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस

700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें, और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में

0: मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतया रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम खरीफ प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है? साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
1: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउंड डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20

0: सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की एक तिहाई तथा स्फूर, पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 2 बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से 1 बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजीम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के

0: नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं, जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काट कर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी को आरजे अनु का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और लेकर आए हैं हम आपके लिए, जी हां, सिर्फ आपके लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जो आपको देता है बहुत सारी उन्नत बातों की जानकारी। वैसे हर विषय में जो है हम कुछ खास बातें लेकर आते हैं। अभी फिलहाल रवि फसलों की बात, हम इस फसलों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जब रवि फसलों की बात होती है तो दलहनी फसलों को हम छोड़ नहीं सकते। जी हां, दलहनी फसलों की आज बात होगी, और ख़ास तौर पर आपकी आय से जुड़ी बात होगी। जी हाँ, आज आपको बता दें कि हमारा विषय है किसान की आय को दुगना करने के लिए रवि दलहन फसल की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग। वैसे दोस्तों, हम बात करें किसान भाइयों की, तो किसान भाई हमेशा अपने मेहनत लगाते हैं इन दलहनी फसलों को उपजाने में, लेकिन जब आधुनिक तकनीक को उनसे जोड़ दिया जाए, उनकी मेहनत के साथ जोड़ दिया जाए, तो उनकी आय और भी ज़्यादा हो सकती है, दोगुना हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और सबसे पहले तो जहाँ तक हमारा विषय है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, वैसे तो पौष्टिकता की बात करें तो दाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे खाने में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। अब मुझे लगता है कि दाल के बिना हमारा जो खाना है, हमारा जो आहार है, वो अधूरा रहता है। तो सबसे पहले इसके महत्व को हम जानना चाहेंगे, भारत में दालों का क्या महत्व है।
1: किसान बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में दालें जो है मुख्य रूप से प्रोटीन स्रोत के रूप में भोजन का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा टिकाऊ कृषि हेतु भी मृदा की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करने एवं आहार तथा चारे के विभिन्न रूपों में उपयोग आदि इन फसलों के लाभ हैं। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर दलहन की वर्तमान उत्पादकता को दोगुना किया जा सकता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो महत्व तो जाना हमने कि कैसे, मतलब क्या इसके पौष्टिकता के महत्व तो हमने जाना कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमारे जो गरीब हैं वो भी अगर दाल को अपने डाइट में शामिल करें तो उन्हें जो

0: अतिरिक्त उनके शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो आय को दुगना करने के लिए कौन कौन सी तकनीक हमारे किसान भाइयों की मेहनत के साथ जोड़ा जा सकता है?
1: यदि हम उन्नत तकनीकियों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले उन्नतशील प्रजातियों के चयन की बात आती है, तत्पश्चात फसल उत्पादन तकनीक की, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कृषि रसायनों का उपयोग, दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र, मृदा का चुनाव एवं खेत की तैयारी, बीज उपचार, उचित बीज दर एवं बुवाई का समय, पौधों की उचित संख्या, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी इत्यादि है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो मुख्य रूप से बिहार में रवि दलहन फसलों में कौन कौन से प्रमुख दालों की हम बात कर सकते हैं?
1: देखिए, मुख्य रूप से जो जिनका क्षेत्रवार हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे बिहार में मसूर की जो खेती सबसे अधिक
0: जी
1: स्तर पर की जाती है, तत्पश्चात चने की खेती की जाती है। रबी फसलों की बात करें तो इसमें जो है कि विभिन्न दलहनी फसलों के जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों का विकास हुआ है, जिससे उत्पादकता में जो उतार चढ़ाव में कमी जो होती थी उसमें कमी आई है।
0: अच्छा।
1: तथा उत्पादकता में स्थायित्व आया है। अतः विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, जिसे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बोलते हैं, या गैर परंपरागत क्षेत्रों के लिए उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, अतः इनके प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक आपने बात की कौन कौन सी
0: तकनीक
1: दलहनी फसलें जो मुख्य रूप से हैं, उसमें चना और मसूर के बारे में बताया। मसूर में भी दो तरह की किस्में होती हैं, छोटे दाने वाली और बड़े दाने वाली। इसी प्रकार से चने में दो तरह की किस्में हैं, देसी चना और काबली चना।
0: अच्छा।
1: मसूर में यदि हम छोटे दाने वाले किस्मों की बात करें तो इसमें अरुण, हल 57, NDL1, KLS 218, PL 406, PL 639, PL 6, PL 7 और शिवालिक इत्यादि हैं। जबकि बड़े दानों में IPL 406, DPL 15, DPL 62, DPL 81 और K75, जिसे मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग हम कर सकते हैं। जबकि देसी चने में GCP 105, DCP 92-3, PUSA 256, JG 14, PUSA 362, PG 186 एंड PUSA 372 इत्यादि प्रमुख हैं। काबुली चने के बारे में यदि हम कहें तो इसमें उन्नत किस्मों में सुभरा, पूसा चमत्कार और GNG 1969 इत्यादि प्रमुख हैं।
0: अच्छा, और जहाँ तक तकनीक की बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तो फसल उत्पादन तकनीक के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कुछ?
1: जी, इन सभी तकनीकों के बारे में हम विस्तार से आपको हम बताते हैं, जिसमें हमने आपको उन्नतशील प्रजातियों के चयन के बारे में आप बताया। अब हम बात करेंगे फसल उत्पादन तकनीक के बारे में। इसमें महत्व है कि सिंचाई, उर्वरक तथा कृषि रसायनों के प्रयोग के बारे में यदि हमारे कृषक बंधु जागरूक हुए तो दलहन की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। सामयिक बुवाई के साथ साथ पर्याप्त पौधों की संख्या, राइजोबियम कल्चर तथा कवकनाशियों से बीजोपचार, खरपतवार प्रबंधन तथा संसाधन संरक्षण तकनीक जैसे बिना लागत के अथवा न्यूनतम निवेश वाले आदान भी उत्पादकता की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र को अपनाएं, जैसा कि उत्तर पूर्वी मैदानों एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में रबी ऋतु में हेतु यदि आप चना ले रहे हैं या मसूर ले रहे हैं, इसके साथ आप सरसों, चाहे तो सूरजमुखी या अलसी प्रमुख रूप से इंटर क्रॉप के रूप में ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मृदा एवं खेत की तैयारी। तो प्रमुख ध्यान देने योग्य बात यह है कि उचित जल निकास वाले खेत जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक ना हो तथा पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच हो एवं बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी दलहनी फसलों के आदर्श होती हैं। दलहनी फसलों को सामान्यतः बहुत अच्छे खेत की आवश्यकता नहीं होती है। एक गहरी जुताई के बाद क्रॉस हैरोइंग तथा पाटा लगाने से बुआई हेतु खेत तैयार हो जाता है। मसूर जैसी दलहनी फसलों को यूटेरा पद्धति से बुआई करने हेतु किसी भी प्रकार की कृषण क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि बीजों को पहले बीजोपचार करना जब बहुत ज़रूरी होता है, तो किन चीज़ों से बीजोपचार करें, कैसे करें, उसके बारे में बताएं।
1: जी, बुआई से पूर्व बीजों का उपचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों से बचाव हेतु बीजों को कवकनाशी जैसे कैप्टॉन या थीरम 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एवं फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने

0: के लिए राइजोबियम एवं फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु जिसे पीएसबी कहते हैं 15 से 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी देखा जाए हमारे बिहार क्षेत्र में रवि दलहनी फसलों की हम बात करते हैं, तो चना और मसूर जो है एक प्रमुख दलहनी फसल है हमारे बिहार क्षेत्र की, तो इसकी बीज दर क्या होती है ये जानना चाहेंगे हम, और बुआई का उचित समय क्या है इसका?
0: जी, बुआई हेतु बीज शुद्ध, रोग तथा भौतिक क्षति मुक्त तथा 90 से 95% अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। चने की बात करेंगे यदि हम, तो इसमें छोटी दाने वाली प्रजातियाँ जिनके 100 दाने का वजन 12 से 15 ग्राम होता है की बीज दर 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर होती है, तथा मध्यम एवं बड़े दाने वाली प्रजातियाँ जिनके बीजों का 100 दाने का वजन 25 ग्राम तक होता है कि 80 से 85 केजी प्रति हेक्टेयर उचित रहती है। बुआई का उचित समय उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरानी दशाओं में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा तथा सिंचित दशाओं में नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। मसूर की बात करते हैं तो छोटे दाने वाली प्रजातियां हेतु बीज की दर 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर तथा बड़े दाने वाली प्रजातियां हेतु 55 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर उचित होती है। उत्तर पूर्वी मैदानों में या मध्य क्षेत्र में भी नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई का उचित समय है। यदि नमी की कमी है तो उस अवस्था में मध्य अक्टूबर बुआई का उचित समय होता है। बुआई में देरी की अवस्था में अथवा धान से खाली हुए क्षेत्रों में उटेरा पद्धति से बुआई हेतु बीज दर 15 से 20% बढ़ा देनी चाहिए।
1: अच्छा, इन फसलों की सस्ती क्रियाओं की भी बात करते हैं हम, तो उनके बारे में बताएं हमें।
0: जी, सस्ती क्रियाओं से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चने में और मसूर में पौधों की प्रॉपर संख्या का होना आवश्यक है। अतः चने में 33 से 40 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर तथा मसूर में 80 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर उपयुक्त माने जाते हैं। सस्य क्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं हम उर्वरक प्रबंधन की, तो सामान्य दशाओं में जो नाइट्रोजन है आपका 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम तथा पोटेशियम 20 किलोग्राम एवं गंधक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई से पूर्व आधारीय प्रयोग संस्तुत किया जाता है। फली बनते समय अथवा देर से बोई गई फसल में शाखाओं के बनते समय 2% यूरिया या DAP के घोल से छिड़काव करने से समुचित पैदावार मिलती है। मृदा में विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर 15 से 20 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर तथा 1 से 1.5 केजी अमोनियम मोलिब्डेट का प्रयोग की संस्तुति की जाती है। इसके बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। उत्पादकता में कमी को रोकने हेतु फसलों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक है। इसके लिए गुड़ाई एवं हाथ से निकाई जैसी कर्षण क्रियाओं के साथ खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग उचित रहता है। खरपतवारों की आरंभिक वृद्धि पर नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पैंडी मिथिलिन 1 से 1.5 केजी AI प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जहां तक जल प्रबंधन की बात है तो हल्की मृदाओं में अधिकांशतः शीतकालीन दलहनी फसलों में शाखाएं निकलते समय तथा फली बनते समय 1 से 2 सिंचाई लाभप्रद पाई गई है। फूल आने की अवस्था में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फूलों के गिरने तथा अतिरिक्त वानस्पतिक वृद्धि होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दलहनी फसलों में स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करना सर्वोत्तम है।
1: अच्छा।
0: संसाधन संरक्षण में धान मसूर फसल प्रणाली में इनके फसल अवशेष के समावेश से उत्पादकता में वृद्धि होती है। धान कटने के बाद नो टिल सीड ड्रिल की सहायता से चना की बुआई करने और धान की पुआल की पलवार खेत में छोड़ने पर मृदा में नमी का पर्याप्त संरक्षण होता है और चना की उपज में वृद्धि होती है। यदि मक्का और चना फसल प्रणाली अपनाई गई है तो मक्का में 30 केजी फास्फोरस प्लस 5 टन गोबर की खाद तथा चना में 40 केजी फास्फोरस और PSB के प्रयोग से फास्फोरस की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है।
1: तो डॉक्टर साहब अभी एक और जो दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है उन्नत कृषि यंत्र और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी, तो इसका महत्व क्या है इसमें?
0: देखिए, उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इसमें उन्नत कृषि यंत्रों में जैसे मानव संचालित नो टिल सीड ड्रिल आता है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही कम खर्च वाला तथा धान से खाली हुए खेतों में संचित नमी में लाइन से बुआई के लिए उपयुक्त होता है।
1: ये उन्नत कृषि यंत्र महंगे होते हैं या फिर मतलब नहीं, हमारे छोटे किसान
0: कम खर्च वाले हैं और छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं।
1: अच्छा,
0: और इसकी बुआई

0: क्षमता केवल दो व्यक्तियों की सहायता से 0.05 हेक्टेयर प्रति घंटा की जा सकती है। इसके बाद बात आती है वर्टिकल थ्रेसर की। न्यूनतम समायोजन के साथ विभिन्न दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है वर्टिकल थ्रेसर, और चना के लिए इसकी क्षमता जो है 300 kg प्रति घंटा है।
1: अच्छा।
0: इसके बाद बिनुअर आता है, सक्शन बिनुअर। इसकी ओसाई क्षमता, ये ओसाई के लिए प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। इसकी ओसाई क्षमता जो है 150 kg प्रति घंटा है। इसके द्वारा धूल, मिट्टी और हल्के अपमिश्रण चूषण विधि द्वारा परिचालक की विपरीत दिशा में उड़ा दिए जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जहाँ तक फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें, क्योंकि दलहनी फसलों में जैविक और अजैविक दोनों तरह के कारक होते हैं जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों का जैविक तथा अजैविक कारकों से बचाव अत्यंत आवश्यक है। समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन, जिसमें रोगरोधी प्रजातियों के स्वस्थ बीजों का प्रयोग, कृषण क्रियाओं में बदलाव, कवकनाशी तथा जीवनाशी तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है, उत्पादकता को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चने की बात करें तो बुआई से पहले क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में आपको बताते हैं। बुआई के पूर्व रोगरोधी प्रजातियों का चयन करें। सूत्रकृमि, जिसे हम नेमेटोड्स बोलते हैं, ग्रसित खेतों में गर्मी में गहरी जुताई तथा निबोली के चूर्ण का 50 kg प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बुआई के समय उचित समय से बुआई करना अत्यंत आवश्यक है। कार्बेंडाजिम प्लस थीरम, 1 gram कार्बेंडाजिम प्लस 2 gram थीरम प्रति किलोग्राम सीड, अथवा ट्राइकोडर्मा 4 gram और 1 gram कार्बोक्सिन प्रति किलोग्राम सीड से बीज उपचार करें। निमेटोड से ग्रसित मृदा में कार्बोसल्फान 1% से बीजों का उपचार करें। खड़ी फसल में फली भेदक चना में बहुत लगते हैं, तो फली भेदक कीट से होने वाली क्षति को कम करने के लिए पहली बात की 4-5 यौन आकर्षण जाल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नंबर 2, चिड़ियों को बैठने के लिए टी आकार के अड्डों का प्रावधान करें, इसमें 35-40 टी आकार के अड्डे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। यदि फली भेदक का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अभिप्राय यह है कि 1-2 लार्वा प्रति मीटर पक्ती में पहुंच जाए तो कीटनाशी का छिड़काव करें। इसमें सबसे पहले निबोली के 5% शत का प्रथम छिड़काव करें। द्वितीय छिड़काव NPB न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु का 250 लार्वा समतुल्य प्रति हेक्टेयर की दर से करें, और अंत में आवश्यकता होने पर इंडेक्सोकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी का तृतीय छिड़काव करें। मसूर में बुआई के पूर्व क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों तथा सूत्रकृमि से होने वाली क्षति से बचाव के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। बुआई के समय सामयिक बुआई से फसल को उकटा रोग से होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। मृदा जनित रोगों पर नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम प्लस थीरम अथवा ट्राइकोडर्मा प्लस कार्बोक्सिन से बीजोपचार करें। अलसी के साथ अंतःशस्य क्रियाएं एवं मिश्रित खेती से उकटा रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है। खड़ी फसल में माहू का प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 0.03% का छिड़काव करें। रतुआ रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 0.02-0.3% अथवा मैंकोजेप 0.02% का छिड़काव करें। रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। आदि इन सभी उन्नत तकनीकियों को अपनाकर किसान भाई अपनी आय को दुगना कर सकते हैं तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने विस्तार में जाना कि कैसे आप अपने आय को दुगना कर सकते हैं रवि दलहन फसलों की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहे उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दो

0: दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और ख़ुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्म सम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्म सम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो

हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएँ होती है, कमाने वाली महिलाएँ होती हैं, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये
पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति

नहीं करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए, आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फास्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर से सस्य फसलों के लिए, और बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
2: उमा, अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है। और हमारी जो बिहार की किसान हैं, उनकी जो आय है उसकी 60 से

0: 70% आपकी इस सस्ते फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों की बात करें, और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
1: तो मैम फॉस्फोरस क्या है अब ये बताइए।
0: जी, फॉस्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें, तो उसमें ऐसे नाम है, अगर आप सुने होंगे, एटीपी, एडीपी, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं, जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी कोशिकाओं के लिए फॉस्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए। तो फॉस्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे बिंदुआ हैं या प्रक्रियाएं हैं जिसमें फॉस्फोरस जरूरी होती है, जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन, और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
1: तो मैम सस्य फसलों में अगर हम फॉस्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है?
0: जी, हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है, जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फॉस्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट या जरूरी होती है, यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फॉस्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में, उसमें भी आपको फॉस्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थिति परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फॉस्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फॉस्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
1: मैम जब फॉस्फोरस इतना इम्पॉर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की क्या स्थिति है?
0: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है, और जलोढ़ मिट्टी गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फॉस्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी क्षार युक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब

अब क्या होती है, हम जैसे ही फॉस्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फॉस्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं, तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षार युक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फॉस्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर

0: बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 टू 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्गीय होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 या 30 प्रतिशत तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत यानी 15 से 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नट से अगर हम बोले कि बिहार की सॉइल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 से 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
1: तो मैम ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
0: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसकी इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उस के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि DAP SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फास्फोरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फास्फोरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फास्फोरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फास्फोरस जो दे रहे हैं उसको वो ले ले, अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूअर जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूअर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फास्फोरस सॉल्युबल होके जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फास्फोरस की वो फास्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फास्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो, तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी, यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग

0: बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे, ये 20-30% फॉस्फरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
1: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
0: जी जरूर। फॉस्फरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
1: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू वेरी मच उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि
खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत

पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है, इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिर परिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का।

छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल तारानी सिंगरौल नोमेश सिंगरौल नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की। तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओ आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है, और क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या, तो श्रोताओं वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें, तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है, फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओ अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है। यही तो बात है श्रोताओ, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है, नहीं ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह जी उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी

0: ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल, आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थी और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
6: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
7: बिल्कुल सही कहा आपने।
6: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
7: जी जी, चलो चलो देखते हैं।
6: चलो चलो चलो चलो चलो, जल्दी चलो।
8: अहोम के महाराज की जय हो।
9: जय हो, जय हो।
8: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
10: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में यह संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।

0: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है। ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
2: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
2: ओह।
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
2: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
2: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
3: जी।
2: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
2: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
2: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।

पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही हैं। मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन सबको देख के। अरे यहाँ तो भवरा भी है। अरे तोता कहाँ जा रहा है? कितना

0: खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया
2: नमस्ते। नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा, मामा जी आए हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया। हाँ। देखोगी? एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। आई पसंद? और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है। देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसे नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, और हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था।
0: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा,
2: ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी, खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज
4: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।

0: चिड़िया कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह, तोते तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
0: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया तोते, अरे सुंदर है।
1: अरे सुन तो,
0: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बात देखी तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
3: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा, थैंक यू। नमस्कार सभी को।
0: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
1: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
0: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
1: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते। हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली। एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं। आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो पदभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर, आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें। जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं, वैसा नहीं करना। DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज़ होते हैं ना दाने के, उसी साइज़ से कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं, हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपके बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुक

कीजिए, उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरन दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, माने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होता है हैंड से, हैंड हैरो, यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है, तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी, आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं, यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया, पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपकी सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए, क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं, उसे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले, फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया, बुआई करने के आधे घंटे पहले मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई, उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बन लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे, जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं, आप उसकी स्पेसिंग 20 into मतलब 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217

से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम एसएसपी डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम, पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम एमओपी यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए

0: की 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है यानी जब उसकी फलियां आती हैं तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल कर पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर DSR में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने मैंने बताया जैसे ड्राई DSR होती है, वेट DSR होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर DSR के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप DSR आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये DSR की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं DSR का वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन DSR में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसके वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है DSR में वो होती है कि वीडिंग, आपको खरपतवार का विशेषतः ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलीन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को मतलब वीड्स को खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं DSR के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरह से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो DSR में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके DSR के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम DSR पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
0: अभी हम जो धान की बुआई DSR के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका PHB 71 हो गया, PUSA RH 10 हो गया, ठीक है, और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे आपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
1: जी मैम। तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए

0: टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
2: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल

अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें। जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ा कर चली गई ट्यूशन के लिए।

0: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
1: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग 6 इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
0: और तुमने वीडियो देखा?
1: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
2: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
1: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है, पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
0: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100 सवा 100 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
1: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
0: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
2: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
1: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
0: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है। HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
1: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
0: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
2: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है

0: कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
1: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
2: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
1: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
2: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
1: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
2: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
1: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित